0: ओडिशा के रायगढ़ा में राजा महोत्सव की धूम है। इस उत्सव में पारंपरिक झूलों के बीच लोकगीत और लजीज पारंपरिक पकवानों ने फिजा में रौनक ला दी है। पारंपरिक ओडिशी और संबलपुरी नृत्यों के जरिए ओडिशी लोक कला यहां प्रदर्शित हो रही है। भव्य सांस्कृतिक आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। यहां महिलाएं पारंपरिक ओडिशी वेशभूषा में नजर आईं और राजा झूला का आनंद उठाते दिखी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के तुलमुल में मौजूद माता खीर मंदिर में माता खीर भवानी मेला 19 जून को लगने जा रहा है। इस मेले और उत्सव को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मुख्य पर्व माना जाता है। इस मेले में सैकड़ों विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। इसीलिए इस मेले के लिए और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा ताइक्वांडो कैंप लगाया था, जिसमें इलाके की बच्चियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। यहां ताइक्वांडो कोच ने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए और उनका आत्मविश्वास मजबूत किया। इस कैंप में आज समापन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पुंछ के एसपी खुद बच्चियों के उत्साहवर्धन के लिए आए। बेहद पवित्र और दुर्गम किन्नौर कैलाश यात्रा 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी। इस मुश्किल धार्मिक यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा वजहों से प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 375 यात्रियों को ही किन्नौर कैलाश यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया। किन्नौर कैलाश यात्रा रिकांगपियो के पास तंगलिंग गांव से शुरू होती है, जिसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। गंगटोली और गणेश पार्क इस यात्रा का पहला पड़ाव है। करीब 14,900 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पार्वती कुंड में स्नान के बाद अंतिम चढ़ाई शुरू होती है। इस दुर्गम खड़ी चढ़ाई को पार करने के बाद मुख्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहां समुद्र तल से करीब 19,850 फीट ऊंचाई पर 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक और दिव्य शिवलिंग मौजूद है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मथुरा के संत आशुतोष ब्रह्मचारी और गायिका प्रांजल दहिया ने भस्म आरती में हिस्सा लिया। आज सुबह की भस्म आरती खास रही, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। बाबा महाकाल का आज भांग, चंदन और आभूषणों के साथ राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। सुबह से लंबी लंबी कतारों में मौजूद भक्तों ने महाकाल की दिव्य भस्म आरती में हिस्सा लिया।
1: और अब बात करते हैं मॉनसून की। देश के कई हिस्सों में मॉनसून की दस्तक से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की एंट्री से पहले तूफान का अलर्ट आया। मौसम विभाग ने 17 से 22 जून के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की आशंका जताई है और हिमाचल के कुछ राज्यों में गरज और ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं गुड न्यूज ये भी है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी अभी जारी रहने वाली है। हालांकि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना बनी रहेगी।

0: मानसून की आहट से बादलों की चाल बदली हुई है। कहीं सूरज से आंख में चौली का खेल चल रहा है तो कहीं हवाओं में नमी महसूस की जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में 15 जून से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मानसून समय पर दस्तक देने वाला है। 18 जून से 22 जून के बीच में एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे यहां बारिश की संभावना बन रही है। अनुमान है कि कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में तूफान की आशंका को ध्यान में रखते हुए 18 और 19 जून को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से प्री मॉनसून बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कभी तेज हवाएं चलती हैं तो कभी बारिश हो जाती है, कुछ घंटों में धूप भी निकल आती है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पिछले दो दिनों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम का ये बदलाव राहत लेकर आया। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिली राहत का दौर जारी है, लेकिन इसके साथ ही मौसम नया ट्विस्ट भी लेकर आने वाला है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 जून से उत्तर पश्चिम भारत का एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस असर डाल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई, लेकिन उसके बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा।
1: देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का अलग अलग मिजाज जो है वो देखने को मिल रहा है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो इस वक्त तापमान थोड़े से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि 35 डिग्री है, लेकिन जो गर्मी है वो कुछ ज्यादा ही जो है महसूस की जा रही है, क्योंकि तापमान एकदम से वापस बढ़ा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, उसका असर जो है मैदानी राज्यों पर देखने को मिला था और दिल्ली एनसीआर में भी लगातार जो है आंधी तूफान और हल्की बारिश जो है वो देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से तापमान जो है वो बढ़ गए। हालांकि 18 जून को एक पश्चिमी विक्षोभ वापस से सक्रिय होगा, जिसका असर पहाड़ी राज्य समेत जो है दिल्ली एनसीआर और बाकी सभी मैदानी राज्यों पर जो है वो देखने को मिलेगा। हल्की फुल्की जो बारिश है दिल्ली एनसीआर में देखी जा सकती है, पहाड़ी राज्यों पर भी जो है अच्छी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर मैं मानसून की स्थिति की बात करूं तो मानसून जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना के अधिकतम हिस्से जो है वो मानसून कवर कर चुका है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने जो है वो दस्तक दे दी है और इसके साथ ही अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का यह अनुमान है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्सों में जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी। 23 जून के आसपास की जो तारीख है वो बताई गई है और उसके बाद धीरे धीरे जो है उत्तर भारत की तरफ मॉनसून बढ़ेगा। हालांकि अभी महीने का अंत का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आसपास जो है दिल्ली एनसीआर में मानसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी। लेकिन अभी की बात करें तो तापमान थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल के बाद वापस से थोड़ी सी स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिलेगा।
0: पिंक सिटी, जयपुर, लेक सिटी, उदयपुर समेत कई जिलों में गर्मी का असर एक बार फिर से बढ़ गया। हालांकि प्री मानसून की बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी थी। कई जिलों में तेज आंधी और झमाझम बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।
2: प्री मानसून के सीजन में आसमान में बादल और सूरज की नोकझोंक देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान के पूर्वी इलाके में कहीं जगह तेज तो कहीं जगह हल्की बारिश देखी जा रही है और ऐसे में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश झुंझुनू में दर्ज की गई है, जो कि 66 mm है। वहीं टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूँ तो हाइएस्ट टेम्परेचर इस वक्त फलौदी में है, जो कि 42 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर इस वक्त 19 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते ईस्ट राजस्थान में अलग अलग दिन अलग अलग मौसम देखा जाएगा, जिसमें बारिश और मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है। येलो अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है और वहीं जो डेजर्ट एरिया है, जो जोधपुर जैसलमेर संभाग है, वहां पे 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड के डस्ट स्टॉर्म की भी चेतावनी दी जा रही है।
0: मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी, गरज चमक और बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।
3: देखिए लॉन्ग रेंज फोरकास्ट यदि देखें भारत मौसम विभाग की तरफ से जो जारी की गई थी, तो फर्स्ट स्टेज में भी ये स्पष्ट किया गया था कि इस बार मानसून कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि जो लार्ज स्केल जो क्लाइमेट ड्राइवर्स हैं उनका जो कंडीशंस है वो इस बार एक अच्छे मानसून के लिए फेवरेबल नहीं है। वहीं सेकंड स्टेज जो फोरकास्ट दिया गया अपडेटेड जस्ट जून मई एंड में, तो इसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश पूरे देश भर में होने की संभावना है, और उसी के मुताबिक भी अब तक यदि देखें तो सामान्य से कम बारिश इंडिया भर में भी रिपोर्ट हुई है, और मानसून फ्लो जो है वो सामान्य से यूँ कह सकते हैं कि वीक मानसून फ्लो है। तो ऐसे में जैसे ही कोई वेदर सिस्टम्स बंगाल की खाड़ी में बनेगा तो मानसून का जो प्रोग्रेस पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की तरफ होगा, तो ऐसे में राजस्थान का जो है वो नंबर यूं कह सकते हैं कि लगभग इंडिया के ज्यादातर एरियाज को कवर करने के बाद सामान्यतः राजस्थान में पहुंचता है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि सेंट्रल इंडिया के काफी एरिया बाकी हैं, इनमें जैसे ही मानसून प्रोग्रेस होगा आगे बढ़ेगा तो हम लोग राजस्थान में मानसून के पहुंचने की स्थिति जैसे स्पष्ट होगी तो आपको अवगत कराएंगे।
0: पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन समूचे उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मानसून का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। 16 जून तक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा तक मानसून दस्तक दे चुका है। फिलहाल मानसून तेलंगाना के भद्राचलम में 7 दिन से अटका हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में हालात बदल सकते हैं और फिर 20 जून के आसपास महाराष्ट्र में मानसून दोबारा से रफ्तार पकड़ सकता है। उसके बाद मुंबई में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आमतौर पर 11 जून तक मुंबई में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से ऐसा नहीं हुआ। 20 जून के बाद मानसून मुंबई पर मेहरबान हो सकता है। 17 जून से 5 जुलाई के बीच मानसून छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि सूखी पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से बारिश में देरी हो रही है। साथ ही अल नीनो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी मानसून की चाल पर पड़ा है। जयपुर से रिदम जैन और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भारतीय नौसेना त्रि शक्ति से होने वाली है लैस। जी हां, 21 जून को होगी 3 युद्ध पोतों की एक साथ कमिशनिंग। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: देश में अब बिना डॉक्टर के पर्चे के कफ सिरप नहीं बेच पाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ड्रग्स रूल्स 1945 में बदलाव किया है। इसमें कफ सिरप को शेड्यूल के से हटा दिया गया है। शेड्यूल के उन दवाओं की लिस्ट है जिन्हें बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे के बेचा जा सकता है। ये बदलाव पिछले साल 29 दिसंबर को जारी एक ड्राफ्ट प्रपोजल पर जनता के सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद किया गया है। ये प्रपोजल पिछले साल के आखिर में मध्य प्रदेश में खराब कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद आया था। भारतीय नौसेना इस हफ्ते कोलकाता में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को अपने नाम करने जा रही है। नौसेना एक ही दिन एक साथ 3 एडवांस स्वदेशी युद्धपोतों को बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है। ये भव्य समारोह 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे के दौरान आयोजित हो सकता है। देश के समुद्री इतिहास में ये बेहद दुर्लभ मौका होगा जब फ्रंटलाइन के 3 नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ देश की सेवा में समर्पित किया जाएगा। हाल के सालों में ये ऐसा दूसरा मौका है जब भारतीय नौसेना एक साथ 3 युद्धपोतों को अपने बेड़े का हिस्सा बनाने जा रही है। इस त्रिकोणीय कमिशनिंग में INS दूरागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक एक साथ नौसेना का हिस्सा बनेंगे। यूपी के जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली घरेलू कार्गो फ्लाइट का सफल संचालन हो गया। आज इस एयरपोर्ट पर चेन्नई से करीब 20 टन मिश्रित कार्गो लेकर मालवाहक पहली फ्लाइट पहुंची, जिसका वाटर कैनन सलामी देकर स्वागत किया गया। कार्गो की लैंडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये विमान वापस चेन्नई के लिए रवाना हो गया। अब कॉम होल्डिंग का बोइंग 737-800F मालवाहक विमान खाद्य पदार्थ, ऑटो कंपोनेंट्स, मोबाइल डिवाइस और अन्य कंसोलिडेटेड शिपमेंट लेकर नोएडा पहुंचा था। इस सफल लैंडिंग ने साबित कर दिया है कि एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार है। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की 16वीं बैठक संपन्न हो गई। बैठक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बाके बिहारी मंदिर के रखरखाव और व्यवस्थाओं के संबंध में गहन विचार मंथन किया गया और मंदिर प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें ठाकुर जी के स्वर्ण और रजत झूले के जीर्णोद्धार का फैसला भी हुआ है। कर्नाटक के मंगलुरु में बना एक अनोखा बस स्टॉप चर्चा का विषय है। बस के आकार और डिजाइन में तैयार किया गया ये बस शेल्टर अपनी अनूठी बनावट की वजह से लोगों के साथ साथ पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें खिड़कियां, दरवाजे और बैठने का सिस्टम ठीक वैसा ही बनाया गया है जैसा बसों में होता है। लोगों को बस स्टॉप का ये आइडिया बहुत पसंद आ रहा है।
1: अब बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस और सुरक्षा बल के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की क्षमता का परीक्षण किया गया।

0: अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बाबा बर्फानी के धाम तक श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाएगा। मन में अटूट आस्था और दिल में विश्वास लिए बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए शिव भक्तों का जत्था जल्द निकलने वाला है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश हाई है। वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसमें कई एजेंसियों ने एक साथ मिलकर किसी भी खतरे से निपटने की एक्सरसाइज की। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने अलग अलग आपातकालीन हालातों का अभ्यास किया, जिसमें सुरक्षा बलों, पुलिस और राहत बचाव टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक दूसरे से तालमेल बनाकर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि यात्रा के दौरान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों समेत सभी संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
1: हमारा जो विजिट कठुआ रेलवे स्टेशन का है, ये यात्रा से ही मुतल्लक है। आज यहाँ पे हमने ऑल एजेंसीज के साथ एक कॉमन विजिट किया और स्टेशन को पूरा बारीकी से नजर भी लगाई, देखा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, क्या क्या चीजों की और जरूरत है।
0: पठानकोट में भी विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अंतरराज्यीय नाकों के अलावा जिले के प्रमुख चौकों, मुख्य मार्गों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर रेड अलर्ट नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों और लोगों की तलाशी और जांच की जा रही है।
2: सारे व्हीकल्स दी चेकिंग हो रही है कि उस भी कोई जड़ी है यात्रा वा ये सही तरीके नाल शुरू हो के तो संपन्न सही तरीके नाल हो जाए, कोई भी अनसुखामी घटना ना वापरे। उन्होंने डायरेक्शन से ये रेगुलर काम जरा चलता रहेगा। नाल ही साढ़े माणयोग SSP पठानकोट जी वालों भी इस तो पहला भी रेगुलर ही सर्च ऑपरेशन से फूड पेट्रोलिंग भीड़ भड़ा वाली जगह पर चैकिंग ये रेगुलर चल रही है। तो उन्होंने डायरेक्शन से ये रेगुलर सारे काम हो रहे हैं, जो रेगुलर आने वाले समय चलता रहे।
0: सुरक्षा के साथ यात्रियों की सुविधा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यात्रा मार्ग पर सभी चिकित्सा सहायता केंद्र 28 जून तक पूरी तरह शुरू कर दिए जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन बूथ 25 जून तक ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से सेवा दल और लंगर कमेटियों के सदस्य अमरनाथ पहुँचने लगे हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को भोजन, चाय, दवाइयों समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सेवादारों ने अमरनाथ धाम की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।
3: आज लंगर कमेटी जो है हमारे बाबा अमरनाथ के लंगर लगाने जा रहे हैं। बहुत भव्य लंगर लगाते हैं हर साल ये महाराज के चरणों में। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से पूरे अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि यात्रा कोई असुविधा ना हो। हर जगह आप देखें, आज हमें प्रवेश द्वार लखनपुर में इनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
0: सेवा समितियों की तरफ से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को खाने पीने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं।
4: हमारा पशुपतिनाथ का लंगर जो गुफा पे है, इसकी 5 गाड़ियां ऑलरेडी 5 तारीख को गुफा पहुंच चुकी है, जो बालटाल बेस कैंप को तैयार कर चुकी है। अब वो टीम ऊपर जा चुकी है। हम यहाँ से 18 ट्रकों की सामग्री लेके यहाँ से बालटाल की तरफ कूच कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा सारा सामान गुफा की तरफ जाएगा और अमरनाथ बर्फानी के जो दर्शनों पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए विशेष लंगर, प्लस इस साल हमारी संस्था के द्वारा लगभग 50 मसाजर मशीनों का अरेंजमेंट किया जा रहा है। एक हॉल बनाया जा रहा है जिसमें यात्री विश्राम करके अपने पैरों को सुकून देंगे।
0: जाहिर है आस्था, सेवा और सुरक्षा की त्रिवेणी के बीच अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। एक ओर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर सेवा समितियों यात्रियों के स्वागत और सहायता के लिए जोर शोर से जुटी हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। बता दें, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिनों तक चलेगी। पठानकोट से पवन सिंह और श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
6: अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने और कच्चे तेल की कीमतें कम होने से कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। बुधवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 347 अंकों की बढ़त के साथ 77,155 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 96 अंकों की बढ़त के साथ 24,085 पर बंद हुआ। रुपए की मजबूती और वीक ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच बुधवार को गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 4800 रुपए गिर गया और ये 1,54,400 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5300 रुपए गिरकर 2,55,400 रुपए पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने और वेस्ट एशिया में तनाव खत्म होने से 17 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 94.50 के स्तर पर बंद हुआ।
5: कल के टू से जुड़ा बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम, तो एनिमेशन कैरेक्टर श्रेक की 17 साल बाद वापसी। जी हाँ, आ गया है श्रेक 5 का ट्रेलर। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
7: बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम मेगा मूवी कल्की 2 से जुड़ने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। चर्चा है कि आलिया भट्ट कल्की 2 में अहम किरदार निभा सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने हैदराबाद में फिल्म के लिए शुरुआती शूटिंग शुरू कर ली है। हालांकि मेकर्स ने अब तक इस खबर पर आधिकारिक मोहर नहीं लगाई। इस फिल्म में आलिया को दीपिका पादुकोण की जगह कास्ट किया गया है या फिर उनका अलग किरदार है, इसके बारे में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। इस रहस्य से पर्दा उठने में अभी वक्त है, क्योंकि फिल्म के दिसंबर में रिलीज होने की चर्चा है। बड़े पर्दे पर अभिनेत्री शर्वरी वाघ और कार्तिक आर्यन की जोड़ी धमाल मचाने वाली है। खबर है कि मशहूर डायरेक्टर लव रंजन की अगली फिल्म में दोनों एक साथ दिख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लव रंजन अपनी अगली फिल्म के लिए शर्वरी को फीमेल लीड के रूप में कास्ट करने पर सोच रहे हैं। हालांकि अभी तक फिल्म की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शर्वरी ने इस फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल लव रंजन इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद वो कार्तिक और शर्वरी को पूरी स्टोरी सुनाएंगे, उसके बाद शर्वरी फिल्म पर अपना आखिरी फैसला लेंगी।

0: जी।
1: फिल्म तेरा मेरा नाता का ट्रेलर आ गया है। रिश्तों के बारे में कहा जाता है कि कुछ रिश्ते किस्मत पे लिखे होते हैं, कुछ प्यार से बनते हैं, कुछ हमेशा के लिए कायम रहते हैं। रिश्तों के ऐसे ही ताने बाने को लेकर फिल्म तेरा मेरा नाता, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। इस फिल्म में सूरज, अंबिका वाणी, दीपिका चिखलिया, पंकज बेरी और मेघना मुख्य किरदार में है। सीपी प्रोडक्शन के सहयोग से ब्लू डायमंड प्रोडक्शन हाउस की ये फिल्म तेरा मेरा नाता 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी। इस फिल्म को चंदा पटेल ने प्रोड्यूस किया है। इसका निर्देशन चंदा पटेल और स्वतंत्र गोयल ने मिलकर किया है। एनिमेशन की दुनिया से गुड न्यूज आई है, क्योंकि दर्शकों को हंसाने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं श्रेक, योना और डंकी। श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया। इसी के साथ करीब 17 साल के बाद श्रेक की वापसी ने इस एनिमेशन सीक्वल के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। इस नए सीक्वल के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई। श्रेक 5 अगले साल 30 जून को रिलीज होने जा रही है और इसके ट्रेलर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। पैनोरमा स्टूडियोज और जैकब बाबू मिलकर फहाद फासिल की मुख्य भूमिका वाली दो मलयालम फिल्म बनाएंगे। मलयालम में बनी दृश्यम 3 की जबरदस्त सफलता के बाद पैनोरमा स्टूडियोज अब प्रोड्यूसर जैकब बाबू के साथ मिलकर दो मलयालम फिल्में बनाने पर काम कर रहे हैं। इन दोनों फिल्मों में फहाद फासिल मुख्य भूमिका में होंगे। ये फिल्में अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं और अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। डायरेक्टर, कास्ट, टेक्नीशियन और क्रिएटिव टीम के अन्य मुख्य सदस्यों के बारे में जल्द ही जानकारी सामने आने वाली है।
2: श्रीलंका में हो रही ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंची इंडिया ए। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
3: श्रीलंका में हो रही वनडे ट्राई सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हरा दिया। कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्रा की अर्धशतकीय पारियों की मदद से इंडिया ए ने 9 विकेट पर 319 रन बनाए। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान ए को 36.5 ओवर में सिर्फ 218 रनों पर समेट दिया। इस जीत के साथ इंडिया ए ने टूर्नामेंट में लगातार दो हार का सिलसिला तोड़ा और रविवार को होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ रनों का पहाड़ खड़ा कर 403 रन का लक्ष्य दिया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 49.5 ओवर में 402 रन बनाए। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में भारत पहली बार ऑल आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन बनाए, वहीं ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
5: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
6: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
7: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
6: Learn more at emory.edu.
8: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: Good news today is really good. It's good. उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

किसी गांव से एक आदमी गुजर रहा था, उसके पास में रहे होंगे 19-20 ऊंट। ऊंट लेकर के जा रहा था, पुराना जमाना, राजस्थान की बात, ऊंटों को लेकर के चला जा रहा था। रात हो गई तो उसे ठहरना पड़ा। जैसे ही रस्सियां निकाली थैला से, झोला से, तो 18 ऊंटों को तो बांध दिया, पर एक ऊंट रह गया। क्योंकि या तो उसे लगा कि हम रस्सी ला नहीं पाए, या रस्सी कहीं गिर गई। अब वो बड़ी टेंशन में पड़ गया कि इस ऊंट को बांधा कैसे जाए। वेद प्रकाश ध्यान से सुनना, वो आदमी सामने एक झोपड़ी में आदमी रहता था, पड़ोसी सराय में रहने वाला एक झोपड़ी वाला आदमी था। उसे लगा कि इस आदमी के पास जाएं, बूढ़े आदमी के पास, शायद ये कोई रस्सी दे दे, ऊंट को बांध दिया जाए, वरना बड़ी दिक्कत होगी, रात भर ये भी खड़ा रहेगा, हमको भी रखवाली करनी पड़ेगी, और सो नहीं पाएंगे तो दिन में चलने में दिक्कत होगी। तो वो पड़ोसी के पास गया, जहां रुका था उस झोपड़ी में गया, तो प्रार्थना की कि क्षमा करो, मैं एक यात्री हूं और मैं 19 ऊंटों का जत्था लेकर के जा रहा हूं, और मेरे पास 18 ऊंटों की रस्सी तो है, लेकिन एक रस्सी गिर गई, तो अगर आप बुरा ना मानो तो सुबह तक के लिए मुझे रस्सी दे दो, कल मैं जाऊंगा तो रस्ते में कहीं से खरीद लूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई रस्सी नहीं, मैं तो बहुत फक्कड़ आदमी हूं, और रस्सी क्या, मेरे पास तो एक कपड़ा ही है, वो मैंने पहन रखा है, वरना मैं कपड़ा दे देता, पर अगर मैं कपड़ा दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा, एक ही धोती है मेरे पास और रस्सी तो दूसरी है नहीं। तो इस आदमी ने कहा कि अब तो बड़ी दिक्कत हुई, लगता है मुझे रात जागना पड़ेगा, लगता है मेरी रात आज व्यर्थ जाएगी। तो उस बूढ़े आदमी ने बुला के कहा, इधर आओ, सुनो, तुझे पता है कि रस्सी नहीं है, ऊंट को थोड़ी पता है। तो बोले मैं करूं क्या, बोले कुछ करने जैसा है, तू एक काम कर, जैसे रस्सी बांधता है वैसे ही नाटक कर, झूठ मूठ का एक खूंटा गाड़, उसके गले में हाथ लगा ताकि उसे लगे कि रस्सी बांध रहे, और झूठ मूठ के खूंटे के पास जाकर झूठ मूठ की रस्सी बांधने का नाटक कर, ये तुझे पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। उसने कहा ऐसे में हो सकता, बोले तू करके तो देख, ट्राई अगेन। वो आदमी आया वापस, उसने वही काम किया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, झूठ मूठ की गले में हाथ लगाया, रस्सी जैसे बांधने का नाटक किया, और उसने जैसे ही रस्सी से खूंटा में बांधा और दबकार करके ऊंट को कहा कि बैठ जा, ऊंट बैठ गया। इसको लगा कि बहुत अच्छा उपाय, बड़ा प्यारा उपाय, और पूरी रात आराम से गुजर गई। सुबह हुआ तो बाकी 18 ऊंटों को उसने रस्सी खोली, रस्सी थैले में फिर से भरी। अब 19 में ऊंट को वो एक घंटे तक उठाता रहा, वो उठे ही ना। अब ये आदमी बड़ा परेशान, ना वो चले ना वो उठे। तो इस आदमी को लगा कि हो सकता जो बूढ़ा दादा रहता है झोपड़ी में, वो कोई तंत्र मंत्र जानता है, और उसने रात को कोई ऐसा तंत्र मंत्र बता कर दिया है कि अब ऊंट उठ नहीं रहा। तो वो भागा भागा गया कि क्षमा करो, मैं रात को भी आया था, मैं सुबह फिर आ गया। तो बूढ़े दादा ने कहा कि क्यों आए हो, बोले बड़ी बात तो कुछ है नहीं, आपने रात को जिस ऊंट को झूठ मूठ की रस्सी बांधने को कहा था मैंने किया, और आपकी कृपा से काम तो सफल रहा, लेकिन अब एक नया लफड़ा फंस गया। बोले क्या, मैं सुबह से 2 घंटा हो गया ऊंट को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, वो उठ नहीं रहा। तो बूढ़े दादा ने कहा कि अरे मूर्ख, अरे पहलवान, तूने जैसे रस्सी बांधी थी वैसे खोल तो। तो उस आदमी ने कहा कि जब बांधी नहीं थी तो खोलूं क्या, बोले यही तो मैं कहना चाहता हूं, जो बांधी थी वही खोल दे। और आदमी वापस आया, उसने ऊंट की रस्सी खोली, और ताज्जुब यह रहा कि ऊंट उठ भी गया और चला भी। अब बताओ, रस्सी थी भी नहीं और रही रात भर, रस्सी खोली भी नहीं, नहीं खोली भी नहीं और ऊंट खुल गया। यही वेद प्रकाश तुम्हारा और हमारा हाल है, और पंचकुला के पागलों यही तुम लोगों का हाल है। हमने झूठ मूठ के रिश्तों को अपना रिश्ता बना लिया है, तो हम लोग फंसे हुए हैं। ये रिश्तों की डोर को तोड़ दी जाए, इस दुनिया में कोई भी बंधन है नहीं है, न किसी से कोई बंधन है, हमने मान लिया तो बंधन है। तो तुमने पूछा कि बंधन से मुक्त कैसे हूं, एक ही उपाय है, अगर तुम कहीं बंध गए हो तो तुम मुक्त होना भी प्रारंभ करो कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। इसलिए अक्सर हम एक गीत की लाइनें बहुत बोलते हैं, नाता एक राम जी से,

अपना संबंध बनाना ही है, नाता जोड़ना ही है। तो वेद प्रकाश, राम जी से नाता जोड़ो। राम जी से नाता जोड़ोगे सब अपने हो जाएंगे। तुम संसार से नाता जोड़ोगे, फुटकर फुटकर फुटकर बनाते ही रहोगे अपने, और एक दिन सब ताश की गड्डी की तरह बिखर जाएंगे। लेकिन अगर तुम राम जी से नाता जोड़ लोगे तो तुम्हें दुनिया को अपना बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाए। और आपने पूछा कि बंधन की मुक्ति का उपाय क्या, बंधन की मुक्ति का यही उपाय है। फिर भी हम एक सूत्र दे देते हैं, अगर तुम लोग हमारी आज की ये कथा सुनोगे तो शायद बहुत लोग सन्यास लेने की सोच लें। तो हम तुम्हें सन्यासी नहीं बनाना चाह रहे, वरना तुम्हारी लुगाइयां हमारे ऊपर FIR करेंगी। कि बागेश्वर बाबा की कथा सुनने गए थे और बाबा ने छुड़वा दिया घर बार। नहीं नहीं नहीं, हम आपको एक उपाय और दे सकते हैं। अगर हमारी अब तुम मानो तो तुम घर में भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, लुगाई के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, बच्चों के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, संसार के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, महात्मा के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, अपने निजी लोगों के भी रहोगे और सबके रहोगे। अगर वो उपाय जानना चाहते हो तो एक सूत्र है जिंदगी में उतार लेना, तुम तन से संसारी हो जाओ, मन से सन्यासी हो जाओ। बहुत सटीक सूत्र है, तुम तन से तो संसारी रहो पर मन से सन्यासी हो जाओ। तुम्हारा मन ऐसा रहे जैसे कोई सन्यासी चला आ रहा हो। माथे पर तिलक हो या ना हो पर वाणी में उसकी याद जरूर होनी चाहिए। गले में माला हो या ना हो कोशिश पर होनी चाहिए, पर ना भी हो चल जाएगा, पर याद रहे। हिंदुत्व फीका नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पागलो, तुम अगर तन से संसारी मन से सन्यासी रहोगे जीवन तुम्हारा सुधरा रहेगा। एक बात और जो कहने जैसी है, आपने पूछा है कि बंधन से मुक्त कैसे हो। देह को मैं मत मानो, ते में तोर, तोर में माया। एक पेड़ पर की डाली पर दो तोता बैठे, एक तोता ने पेड़ को अपना मान लिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये आम देता है तो यही हमारा है, उसको अपना मान लिया। एक दूसरा तोता रहता, वो कहता है कि ये है तो पेड़, आम तो खिलाने को दे रहा है पर ये अपना नहीं है, क्योंकि इस पे तो हजारों पक्षी आएंगे और जाएंगे। ऐसे ही संसार है, अगर तुम संसार को अपना मान लोगे तो तुम अहमता में भर जाओगे, झूठी दुनिया के चक्कर में फंस जाओगे। संसार को तुम सराय समझो, बस स्टैंड, यात्री आते हैं जाते हैं, यही शरीर का हाल है, आएंगे और जाएंगे, यही इस दुनिया का हाल है। जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा।

0: धर्मी सिंहासन चढ़े और पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात।
1: एक गांव में इतने पागल लोग रहते थे, उनके गांव में दिया नहीं जलता था, लाइट नहीं थी, पुराना जमाना, 80-90 साल पुरानी बात। तो गांव भर क्या करता था, पूरी रात जागता था और हाथ में तसला लेता था जैसे ही शाम होता था। और लोग पूछते थे एक दूसरे से, क्या कर रहे, बोले चलो अंधेरे को ढोएं, मकान में जाएं, तसले में ऐसे ऐसे भरें और बाहर फेंकें, फिर भरें, फिर पूरी रात यही करते थे। और सुबह आते ही जैसे ही सूर्योदय होता था, अरे भैया भग गया भग गया भग गया, फेंक दिया फेंक दिया फेंक दिया, ठटरी के बरे क्या हलवा फेंका। अरे वो तो सूर्योदय आते ही अपने आप अंधेरा भाग जाता है, लेकिन उनको लगता था कि हम भगा रहे तो अंधेरा भागा है। पूरी रात यही हुआ। इतने में एक लड़की की शादी हुई, लड़की थी पंचकुला की, नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई की शादी हुई उस गांव में। अब रात भर फिर से घर वाले जागने लगे तो उस बहू ने पूछा, ये रात को लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? तो पति ने कहा, सब लोग अंधेरा ढोने के लिए जा रहे हैं, अंधेरे को भगाने के लिए जा रहे हैं। लड़की बोली, बड़े पागल हो, चूंकि पंचकुला की लड़की होशियार तो होती ही है, बड़े पागल हो, कहीं अंधेरा ढोया जाता है? पति बोला, चुप रहे, हमारे दादा परदादा करते रहे, तू आके मुंह चला रही। वो कुछ ना बोली, बेचारी समझदार तो थी। दूसरे दिन उसने कुछ नहीं किया, चार बत्ती बनाई, थोड़ा सा घी डाला और जैसे ही अंधेरा हुआ सो दिया को जला दिया, और जैसे ही जलाया आहा, पूरा घर खुश हो गया, वाह भैया वाह, गजब की बहू आई है, हम लोगों को अंधेरा नहीं ढोना पड़ रहा, अंधेरा भाग गया। दूसरे दिन गांव वालों ने पूछा, भैया आज तुमने अंधेरा नहीं ढोया, आवाजें नहीं आई? बोले, हम तो भैया सोते रहे, बहू ऐसी आई कि वो ऐसा चमत्कार करती है कि अंधेरा चला जाता है। लोगों ने बहू से पूछा, मंत्र बताओ? अरे बोले, मंत्र वंत्र कुछ नहीं है, दिया जलाओ अंधेरा भाग जाएगा। ऐसे ही तुम अपने अंदर में अज्ञान का जो अंधेरा रख रखे हो उसको लेकर टेंशन मत लो, हनुमान जी के ज्ञान के प्रकाश का दीपक जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। बोलो सीताराम। अब संकट आ गए तो क्या करें? आहा,

0: का भजन करेगा, हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसके संकट कट जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो संकट काटने के लिए, संकटों को मिटाने के लिए हनुमान जी देखो क्या है। हमें एक भजन याद आ गया, तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें भी नहीं है, हम तो फ्री हैं। किसी ने कहा मरना क्यों चाहते? अरे जिन नेत्रों से रघुनाथ जी को ना देख पाए वो शरीर तो छोड़ देना चाहिए, जीने से क्या फायदा। और कितनी अद्भुत बात, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति ना हो उसका जीवन किसी काम का है क्या? ऐसे समझो, नदी हो पर नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। अच्छा, कोई व्यक्ति या स्त्री बहुत सुंदर हो लेकिन नाक कटी हो, किसी काम की है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, तीसरी बात, मिठाई।
1: क्या आपके घर में सीलन आ रही है? क्या घर में जरूरत से ज्यादा धूल रहती है? क्या आपने घर में देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं? इन गड़बड़ियों का आपके भाग्य पर कैसा पड़ता है प्रभाव, और क्या है इनको बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: संसार को अपना मान लोगे तो तुम अहमता में भर जाओगे, झूठी दुनिया के चक्कर में फंस जाओगे। संसार को तुम सराय समझो, बस स्टैंड। यात्री आते हैं जाते हैं, यही शरीर का हाल है, आएंगे और जाएंगे, यही इस दुनिया का हाल है, जो आया है वो जाएगा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत की बड़ी जीत नेदरलैंड्स को दी, 95 रनों से मात 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रन का टारगेट। लखनऊ वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम की विशाल जीत, अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में बनाई अजेय बढ़त। विश्व योग दिवस से पहले हरियाणा के लाल का कमाल संदीप आर्या जांगड़ा ने लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व कीर्तिमान। पूरी आस्था और उमंग के साथ जारी है चारधाम यात्रा, पवित्र दर्शन का आंकड़ा 36.5 लाख के पार, सबसे ज्यादा 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। NSE ने IPO के लिए SEBI के पास किया आवेदन, जमा कराए कागजात, भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू बन सकता है NSE का IPO। अमेरिका और ईरान ने शांति की दिशा में आगे बढ़ाए कदम, 14 सूत्री अंतरिम शांति समझौते पर ट्रंप और ईरानी अफसरों ने किए डिजिटल साइन, जिनेवा में कल होंगे औपचारिक हस्ताक्षर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: भारत ने महिला T20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, नेदरलैंड्स को 95 रनों से मात दी, मौजूदा महिला T20 विश्व कप में पहली बार बनाया 200 से ज्यादा रन का स्कोर। भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर बनाए थे 209 रन, महिला T20 विश्व कप इतिहास का यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर। ने 47 गेंदों में बनाए थे 74 शानदार रन, शेफाली वर्मा ने खेली 55 रनों की अर्धशतकीय पारी। भारत 170 रन के विशाल अंतर से जीता लखनऊ वनडे, लगातार दूसरा वनडे जीत कर रहा, 3 वनडे सीरीज में अजेय बढ़त। भारत की ओर से अर्षदीप सिंह और गुरनूर बरार ने झटके 3-3 विकेट, प्रिंस यादव को 2 और वॉशिंगटन सुंदर के खाते में 1 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 50 ओवर में बनाए 402 रन, जवाब में 45वें ओवर में 232 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई अफगानिस्तान की पूरी टीम। कप्तान शुभमन गिल ने खेली शानदार 154 रनों की ताबड़तोड़ पारी, 110 गेंदों में जड़े 22 चौके 2 छक्के। ईशान किशन ने खेली 79 गेंदों में शानदार 125 रनों की पारी, ईशान ने अपनी पारी में 7 छक्के 14 चौके लगाए। श्रीलंका में वनडे ट्राय सीरीज में भारत ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रन से हराया। इंडिया ए के 319 रन के जवाब में 36 ओवर 5 गेंद में सिर्फ 218 रन पर सिमट गई अफगानिस्तान ए की टीम। हरियाणा के संदीप आर्या जांगड़ा ने के नाम अनोखा कीर्तिमान, लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। विश्व योग दिवस से पहले संदीप ने दुनिया में रोशन किया देश का नाम, संदीप के नाम अब तक 6 विश्व रिकॉर्ड। संदीप ने गुजरात के मोढ़ेरा में लगातार 37 घंटे और 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व रिकॉर्ड, पिछले 15 साल के अभ्यास से बनाया विश्व कीर्तिमान। संदीप आर्य जांगड़ा की इस बेमिसाल उपलब्धि को अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिली जगह। 10,000 सूर्य नमस्कार करने से पहले संदीप ने लगातार 15,000 सूर्य नमस्कार का बनाया था रिकॉर्ड। संदीप ने पहली बार 5,000 सूर्य नमस्कार का बनाया था रिकॉर्ड। सूरत के सिर्फ 1 साल 8 महीने के मासूम करण मिथुन भाई परमार की याददाश्त बनी चर्चा का मुख्य विषय। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आईबीआर अचीवर के खिताब से नवाजा। छोटी सी उम्र में करण ने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, 20 जंगली जानवरों, 10 पालतू जानवरों, 20 पक्षियों, 18 फलों, 20 सब्जियों की पहचान। नेदरलैंड्स के रोटरडैम में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का शानदार खेल। FIH प्रो लीग में भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराया। मैच के 7वें मिनट में मनदीप सिंह ने किया गोल, फिर 13वें मिनट में शिला नंदा ने किया गोल। जर्मनी के खिलाफ मैच में अपना 413वां मैच खेल रहे स्टार मिडफील्डर के नाम जुड़ी नई उपलब्धि। देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए मनप्रीत सिंह। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता पर छाया फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार। फुटबॉल के रंग में रंगी कोलकाता की सड़कें। कोलकाता में दिख रही है फुटबॉल को लेकर लोगों में जबरदस्त दीवानगी। फुटबॉल विश्व कप का अखाड़ा बना कोलकाता। फुटबॉल के दीवाने शहर में जगह जगह दिख रहे हैं फुटबॉल से जुड़े झंडे और म्यूरल्स। फुटबॉल से जुड़े चिन्हों से शहर में जबरदस्त सजावट। शहर में दिख रहा है फीफा फुटबॉल विश्व कप का जोश। फुटबॉल फैंस ने सड़कों को फुटबॉल कार्निवल में तब्दील कर दिया। पूरे शहर में दिख रही है फुटबॉल की दीवानगी। पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है चारधाम यात्रा। पवित्र दर्शन का आंकड़ा 36 लाख के पार। सबसे ज्यादा 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ। देवभूमि में पूरी आस्था के साथ जारी है चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। पुरुषोत्तम मास के चलते बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ विशाल भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। यात्रा मार्ग पर लंबी कतार। पवित्र देवताल भी श्रद्धालुओं से पूरी तरीके से भरा हुआ है। बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट ऊंचा मौजूद पवित्र स्थल। बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर दूर 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत चीन सीमा से सटा है ये देवताल। हरिद्वार में शिव भक्ति का नया केंद्र। विश्व के सबसे बड़े पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हरिद्वार के श्री साई शिव गंगा धाम में स्थापित हुआ यह विशाल शिवलिंग 5,210 किलो है वजन। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत और राजनीतिक हस्तियों समेत स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। भगवान का विशेष प्रसाद।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
6: You're listening to CNBC.
7: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
8: Keep it on smooth jazz.
9: This is Roots Reggae
10: exclusively on TuneIn.
11: This is classic hip hop
12: exclusively on TuneIn.
5: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
13: Today. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नकारात्मक ऊर्जा की, नकारात्मक ऊर्जा के प्रभावों की और नकारात्मक ऊर्जा जीवन में आती कहां से है इसको जानने का प्रयास करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आजकल आम बोलचाल की भाषा में, सामान्य बातचीत में हम नकारात्मक ऊर्जा इस शब्द का प्रयोग करते हैं, निगेटिव एनर्जी का। नकारात्मक ऊर्जा या निगेटिव एनर्जी क्या होती है? देखिए, हर व्यक्ति और हर वस्तु से उसके स्वभाव के अनुसार तरंगे निकलती रहती हैं, व्यक्ति से भी निकलती हैं और जो टेबल कुर्सी कृत्रिम चीज है जिनमें प्राण नहीं है उनके अंदर से भी तरंगे निकलती हैं। किसी जीवित व्यक्ति के अंदर से निकलने वाली तरंगें ज्यादा प्रभावशाली होती हैं और एक साथ जब ढेर सारी तरंगें इकट्ठा हो जाती हैं तो वो इकट्ठा हो करके एक एनर्जी बन जाती हैं, एक ऊर्जा बन जाती हैं इकट्ठा हो करके। अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है और खराब संस्कार वाले व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक यानी निगेटिव होती है। जब एक साथ ढेर सारी नकारात्मक तरंग इकट्ठा होती है तो ये नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे और हमारी तरक्की के बीच में आती है और नकारात्मक ऊर्जा सब कुछ रोक डालती है। तो बेसिकली नकारात्मक ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती, आपके घर के लोगों से, आपके घर के सामान से, आपके घर की वस्तुओं से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और जब ये इकट्ठा हो जाती है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। नकारात्मक ऊर्जा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, आपके घर में कोई जरूरी नहीं है कि निगेटिव एनर्जी ही हो, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है। तो कैसे जाने कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है? आपके घर में मिठाई चीनी गुड़ अगर ये खुला रहता है फिर भी चींटियां नहीं लगती तो इसका मतलब ये है
कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, बार बार लगाने के बावजूद अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है, तमाम जतन करने के बावजूद तुलसी सूख जाती है, तो इसका मतलब घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। अगर घर में काफी पैसा बीमारियों और दवाइयों में खर्च होता है, पैसा आता तो है लेकिन बीमारी में काफी पैसा जाता है, तो इसका मतलब घर में निगेटिव एनर्जी है। तमाम जतन करते हैं, तमाम उपाय करते हैं, फिर भी घर की दीवारों पर सीलन आ जाती है, तो आप ये समझिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अवश्य है। अब मान लिया आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, तो इसके नुकसान क्या हैं? अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो घर में प्रवेश करते ही आपका मन खराब हो जाएगा, घर के लोगों में तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, बिना कारण के बीमारियों में या फालतू की वजहों में, फालतू की चीजों में अनावश्यक पैसा खर्च होगा। और अगर घर में निगेटिव एनर्जी है तो आपके कोशिश करने के बावजूद सारे महत्वपूर्ण काम रुक जाएंगे, और अच्छा करने के बावजूद आपको जीवन में बदनामी मिलेगी, जीवन में अपयश मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अगर आपने लक्षणों से ये समझ लिया और आपको ये बात समझ में आ गई कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता हो, या ऐसी व्यवस्था बनाइए कि घर में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आए। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिए। कोशिश करिए कि घर में जो पोंछा लगाते हैं उस पोंछे के पानी में एक चम्मच या दो चम्मच नमक डालें, नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाइए। हर अमावस्या को, महीने में एक अमावस्या आती है, अमावस्या को घर की विधिवत सफाई करिए, और जो भी वस्तु आपके काम की ना हो, आपके प्रयोग में ना आती हो, उस वस्तु को हटा दीजिए। प्रातः काल घर में पूजा स्थान पर बैठ के मंत्र का जप करिए और तीन बार शंख बजाइए। घर में गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती नियमित रूप से जलाइए, खासतौर से शाम को पूजा के समय जलाइए और पूरे घर में गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती घुमाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, जीवन में सुख
चैन और शांति आनी शुरू हो जाएगी। तो आज हमने बात की नकारात्मक ऊर्जा की, अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप वैवाहिक जीवन में सुधार चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार जिस भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है उन भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाइएगा, इसके बाद वही तिलक जरा सा खुद को भी लगा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: Women's T20 World Cup में भारत की बड़ी जीत, नेदरलैंड्स को दी 95 रनों से मात, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रनों का टारगेट। लखनऊ वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम की विशाल जीत, अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में बनाई अजेय बढ़त। विश्व योग दिवस से पहले हरियाणा के लाल का कमाल संदीप आर्या जांगड़ा ने लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व कीर्तिमान। पूरी आस्था और उमंग के साथ जारी है चारधाम यात्रा, पवित्र दर्शन का आंकड़ा 36.5 लाख के पार, सबसे ज्यादा 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। एनसीई ने आईपीओ के लिए सेबी के पास किया आवेदन, जमा कराए कागजात, भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू बन सकता है एनएसई का आईपीओ। अमेरिका और ईरान ने शांति की दिशा में आगे बढ़ाए कदम, 14 सूत्रीय अंतरिम शांति समझौते पर ट्रंप और ईरानी अफसरों ने किए डिजिटल साइन, जिनेवा में कल होंगे औपचारिक हस्ताक्षर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबर।
4: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या बातचीत करने वाले हैं। आज बातचीत का विषय है घर के जाले, सीलन और धूल। ये सभी आपकी किस्मत के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं, कैसे आपकी किस्मत को बिगाड़ सकते हैं, और किसी वजह से घर में जाले लगे रहते हैं, सीलन होती है, धूल बहुत ज्यादा है, आप साफ नहीं करते हैं, उसका सीधा प्रभाव पड़ता है आपकी किस्मत के ऊपर। इसको सुधारने के उपाय क्या है, क्या कुछ आपको करना चाहिए ताकि जीवन में बदलाव आ सके, सब कुछ पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के गुड लक मंत्र की।
6: सप्ताह में एक दिन अपने सारे परिवार के लोगों के साथ बैठकर कोई संयुक्त पूजा जरूर करें। सब लोग बैठकर एक साथ सुंदरकांड का पाठ करें, या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, या सब लोग मिलकर एक साथ अगर आरती भी करें रेगुलरली सप्ताह में कम से कम एक दिन, तो ऐसा करने से परिवार में समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी।
4: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 18 जून 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
6: दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 6:58 तक, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय 1:30 से लगभग 3 बजे तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया घर में जाले लगना, सील लगाना, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला सवाल पंडित जी से यही बनता है कि पंडित जी घर में किसी वजह से सीलन आने लगे, कई बार आप दिखते हैं कि दीवारों पर सीलन आ गई, किचन में सीलन आ गई, उसकी वजह क्या है, वो किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेगा और उससे बचने के उपाय कैसे कर सकते हैं?
6: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं आपके घर की छोटी छोटी गड़बड़ियां आपके भाग्य को कैसे बिगाड़ देती हैं। अगर आपके घर में सीलन आने लगे तो इसका अर्थ क्या है पहले ये जानिए। घर में अचानक अगर सीलन आने लगे तो समझना चाहिए कि शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनि अनुकूल नहीं है। और सीलन अगर आने लगेगी तो घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब होना शुरू हो जाएगा, मुकदमेबाजी की और कर्जों की नौबत आपके जीवन में आ जाएगी और बिना कारण के मानसिक तनाव बढ़ेगा। जिन घरों में सीलन हमेशा रहती ही रहती है उन घरों में ज्यादातर लोग बीमार होते हैं और बीमारी की वजह से वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर घर में सीलन है तो क्या उपाय करें इसके प्रभाव को कम करने के लिए? घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए, किसी भी प्रकार से खिड़की निकाल के, रोशनदान निकाल के, शीशा लगा के, किसी भी प्रकार से घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करिए, रोज सुबह और शाम अपने घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाइएगा। सीलन का इंतजाम तो आप करेंगे ही, उसकी तोड़ फोड़ करके या जैसे भी व्यवस्था करके आप सीलन को ठीक जरूर करेंगे, लेकिन साथ में घर में लाइटिंग ठीक हो और घर के पूजा स्थान पर अगर आप सुबह शाम दीपक जलाएंगे तो सीलन का नकारात्मक प्रभाव आपके घर के ऊपर नहीं पड़ेगा।
4: चलिए आगे भी बहुत सारे प्रश्न पंडित जी से पूछेंगे, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली 3 राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की।
6: मेष राशि, बेवजह की चिंता इस समय आपको हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल ये है कि घर में अगर आपके धूल मिट्टी ज्यादा होती है तो ये किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करती है, किस तरह के नकारात्मक प्रभाव होते हैं और अगर आप उनको दूर करना चाहते हैं तो कैसे उपाय आप कर सकते हैं?
6: देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में धूल मिट्टी ज्यादा होती है, सामान पर, फर्नीचर पर, मूर्तियों पर धूल जमी होती है और उसका वो ध्यान नहीं रखते हैं, क्या प्रभाव होता है? देखिए, धूल मिट्टी मुख्यतः मंगल से संबंध रखती है, इसका कनेक्शन मंगल से है। घर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है तो ये बुरा नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो रहेगी ही, लेकिन ज्यादा धूल होना समस्या का कारण बनता है। अगर घर में धूल मिट्टी ज्यादा रहती है तो इसके कारण परिवार में मतभेद होने लगते हैं, परिवार में गड़बड़ियां होने लगती हैं, भाई भाई में तनाव और अलगाव की नौबत आ जाती है। और अगर घर में धूल मिट्टी ज्यादा रहे तो घर के लोगों में आपसी कलेश बढ़ने लगता है। कभी कभी घर के लोगों में रक्त संबंधी, ब्लड संबंधी समस्या होने लगती है। तो अगर आपके घर में धूल मिट्टी ज्यादा रहती है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये रिश्तों के लिए, परिवार की शांति के लिए अच्छा नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा नियमित रूप से लगाइएगा। हर मंगलवार को घर में सुंदर कांड का पाठ करिएगा और जिस दिन सुंदर कांड का पाठ करेंगे, घर में मीठी चीज का भोग हनुमान जी को लगाएंगे। वैसे मैं सामान्यतः एक बात कहता हूं, फिर से बता देता हूं कि महीने में एक अमावस्या आती है, महीने की एक अमावस्या पर घर की विधिवत सफाई करिए, घर में जो अनुपयोगी चीजें हैं उनको हटा दीजिए, और विधिवत सफाई के अलावा नियमित रूप से घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग होती रहे। अगर ऐसा होता रहेगा तो घर में धूल मिट्टी नहीं जमेगी, और धूल मिट्टी नहीं जमेगी तो घर में अशांति नहीं होगी।
4: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क, सिंह और कन्या वालों की।
6: कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर के मामले आपके हल होंगे, कोई संपत्ति इस समय खरीद सकेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, कोई बड़ा निर्णय ना लें, संयम से काम लें, केले का दान अगर कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: चलिए अब वक्त आ गया है आपके सवाल और पंडित जी के जवाब लेने का। आप सब बहुत सारे सवाल भेजते हैं, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको ही सूचित कर दें कि आप भी कोई भी प्रश्न इस शो में पूछना चाहते हैं पंडित जी से, ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है वो आपसे जानते हैं।
6: जी, आज का पहला प्रश्न वेदिका ने हमें लिखा है, हिंडन से लिखती हैं। 23 सितंबर 1997 का जन्म है, 5:50 प्रातः पंचकुला। ये कह रही हैं कि मैंने आईटी में पीजी किया है, मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। वेदिका, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, आईटी का जो क्षेत्र है, कंप्यूटर का जो क्षेत्र है, वो आपके करियर के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर इस क्षेत्र में करियर नहीं बनाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बना सकती हैं। तो एजुकेशन में, कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, ऐसे क्षेत्रों में आपका करियर बनेगा, और अप्रैल 2027 के बाद आपका बेहतर समय शुरू हो रहा है। आप उसमें सफलता पाएंगी। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज सुबह 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओ

0: देखिए हर्षल, आप थोड़ा प्रयास करके किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में अभी नौकरी करने का प्रयास करिए, या सेल्स मार्केटिंग की कोई नौकरी करिए, आपको नौकरी मिलेगी। आपके हालात जनवरी 2027 से बेहतर दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से जिंदगी आपकी 2028 में बेहतर होगी। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह और शाम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपकी मुश्किल कम हो जाएगी।
1: चलिए प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि अगर किसी कारणवश आपके घर में बहुत सारे जाले आपको दिखते हैं, उसका आपकी किस्मत पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, उससे बचने के लिए कैसे उपाय हमें करने चाहिए?
0: देखिए, बहुत सारे घरों में, खास तौर से कोनों में, कमरों में जाले होते हैं, तो अगर जाले हैं तो इनका प्रभाव क्या है? घर में अगर जाले ज्यादा हैं तो समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। अगर घर में जाले ज्यादा होंगे तो घर में आर्थिक नुकसान होगा, पैसे रुपयों की दिक्कत ज्यादा होगी और आकस्मिक रूप से घर के लोगों के साथ दुर्घटनाएं घटेंगी, बेवजह पैसे की बर्बादी होगी और घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। लेकिन मोटे तौर पे ऐसा देखा गया है कि अगर घर में जाले ज्यादा हों तो पैसों की बर्बादी होती है और घर के लोगों के साथ दुर्घटना होती रहती है। क्या उपाय करेंगे? जहां भी जाले दिखें तुरंत उसे हटाइए, तुरंत उसकी सफाई करिए और जालों वाली जो जगह आपके घर में है उस जगह पर एक बार दीपक जलाकर या मोमबत्ती जलाकर दिखाइएगा। घर में अगर जाले हैं तो जालों की तुरंत सफाई करिए और रोज शाम को घर के हर कमरे में धूप बत्ती जलाइए या धूप बत्ती जलाकर घुमाइए और पूजा के समय 3 बार शंख जरूर बजाइए। अगर आपके घर में जाले हैं और आप उन जालों को समय समय पे साफ करते रहें, घर में धूप बत्ती जलाकर कमरों में दिखाते रहें, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा नहीं हो पाएगी।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों के राशिफल में आज क्या खास है।
0: तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, संपत्ति का लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती सामान खो सकता है, केले का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: पंडित जी, एक और सवाल है आपसे, ये बताइए कि बहुत सारे घरों में अक्सर देखा गया है कि आप पौधे लेकर आते हैं लेकिन किसी वजह से पौधे मर जाते हैं, वो पौधे सरवाइव नहीं कर पाते घर में, तो घर में पौधों का ना लग पाना, इसका आपका किस्मत के साथ कैसे कनेक्शन है, ये किस तरह से नकारात्मक प्रभाव डालता है और इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
0: बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ फूलों के और बाकी पौधे लगाए जाते हैं लेकिन पौधे बहुत जल्दी सूख जाते हैं, नहीं लग पाते हैं, क्या होता है इससे? देखिए, पौधे जो होते हैं वो सबसे जल्दी किसी घर की ऊर्जा को, किसी घर की एनर्जी को महसूस कर लेते हैं। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो पौधे लग ही नहीं पाएंगे, और अगर नकारात्मक ऊर्जा भी है, सकारात्मक ऊर्जा भी है, तो पौधे कुछ समय तक लगेंगे, उसके बाद सूख जाएंगे। जहां पर तुलसी का पौधा ना लग पाए, जिन घरों में तुलसी का पौधा लगाने पर वो बार बार सूख जाए, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आपके घर में पौधे नहीं लग पा रहे, खास तौर से तुलसी बार बार लग करके सूख जा रही है, तो क्या उपाय करेंगे? घर में धूप की और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिएगा। दोनों समय सुबह और शाम पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और शंख बजाएं। घर में गंदे कपड़े और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी।
1: और चलिए, इसी के साथ पहुंच गए हैं अंत की तरफ। अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब मकर, कुंभ और मीन वालों की।
0: मकर राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आपके सवाल लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न आप भेजना चाहते हैं, अपनी दिक्कतों का निवारण चाहते हैं तो ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। पंडित जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
0: जी, अगला प्रश्न विश्वजीत प्रसाद ने हमें लिखा है, उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल से, 4 मई 1991 का जन्म है, 9:15 प्रातः, कल्याणी पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर की नौकरी कर रहा हूँ, मेरी नौकरी कब तक परमानेंट होगी और मेरा अपना मकान कब तक बनेगा। विश्वजीत जी, कुंडली आपकी बनती है मिथुन लग्न की और धनु राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। साल 2027 के आरंभ में शिक्षा क्षेत्र में आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी और 2027 में ही आप अपने मकान का निर्माण भी करवा पाएंगे। फरवरी 2027 से आपका समय काफी बेहतर है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, अगर इस शनि मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दर्शकों का अंतिम सवाल भी इस शो में शामिल कर लेते हैं और जानते हैं पंडित जी से ही कि कौन सा है अगला प्रश्न और कौन से दर्शक का है अगला प्रश्न।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न मुकेश राम जी ने बांका बिहार से लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 16 अक्टूबर 2022, 7:30 प्रातः, अमरपुर बांका बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा है, उसकी तबीयत बुरी तरह खराब हुई थी कुछ दिनों पहले और फिर उसके साथ एक एक्सीडेंट भी हो गया, तो मेरे बच्चे का स्वास्थ्य खराब रह रहा है, एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं, तो मेरे बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और क्या उपाय करना चाहिए। मुकेश जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है तुला लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, जब तक आपका बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता, अक्टूबर 2028 तक, तब तक बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सर में चोट न लगे या पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान ना करें। एक इनको मोती बनवा के पहनाइए, छह से आठ रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल या पीले धागे में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके गले में पहना दें और इनकी माता जी को बोलिए कि रोज सुबह शाम इस बच्चे के लिए ओम नमः शिवाय का जप करेंगी और इस बच्चे को लाल रंग से परहेज करवाइएगा। लाल कपड़े, लाल जूते, लाल बेडशीट, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 18 जून को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका ये गुड डे उनके लिए क्या लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 18 जून को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चीजें ठीक होंगी, लेकिन इस साल स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। पूरे साल भर अगर हनुमान जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि जब सूर्य अस्त हो रहे हों, सूर्य डूब रहे हों, तो क्या उस समय सोना अशुभ होता है? देखिए, सूर्यास्त का जो समय है ये पूजा उपासना के लिए और ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है। सूर्यास्त के समय भोजन करना और सोना शुभ नहीं होता। ऐसा करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है और जीवन में दरिद्रता आती है। तो सूर्यास्त के समय आप पूजा उपासना या ध्यान करें, सूर्यास्त होते समय सोना और भोजन करना उचित नहीं होता।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 18 जून 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा और संतान के मामलों में आपको लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 18 जून बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पंडित जी अंत की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि कौन सी है वो पंडित जी से जानते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा की स्थिति कैसी होती है। आज की गुडलक राशि है धनु। इनकी शिक्षा में शुरुआत में बाधा आती है, लेकिन बाद में मेहनत करके ये अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं।
1: चलिए, तमाम उपायों के बारे में जानकारी पंडित जी आपको दे चुके हैं, अब बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो आज का महा उपाय क्या है वो पंडित जी ही आपको बताएंगे।
0: जी, अगर आपकी संतान भटक रही हो, बेटा हो बेटी हो, भटक रही हो, गलत रास्ते पे जा रही हो, बुरी आदतें संतान को लग रही हो, तो क्या करेंगे? अपने घर में पीले रंग के गणेश जी की एक मूर्ति या एक चित्र स्थापित करिए। रोज सवेरे उनको दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। इसके बाद ओम उमा पुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और भगवान गणेश से प्रार्थना करिए कि संतान को सद्बुद्धि आए, संतान कहीं भटकने ना पाए।
1: तो पंडित जी, ये तमाम उपाय और जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
0: नमस्कार।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: Die Hard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
1: जाए। You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music plus ad-free ESPN Radio and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो गुड न्यूज टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की लगातार अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर दिखाएं और उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जाने और वहां सैर सपाटा करें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बिहार के रोहतास लिए चलते हैं, जहां पर कैमूर की पहाड़ियों के बीच गुप्त धाम वाटरफॉल आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।

0: ऊंची नीची घुमावदार पथरीले पहाड़, गुफा के भीतर जलते हुए दिए और कुदरती सुंदरता में सिमटी अलौकिक आस्था। अगर आप सोचते हैं कि बिहार सिर्फ इतिहास और मैदानों का प्रदेश है, तो कैमूर की इन वादियों को देखिए। घने जंगलों के बीच गूंजती झरने की आवाज, चारों तरफ फैली हरियाली और एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जिसके भीतर खुद महादेव विराजमान है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास में मौजूद गुप्त धाम की है, जिसे गुप्तेश्वर धाम भी कहा जाता है। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां प्रकृति का रोमांच भी है और महादेव की भक्ति का सुकून भी है। लेकिन इस पवित्र गुप्त धाम की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप इस शीतल कुंड वाटरफॉल का दीदार न कर ले। पहाड़ों की ऊंचाई से गिरता ये वाटरफॉल इतना खूबसूरत है कि इसे देखकर आपकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। इस झरने का पानी गर्मियों में भी बर्फ जैसा ठंडा रहता है, इसीलिए इसे शीतल कुंड कहा जाता है। रास्ते में पड़ने वाली सुगवा नदी और पहाड़ों के बीच बहते छोटे छोटे झरने इस पूरे ट्रैक को किसी जन्नत जैसा बना देते हैं। रहस्यमय गुफा के लगभग 360 फीट अंदर जाने पर कुदरती तौर पर बना एक स्वयंभू शिवलिंग दिखाई देता है, जिस पर सदियों से प्रकृति खुद पानी की बूंदों से अभिषेक कर रही है। प्रकृति और भक्ति के इस अद्भुत संगम तक पहुंचना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। कई किलोमीटर पहाड़ी रास्ता, इसके बाद घने जंगलों से होते हुए छोटे छोटे कई झरनों को पार करते हुए लगभग कुछ ही किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है, जो ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी एक यादगार लम्हा है। सावन के महीने में और महाशिवरात्रि पर तो यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है, मानो पूरा कैमूर पर्वत बोल बम के नारों से गूंज रहा हो। लोग गंगा जल लेकर बाबा गुप्तेश्वर नाथ पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप भी प्रकृति की गोद में सुकून के दो पल बिताना चाहते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो बिहार का ये गुप्त धाम आपका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
2: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: क्या नकारात्मक ऊर्जा होने से घर में बीमारियां आ जाती हैं? क्या नकारात्मक ऊर्जा होने से हर कार्य में असफलता मिलती है? क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा और कैसा होता है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
1: शांति की दिशा में शानदार खबर, ईरान अमेरिका के बीच एमओयू, शांति समझौते पर ट्रंप ने किए दस्तखत, ईरानी राष्ट्रपति ने भी लगाई मोहर।
11: देश भर में तेजी से बढ़ रहा है मानसून, दिल्ली समेत 15 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट, 65 की स्पीड से चलेगी हवा।
1: वेमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की बड़ी जीत, नेदरलैंड्स को 95 रनों से मात दी, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम, भारत ने दिया था 210 रनों का टारगेट।
11: लखनऊ वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम की विशाल जीत, अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में बनाई अजेय बढ़त।
1: विश्व योग दिवस से पहले हरियाणा के लाल का कमाल संदीप आर्य जांगड़ा ने लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व कीर्तिमान।
11: पूरी आस्था और उमंग के साथ जारी है चारधाम यात्रा, पवित्र दर्शन का आंकड़ा 36.5 लाख के पार, सबसे ज्यादा 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
1: उम्मीदवार पहर की खुशी भरी शुरुआत, नमस्कार सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ वैभव राज शुक्ला, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होने वाली है, लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन पांच खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना, वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
1: शुभ समाचार की शुभ शुरुआत सबसे पहले करेंगे हम बड़े समझौते के साथ। देखिए, गुड न्यूज ये निकल कर आई है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर मोहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अपने फ्रांस दौरे पर उन्होंने डील साइन कर दी। वहीं पर ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि समझौता पूरा हो चुका है और दोनों पक्ष दस्तखत कर चुके हैं। इन सब के बारे में तफसील से आगे बात करेंगे।
11: बिल्कुल वैभव, और साथ ही मौसम का भी आपको हाल बताएंगे। देखिए, देश के कई हिस्सों में अभी तक मॉनसून नहीं पहुंच पाया है, लेकिन प्री मॉनसून एक्टिविटी के चलते लोगों को राहत जरूर मिली है, बादल बरस रहे हैं, तापमान में कमी भी दर्ज की गई है। इस बीच आज एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पहाड़ी राज्यों से लेकर दिल्ली NCR में अब राहत की बारिश ये जो बादल है वो लेकर आएंगे। तो कहां कहां हो सकती है बारिश, आगे आपको इसके बारे में जानकारी देंगे।
1: बिल्कुल सरगम, देखिए वहीं पर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में इन दिनों खीर भवानी मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर की साफ सफाई से लेकर सजावट तक का काम जो है लगभग पूरा हो चुका है। अब श्रद्धालुओं को बस 22 तारीख का इंतजार है, जब यहां खीर भवानी माता के दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ेगी। तो कैसी है वहां पर तैयारियां, आगे आपको बताएंगे।
11: इसके अलावा जीत के हैट्रिक के बारे में भी बात होगी। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, पुरुष टीम और इंडिया ए तीनों टीमों को कल जीत हासिल हुई है। भारत से श्रीलंका और इंग्लैंड तक भारतीय टीमों ने कमाल कर दिखाया है, इसके बारे में भी आगे डिटेल से बात होगी।
1: यहाँ देखिए, साथ ही साथ आपको बता दें बात करेंगे फिल्म अल्फा की भी, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। रिलीज के साथ ही ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी, फैंस को ट्रेलर खूब पसंद आ रहा है। खास तौर पर अगर हम देखें तो आलिया का एक्शन अवतार, ट्रेलर ने उन सारे कंफ्यूजन और फैंस की नाराजगी को दूर कर दिया जो हाल ही में इस पे रिलीज हुए टीजर से उठे थे। इस फिल्म के तड़के से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज।
11: जम्मू कश्मीर के गांदरबल के तुलमुल में माता खीर भवानी मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस मेले और उत्सव को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मुख्य पर्व माना जाता है। इस मेले में सैकड़ों विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है।
1: जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त नजर बनाए रखे हुए है, जहां पर सुरक्षा बलों ने भगवती नगर बेस कैंप में सर्च ऑपरेशन चलाया, साथ ही साथ आसपास के इलाकों में भी तलाशी की गई। वहीं आने जाने वाले लोगों पर CCTV से नजर रखी जा रही है।
11: दुनिया के सबसे बड़े पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हरिद्वार के साई शिव गंगा धाम में हुई। भव्य धार्मिक कार्यक्रम के दौरान 5,210 किलोग्राम वजनी पारदेश्वर महादेव शिवलिंग की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन एवं विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सम्पन्न हुआ।
1: महाराष्ट्र पुणे और साई भक्तों को नई रेल कनेक्टिविटी की सौगात मिल गई है। पुणे से साई नगर के बीच एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ कर दिया गया। रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। वहीं पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। पुणे स्टेशन पर यार्ड रिमोल्डिंग का भी शिलान्यास किया गया।
11: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना इस सप्ताह कोलकाता में एक दुर्लभ और ऐतिहासिक त्रिकोणीय कमिशनिंग समारोह आयोजित करने जा रही है। इस भव्य कार्यक्रम में 3 प्रमुख युद्ध पोतों INS दूनागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक को एक साथ नौसेना के बेड़े में 21 जून को शामिल किया जाएगा।
1: कर्नाटक के मंगलुरु में बना एक अनोखा बस स्टॉप चर्चा का विषय बना हुआ है। बस के आकार और डिजाइन में तैयार किया गया ये बस शेल्टर अपनी अनूठी बनावट की वजह से लोगों के साथ साथ पर्यटकों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसमें खिड़कियां, दरवाजे और बैठने का सिस्टम ठीक वैसा ही बनाया गया है। लोगों को बस स्टॉप का ये आइडिया काफी पसंद आ रहा है।
11: पंजाब के पठानकोट के किसानों से जुड़ी गुड न्यूज सामने आई है, जहां लीची की बंपर पैदावार से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। अच्छे मौसम की वजह से इस साल लीची की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। पठानकोट की प्रीमियम लीची लंदन, सिंगापुर और दुबई भी भेजी जा रही है।
1: दक्षिण पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के लियान जियांग काउंटी में शानदार समुद्री ड्रैगन बोट रेस का आयोजन किया गया। लाल, पीले, सफेद और हरे रंग के चार ड्रैगन बोट ने इस रेस में भाग लिया। सिग्नल मिलते ही ये 9800 मीटर दूर फिनिश लाइन की ओर तेजी से बढ़ने लगे। और वहीं हर साल की तरह ये रेस ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके पर आयोजित होती है।
11: एनिमेशन की दुनिया से गुड न्यूज सामने आई है, क्योंकि दर्शकों को हंसाने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं श्रेक, फियोना और डंकी। श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसी के साथ करीब 17 साल बाद श्रेक की वापसी ने इस एनिमेशन सीक्वल के लिए दर्शकों का जो उत्साह है, उनका जो एक्साइटमेंट है, उसे बढ़ा दिया है। इस नए सीक्वल के लिए दर्शकों को इंतजार भी लंबा करना पड़ा है, लेकिन अब श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई है। श्रेक 5 अगले साल 30 जून को रिलीज होने जा रही है।

0: देखिए शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे शांति की। देखिए गुड न्यूज ये निकल कर आई है सरगम की, अमेरिका ईरान के बीच करीब 4 महीने से चली आ रही जंग आखिरकार खत्म हो गई है। युद्ध समाप्ति का औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने MOU पर साइन कर दिए हैं। विश्व शांति के लिहाज से अगर देखें तो इसे बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए इससे पूरी दुनिया को राहत मिलेगी। अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के अनुसार दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने इस MOU पर साइन कर दिए हैं और यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में मैक्रों के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर भी आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर अब कर दिए हैं। और आपको बता दें, साइन किए गए एग्रीमेंट की कॉपी ईरान और मध्यस्थ देशों को भेज दी गई है। इससे पहले रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर ने MOU पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन कर दिए थे। उसी की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से अब साइन कर दिए गए हैं, तो जाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि जल्द ही शांति हो जाएगी और बहुत जल्द ये बड़ी खबर निकल कर आएगी।
1: तो देखिए जो जंग है वो खत्म हो गई है, MOU साइन हो चुका है, US ईरान में पीस डील पर सहमति बन गई है। तो आइए आपको इस डील से जुड़ी कुछ बड़ी बातें यहां पर ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए युद्ध समाप्ति की औपचारिक घोषणा की गई है, ट्रंप पेजिश्कियान ने MOU साइन कर दिए हैं, दोनों ही देशों के बीच में MOU साइन हो गया है, दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर हुए हैं वैभव
0: जी। हाँ देखिए, और इसी के साथ आपको बता दें 4 महीने से चला रहा संघर्ष खत्म हो गया है। वैसे जेनेवा वार्ता में कुछ और मसलों पर बात संभव है।
1: साथ ही तेल बिक्री और प्रतिबंधों में राहत की भी उम्मीद जताई जा रही है, और इस तरह अगले कुछ दिन संयम जरूर बरतना होगा, लेकिन पूरे देश के लिए ही बड़ी राहत की खबर वैभव ये है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में ही ये इस MOU नहीं साइन हुआ है, लेकिन जो वैश्विक संकट जिससे पूरी दुनिया जूझ रही थी उसको जरूर राहत मिलने वाली है।
0: तो देखिए बेशक दोनों देशों के लीडर्स ने MOU साइन कर दिया है, लेकिन जानकारों की अगर हम माने तो अगले कुछ दिनों में दोनों देशों का संयम बरतना होगा दोनों को। और 14 पॉइंट्स वाली इस पीस डील में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी हुई है। सबसे पहला ये कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा, दोनों देश एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। 30 दिनों में अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, और समझौता यह भी हुआ है कि ईरान तय समय में व्यापारिक जहाजों का आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यानी ईरान के आर्थिक विकास के लिए $300 अरब की फंडिंग भी अब समझौता इसके लिए हो गया है। MOU के मुताबिक अगर देखें ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से खत्म होंगे। फैसला यह भी हुआ है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पीस डील पर टिकी हुई हैं, हालांकि हॉर्मूज को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। उम्मीद जाहिर तौर पर यही है कि मिडिल ईस्ट में जल्द से जल्द हालात सामान होंगे, दुनिया में शांति होगी।
1: तो चलिए इसी के साथ वैभव आगे बढ़ते हैं और अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि देश के कई हिस्सों में अभी तक मॉनसून नहीं पहुंचा है और सभी इसके बारे में लगातार सोच रहे हैं। लेकिन देखिए जो प्री मॉनसून एक्टिविटीज है उसके चलते लोगों को राहत की सांस जरूर मिल रही है, बादल बरस रहे हैं, तापमान में कमी भी दर्ज की गई है और आज एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पहाड़ी राज्यों से लेकर दिल्ली NCR में बादल जो है वो राहत की बारिश लेकर आएंगे। हालांकि मॉनसून की रफ्तार जो है वो काफी धीमी पड़ गई है, लेकिन जल्दी मॉनसून को रफ्तार भी मिलने वाली है।

0: भले ही मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई हो, लेकिन प्री मॉनसून एक्टिविटी से देश के कई इलाकों में गर्मी से राहत मिल रही है। उत्तर पश्चिम भारत हो, उत्तर भारतीय राज्य हो या पहाड़ी राज्य, हर जगह बारिश और तेज हवाएं राहत का पैगाम लेकर पहुंच रही हैं। इनमें खासा योगदान पश्चिमी विक्षोभ का भी है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे यहाँ बारिश की संभावना बन रही है। अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है और पश्चिमी राजस्थान में 19 से 21 जून के बीच बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के ऊपर कई चक्रवातीय दशाएं सक्रिय हैं, जो मौसम को प्रभावित कर रहे हैं, और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्री मॉनसून बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक मौसम सुहाना बना हुआ है। हालांकि कभी तेज हवाएं चलती हैं और कभी बारिश हो जाती है, वहीं कुछ घंटों में धूप भी निकल आती है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पिछले दो दिनों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम का यह बदलाव राहत लेकर आया है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन समूचे उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मॉनसून का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मॉनसून 13 दिन में 19 राज्यों तक ही पहुंच पाया है।
1: स्पष्ट किया गया था कि इस बार मानसून कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि जो लार्ज स्केल जो क्लाइमेट ड्राइवर्स हैं, उनका जो कंडीशंस है वो इस बार एक अच्छे मानसून के लिए फेवरेबल नहीं है। वहीं सेकंड स्टेज जो फोरकास्ट दिया गया अपडेटेड जस्ट जून मई एंड में, तो इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश पूरे देश भर में होने की संभावना है, और उसी के मुताबिक भी अब तक यदि देखें तो सामान्य से कम बारिश इंडिया भर में भी रिपोर्ट हुई है, और मानसून फ्लो जो है वो सामान्य से यूँ कह सकते हैं कि वीक मानसून फ्लो है। तो ऐसे में जैसे ही कोई वेदर सिस्टम्स बंगाल की खाड़ी में बनेगा तो मानसून का जो प्रोग्रेस पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की तरफ होगा, तो ऐसे में राजस्थान का जो है वो नंबर यूं कह सकते हैं कि लगभग इंडिया के ज्यादातर एरियाज को कवर करने के बाद सामान्यतः राजस्थान में पहुंचता है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि सेंट्रल इंडिया के काफी एरिया बाकी हैं।
0: मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बिहार के अधिकतर इलाकों तक पहुँच बना चुकी है, लेकिन पश्चिमी शाखा तो जैसे थम सी गई है। ऊपर से सूखी पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से बारिश में देरी हो रही है। साथ ही अलनीनो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी मॉनसून की चाल पर दिखने लगा है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जीत की हैट्रिक।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: To right field, and it will lead.
4: From the first pitch of the season to the stretch run,
5: and that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर

0: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
1: खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: नकारात्मक ऊर्जा होने से घर में बीमारियां आ जाती हैं? क्या नकारात्मक ऊर्जा होने से हर कार्य में असफलता मिलती है? क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा और कैसा होता है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: विश्व शांति की दिशा में शानदार खबर, ईरान अमेरिका के बीच MOU साइन, शांति समझौते पर ट्रंप ने किए दस्तखत, ईरान राष्ट्रपति ने भी लगाई मुहर।
5: देश भर में तेजी से बढ़ रहा मॉनसून, दिल्ली समेत 15 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट, 65 की स्पीड से चलेगी हवा।
4: विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की बड़ी जीत, नेदरलैंड्स को 95 रनों से हराया, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम, भारत ने दिया था 210 रनों का लक्ष्य।
5: लखनऊ वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम की विशाल जीत, अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में बनाई अजेय बढ़त।
4: विश्व योग दिवस से पहले हरियाणा के लाल ककमाल संदीप आर्य जांगड़ा ने लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व कीर्तिमान।
5: पूरी आस्था और उमंग के साथ जारी है चारधाम यात्रा, पवित्र दर्शन का आंकड़ा 36.5 लाख के पार, सबसे ज्यादा 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: ब्रेक के बाद शुभ समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे जीत वाली गुड न्यूज की। देखिए क्रिकेट की दुनिया में ब्लू ब्रिगेड अलग अलग मोर्चों पर धमाल मचा रही है। विमेंस वर्ल्ड T20 में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। देखिए लीड्स में स्मृति मंदना ने 74 रन की पारी खेली और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 चौके लगाने वाली पहली बैटर बन चुकी है। वहीं पर पुरुष टीम ने कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन के शतक के दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज अपने नाम कर लिया। और देखिए इंडिया ए ने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। उसने देखिए बुधवार को करू या मरू मैच में अफगानिस्तान ए को 101 रन से हरा दिया। और देखिए बुधवार को दामबोला इंटरनेशनल स्टेडियम में 320 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही अफगानिस्तान ए 36 ओवर 5 गेंद में 218 रन पर ऑल आउट हो गई। और निशांत सिंधु ने 4 विकेट भी झटके, यश ठाकुर और निशांत सिंधु जो हैं उन्होंने 2-2 विकेट झटके और वैभव सूर्यवंशी ने भी 38 रनों का योगदान दिया।
5: देखिए मेंस टीम ने लखनऊ के काना स्टेडियम में खेले गए अपने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 402 रन बनाए, जवाब में अफगानिस्तान की टीम 232 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शतकीय पारियां खेली। दोनों ने तीसरे क्रिकेट के लिए 224 रन जोड़कर टीम को 400 के पार पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाई। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट झटके।
6: शुभमन गिल का बैटिंग और ईशान किशन का जो अग्रेसिव था वो बहुत अच्छा लगा, और बॉलिंग में ठीक है, अर्शदीप फेवरेट है तो अर्शदीप का ही अच्छा लगेगा।
7: शुभमन गिल ने सबसे अच्छा खेला, जिस हिसाब से कैप्टन बने हैं वो और उनका परफॉर्म निकल के आ रहा है और नई टीम इंडिया पूरी बन रही है।
8: गिल और ईशान सबसे अच्छी बैटिंग, और रोहित ने भी बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन गिल की लेकिन गिल और ईशान ने बहुत अच्छी बैटिंग करी।
9: आज के मैच में जो हमारे शुभमन गिल हैं वो उन्होंने बहुत बड़ा परफॉर्मेंस किया है और वो फॉर्म में चल भी रहे हैं, तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि बस ही जो है वो प्रदर्शन उनका जारी रहेगा और अपने दर्शकों का जो है मनोरंजन वो करते रहेंगे।
10: बहुत ही अच्छा मैच था आज का, और देखा जाए तो जो 154 का मैच में खेल हुआ है बहुत जबरदस्त था, बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आ गया था देखने में, और इंडिया जीती तो और मजा आ गया हम लोग।
4: और क्रिकेट के बाद बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। देखिए पूरी दुनिया में फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त देखने को मिल रही है। सबसे ताजा तस्वीर एक अनोखी दोस्ती का किस्सा बयां कर रही है। मेक्सिको और साउथ कोरिया के बीच विश्व कप मुकाबले से पहले चर्चा में ये दोनों देशों की दोस्ती है। देखिए केक पॉप और के ड्रामा ने मेक्सिको में दक्षिण कोरियाई संस्कृति को बहुत लोकप्रिय बनाया है। दक्षिण कोरिया से आए प्रशंसकों ने ये कहा कि उन्होंने मेक्सिको के लोग बहुत उनको मिलनसार नजर आते हैं, कई स्थानीय लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए, उनका उत्साहित वो नजर आए। और टेक्सस में रहने वाले दक्षिण कोरियाई समर्थक जोशुआ ली ने उम्मीद ये जताई कि मैच के बाद भी दोनों देशों के रिश्ते ऐसे ही और मजबूत बने रहेंगे। मेक्सिको में उन्हें घर जैसा अपनापन महसूस हुआ। कोरियाई खान पान को लेकर भी मेक्सिको की बड़ी दिलचस्पी नजर आती है। दोनों देशों के लोगों के बीच एक दूसरे के लिए जो सम्मान है, प्यार है, वो जबरदस्त है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में दोनों टीमें जीत के साथ आगे बढ़ने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। मेक्सिको ने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया था, वहीं पर दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को मात दी थी।
5: तो देखिए आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म अल्फा का ट्रेलर रिलीज हो गया है, और वैभव इसके बारे में हम बात भी कर रहे थे कि क्या आपने ट्रेलर देखा है। और देखिए रिलीज के साथ ही ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर गदर मचाना भी शुरू कर दिया है। फैंस को ट्रेलर खूब पसंद आ रहा है, खासतौर पर आलिया का एक्शन अवतार। ट्रेलर ने उन सारे ही कंफ्यूजन और फैंस की नाराजगी को भी दूर कर दिया है जो हाल ही में इसके रिलीज हुए टीजर से उठे थे। मसलन बॉबी और आलिया का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, शर्वरी वाघ को टीजर में स्पेस ना देना, इन तमाम सवालों के जवाब के साथ ट्रेलर ने ऋतिक रोशन के रूप में एक बड़ा सरप्राइज भी दे दिया है। अगर आपने अब तक ट्रेलर नहीं देखा है तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
11: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूं। तो क्या है?
12: वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर। एक्शन, रोमांच और सस्पेंस से भरपूर अल्फा, आलिया और शर्वरी का पहली बार एक्शन पैक्ड अवतार। अल्फा के मोस्ट अवेटेड ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। यशराज ने अपनी स्पाई यूनिवर्स की इस अनोखी पेशकश से हीरोइन बेस्ड स्पाई थ्रिलर फिल्मों की एक दमदार नींव रख दी है, जो भविष्य के बॉलीवुड स्पाई थ्रिलर फिल्मों को नई दिशा दिखा सकते हैं। अल्फा की यूएसपी है आलिया, जो सीता के किरदार में जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैं। स्क्रीन पर उनका कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और पावरफुल प्रेजेंस बताने के लिए काफी है कि इस बार वो रोमांस नहीं दुश्मनों का खात्मा करने आई है। आलिया और बॉबी देओल के किरदार को लेकर टीजर ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया था, अल्फा के ट्रेलर रिलीज के साथ ही उन सारे कयासों और कंफ्यूजन पर विराम लगा दिया है। टीजर में आलिया और बॉबी देओल को बाप बेटी के रूप में दिखाया गया था, लेकिन ट्रेलर ने इस रिश्ते की सच्चाई उजागर कर दी है। ट्रेलर से साफ हो चुका है कि बॉबी का किरदार अपने दुश्मनों के खिलाफ आलिया का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सीता तो अब खुद लंका जलाने के लिए तैयार है।
13: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
12: ट्रेलर से ये भी साफ हो चुका है कि बॉबी देओल ही रियल विलेन है। बॉबी का किरदार एक बागी जासूस का है जो किसी भी कीमत पर भारत से बदला लेने पर आतुर है। ट्रेलर में बॉबी की मौजूदगी भले ही कम है, लेकिन उनका खौफ कहीं से भी कम दिखाई नहीं देता। फिल्म के टीजर में शर्वरी वाघ की गैर मौजूदगी को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठे थे, लेकिन ट्रेलर में शर्वरी को भरपूर स्क्रीन स्पेस देकर फैंस की नाराजगी दूर कर दी गई है।

0: रोक लो तो बात कर लो।
1: आलिया के साथ एक्शन सीक्वेंस से लेकर इंटेंस एक्सप्रेशन तक शर्वरी ने साबित कर दिया है कि वो फिल्म की मजबूत कड़ी बनने वाली हैं। वहीं अनिल कपूर अल्फा में आलिया और शर्वरी का मार्गदर्शन करते नजर आते हैं। अल्फा का एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट है जिसे ट्रेलर के आखिर में दिखाया गया है। ट्रेलर में उस कैरेक्टर की सिर्फ आंखें दिखाई गई हैं, लेकिन ये हल्की सी झलक बताने के लिए काफी है कि वो ऋतिक रोशन हैं, जो आलिया और शर्वरी की जान की रक्षा करते दिखाई देंगे। अल्फा के ट्रेलर ने इस धमाकेदार एक्शन फिल्म की झलक दिखाकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। इंतजार अब 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
3: देखिए, मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज के लिए अब तक पूरी तरीके से तैयार है। फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। वेलकम फ्रेंचाइजी की इस तीसरी फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी समेत 30 से ज्यादा एक्टर्स हैं। सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में कई सारी बातों का खुलासा भी किया है। सुनील शेट्टी ने यह बताया कि देखिए, अक्षय कुमार के डीएनए में कॉमेडी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किसकी कॉमेडी लाजवाब है। सुनील शेट्टी ने ये शूटिंग की इनसाइड स्टोरी का खुलासा करते हुए ये भी बताया कि फिल्म कैसी है और दर्शकों को क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए।
4: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
5: एक जबरदस्त कहानी है।
6: और टाइटल क्या है फिल्म का?
5: वेलकम टू द जंगल। मुझे टॉप का हीरो था और ड्रॉप का हीरो। वेपन
7: आ रोलिंग। तो पैसों की बात कौन करेगा
8: बताइए, कैसा दिया?
9: अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या?
10: और पूछते रहता हूँ वो क्या था, और सडनली रियलाइज कर रहा हूँ कहीं येड़ा अन्ना असलियत में वो बदलाव नहीं आ रहा मेरे में। एज के वजह से होगा। एक्शन है, कॉमेडी है, फन फिल्म है, लेकिन जैसे कि मैंने लिखा भी है कि प्रॉब्लम यहाँ एक्शन का नहीं था, प्रॉब्लम यहाँ ये था कि ऐसे माहौल में स्ट्रेट फेस कैसे रखे, क्योंकि वरना क्वार्टर्स जब कोई पंच लाइन मारता तो हंस देते, शॉर्ट कट जाता था। तो चैलेंज ये था कि चलिए यार, हम लोग सीन करेंगे, लोगों को हंसाएंगे, हम नहीं हंसेंगे। एक लाइन भी बोलते हो तो उसको कवर अप करने के लिए और साथ साथ बैक करने के लिए इतने सारे धुरंधर एक्टर्स है कि सीन बन जाता है, और जब सीन बन जाता है क्रेडिट सबको मिलती है। ये फिल्म एक की फिल्म नहीं है, ये शायद 25-30 धुरंधर एक्टरों की फिल्म है, और इस वजह से ये चार्म है, इस वजह से ये हाइप है। सबके अपने अपने फॉलोअर्स है, सबके अपने अपने फैंस है, तो ये मिलकर ये फिल्म को आगे बढ़ाएंगे। वर्ड की मीनिंग भी वैसी है और फिल्म की सक्सेस भी वैसी ही है, इसलिए बोल रहा हूँ धुरंधर एक्टर्स है क्योंकि दे आर अनबिलीवेबल। सेट में जाने से पहले शायद वन ऑफ द फ्यू टाइम्स जहाँ आप अपने लाइन सीख के जाते हो कि यार कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर्स है, कहीं मैं वो मिसिंग लिंक नहीं लगूं सीन में कि यार क्या कर रहा है ये। तो ब्लाइंड सीख के रिहर्स करके जाना पड़ता है, और ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं इनसिक्योर हूँ, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ कि यार खा जाएंगे ये लोग, इतने अच्छे परफॉर्मर्स है। लेकिन साथ साथ जब सीन आपकी होती है, इन्हीं के वजह से सीन एनहांस भी होता है और आप अच्छे लगने लगते हो। कन्फ्यूज मैं बहुत बार रहता भी था, क्योंकि सब एक्टर्स एक साथ रहते नहीं थे, तो आप गैप्स छोड़ के शूटिंग करते थे कि यहाँ परेश जी आएंगे तो यहाँ फिल होगा, और सिर्फ अहमद को ही पता। एंड में जब फिल्म देखा मैंने, तो मैंने कहा यार अहमद, हाउ डिड यू मैनेज दिस? आज VFX के वजह से, इफेक्ट्स के वजह से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन यू हैव टू बी अवेयर हाउ डू यू एग्जीक्यूट इट, हाउ डू यू यूज इट, एंड हाउ डू यू शो 30 एक्टर्स इन वन फ्रेम ऑल द टाइम। लेकिन अहमद ने मैनेज किया हुआ है, यू नो, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम दैट हु बिलीव्ड कि ये फिल्म बन सकती है।
3: सड़क पार करने के लिए अब ट्रैफिक के बीच जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद में पहली बार ऐसा ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है जिससे पैदल यात्री खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए बस एक बटन दबाना होगा जिससे गाड़ियों के लिए रेड लाइट ऑन हो जाएगी और यात्री को सड़क पार करने के लिए 25 सेकंड का समय मिल जाएगा।
1: अहमदाबाद में पैदल यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। सीजी रोड पर पहली बार ऐसा पेलिकन सिग्नल लगाया गया है जिससे लोग खुद बटन दबाकर ट्रैफिक रोक सकते हैं। बस एक बटन दबाइए, गाड़ियों के लिए रेड लाइट हो जाएगी और आपको सड़क पार करने के लिए 25 सेकंड का समय मिल जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट AMC यानी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरू किया है। मकसद यही कि पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाले। इस परियोजना पर करीब 6 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।
6: अहमदाबाद में पहली बार पेडिस्ट्रियन के लिए पेलिकन सिग्नल सिस्टम लगाया गया है, जिसका उद्देश्य है जो भी सड़क को क्रॉस करने वाले लोग हैं, जब वो क्रॉस करें तब एक बटन पुश करें और उस बटन पुश करने के साथ ही सिग्नल रेड हो जाए ताकि वो आसानी से सड़क क्रॉस कर सकें। और ये जो सिग्नल है वो लगाया गया है अहमदाबाद के सीजी रोड पर, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में इस जो सिग्नल के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। आप
1: हालांकि यूरोप, अमेरिका या सिंगापुर जैसे देशों में ये आम है, लेकिन अहमदाबाद के लिए ये नई पहल है। ऐसे में आप समझिए कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए सड़क के दोनों ओर एक एक पेलिकन सिग्नल बॉक्स लगाया गया है। जब किसी पैदल यात्री को सड़क पार करनी होती है तो उसे सिर्फ बॉक्स पर लगा बटन दबाना होता है। बटन दबाने के बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वेट मैसेज वॉक में बदल जाता है। इसके साथ ही सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन से रेड हो जाता है। इसके बाद पैदल यात्री को सड़क पार करने के लिए करीब 25 सेकंड का समय मिलता है।
8: मेन पर्पस है कि जब भी हमें पेडेस्ट्रियन क्रॉस करना है, सबसे पहले हमें इधर ये पुश बटन क्रॉस दबाना रहता है, तो सबसे पहले ये वेट का सिग्नल आएगा। उसके बाद 5 सेकंड के बाद आपको वॉक का सिग्नल मिलेगा, और वॉक मिलेगा तब आप देख सकते हैं ऊपर और सामने कि पेडेस्ट्रियन ग्रीन हो गया है। तब आप आराम से पेडेस्ट्रियन लोग क्रॉस कर सकते हैं और व्हीकल रुक जाएंगे, व्हीकल के लिए तभी वो सिग्नल रेड हो जाएगा। ये टाइमिंग अभी हमने 25 सेकंड दिया हुआ है। 25 सेकंड में आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। 25 सेकंड में आखिरी 5 सेकंड आपको ऐसे हुटर सुनाई देगा। ये हुटर का मतलब है कि अब ये पेडेस्ट्रियन के लिए रास्ता बंद होने वाला है और व्हीकुलर के लिए रास्ता खुल जाएगा। 25 सेकंड ये जैसे ही बंद होता है उसके बाद आपको फिर से दबाने के लिए मिनिमम 30 सेकंड का अभी हमने ऐसा प्रावधान रखा है कि 30 सेकंड तक आपको वेट करना है, क्योंकि अदरवाइज मैं शॉर्ट टाइम कर दूंगा तो व्हीकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा।
1: मतलब अब सड़क पार करने के लिए जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। हालांकि फिलहाल ये ट्रायल है, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो इसे बाकी सड़कों पर भी लगाया जाएगा।
6: बटन सिस्टम जो है वो लगाया गया है, अगर ये यहाँ पे सफल होता है तो आने वाले दिनों में अहमदाबाद के अलग अलग जो पेडिस्ट्रियन जो हैं उनके लिए शहर के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही पुश बटन सिग्नल लगाए जाएंगे। और विदेशों में जो सिस्टम हम देखते हैं कि लोग जब सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो इसी तरह से पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, वही सिस्टम गुजरात और खास करके अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी।
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेश ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो गुड न्यूज टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की लगातार अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को GNT पर दिखाएं और उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जाने, वहां सैर सपाटा कर सकें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बिहार के रोहतास लिए चलते हैं, जहां कैमूर की पहाड़ियों के बीच गुप्त धाम वाटरफॉल आपका स्वागत करने को तैयार है।
12: ऊंची नीची घुमावदार पथरीले पहाड़, गुफा के भीतर जलते हुए दिए और कुदरती सुंदरता में सिमटी अलौकिक आस्था। अगर आप सोचते हैं कि बिहार सिर्फ इतिहास और मैदानों का प्रदेश है, तो कैमूर की इन वादियों को देखिए। घने जंगलों के बीच गूंजती झरने की आवाज, चारों तरफ फैली हरियाली और एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जिसके भीतर खुद महादेव विराजमान है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास में मौजूद गुप्त धाम की है, जिसे गुप्तेश्वर धाम भी कहा जाता है। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां प्रकृति का रोमांच भी है और महादेव की भक्ति का सुकून भी है। लेकिन इस पवित्र गुप्त धाम की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप इस शीतल कुंड वाटरफॉल का दीदार न कर ले। पहाड़ों की ऊंचाई से गिरता ये वाटरफॉल इतना खूबसूरत है कि इसे देखकर आपकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। इस झरने का पानी गर्मियों में भी बर्फ जैसा ठंडा रहता है, इसीलिए इसे शीतल कुंड कहा जाता है। रास्ते में पड़ने वाली सुगवा नदी और पहाड़ों के बीच बहते छोटे छोटे झरने इस पूरे ट्रैक को किसी जन्नत जैसा बना देते हैं। रहस्यमय गुफा के लगभग 360 फीट अंदर जाने पर कुदरती तौर पर बना एक स्वयंभू शिवलिंग दिखाई देता है, जिस पर सदियों से प्रकृति खुद पानी की बूंदों से अभिषेक कर रही है। प्रकृति और भक्ति के इस अद्भुत संगम तक पहुंचना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। कई किलोमीटर पहाड़ी रास्ता इसके बाद घने जंगलों से होते हुए छोटे छोटे कई झरनों को पार करते हुए लगभग कुछ ही किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है, जो ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी एक यादगार लम्हा है। सावन के महीने में और महाशिवरात्रि पर तो यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है, मानो पूरा कैमूर पर्वत बोल बम के नारों से गूंज रहा हो। लोग गंगा जल लेकर बाबा गुप्तेश्वर नाथ पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप भी प्रकृति की गोद में सुकून के दो पल बिताना चाहते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो बिहार का ये गुप्त धाम आपका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: तो चलिए इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए रवीना टंडन की फनी इंस्टा स्टोरी।
13: अगर कोई लड़का आपको लाइक कर रहा है तो अपने आप को हीरोइन मत समझो, ये सबको लाइक करते हैं, लड़कों में बीमारी होती है।
14: सोच रही हूँ किसी अननोन बंदे की पोस्ट पे जाकर ना 7-8 कमेंट एक साथ ही कर दूं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, 7 रोने वाली इमोजीज लगा दूं, फिर वो जाने और उसकी बंदी जाने। हमें क्या।
11: तो चलिए इसी के साथ शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
3: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
16: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला। That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
17: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
20: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
20: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
2: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
3: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
4: इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: विश्व शांति की दिशा में शानदार खबर, ईरान अमेरिका के बीच एमओयू पर साइन, शांति समझौते पर ट्रंप ने किए दस्तखत, ईरानी राष्ट्रपति ने भी लगाई मुहर। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद दुनिया भर के मार्केट में लौटी रौनक, क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट, शेयर बाजार पर भी असर। देश भर में तेजी से बढ़ रहा है मॉनसून, दिल्ली समेत 15 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। गुजरात में बारिश की जोरदार एंट्री, 24 घंटों में कई इलाकों में हुई तेज बारिश, बालानीसोर में 5.75 इंच बरसा पानी। लखनऊ वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम की विशाल जीत, अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में बनाई अजेय बढ़त। विश्व योग दिवस से पहले हरियाणा के लाल का कमाल संदीप आर्य जांगड़ा ने लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व कीर्तिमान। उरियासा और उमंग के साथ जारी है चारधाम यात्रा, पवित्र दर्शन का आंकड़ा 36.5 लाख के पार, सबसे ज्यादा 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ।

थे आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नकारात्मक ऊर्जा की, नकारात्मक ऊर्जा के प्रभावों की और नकारात्मक ऊर्जा जीवन में आती कहां से है इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम के 6:58 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आजकल आम बोलचाल की भाषा में, सामान्य बातचीत में, हम नकारात्मक ऊर्जा इस शब्द का प्रयोग करते हैं, निगेटिव एनर्जी का। नकारात्मक ऊर्जा या निगेटिव एनर्जी क्या होती है? देखिए, हर व्यक्ति और हर वस्तु से उसके स्वभाव के अनुसार तरंगे निकलती रहती हैं, व्यक्ति से भी निकलती हैं और जो टेबल कुर्सी कृत्रिम चीज है जिनमें प्राण नहीं है उनके अंदर से भी तरंगे निकलती हैं। किसी जीवित व्यक्ति के अंदर से निकलने वाली तरंगे ज्यादा प्रभावशाली होती हैं और एक साथ जब ढेर सारी तरंगे इकट्ठा हो जाती हैं तो वो इकट्ठा हो करके एक एनर्जी बन जाती हैं, एक ऊर्जा बन जाती हैं इकट्ठा हो करके। अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है और खराब संस्कार वाले व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक यानी निगेटिव होती है। जब एक साथ ढेर सारी नकारात्मक तरंग इकट्ठा होती है तो ये नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है और नकारात्मक ऊर्जा
हमारे और हमारी तरक्की के बीच में आती है और नकारात्मक ऊर्जा सब कुछ रोक डालती है। तो बेसिकली नकारात्मक ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती, आपके घर के लोगों से, आपके घर के सामान से, आपके घर की वस्तुओं से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और जब ये इकट्ठा हो जाती है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। नकारात्मक ऊर्जा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, वाहन का सुख मिलेगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर के मामले हल होंगे, संपत्ति खरीद सकेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपके घर में कोई जरूरी नहीं है कि निगेटिव एनर्जी ही हो, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है। तो कैसे जाने कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है? आपके घर में मिठाई, चीनी, गुड़, अगर ये खुला रहता है फिर भी चींटियां नहीं लगती, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है। बार बार लगाने के बावजूद अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है, तमाम जतन करने के बावजूद तुलसी सूख जाती है, तो इसका मतलब घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। अगर घर में काफी पैसा बीमारियों और दवाइयों में खर्च होता है, पैसा आता तो है लेकिन बीमारी में काफी पैसा जाता है, तो इसका मतलब घर में निगेटिव एनर्जी है। तमाम जतन करते हैं, तमाम उपाय करते हैं, फिर भी घर की दीवारों पर सीलन आ जाती है, तो आप ये समझिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अवश्य है। अब मान लिया आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, तो इसके नुकसान क्या हैं? अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो घर में प्रवेश करते ही आपका मन खराब हो जाएगा।
घर के लोगों में तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। बिना कारण के बीमारियों में या फालतू की वजहों में, फालतू की चीजों में अनावश्यक पैसा खर्च होगा। और अगर घर में निगेटिव एनर्जी है तो आपके कोशिश करने के बावजूद सारे महत्वपूर्ण काम रुक जाएंगे और अच्छा करने के बावजूद आपको जीवन में बदनामी मिलेगी, जीवन में अपयश मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, कोई बड़ा निर्णय ना लें, संयम से काम लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, संपत्ति का लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपने लक्षणों से ये समझ लिया और आपको ये बात समझ में आ गई कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता हो, या ऐसी व्यवस्था बनाइए कि घर में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आए। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिए। कोशिश करिए कि घर में जो पोंछा लगाते हैं उस पोंछे के पानी में एक चम्मच या दो चम्मच नमक डालें, नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाइए। हर अमावस्या को, महीने में एक अमावस्या आती है, अमावस्या को घर की विधिवत सफाई करिए और जो भी वस्तु आपके काम की ना हो, आपके प्रयोग में ना आती हो, उस वस्तु को हटा दीजिए। प्रातः काल घर में पूजा स्थान पर बैठ के मंत्र का जप करिए और 3 बार शंख बजाइए। घर में गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती नियमित रूप से जलाइए, खास तौर से शाम को पूजा के समय जलाइए और पूरे घर में गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती घुमाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं
तो धीरे धीरे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, जीवन में सुख चैन और शांति आनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती सामान खो सकता है, केले का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की नकारात्मक ऊर्जा की, अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप वैवाहिक जीवन में सुधार चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार जिस भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है उन भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाइएगा, इसके बाद वही तिलक जरा सा खुद को भी लगा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: You hear it once and remember everything.
3: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
2: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
4: डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर सच्ची खबर.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर सच्ची खबर.

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: किसी गांव से एक आदमी गुजर रहा था, उसके पास में रहे होंगे 19-20 ऊंट। ऊंट लेकर के जा रहा था, पुराना जमाना, राजस्थान की बात, ऊंटों को लेकर के चला जा रहा था। रात हो गई तो उसे ठहरना पड़ा। जैसे ही रस्सियां निकाली थैला से, झोला से, तो 18 ऊंटों को तो बांध दिया, पर एक ऊंट रह गया। क्योंकि या तो उसे लगा कि हम रस्सी ला नहीं पाए, या रस्सी कहीं गिर गई। अब वो बड़ी टेंशन में पड़ गया कि इस ऊंट को बांधा कैसे जाए। वेद प्रकाश ध्यान से सुनना, वो आदमी सामने एक झोपड़ी में आदमी रहता था, पड़ोसी सराय में रहने वाला एक झोपड़ी वाला आदमी था। उसे लगा कि इस आदमी के पास जाएं, बूढ़े आदमी के पास, शायद ये कोई रस्सी दे दे, ऊंट को बांध दिया जाए, वरना बड़ी दिक्कत होगी, रात भर ये भी खड़ा रहेगा, हमको भी रखवाली करनी पड़ेगी, और सो नहीं पाएंगे तो दिन में चलने में दिक्कत होगी। तो वो पड़ोसी के पास गया, जहां रुका था उस झोपड़ी में गया, तो प्रार्थना की कि क्षमा करो, मैं एक यात्री हूं और मैं 19 ऊंटों का जत्था लेकर के जा रहा हूं, और मेरे पास 18 ऊंटों की रस्सी तो है, लेकिन एक रस्सी गिर गई, तो अगर आप बुरा ना मानो तो सुबह तक के लिए मुझे रस्सी दे दो, कल मैं जाऊंगा तो रस्ते में कहीं से खरीद लूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई रस्सी नहीं, मैं तो बहुत फक्कड़ आदमी हूं, और रस्सी क्या, मेरे पास तो एक कपड़ा ही है, वो मैंने पहन रखा है, वरना मैं कपड़ा दे देता, पर अगर मैं कपड़ा दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा, एक ही धोती है मेरे पास, और रस्सी तो दूसरी है नहीं। तो इस आदमी ने कहा कि अब तो बड़ी दिक्कत हुई, लगता है मुझे रात जागना पड़ेगा, लगता है मेरी रात आज व्यर्थ जाएगी। तो उस बूढ़े आदमी ने बुला के कहा, इधर आओ, सुनो, तुझे पता है कि रस्सी नहीं है, ऊंट को थोड़ी पता है। तो बोले मैं करूं क्या, बोले कुछ करने जैसा है, तू एक काम कर, जैसे रस्सी बांधता है वैसे ही नाटक कर, झूठ मूठ का एक खूंटा गाड़, उसके गले में हाथ लगा ताकि उसे लगे कि रस्सी बांध रहे, और झूठ मूठ के खूंटे के पास जाकर झूठ मूठ की रस्सी बांधने का नाटक कर, ये तुझे पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। उसने कहा ऐसे में हो सकता, बोले तू करके तो देख, ट्राई अगेन। वो आदमी आया वापस, उसने वही काम किया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, झूठ मूठ की गले में हाथ लगाया, रस्सी जैसे बांधने का नाटक किया, और उसने जैसे ही रस्सी से खूंटा में बांधा और दबकार करके ऊंट को कहा कि बैठ जा, ऊंट बैठ गया। इसको लगा कि बहुत अच्छा उपाय।
1: Tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
7: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर
4: जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। तो हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
19: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
20: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
21: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
22: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
22: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
22: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
22: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
25: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
22: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
22: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
22: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
22: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
25: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
22: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
22: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
22: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
22: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
25: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: विश्व शांति की दिशा में शानदार खबर, ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, शांति समझौते पर ट्रंप ने किए दस्तखत, ईरानी राष्ट्रपति ने भी लगाई मुहर। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद दुनिया भर के मार्केट में लौटी रौनक, कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। देश भर में तेजी से बढ़ रहा मॉनसून, दिल्ली समेत 15 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। गुजरात में बारिश की जोरदार एंट्री, 24 घंटों में कई इलाकों में तेज बरसात, बालासिनोर में 5.75 इंच बरसा पानी। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की तैयारियां हुई तेज, 22 जून को मंदिर परिसर में लगेगा मेला, अभी से पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। पूरी आस्था और उमंग के साथ जारी है चारधाम यात्रा, पवित्र दर्शन का आंकड़ा 36.5 लाख के पार, सबसे ज्यादा 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: अमेरिका और ईरान में महीनों से चली आ रही जंग आखिरकार हुई खत्म, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियां ने एमओयू पर किए साइन। महीनों से चल रही जंग के बाद ये एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, इससे वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान अग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर भी आधिकारिक रूप से साइन किए, अग्रीमेंट की कॉपी मध्यस्थता करा रहे देशों को भेजी गई। फ्रांस में हुए औपचारिक साइनिंग के बाद डील तुरंत प्रभाव रूप से अब भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों पर नजर। हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और नौसारिक तनाव घटाने पर समझौता हुआ, तेल आपूर्ति को बड़ी राहत मिली, ऊर्जा महंगाई का दबाव कम होने की संभावना। कुल्लू में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली बड़ी राहत। लगातार बारिश से कुल्लू घाटी की वादियां हरी भरी, नजारे और भी मनमोहक, तापमान में आई गिरावट। मौसम ठंडा होने से कुल्लू के बाजारों में चहल पहल बढ़ी, कारोबार को मिला सहारा। वीकेंड पर पर्यटकों की आमद बढ़ने की संभावना जताई गई, मौसम में आए बदलाव से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई, नदी किनारे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। रामबन के चंद्रकोट स्थित यात्री निवास में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई, सुरक्षा, ठहरने और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को किया जा रहा मजबूत। यात्रा मार्ग पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आवास, भोजन और मेडिकल सुविधाओं को किया जा रहा अपग्रेड, प्रशासन ने व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू की। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को देखते हुए चंद्रकोट यात्री निवास पर सुरक्षा बलों की तैनाती और भीड़ प्रबंधन की बनाई जा रही है योजना, यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने पर जोर। जम्मू कश्मीर के संत निरंकारी 14वें वनडे ग्रैंड सत्संग के साइडलाइन में बड़ा सेवा कार्यक्रम देखने को मिला और इस अवसर पर सेवा भाव से प्रेरित रक्तदान शिविर लगाया गया। पटनीटॉप में लगे इस शिविर में 128 स्वयंसेवकों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता और समाज सेवा की एक मजबूत मिसाल पेश की। पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है चारधाम यात्रा। पवित्र दर्शन का आंकड़ा 36 लाख के पार, सबसे ज्यादा 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। देवभूमि में पूरी आस्था के साथ जारी चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। इस बार पुरुषोत्तम मास के चलते बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे रिकॉर्ड भक्त। यात्रा मार्ग पर लंबी कतारों के बीच प्रशासन सतर्क। पवित्र देवताल भी श्रद्धालुओं और साधु संतों से हुआ गुलजार। बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। बद्रीनाथ धाम में लगभग 52 किलोमीटर दूर 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत चाइना सीमा से सटा ये देवताल। भारत ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास। नीदरलैंड्स को 95 रनों से मात दी। मौजूदा महिला टी20 विश्व कप में पहली बार बनाया 200 से ज्यादा रनों का स्कोर। भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर बनाए थे 209 रन। महिला टी20 विश्व कप इतिहास का तीसरा बड़ा टीम स्कोर। स्मृति मंधाना ने 47 गेंदों में बनाए शानदार 74 रन। शेफाली वर्मा ने भी खेला 55 रनों की अर्धशतकीय पारी। भारत ने 170 रन के विशाल अंतर से जीता लखनऊ वनडे। लगातार दूसरा वनडे जीतकर 3 वनडे की सीरीज में हासिल की अजेय बढ़त। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुनूर बरार ने झटके 3-3 विकेट। प्रिंस यादव को 2 और वॉशिंगटन सुंदर के खाते में 1 विकेट। हरियाणा के संदीप आर्य जांगड़ा के नाम अनोखा कीर्तिमान। लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। विश्व योग दिवस से पहले संदीप ने दुनिया में रोशन किया देश का नाम। संदीप के नाम अब तक 6 विश्व रिकॉर्ड। संदीप ने गुजरात के मोढ़ेरा में लगातार 37 घंटे और 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। पिछले 15 सालों के अभ्यास से बनाया विश्व कीर्तिमान। संदीप आर्य जांगड़ा की इस बेमिसाल उपलब्धि को अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मिली जगह। 20,000 सूर्य नमस्कार करने से पहले संदीप ने लगातार 15,000 सूर्य नमस्कार का बनाया था रिकॉर्ड। संदीप ने पहली बार 5,000 सूर्य नमस्कार का बनाया था रिकॉर्ड।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीज़ें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है
तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी,
एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है।

0: पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
3: You're listening to MSNBC.
1: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और

0: को समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: विश्व शांति की दिशा में शानदार खबर, ईरान और अमेरिका के बीच MOU पर साइन, शांति समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप ने किए दस्तखत, ईरानी राष्ट्रपति ने भी लगाई मोहर। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद दुनिया भर के मार्केट में लौटी रौनक, कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। देश भर में तेजी से बढ़ रहा मॉनसून, दिल्ली समेत 15 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। गुजरात में बारिश की जोरदार एंट्री, 24 घंटों में कई इलाकों में तेज बरसात, बालासिनोर में 5.75 इंच बरसा पानी। गुवाहाटी के माँ कामाख्या मंदिर के अंबुबाची मेले की तैयारियां तेज, 22 जून को मंदिर परिसर में लगेगा मेला, अभी से पहुंचने लगे श्रद्धालु। पूरी आस्था और उमंग के साथ जारी है चारधाम यात्रा, पवित्र दर्शन का आंकड़ा 36.5 लाख के पार, सबसे ज्यादा 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। आज बात मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल की, जो रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वेलकम फ्रेंचाइजी की इस तीसरी फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी समेत 30 से ज्यादा एक्टर्स हैं। सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में कई सारी बातों का खुलासा किया है। सुनील शेट्टी ने बताया कि अक्षय कुमार के डीएनए में कॉमेडी है, और साथ ही बताया कि किसकी कॉमेडी लाजवाब है। सुनील शेट्टी ने ये शूटिंग की इनसाइड स्टोरी का खुलासा करते हुए बताया कि फिल्म कैसी है और दर्शकों को क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए।
1: ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
2: ये कोई पेंटिंग है घोड़े के ऊपर गधा?
3: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा।
1: पेंटिंग की सिक्वल पहली बार देख। हमारे फिल्म आर्मी वाली,
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
5: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या? माइंड ब्लोइंग।
6: देखिए, सबको लग रहा है चलो येड़ा अन्ना, जो येड़ापन है, पागलपन है, जो भुलक्कड़ है, वही है कि बार बार भूलते। और फैक्ट ये है कि आज मैं खुद जेन्युइनली ऐसे हो गया हूँ, मैं भूल जाता हूँ, नाम भूल जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, और पूछते रहता हूँ वो क्या था। और सडनली रियलाइज़ कर रहा हूँ कहीं येड़ा अन्ना असलियत में वो बदलाव नहीं आ रहा मेरे में, एज के वजह से होगा। एक्शन है, कॉमेडी है, फन फिल्म है, लेकिन जैसे कि मैंने लिखा भी है कि प्रॉब्लम यहाँ एक्शन का नहीं था, प्रॉब्लम यहाँ ये था कि ऐसे माहौल में स्ट्रेट फेस कैसे रखे, क्योंकि वरना क्वार्टर्स जब कोई पंच लाइन मारता तो हंस देते, शॉट कट जाता था। तो चैलेंज ये था कि चलिए यार, हम लोग सीन करेंगे, लोगों को हंसाएंगे, हम नहीं हंसेंगे। वो सबसे मुश्किल बात थी इस फिल्म की। एक लाइन भी बोलते हो तो उसको कवर अप करने के लिए और साथ साथ बैक करने के लिए इतने सारे धुरंधर एक्टर्स है कि सीन बन जाता है, और जब सीन बन जाता है क्रेडिट सबको मिलती है। ये फिल्म एक की फिल्म नहीं है, ये शायद 25-30 धुरंधर एक्टरों की फिल्म है, और इस वजह से ये चार्म है, इस वजह से ये हाइप है। सबके अपने अपने फॉलोअर्स है, सबके अपने अपने फैंस है, तो ये मिलकर ये फिल्म को आगे बढ़ाएंगे। एंड एक चीज़ जो आज की यूथ नहीं मानती, मैं अपने एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, इनसिक्योर हो जाते हैं जब डबल हीरो की फिल्म होती है। मेरा बोलना ये है कि आपकी सिक्योरिटी तब होगी जब आप ऐसी फिल्में करोगे और आप एंटरटेन करोगे। आप अपने, आपका को एक्टर है, एक फेलो ब्रदर है, वो समझकर आप जब परफॉर्म करोगे, फिल्में चलती है। आप धुरंधर की देखिए, इट्स अ मल्टी स्टार कास्ट फिल्म दैट हैज वर्क, इट्स अ बॉर्डर, अ मल्टी स्टार कास्ट फिल्म दैट हैज वर्क। सनीपात है, दिलजीत था, वरुण था, फिर भी आहन को अपनी जगह मिली, वो अप्रिसिएशन मिला। सो आई थिंक फेलियर शुड बी द बिगेस्ट इनसिक्योरिटी फॉर एन एक्टर। सक्सेस कैन नेवर बी इनसिक्योर, क्योंकि आपको सक्सेस का आपका हिस्सा आपको मिलता ही है। यू नो, मेरे पेड प्रमोशन करने से या मेरे कुछ भी करने से फोकस मेरे ऊपर कभी शिफ्ट नहीं होगी। जो अच्छा काम किया फोकस उन पर शिफ्ट होगी। आज अक्षय जितना बड़ा स्टार है, या नाना जितने बड़े स्टार है, या अनिल जी जितने भी बड़े स्टार हो, उतनी इम्पैक्ट जॉनी भाई का, राजपाल का और बाकी एक्टर्स का है। यू नो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिनेमा। फॉर्चुनेटली दोनों तरफा वैसे हो गया है। पीआरस भी एक्सपेक्ट करते कि हम, आप मेरे को कुछ दो तो मैं आपके बारे में लिखूंगा, नहीं तो मैं नहीं। ये मीडिया नेट का जो कल्चर आया हुआ है, कहीं ना कहीं ऑल दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक ऑडियंस कंफ्यूज हो जाता है कि सच्चाई क्या है और बुरा क्या है। यू नो, तो वो कन्फ्यूजन के वजह से फिल्मों पर इफेक्ट हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जेन्यून सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, जेन्यूनली आपके जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उस पे सब्जेक्ट ध्यान दीजिए. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन द सेंस, पहली बात यह है कि जो आपका आपकी जो प्रोमो है ना उसमें कुछ बात होनी चाहिए, टीजर में कुछ बात होनी चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट लानी चाहिए. लोग आज थक चुके हैं वॉर से, तकलीफ़ों से, आज बारिश की इश्यू है, हम कल तक तो तेल की बात कर रहे हैं, आज पानी की बात कर रहे हैं. तो आई थिंक वी नीड टू गो आउटसाइड एंड सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ ऑल्सो, ताकि हम इन सब चीज़ों को जो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ को हम बैलेंस कर सके. तो मेरा डेफिनेटली मानना ये है कि पेड प्रमोशन, आप होर्डिंग्स ले रहे हो, आप ट्रेलर को ये कर, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए हम ये चक्कर में न पड़े तो अच्छा होगा, क्योंकि ऑडियंस सूंघ लेती है, एक फिल्म की सक्सेस सूंघ लेती है. आप टिकट खरीद के आप हाउसफुल दिखा रहे हो, ये कल्चर डेफिनेटली आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड है तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि यू नो हमारी शेयर वैल्यू रह जाए. वो शेयर वैल्यू रहने के चक्कर में प्रोडक्ट ही बर्बाद होते जा रहे. सर फ्राइडे को, फ्राइडे फर्स्ट शो के बाद पता चल जाता, मंडे को आपकी फिल्म खड़े रहेगी कि नहीं वो पता चल जाएगा. फिल्म वालों से ही नहीं, दो कंपेटिटिव लोगों के थ्रू, आप कंपनी भी होगी, न्यूट्रास्यूटिकल होगी, फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, टेक की कंपनी होगी, जब दो लोग एक स्पॉट के लिए झड़ रहे थे आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, वो होता ही है. आई थिंक वो इनसिक्योरिटी है इस फिल्म में, यू नो. और क्योंकि ये एड़ा अड़ना है, शौक है कि एक्टर बनना है, और वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, उसे लग रहा है कि मैं भी एक्टर हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. तो आई थिंक वो रियलिटी ऑफ लाइफ है, ना कि सिर्फ फिल्मों का या रादो है. लाइफ में हम सब चाहते हैं कि हम कंपीट करें और दूसरे से बेटर हो, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. जिसके साथ काम किया हुआ, अरशद के साथ हो, राजपाल के साथ हो, जॉनी भाई के साथ हो, परेश जी के साथ तो बहुत काम किया हुआ है. और क्या हो जाता है, जब एक एक्टर, एक सिक्योर एक्टर होता है ना, तो कभी टेंशन होता ही नहीं है, कभी भी शूटिंग पे टेंशन होती ही नहीं है, सिक्योर एक्टर्स है. और ये मैं इसलिए बार बार धुरंधर बोल रहा हूँ, क्योंकि आज धुरंधर वर्ड की मीनिंग भी वैसी है और फिल्म की सक्सेस भी वैसी ही है. इसलिए बोल रहा हूँ धुरंधर एक्टर्स है, क्योंकि दे आर अनबिलीवेबल. सेट में जाने से पहले शायद वन ऑफ द फ्यू टाइम्स जो आप अपने लाइन सीख के जाते हो कि यार कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर्स है, कहीं मैं वो मिसिंग लिंक नहीं लगूं सीन में कि यार क्या कर रहा है ये. तो लाइन सीख के रिहर्स करके जाना पड़ता है. और ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं इनसिक्योर हूँ, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ कि यार खा जाएंगे ये लोग, इतने अच्छे परफॉर्मर्स है. लेकिन साथ साथ जब सीन आपकी होती है, इन्हीं के वजह से सीन एनहेंस भी होता है और आप अच्छे लगने लगते हो. बोलते हैं ना, संगत का असर पड़ता ही है. होती है क्योंकि उसी से सब कुछ जुड़ा रहता है. बॉक्स ऑफिस सक्सेस से बहुत चीज़ें जुड़ी रहती है. एक फ्राइडे आप हो, एक फ्राइडे नहीं हो, क्योंकि सक्सेस से जुड़ा हुआ है. तो पैल्पिटेशंस, टेंशन, एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, सब कुछ होता ही है. लेकिन यहाँ पर पता है आपको, अक्षय है, बाकी परेश जी है, जॉनी भाई है, अरशद है, इतने सारे तुषार उषार सारे एक्टर, दलेर पाजी भी है, इतने सारे एक्टर्स है, दैट एक एक सेफ्टी नेट है ही, यू नो. अच्छी फिल्म एंटरटेनिंग बनी है. अच्छी बुरी तो बता नहीं सकता, क्योंकि क्या पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है. जब हम देखते हैं तो हमें बहुत एंटरटेनिंग लगती है, जब फ्राइडे को ऑडियंस देखती है तो नज़रिया ही बदल जाता है. एक है कि इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ वो स्केल पे पॉसिबल एग्जीक्यूट करना पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ फिरोज भाई. अहमद के अलावा ये फिल्म कोई भी डायरेक्टर नहीं कर सकता. एंड व्हेन आई मीन कि कोई भी डायरेक्टर, मेरा मतलब है कोई भी डायरेक्टर, फराद फॉर प्योर राइटिंग और वो कॉन्स्टेंट ह्यूमर लेके आना वुड हैव बीन इम्पॉसिबल. मस्ती इतनी होती थी सेट पे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और थोड़े वक्त के बाद हम खुद सीन में कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि आप देखोगे तो ह्यूमर को कंटिन्यू करते जा रहे और कंफ्यूज। मैं बहुत बार रहता भी था, क्योंकि सब एक्टर्स एक साथ रहते नहीं थे, तो आप गैप्स छोड़ के शूटिंग करते थे कि यहाँ परेश जी आएंगे तो यहाँ फिल होगा, और सिर्फ अहमद को ही पता। एंड में जब फिल्म देखा मैंने, तो मैंने कहा यार अहमद हाउ डिड यू मैनेज दिस। आज VFX के वजह से, इफेक्ट्स के वजह से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन यू हैव टू बी अवेयर हाउ डू यू एग्जीक्यूट इट, हाउ डू यू यूज इट, एंड हाउ डू यू शो 30 एक्टर्स इन वन फ्रेम ऑल द टाइम। लेकिन अहमद ने मैनेज किया हुआ है, यू नो, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम दैट हु बिलीव्ड कि ये फिल्म बन सकती है। यू नो, जो जो फाइनेंसर प्रोड्यूसर है हमारे, अक्षय है, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ द कोर प्रोडक्शन कि ये फिल्म बनेगी और ये फिल्म इतनी अच्छी तरह से रिलीज होगी, विच इज अक्षय को रोक ही नहीं सकते। अक्षय के DNA में उंगली करना और वो चलती ही रहेगी, और आई थिंक इसीलिए अक्षय जब सीन्स करता है आप देखते हो कि वो कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता है। अक्षय ह्यूमर एक्टिंग में भी लेके आता है और स्टंट्स में भी ह्यूमर लेके आता है, उसकी कोई ना कोई मस्ती चलती रहती है, एंड ही सीज अ सीन डिफरेंटली, वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी वुड सी इट। जैसे चीची भैया, जब चीची भैया ह्यूमर करते हैं तो चीची भैया की ह्यूमर की एक अपनी स्टैंडर्ड है, और जब उनके साथ भी मैं शूटिंग करता था तो मुंह खुला का खुला रह जाता था कि यार मैं तो ऐसे कभी सोच ही नहीं सकता। आज सलमान है, सलमान ड्राई स्ट्रेट ह्यूमर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड आई थिंक दैट इज गॉड गिफ्ट के साथ साथ जो जिनमें एक मस्ती है, एक अच्छी सोल होती है ना, वो कहीं ना कहीं दे कैन परफॉर्म द वे दे डू। परेश रावल, जॉनी भाई, देखिए जॉनी भाई को देखते ही ना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मैं परेश जी, क्योंकि जब परेश जी सेट पे रहते हैं तो आपको लगता है कि यार प्रिपेयर्ड ही नहीं है, लेकिन जब आप सीन देखते हो आपको तब समझ में आता है कि माय गॉड व्हाट अ लेवल ऑफ एन एक्टर ही इज। यू नो, कहते हैं ना कि एक जगह बैठ के ब्रूडिंग करना है, आई एम गेटिंग इन टू माई रोल, वो एक स्कूल है, और ये एक स्कूल है जो होमवर्क करके आता है एंड देन सेज या व्हाट्स द सीन एंड जस्ट डिलीवर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। राजपाल यादव एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर, मुकेश जी, यशपाल जी, आई एम टेलिंग यू जेन्यूनली फिनोमिनल एक्टर, श्रेयस तलपड़े आउटस्टैंडिंग, अरशद वारसी, तुषार, यू नो, बहुत सारे, रवीना, देयर्स I mean Jacqueline is extraordinary in the film, and she's playing a dumb blonde jaisi hai, lekin timing superb. Disha jo apne point of view se apne aap ko present karti hai, you know, young, fresh, beautiful, to bahut badhiya. Jungle hai entertainment ka, aur tough times hai, तो कहीं ना कहीं कभी कभी टफ टाइम्स के टाइम पे ना एक अनवाइंडिंग की ज़रूरत होती है, एक मी टाइम की ज़रूरत होती है, एंड वेलकम टू द जंगल वो मी टाइम है जहाँ आप जाके यू कैन एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ अ हिलेरियस मूवी। एंड आप अहमद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर हिम, यू नो, वेरी वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, तो मैं चाहता हूँ कि वो फिल्म सक्सीड्स बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि अगर इस फिल्म ने सक्सेस देखा तो इट बी अ गेम चेंजर फॉर अहमद, क्योंकि देन ही इज़ वन मैन हु कैन हैंडल एनी सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ अ फिल्म एंड सब्जेक्ट। फिरोज नादियादवाला, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोड्यूसर्स, बहुत ही लार्ज हार्टेड प्रोड्यूसर है, ही हैड अ टफ टाइम, पिछले 8-10 साल टफ रहे हैं उनके लिए। अगर ये फ्रेंचाइज सही निकल गई तो हेरा फेरी, वेलकम हो, आवारा पागल, दीवाना हो, ऐसी फ्रेंचाइजेस किसी के पास नहीं, आज इंडस्ट्री टिकी हुई है फ्रेंचाइजेस पर, एंड आई थिंक फिरोज नादियादवाला हैज़ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजेस. एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म में नहीं है, यू नो द टू लीड एक्टर्स. ओरिजिनल फ्रेंचाइज अगर है तो इट बिलोंग्स टू अक्षय, नाना एंड अनिल जी, तो दे कैन नेवर बी रिप्लेस्ड. यू नो वी कम इन एज न्यू एक्टर्स, उनके भाइयों की हैसियत से आए हुए हैं. आई नो पीपल विल मिस देम एंड वेलकम, बिकॉज वी मिस देम, वी मिस देम. हमेशा बात करते रहते थे. होप कि नेक्स्ट वेलकम में वो दोनों भी आ जाए. कोशिश यही है एंड फिंगर्स क्रॉस कि दोनों आ जाए अगले वेलकम.
7: दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं.
8: वो कांता भाई फटके मारने ना तो जमीन पे मार इधर.
7: तो वैसे तो तेरा थोबड़ा भी गंदा है, उसपे लगाऊं क्या?
9: एक मिनट एक मिनट, ये बात बात पे झगड़ा क्या करते हो यार?
10: ए तू चुप कर, मेंढक की तरह फुदक रहा है.
9: गेंडे को मेंढक मत बोलना. ए तू बस कर, हां तो तू रिक्शा कर जा,
7: बाहर में जाओ तुम लोग.
9: आपके घर में जाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं अंकल.
11: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
12: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
11: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
13: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
14: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
15: One more, let's go.
14: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
16: Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
17: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio.

0: you can never have too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
2: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
1: Smartless.
3: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of apple.
1: Marketplace.
4: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
1: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
5: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज इसी महीने शुरू हो सकती है। UPI और ATM के जरिए PF अकाउंट से सीधे पैसे निकालने की सुविधा। विश्व शांति की दिशा में शानदार खबर, ईरान अमेरिका के बीच MOU पर साइन, शांति समझौते पर ट्रंप ने किए दस्तखत, ईरानी राष्ट्रपति ने भी लगाई मुहर। कश्मीर में गांधरबल के खीर भवानी मंदिर में CM उमर अब्दुल्ला ने की पूजा, मेले की तैयारियों का लिया जायजा, कहा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा होगी सुनिश्चित। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की तैयारियां तेज, 22 जून को मंदिर परिसर में लगेगा मेला, अभी से पहुंचने लगे।

0: श्रद्धालु। देश भर में तेजी से बढ़ रहा मॉनसून, दिल्ली समेत 15 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। गुजरात में बारिश की जोरदार एंट्री, 24 घंटों में कई इलाकों में हुई तेज बरसात, बालासिनोर में 5.75 इंच बरसा पानी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
0: सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिंदे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: अमेरिका और ईरान में महीनों से चली आ रही जंग आखिरकार हुई खत्म, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने MOU पर किए साइन। हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और नौसैनिक तनाव घटाने पर समझौता हुआ, तेल आपूर्ति को बड़ी राहत, ऊर्जा महंगाई का दबाव कम होने की संभावना। कुल्लू में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली बड़ी राहत, लगातार बारिश से कुल्लू घाटी की वादियां हरी भरी, नजारे और भी मनमोहक हुए, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यात्रा मार्ग पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आवास, भोजन और मेडिकल सुविधाओं को किया जा रहा अपग्रेड, प्रशासन ने व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू की। रामबन के चंद्रकोट स्थित यात्री निवास में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, सुरक्षा, ठहरने और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा।
2: पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है चारधाम यात्रा, पवित्र दर्शन का आंकड़ा 36 लाख के पार, सबसे ज्यादा 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। देवभूमि में पूरी आस्था के साथ जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। इस बार पुरुषोत्तम मास के चलते बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड भक्त, यात्रा मार्ग पर लंबी कतारों के बीच प्रशासन सतर्क। पवित्र देवताल भी श्रद्धालुओं और साधु संतों के पहुंचना वहां पर जारी, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर दूर 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत चीन सीमा से सटा ये देवता।
0: महाराष्ट्र पुणे और साई भक्तों को नई रेल कनेक्टिविटी की सौगात, पुणे से साईनगर के बीच में एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का हुआ शुभारंभ। रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना, मुख्यमंत्री फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी, पुणे स्टेशन पर यार्ड रिमोल्डिंग का भी शिलान्यास किया। बंगाल पुलिस को आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस और राष्ट्र रक्षा विश्वविद्यालय में समझौता, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए साइन। महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर मथुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी शामिल हुए। कोयला खनन से जुड़े कर्मचारियों को बढ़ेगी उनकी सुरक्षा, हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट सिस्टम को डिजिटल तकनीक के साथ अपग्रेड करने में जुटा है IIT ISM।
2: भारत ने महिला T20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, नीदरलैंड्स को 95 रनों से दिमात, मौजूदा महिला T20 विश्व कप में पहली बार बनाया 200 से अधिक रन का स्कोर। भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर बनाए थे 209 रन, महिला T20 विश्व कप इतिहास का ये तीसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर। स्मृति वंदना ने 47 गेंदों में बनाए शानदार 74 रन, शेफाली वर्मा ने भी खेली 55 रनों की अर्धशतकीय पारी। भारत ने 170 रन के विशाल अंतर से जीता लखनऊ वनडे। लगातार दूसरा वनडे जीतकर 3 वनडे की सीरीज में हासिल किया जय बढ़त। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने झटके 3-3 विकेट। प्रिंस यादव को 2 और वॉशिंगटन सुंदर के खाते में 1 विकेट।
0: फिल्म वेलकम टू द जंगल में सितारों की जमघट पर बोले सुनील शेट्टी, यह किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। फिल्म 25 से 30 धुरंधर एक्टर्स की फिल्म है वेलकम टू जंगल। क्या पीरियड ड्रामा फिल्म के लिए साथ आएंगे सलमान खान और फरहान अख्तर? रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म पर सलमान और फरहान में 1 महीने से चल रही बातचीत। एक बार फिर से हॉरर फिल्म का हिस्सा बनी जैकलिन। जैकलिन फर्नांडिस के एक हॉरर फिल्म साइन करने का दावा। मेकर्स ने शूट किया फिल्म का टीजर और गाना। 19 जून को हैदराबाद में लॉन्च होगा निर्देशक अभिषेक नामा की पौराणिक फैंटेसी फिल्म नागबंधम का ट्रेलर। 3 जुलाई को सिनेमाघर में दसक देगी फिल्म। मुंबई में होगा फिल्म द ओडिसी का ग्लोबल प्रीमियर। प्रमोशन के लिए भारत आएंगे हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और टॉम हॉलैंड और मैट डेमन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: बच्चे अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौते पर लगी मुहर। दुनिया भर के शेयर बाजारों पर दिखा असर, कच्चे तेल के दाम भी गिरे।
0: 2 हफ्ते की धीमी रफ्तार के बाद दोबारा से एक्टिव हुआ मॉनसून। 20 जून से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक समेत पश्चिमी भारत में तेज बारिश के आसार हैं।
2: गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की रौनक। 22 जून से मेले की शुरुआत, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी।
0: चार धाम यात्रा में आस्था का नया कीर्तिमान। 36 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हुए इस पवित्र यात्रा में शामिल।
2: अल्फा के प्रमोशन के लिए कनॉट प्लेस पहुंची आलिया और शर्वरी वाघ। एक्ट्रेस की झलक देखने के लिए उमड़े फैंस।

0: और चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। देखिए आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म अल्फा इन दिनों खूब चर्चा में है। इस फिल्म में आलिया बिल्कुल अलग अंदाज में दिखने वाली हैं। फिल्म के प्रमोशन को लेकर भी एक नया बज क्रिएट हो गया है।
1: इसी सिलसिले में आलिया और शर्वरी दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंची थी। दोनों एक्टर्स को देखने के लिए वहां फैंस की भारी भीड़ लग गई।
2: सीता आज लंका खुद जलाने आई।
3: अल्फा के प्रमोशन के लिए आलिया कनॉट प्लेस पहुंची तो उनकी झलक पाने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। आलिया के साथ शर्वरी की मौजूदगी ने वहां मौजूद लोगों के उत्साह को और बढ़ा दिया। आलिया के एक्शन से भरपूर फिल्म अल्फा 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले एक्ट्रेस फिल्म के प्रमोशन में जी जान से जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में अल्फा के सितारे दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पहुंची थी। अल्फा की पूरी टीम एक बस में कनॉट प्लेस पहुंची थी। मैचिंग अल्फा टी शर्ट और कूल सनग्लासेस में आलिया और शर्वरी की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों ने बेहद कूल अंदाज में कैमरे के सामने पोज दिए और इन तस्वीरों के बैकग्राउंड में अल्फा की बस भी खड़ी दिखी। हाल ही में अल्फा का टीजर भी रिलीज हुआ है जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस फिल्म में पहली बार पर्दे पर एक्शन कर रही आलिया ने अपने स्टंट से फैंस को कायल कर दिया है। अल्फा में आलिया एक असैसिन का किरदार निभा रही है। उनका ये किरदार अभी तक के सभी किरदारों से बहुत अलग है। आलिया के साथ फिल्म की दूसरी लीड हीरोइन शर्वरी वाघ भी बिल्कुल अलग और दमदार किरदार में दिखाई दे रही है। फिल्म में आलिया के एक्शन की सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हो रही है। बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों ने भी फिल्म में आलिया के अंदाज को सराहा है। इस फिल्म में बॉबी देओल विलन का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में आलिया का किरदार जितना अलग दिखने वाला है उतना ही अनोखा इसका प्रमोशन भी हो रहा है। शायद यही वजह है कि इसके प्रमोशन के लिए भीड़ भाड़ वाले कनॉट प्लेस को चुना गया। अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है 3 जुलाई का, जब आलिया के एक्शन से भरपूर ये फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हाल ही में अल्फा का नया ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। पहले के ट्रेलर में तो शर्वरी की झलक नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे ट्रेलर में शर्वरी का दमदार किरदार दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।
0: और देखिए इस ट्रेलर ने उन सारे कन्फ्यूजन और फैंस की नाराजगी को दूर कर दिया जो हाल ही में इसके रिलीज हुए टीजर से उठे थे। मसलन बॉबी और आलिया का रिलेशन, शर्वरी वाघ को टीजर में स्पेस ना देना, इन तमाम सवालों के जवाब के साथ ट्रेलर ने ऋतिक रोशन के रूप में एक नया सरप्राइज दे दिया है। देखिए खास रिपोर्ट।
4: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूं। तो क्या है?
5: वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर।
6: एक्शन, रोमांच और सस्पेंस से भरपूर अल्फा। आलिया और शर्वरी का पहली बार एक्शन पैक्ड अवतार। अल्फा के मोस्ट अवेटेड ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। यशराज ने अपनी स्पाई यूनिवर्स की इस अनोखी पेशकश से हीरोइन बेस्ड स्पाई थ्रिलर फिल्मों की एक दमदार नींव रख दी है जो भविष्य के बॉलीवुड स्पाई थ्रिलर फिल्मों को नई दिशा दिखा सकते हैं। अल्फा की यूएसपी है आलिया, जो सीता के किरदार में जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैं। स्क्रीन पर उनका कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और पावरफुल प्रेजेंस बताने के लिए काफी है कि इस बार वो रोमांस नहीं दुश्मनों का खात्मा करने आई है। आलिया और बॉबी देओल के किरदार को लेकर टीजर ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया था, अल्फा के ट्रेलर रिलीज के साथ ही उन सारे कयासों और कंफ्यूजन पर विराम लगा दिया है। टीजर में आलिया और बॉबी देओल को बाप बेटी के रूप में दिखाया गया था, लेकिन ट्रेलर ने इस रिश्ते की सच्चाई उजागर कर दी है। ट्रेलर से साफ हो चुका है कि बॉबी का किरदार अपने दुश्मनों के खिलाफ आलिया का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सीता तो अब खुद लंका जलाने के लिए तैयार है।
7: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
6: ट्रेलर से ये भी साफ हो चुका है कि बॉबी देओल ही रियल विलेन है। बॉबी का किरदार एक बागी जासूस का है जो किसी भी कीमत पर भारत से बदला लेने पर आतुर है। ट्रेलर में बॉबी की मौजूदगी भले ही कम है, लेकिन उनका खौफ कहीं से भी कम दिखाई नहीं देता। फिल्म के टीजर में शर्वरी वाघ की गैर मौजूदगी को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठे थे, लेकिन ट्रेलर में शर्वरी को भरपूर स्क्रीन स्पेस देकर फैंस की नाराजगी दूर कर दी गई है।

0: करो तो बात कर लो।
1: आलिया के साथ एक्शन सीक्वेंस से लेकर इंटेंस एक्सप्रेशन तक शर्वरी ने साबित कर दिया है कि वो फिल्म की मजबूत कड़ी बनने वाली हैं। वहीं अनिल कपूर अल्फा में आलिया और शर्वरी का मार्गदर्शन करते नजर आते हैं। अल्फा का एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट है जिसे ट्रेलर के आखिर में दिखाया गया है। ट्रेलर में उस कैरेक्टर की सिर्फ आंखें दिखाई गई हैं, लेकिन ये हल्की सी झलक बताने के लिए काफी है कि वो ऋतिक रोशन हैं, जो आलिया और शर्वरी की जान की रक्षा करते दिखाई देंगे। अल्फा के ट्रेलर ने इस धमाकेदार एक्शन फिल्म की झलक दिखाकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। इंतजार अब 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
3: चलिए अब खबर बंटवारा। 1947 की देश के बंटवारे की थीम पर वैसे तो ढेर सारी फिल्में बन चुके हैं, लेकिन अब एक और फिल्म आ रही है। इस फिल्म में एक्शन के लिए मशहूर सनी देओल भी होंगे,
4: लेकिन अपनी पहली फिल्म गदर से अलग अंदाज में खास बात यह है कि सनी देओल करीब 30 साल बाद इस फिल्म में राजकुमार संतोषी के निर्देशन में काम करते दिखेंगे। फिल्म के किरदारों का कैरेक्टर पोस्टर अब रिलीज कर दिया गया है। आपको बताते हैं कि क्या खास है इस फिल्म में।

0: बंटवारे के दर्द को भावनाओं और संवेदनाओं के ताने बाने में बुनकर एक बार फिर पर्दे पर आने को तैयार हैं सनी देओल। आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म बंटवारा 1947 की चर्चा तो काफी दिनों से हो रही है, लेकिन अब फिल्म के किरदारों का फर्स्ट लुक सामने आने से फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई है। हाल ही में फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था और अब मेकर्स ने बंटवारा 1947 के किरदारों का पोस्टर भी जारी कर दिया है। पोस्टर्स के साथ ही फिल्म के कलाकारों और किरदारों से भी पर्दा उठ गया है। पोस्टर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर पहले गदर एक प्रेम कथा और फिर 3 साल पहले गदर 2 से गदर मचाने वाले एक्टर सनी देओल बंटवारा 1947 में भी एक दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं। सनी देओल ने बंटवारा 1947 में सिकंदर मिर्जा का रोल किया है, जो एक साहसी और दमदार शख्सियत हैं। पोस्टर और टीजर में सनी देओल को बहुत संजीदा शख्स के रूप में पेश किया गया है। सनी देओल देशभक्ति के जज्बे से भरपूर भावनात्मक किरदारों के लिए जाने जाते हैं। माना जा रहा है कि फिल्म बंटवारा 1947 में सनी देओल बंटवारे से जुड़ी थीम पर बनी अपनी पिछली फिल्मों के ऑन स्क्रीन किरदारों से काफी अलग नजर आ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सनी देओल का एक ऐसा लुक है जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा। हाल ही में जारी कैरेक्टर पोस्टर में उन्हें बहुत भावुक दिखाया गया है, जो उनके पारंपरिक केवल गुस्सैल एक्शन हीरो की छवि से अलग है। कैरेक्टर पोस्टर्स में मेकर्स ने इस फिल्म के बाकी कलाकारों और किरदारों से भी पर्दा उठा दिया है। खास बात यह भी है कि फिल्म बंटवारा 1947 में सनी देओल के बेटे करण देओल भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। करण देओल इस फिल्म में जावेद मिर्जा के किरदार में नजर आएंगे। वहीं मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी दुर्गावती देवी माई के किरदार में नजर आएंगी, तो प्रीति जिंटा हमीदा बेगम के रोल में नजर आएंगी। एक्टर अली फजल हबीब अनवर के रूप में और अभिमन्यु सिंह याकूब खान के रोल में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। मेकर्स ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें फिल्म के कलाकारों को दिए गए रोल की साफ झलक नजर आती है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म उन लोगों की अनूठी दास्तां बयां करने वाली है जिन्होंने बंटवारे के कठिन दौर में हार नहीं मानी और अपने साहस और धैर्य की मिसाल कायम की। फिल्म के पोस्टर के बैकग्राउंड में विभाजन की त्रासदी, धुंधलापन और बिखरती हुई दुनिया के रंग इस्तेमाल किए गए हैं, जो दर्शकों को सीधे 1947 के उस दर्दनाक इतिहास से जोड़ते हैं। इस फिल्म से जुड़ी ऐसी कई खास बातें हैं जो इसे कामयाबी के पायदान पर आगे ला सकती हैं। ये फिल्म जाने माने एक्टर प्रोड्यूसर आमिर खान के आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है। फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने किया है और वहीं इसके स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। ये फिल्म मशहूर लेखक असगर वजाहत के एक नाटक पर आधारित है। इसका संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है, वहीं गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं, जबकि सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे एक्टर इस फिल्म में मौजूद हैं। कुल मिलाकर फिल्म बंटवारा 1947 बॉलीवुड के दिग्गजों की ओर से पेश किया गया एक ऐसा पैकेज है जिसमें इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन नाम एक साथ आ रहे हैं। लिहाजा ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड का ऐसा क्रिएटिव कॉम्बो है जिसमें आमिर खान का दिमाग, संतोषी का विजन, सनी देओल का जज्बा, रहमान का संगीत और जावेद अख्तर की कलम मिलकर हिंदी सिनेमा के लिए एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर तैयार कर रहे हैं। ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और देखिए, हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए मुंबई आने वाले हैं। उनकी फिल्म 2 ओडिसी की पूरी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है।
2: ये फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले क्रिस्टोफर नोलन ने दुनिया के 4 शहरों में प्रीमियर करने का फैसला भी किया है। खास बात यह है कि इन 4 शहरों में मुंबई का नाम भी शामिल है।
1: और देखिए, क्रिस्टोफर नोलन पहली बार अपनी फिल्म का प्रीमियर भारत में कर रहे हैं, यही एक्साइटिंग है।
3: मुंबई में सजने जा रहा है हॉलीवुड के दिग्गज सितारों का मेला। भारत में पहली बार होगा क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी का प्रीमियर। हॉलीवुड को बैटमैन सीरीज, इंटरस्टेलर, ओपनहाइमर और मोमेंटो जैसी यादगार फिल्में देने वाले मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन बहुत जल्द मुंबई आने वाले हैं। क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म ओडिसी का पूरी दुनिया के दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म 17 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। जैसे जैसे रिलीज की तारीख करीब आ रही है, फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल सभी की नजरें द ओडिसी के ग्लोबल प्रीमियर पर टिकी हैं। इस प्रीमियर से जुड़ी एक खबर ने हिंदुस्तान के दर्शकों का जोश और बढ़ा दिया। क्रिस्टोफर नॉलन ने पहली बार अपनी नई फिल्म का प्रीमियर भारत में भी करने का फैसला किया है। इस प्रीमियर के लिए उन्होंने माया नगरी मुंबई को चुना है। खास बात यह है कि इस ग्लोबल प्रीमियर के लिए खुद क्रिस्टोफर नॉलन मुंबई आने वाले हैं। फिल्म की पहली स्क्रीनिंग में उनके साथ मुख्य अभिनेता मैट डेमन और टॉम हॉलैंड भी मौजूद रहेंगे। ये शानदार इवेंट मुंबई के लोअर परेल में फिनिक्स पैलेडियम के PVR आइकॉन IMAX में आयोजित किया जाएगा। प्रीमियर की तारीखों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये प्रीमियर जुलाई की शुरुआत में हो सकता है। क्रिस्टोफर नॉलन ने द ओडिसी के प्रीमियर के लिए दुनिया के 4 शहरों को ही चुना है। मुंबई के साथ ही प्रीमियर लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में भी किया जाएगा। ऑस्कर जीतने के बाद क्रिस्टोफर नॉलन पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर पर निकल रहे हैं। नॉलन के द ओडिसी प्राचीन यूनानी कवि होमर के मशहूर महाकाव्य पर आधारित एक मेगा बजट एक्शन एपिक फिल्म है। इस फिल्म की भव्यता, स्टार कास्ट और फिल्म मेकिंग की आधुनिक तकनीक की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। फिल्म में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड के साथ एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिसन और ज़ेंडाया मुख्य किरदार निभा रहे हैं। यह हॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसे पूरी तरह 70mm IMAX कैमरों से शूट किया गया है। फिल्म का बजट करीब 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2000 करोड़ से ज्यादा है। इसकी शूटिंग ग्रीस, इटली, आइसलैंड और स्कॉटलैंड में हुई है। क्रिस्टोफर नॉलन की हर फिल्म अपने आप में बड़े पर्दे के जादू को समेटे हुए होती है। साल 2024 में नॉलन ने ब्लॉकबस्टर फिल्म ओपनहाइमर के लिए 2 एकेडमी अवार्ड जीते थे। उनकी फिल्मों की कहानी और निर्देशन की सिनेमा के क्रिटिक्स भी जमकर तारीफ करते हैं। यही वजह है कि द ओडिसी से भी दर्शकों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। भारत में भी दर्शकों को द ओडिसी के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है और ऐसे में प्रीमियर के लिए मुंबई को चुनकर क्रिस्टोफर नॉलन ने भारतीय सिनेमा प्रेमियों के उत्साह को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां तक पहुंचा मॉनसून और कब मिलेगी बाकी राज्यों को राहत।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
6: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
7: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
8: Right field, and it will...
7: From the first pitch of the season to the stretch run.
8: And that's the ball game.
7: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: ये देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज़ टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
1: है। सेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज, इसी महीने शुरू हो सकती है UPI और ATM के जरिए PF अकाउंट से सीधे पैसे निकालने की सुविधा। विश्व शांति की दिशा में शानदार खबर, ईरान अमेरिका के बीच MOU पर साइन, शांति समझौते पर ट्रंप ने दस्तखत किए, ईरानी राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। कश्मीर में गांधरबल के खीर भवानी मंदिर में CM उमर अब्दुल्ला ने की पूजा, मेले की तैयारियों का जायजा लिया, कहा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा होगी सुनिश्चित। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की तैयारियां तेज, 22 जून को मंदिर परिसर में लगेगा मेला, अभी से पहुंचने लगे श्रद्धालु। देश भर में तेजी से बढ़ रहा मॉनसून, दिल्ली समेत 15 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। गुजरात में बारिश की जोरदार एंट्री, 24 घंटों में कई इलाकों में हुई तेज बरसात, बालासिनोर में 5.75 इंच बरसा पानी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। देखिए देश के कई हिस्सों में अभी तक मॉनसून नहीं पहुंचा, लेकिन प्री मॉनसून एक्टिविटी के चलते लोगों को राहत मिल गई है, बादल बरस रहे हैं, तापमान में कमी दर्ज की गई है।
4: और आज एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि पहाड़ी राज्यों से लेकर दिल्ली NCR में बादल बरसेंगे, बारिश आएगी। हालांकि मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन जल्द ही मॉनसून को रफ्तार मिलने वाली है।

0: भले ही मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई हो, लेकिन प्री मॉनसून एक्टिविटी से देश के कई इलाकों में गर्मी से राहत मिल रही है। उत्तर पश्चिम भारत हो, उत्तर भारतीय राज्य हो या पहाड़ी राज्य, हर जगह बारिश और तेज हवाएं राहत का पैगाम लेकर पहुंच रही हैं। इनमें खासा योगदान पश्चिमी विक्षोभ का भी है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे यहां बारिश की संभावना बन रही है। अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है और पश्चिमी राजस्थान में 19 से 21 जून के बीच बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के ऊपर कई चक्रवातीय दशाएं सक्रिय हैं, जो मौसम को प्रभावित कर रहे हैं, और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्री मॉनसून बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक मौसम सुहाना बना हुआ है। हालांकि कभी तेज हवाएं चलती हैं और कभी बारिश हो जाती है, वहीं कुछ घंटों में धूप भी निकल आती है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पिछले दो दिनों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम का यह बदलाव राहत लेकर आया है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन समूचे उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मॉनसून का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मॉनसून 13 दिन में 19 राज्यों तक ही पहुंच पाया है।
1: स्पष्ट किया गया था कि इस बार मानसून कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि जो लार्ज स्केल जो क्लाइमेट ड्राइवर्स हैं, उनका जो कंडीशंस है वो इस बार एक अच्छे मानसून के लिए फेवरेबल नहीं है। वहीं सेकंड स्टेज जो फोरकास्ट दिया गया अपडेटेड जस्ट जून मई एंड में, तो इसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश पूरे देश भर में होने की संभावना है, और उसी के मुताबिक भी अब तक यदि देखें तो सामान्य से कम बारिश इंडिया भर में भी रिपोर्ट हुई है, और मानसून फ्लो जो है वो सामान्य से यूँ कह सकते हैं कि वीक मानसून फ्लो है। तो ऐसे में जैसे ही कोई वेदर सिस्टम्स बंगाल की खाड़ी में बनेगा तो मानसून का जो प्रोग्रेस पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की तरफ होगा, तो ऐसे में राजस्थान का जो है वो नंबर यूं कह सकते हैं कि लगभग इंडिया के ज्यादातर एरियाज को कवर करने के बाद सामान्यतः राजस्थान में पहुंचता है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि सेंट्रल इंडिया के काफी एरिया बाकी हैं।
0: मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बिहार के अधिकतर इलाकों तक पहुँच बना चुकी है, लेकिन पश्चिमी शाखा तो जैसे थम सी गई है। ऊपर से सूखी पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से बारिश में देरी हो रही है। साथ ही अलनीनो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी मॉनसून की चाल पर दिखने लगा है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की, तो जीएनटीबी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है,
3: ताकि हम आपके भेजे गए उन तमाम वीडियोस को जीएनटी पर दिखाएं, उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जाने, वहां सैर सपाटा करें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बिहार के रोहतास लिए चलते हैं, जहां कैमूर की पहाड़ियों के बीच गुप्त धाम वाटरफॉल आपका स्वागत करने को तैयार है।
4: ऊंची नीची घुमावदार पथरीले पहाड़, गुफा के भीतर जलते हुए दिए और कुदरती सुंदरता में सिमटी अलौकिक आस्था। अगर आप सोचते हैं कि बिहार सिर्फ इतिहास और मैदानों का प्रदेश है, तो कैमूर की इन वादियों को देखिए। घने जंगलों के बीच गूंजती झरने की आवाज, चारों तरफ फैली हरियाली और एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जिसके भीतर खुद महादेव विराजमान है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास में मौजूद गुप्त धाम की है, जिसे गुप्तेश्वर धाम भी कहा जाता है। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां प्रकृति का रोमांच भी है और महादेव की भक्ति का सुकून भी है। लेकिन इस पवित्र गुप्त धाम की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप इस शीतल कुंड वाटरफॉल का दीदार न कर ले। पहाड़ों की ऊंचाई से गिरता ये वाटरफॉल इतना खूबसूरत है कि इसे देखकर आपकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। इस झरने का पानी गर्मियों में भी बर्फ जैसा ठंडा रहता है, इसीलिए इसे शीतल कुंड कहा जाता है। रास्ते में पड़ने वाली सुगवा नदी और पहाड़ों के बीच बहते छोटे छोटे झरने इस पूरे ट्रैक को किसी जन्नत जैसा बना देते हैं। रहस्यमय गुफा के लगभग 360 फीट अंदर जाने पर कुदरती तौर पर बना एक स्वयंभू शिवलिंग दिखाई देता है, जिस पर सदियों से प्रकृति खुद पानी की बूंदों से अभिषेक कर रही है। प्रकृति और भक्ति के इस अद्भुत संगम तक पहुंचना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। कई किलोमीटर पहाड़ी रास्ता, इसके बाद घने जंगलों से होते हुए छोटे छोटे कई झरनों को पार करते हुए लगभग कुछ ही किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है, जो ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी एक यादगार लम्हा है। सावन के महीने में और महाशिवरात्रि पर तो यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है, मानो पूरा कैमूर पर्वत बोल बम के नारों से गूंज रहा हो। लोग गंगा जल लेकर बाबा गुप्तेश्वर नाथ पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप भी प्रकृति की गोद में सुकून के दो पल बिताना चाहते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो बिहार का ये गुप्त धाम आपका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए लंच टाइम।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: What's up everybody, it's Bretzky, and America is turning 250, and I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American owned social casino, SpinQuest.com, with all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack. There's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
7: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
8: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
9: Jack, you're killing me.
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
10: भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे
14: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: सड़क पार करने के लिए अब ट्रैफिक के बीच जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद में पहली बार ऐसा ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है जिसे पैदल यात्री खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए बस एक बटन दबाना होगा,
16: जिसके लिए गाड़ियों के लिए रेड लाइट हो जाएगी और यात्रियों को सड़क पार करने के लिए 25 सेकंड का वक्त भी दिया जाएगा।
17: अहमदाबाद में पैदल यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। सीजी रोड पर पहली बार ऐसा पेलिकन सिग्नल लगाया गया है जिससे लोग खुद बटन दबाकर ट्रैफिक रोक सकते हैं। बस एक बटन दबाइए, गाड़ियों के लिए रेड लाइट हो जाएगी और आपको सड़क पार करने के लिए 25 सेकंड का समय मिल जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट AMC यानी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरू किया है। मकसद यही कि पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाले। इस परियोजना पर करीब 6 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।
18: अहमदाबाद में पहली बार पेडिस्ट्रियन के लिए पेलिकन सिग्नल सिस्टम लगाया गया है, जिसका उद्देश्य है जो भी सड़क को क्रॉस करने वाले लोग हैं, जब वो क्रॉस करें तब एक बटन पुश करें और उस बटन पुश करने के साथ ही सिग्नल रेड हो जाए ताकि वो आसानी से सड़क क्रॉस कर सकें। और ये जो सिग्नल है वो लगाया गया है अहमदाबाद के सीजी रोड पर, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में इस जो सिग्नल के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। आप
17: हालांकि यूरोप, अमेरिका या सिंगापुर जैसे देशों में ये आम है, लेकिन अहमदाबाद के लिए ये नई पहल है। ऐसे में आप समझिए कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए सड़क के दोनों ओर एक एक पेलिकन सिग्नल बॉक्स लगाया गया है। जब किसी पैदल यात्री को सड़क पार करनी होती है तो उसे सिर्फ बॉक्स पर लगा बटन दबाना होता है। बटन दबाने के बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वेट मैसेज वॉक में बदल जाता है। इसके साथ ही सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन से रेड हो जाता है। इसके बाद पैदल यात्री को सड़क पार करने के लिए करीब 25 सेकंड का समय मिलता है। मतलब अब सड़क पार करने के लिए जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। हालांकि फिलहाल ये ट्रायल है, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो इसे बाकी सड़कों पर भी लगाया जाएगा।
18: बटन सिस्टम जो है वो लगाया गया है, अगर ये यहाँ पे सफल होता है तो आने वाले दिनों में अहमदाबाद के अलग अलग जो पेडिस्ट्रियन जो हैं उनके लिए शहर के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही पुश बटन सिग्नल लगाए जाएंगे। और विदेशों में जो सिस्टम हम देखते हैं कि लोग जब सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो इसी तरह से पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, वही सिस्टम गुजरात और खास करके अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी।
16: देखिए, करीब 3.5 महीने के संघर्ष और टकराव के दौर के बीच में मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया के लिए राहत का पैगाम आया है। ईरान और अमेरिका के बहुप्रतीक्षित पीस डील पर फाइनली साइन हो गए हैं
2: और इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान की ओर से कर दी गई है। सबसे अच्छी खबर यह है कि भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 5 बजे से यह समझौता लागू भी हो गया है।
19: मिडिल ईस्ट पर करीब 3.5 महीने से मडरा रहे संकट के बादल छटने लगे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के क्षितिज पर शांति का सवेरा प्रस्फुटित हो चुका है। गुड न्यूज ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खत्म करने वाले एमओयू पर दस्तखत हो गए हैं। ट्रंप ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो के साथ बैठक के दौरान पेरिस के वर्साय पैलेस में पीस डील पर दस्तखत होने की पुष्टि कर दी है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीस डील पर साइन कर दिए हैं। भारतीय समय के अनुसार गुरुवार सुबह 5 बजे से बहुप्रतीक्षित शांति समझौता लागू भी हो गया है। इस ऐतिहासिक एमओयू के तहत अमेरिका अब ईरान पर हमले नहीं करेगा, साथ ही लेबनान में भी युद्ध विराम लागू होगा। पूरी दुनिया के लिए राहत की बात यह है कि होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने पर भी सहमति बन गई है। आपको बता दें कि शांति समझौते पर 19 जून यानी शुक्रवार को जिनेवा के पास लूसर्न शहर में हस्ताक्षर होने थे, पर तय समय से एक दिन पहले ही फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में डील फाइनल हो गई। अब ईरान के यूरेनियम भंडार, परमाणु कार्यक्रम और निरीक्षण व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अमेरिका और ईरान अगले 60 दिनों में रूपरेखा तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
16: और चलिए, हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
17: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
20: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
21: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
22: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
23: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
15: न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
24: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
25: गुड न्यूज टुडे।
26: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
24: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
25: गुड न्यूज टुडे।
26: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
13: करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज, इसी महीने शुरू हो सकती है यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ अकाउंट से सीधे पैसे निकालने की सुविधा। मध्य प्रदेश के महू में गरुणास्त्र का सफल परीक्षण, तेज फायरिंग की क्षमता से लैस जीपीएस और लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल करके लगाया सटीक निशाना। बिहार के गया के पत्थरकट्टी गांव में बनी मूर्तियों को जीआई टैग से मिली वैश्विक पहचान, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर, विदेशों में भी जाएंगी यहां बनी प्रतिमाएं। कश्मीर में गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की पूजा अर्चना, मेले की तैयारियों का जायजा लिया, कहा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की तैयारियां तेज, 22 जून को मंदिर परिसर में लगेगा मेला, अभी से पहुंचने लगे श्रद्धालु। विश्व शांति की दिशा में शानदार खबर, ईरान अमेरिका के बीच एमओयू पर साइन, शांति समझौते पर ट्रंप ने किए दस्तखत, ईरानी राष्ट्रपति ने भी लगाई मोहर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लो।
1: जम्मू कश्मीर खीर भवानी मंदिर में लगने वाले भव्य मेले को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां, कल होगा उत्सव का आगाज। खीर भवानी मेले की तैयारियां जबरदस्त तरीके से जारी है, मंदिर पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। माँ से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विशेष प्रार्थना की, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और सद्भाव के लिए आशीर्वाद। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खीर भवानी मेले की तैयारियों का जायजा लिया, श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर सुरक्षा सुनिश्चित की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश। पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है चारधाम यात्रा, पवित्र दर्शन का आंकड़ा पहुंचा 36 लाख के पार, सबसे ज्यादा 12 लाख का आंकड़ा केदारनाथ में। देवभूमि पूरी आस्था के साथ जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। इस बार पुरुषोत्तम मास के चलते बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु, यात्रा मार्ग पर लंबी कतारें। पवित्र देवताल भी श्रद्धालुओं का सैलाब, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर दूर है, 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, भारत चीन सीमा से सटा है यह देवताल। रामन के चंद्रकूट स्थित यात्री निवास में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं शुरू, सुरक्षा ठहरने और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को लेकर मजबूत इंतजाम। यात्रा मार्ग पर आने वाली तीर्थयात्रियों के लिए आवास, भोजन और मेडिकल सुविधाओं का किया जा रहा है अपग्रेड, प्रशासन ने व्यवस्थाओं को चुस्त किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को देखते हुए चंद्रकूट यात्री निवास पर सुरक्षा बलों की तैनाती और भीड़ प्रबंधन की बनाई जा रही है योजना, यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने पर जोर। जम्मू कश्मीर के संत निरंकारी 14वें वनडे ग्रैंड सत्संग के साइडलाइन में बड़ा सेवा कर देखने के लिए मिला। पट्टी टॉप में लगे इस शिविर में 128 स्वयं सेवकों ने स्वेच्छा से रक्तदान करके मानवता और समाज कल्याण का संदेश दिया। ओडिशा के बारिपदा में 1,50,00,000 साल पुरानी समुद्री जीवों की जीवाश्म मिले, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इलाका कभी उथले समुद्र का हिस्सा था। जीवाश्मों में शार्क के दांत, मछलियों के अवशेष शामिल है, इससे करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवन की दुनिया की जानकारी मिली। बुधाबलंगा नदी के किनारे फैले बारीपदा फॉसिल बैट्स ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वी भारत का यह क्षेत्र कभी खुले समुद्र से जुड़ा हुआ था, जीवाश्म उसी प्राचीन समुद्री दुनिया के संकेत दे रहा है। इंटच ने ओडिशा सरकार से यहां फॉसिल पार्क बनाने की मांग की है, दुर्लभ जीवाश्मों का संरक्षण और वैज्ञानिक पर्यटन के लिए बढ़ावा देना इसका मकसद है। गया के पत्थरकट्टी गांव की काले पत्थर की मूर्तियों को भारत सरकार ने दिया जीआई टैग, इस उपलब्धि से गांव के शिल्पकारों में खुशी की लहर। पत्थरकट्टी गांव में पीढ़ियों से पत्थर की मूर्तियां बनाने का काम जारी है, यहां के कारीगरों ने विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। जीआई टैग से पत्थरकट्टी की मूर्तियों की मांग देश विदेश में बढ़ेगी। स्थानीय शिल्पकारों की अब वैश्विक पहचान मिलने की इसको उम्मीद है। लखनऊ का अलीगंज हनुमान मंदिर गंगा जमुना तहजीब की मना जाता है मिसाल। मान्यता है कि इसकी नींव अवध के एक मुस्लिम बेगम ने संतान प्राप्ति की खुशी में रखी थी। कहा जाता है कि बेगम औलिया को सपने में देखते हुए हनुमान जी के दर्शन उनको हुए थे। हरियाणा के संदीप आर्य जांगड़ा के नाम एक अनोखा कीर्तिमान। लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व योग दिवस से पहले संदीप ने दुनिया में रोशन किया देश का नाम। संदीप के नाम अब तक 6 विश्व रिकॉर्ड्स। संदीप ने गुजरात के मोढ़ेरा में लगातार 37 घंटे और 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। पिछले 15 साल के अभ्यास से बनाया कीर्तिमान। संदीप आर्य जांगड़ा की इस बेमिसाल उपलब्धि को अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिली जगह। 20,000 सूर्य नमस्कार करने से पहले संदीप ने लगातार 15,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया था रिकॉर्ड। संदीप ने पहली बार 5,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया था रिकॉर्ड। सूरत के सिर्फ 1 साल 8 महीने के मासूम करण मथुन भाई परमार की याददाश्त बनी चर्चा का मुख्य विषय। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम हुआ दर्ज। छोटी सी उम्र में करण ने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों 20 जंगली जानवरों 10 पालतू जानवरों 20 पक्षियों 18 फलों 20 सब्जियों की पहचान की। नेदरलैंड्स के रोटरडैम में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का शानदार खेल। FIH प्रो लीग में भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। मैच के 7वें मिनट में मनदीप सिंह ने किया गोल। जर्मनी के खिलाफ मैच में अपना 413वां मैच खेल रहे स्टार मिडफील्डर के नाम जुड़ गई नई उपलब्धि। देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए मनप्रीत। महाराष्ट्र पुणे और साई भक्तों के लिए नई रेल कनेक्टिविटी की सौगात। पुणे से साई नगर के बीच एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ हुआ। रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। बंगाल पुलिस को आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में समझौता। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दस्तखत। महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर मथुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी शामिल हुए। कोयला खनन से जुड़े कर्मचारियों की बढ़ेगी सुरक्षा। हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट सिस्टम को डिजिटल तकनीक के साथ अपग्रेड करने में जुटा है IIT ISM।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
4: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
5: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
4: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
6: धीमे धीमे पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
10: गुड न्यूज टुडे
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
10: गुड न्यूज टुडे
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
2: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
0: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज इसी महीने शुरू हो सकती है, UPI और ATM के जरिए PF अकाउंट से सीधे पैसे निकालने की सुविधा। मध्य प्रदेश के महू में गरुणास्त्र का सफल परीक्षण, तेज फायरिंग की क्षमता से लैस, GPS और लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल करके लगा सटीक निशाना। बिहार के गया के पत्थरकट्टी गांव में बनी मूर्तियों को GI टैग से मिली वैश्विक पहचान, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर, विदेशों में भी जाएंगे पहचान बनाएंगी अपनी। कश्मीर के गांधरबल के खीर भवानी मंदिर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूजा अर्चना की, मेले की तैयारियों का जायजा लिया, कहा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा की होगी सुनिश्चित। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की तैयारियां तेज, 22 जून को मंदिर परिसर में लगेगा मेला, अभी से पहुंचने लगे श्रद्धालु। फिल्म वेलकम टू द जंगल की रिलीज से पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में दिखे एक्टर अक्षय कुमार, माथा टेक कर आशीर्वाद लिया, फिल्म की सफलता की कामना की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटिया का ये नया एपिसोड, जहाँ हम बात करने वाले हैं हेयर केयर की। शेयर करेंगे आपके साथ कुछ हेयर केयर टिप्स। अब देखिए, वेल ग्रूम्ड लुक के लिए जितनी इम्पोर्टेंट है गुड स्किन, उतने ही इम्पोर्टेंट है वेल ग्रूम्ड हेयर भी। तो आप भी रखिए अपने बालों का खास ख्याल और हम यहाँ रखेंगे आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
5: तुझ से मेरा जीना मरना।
6: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए जगधात्री और शिवाय का एक चुटकी सिंदूर ड्रामा।

शेष और सूरज की शुभ पूजा में लगेगा अपशगुन। ईशान के कॉन्सर्ट में पहुंचेगी नयनिका। दिया देगी खास परफॉर्मेंस। किडनैप होगी राध्या, क्या प्रथम बनेगा रक्षक। होगा रूही और नहर का हिट एंड मिस, मिलकर भी मिल ना पाएंगे ये दोनों। और नागिन के आर्य मनसंग करेंगे फिटनेस वाला डे आउट, जानेंगे उनके बारे में कई सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: आज तो ईशा भी शेयर कर रही है हमारे साथ एक अमेजिंग हेयर केयर टिप। ये कह रही है कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो आप अपने बालों को ब्रश करें। हम क्या करते हैं, ब्रश सिर्फ करते हैं जब हम बाहर जा रहे होते हैं या एक बार नहाने के बाद। लेकिन देखिए, ये जो ब्रशिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो प्लीज़ एक अच्छे से ब्रश से अपने बालों को ब्रश करें अच्छी तरह, कम से कम दिन में एक बार, 20 times, 30 times, 40 times। और अगर आपके पास वो वुडन ब्रश होना, वो तो कर देगा कमाल। ये तो एक्चुअली एक अमेजिंग टिप है। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको सूरज और ईशा के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज, क्योंकि यहाँ भी हो रहा है आप सबके लिए कमाल।
1: सुबह सुबह सुबह सुबह तेरी यादें,
2: सुबह सुबह ईशा और सूरज की खास पूजा,
1: सुबह सुबह दिन बना दे तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके।
2: जुड़ रहा है दोनों का लव कनेक्शन,
1: है गिरता चन चन के, चन चन के।
2: पूजा के शगुन में हुआ अपशगुन,
1: तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ।
2: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा अब जल्द ही सूरज को प्रपोज करने वाली है। ऐसे में ये सभी पहुँचे हैं गांव में और इस गांव में हो रही है खास पूजा, जिसमें ईशा और सूरज बैठे हैं। भाई आज तो ईशा सजी धजी है, बालों में उन्होंने सजाया है गजरा, घूंघट ओढ़कर वो पहुंच गई पूजा में शामिल होने के लिए। और देखिए कैसे ये दोनों कर रहे हैं पूजा और हो रहा है हवन, सभी लोग इस पूजा में शामिल हैं।

0: ईशा और सूरज मिलकर साथ साथ सारी रस्में निभा रहे हैं और जब बारी आई ये नारियल फोड़ने की तो यहाँ पर पूजा के शगुन में अपशगुन हो गया। देखिए कैसे नारियल तो फूटा लेकिन नारियल का एक टुकड़ा हवन में जा गिरा जिससे पंडित जी ने कहा कि हो गया है बड़ा अपशगुन।
1: ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया।
2: ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी? ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं मानता ये सब। पंडित जी पूजा पूरी हो गई है।
0: हालांकि सूरज इन अपशगुन की बातों को नहीं मानता है लेकिन फिर भी पंडित जी ईशा को आगाह कर रहे हैं कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है।
1: बेटा तुम्हारे पति अपशगुन में यकीन नहीं करते पर ये बताना मेरा कर्तव्य है। तुम्हें पता है तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुम्हारे पति के नक्षत्रों की गणना के अनुसार उसका गुस्सा ही उसके विध्वंस का कारण बनेगा। जिस प्रकार से सूर्य के रौद्र रूप को सिर्फ शक्ति ही रोक सकती है ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने पति की ज्वाला को निगलना होगा। उसे विनाश के मार्ग में जाने से रोकने के लिए तुम्हें उसके साथ नहीं बल्कि उसके विरुद्ध खड़ा होना होगा।
0: वहीं दूसरी तरफ गांव में भी हो रहा है बवाल जहां सूरज के ब्रह्मचर्य पर उठ रहे हैं सवाल लेकिन यहाँ भी शुरू है खट्टी मीठी नोकझोंक ईशा और सूरज की।
3: कहने को तो ब्रह्मचर्य है पर
2: लेकिन अब तो मैं आईएएस बन गया हूँ ना, तो मैं अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ सकता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मैं ईशा जी के आसपास इसलिए हूँ क्योंकि ईशा जी को कुछ कहना है। कोई बात नहीं है ईशा जी, आप सबके सामने कह सकती है, सब अपने ही है। और कुछ कहना था ना?
4: ये है कि आपने देख ही लिया होगा कि अब हमारे शो में कुछ अच्छे मोमेंट्स आए हैं। ईशा जो है वो सूरज के पास आ गई है और अब ये है कि एक्सेप्ट कर लेंगे क्या, मिल जाएंगे क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके पास होंगे और हम भी उसी कोशिश में गांव अचानक से हम दोनों को गांव लेकर आए हैं और गांव में उनको मिलाने की जो एक कोशिश है उसमें हमें पंडित जी से हमारे घर के जो बुआ जी हैं उनसे पता लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक करना चाहिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए तो हम पंडित को इन्वॉल्व करते हैं और पंडित पूजा करवा रहा है ताकि उन दोनों का मिलन हो जाए, उनके बीच की जो आपदा है वो ख़त्म हो जाए। और बस वही है, हम जो सीन कर रहे थे उस सीन में वही दिखाया कि कोशिश कर रहे हैं बट शो है, अड़चन तो आएगी, बिना अड़चन के तो शो आगे चलेगा नहीं, तो कुछ अड़चनें आती हैं और हम फिर भी आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे और कुछ खट्टे मीठे मोमेंट्स के साथ में।
0: तो भाई अब अपशगुन तो आ गया है, देखना होगा कि क्या फिर एक बार ईशा और सूरज के मिलन पर ब्रेक लगता है। मुंबई से रोक्शन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: आप लेकर चल रहे हैं हम आप सबको आपकी फेवरेट राधा के पास। जी हाँ, उनके शो मन अति सुंदर के सेट पर। वैसे राधा भी लेकर आई हैं हमारे लिए एक सिंपल हेयर केयर टिप। ये तो कह रही हैं कि बैक कोमिंग मतलब अपने बालों को इस तरह पीछे से आगे कोम करना, ऐसे अगर आप इसे सर नीचे लटका सकते हैं और फिर अपने बालों को कोम कर सकते हैं तो ये तो है एक अमेजिंग ट्रिप। हेयर जी हाँ होंगे हेल्दी बाउंसी एंड ब्लड सर्कुलेशन होगा सुपर, ये भी जरूर ट्राई कीजिएगा। एक्चुअली मैंने कई सारे योग टीचर्स को ये टिप शेयर करते हुए देखा है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मन अति सुंदर के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
0: खतरे में राध्या की जान, महक का षड्यंत्र, सर्वप्रथम बनेगा रक्षक।

एप्पल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर किडनैप हो चुकी है राध्या और उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतन महक ही है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रथम को महक पर शक हो गया है, तभी तो वो कर रहा है उसका पीछा और महक भी अपना चेहरा छुपाकर उस जगह जा रही है जहां उसने राध्या को किडनैप कर रखा है।

0: बेवकूफों, कहा था ना कि इसे होश में रखना। कि इसमें आए हमारे कल के प्लान का क्या होगा?
1: कैसे लाए उसमें?
0: बस बस, कहानी नहीं सुनना है मुझे। तुम्हें जो कुछ करना पड़े वो कर, लेकिन इस लड़की को कल अब होश में लेकर आ। ये भी होश रहेगी तो कल के प्लान का क्या होगा?
2: में देखिए आखिरकार प्रथम उस जगह पहुंच ही गया जहां पर महक ने राध्या को बांध कर रखा है और साथ है गुंडे भी। ऐसे में राध्या बेहोश है और महक उसे जगाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ अपने साथी गुंडों को भी डांट लगा रही है।
0: ये पानी छिड़को इसके। उठाओ इसे।

0: लड़की को छुपाने के लिए यही जगह मिली थी। क्या इतने सारे कॉकरोचेज हैं, क्यों हैं? कोई अपना काम कैसे करेगा?
1: में अब महक ने एक खतरनाक षड्यंत्र रचा है। वो राध्या को लगा रही है ये बॉम्ब वाली जैकेट। तो क्या है महक के इरादे? क्योंकि प्रथम तो यहाँ पहुँचा है लेकिन छुपा हुआ है। अब देखना होगा कि कैसे प्रथम राध्या को बचाता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: जब भी गुजरे पास से वो तो अपनी जुल्फों को लहरा देती है, वो तो अपनी खुशबू हवा में बिखरा देती है।
3: आहा, कुछ ऐसा ही है यहाँ पर नाहर के दिल का हाल। लेकिन क्या हो रहा है नाहर और रूही की जिंदगी में आज? क्या आ रही है यहाँ पर कोई गुड न्यूज, या कहानी में फिर से आया है कोई नया ट्विस्ट जो लेकर आ रहा है कहानी में ड्रामा? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन्स मन सुंदर के सेट पर।

0: और नाहर का हिट एंड मिस।
1: कहना सकती हूँ
0: मिलकर भी मिल ना सके रूही नाहर।
1: ना सकती हूँ ना चोर से।
0: शुरू हुआ दोनों की किस्मत का खेल।
1: करना है तुझको प्यार।
0: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रूही उसी जगह आई है जहां पर नाहर भी मौजूद है। ऐसे में देखिए किस्मत कनेक्शन जुड़ते जुड़ते रह गया। रूही तो अब सुहानी बन चुकी है और ऐसे में वो उसी मंदिर में पहुंची है जहां पहले से ही नाहर और दादी मौजूद है। लेकिन देखिए दोनों आसपास होकर भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है जिससे इनका आमना सामना नहीं हो पा रहा है।

वहीं दूसरी तरफ मंदिर में पूजा करने के लिए मिष्टी भी पहुंची है, जहां उसकी मुलाकात नाहर से होती है। इन दोनों की बातचीत देखकर दादी सोचती है कि कहीं न कहीं मिष्टी की शादी नाहर से हो जाए, और लगता है मिष्टी भी नाहर को पसंद करने लगी है।

0: seni.
1: Abi yalan. Ya bir sek.
2: ऐसे में देखिए कैसे दादी मिष्टी से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही है ताकि बात आगे बढ़ पाए और रिश्ता जुड़ पाए। तो भाई अब देखना होगा कि क्या मिष्टी और नाहर का रिश्ता जुड़ता है या फिर एक बार रूही और नाहर का आमना सामना हो जाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अरे आपके बाल हो गए हैं ड्राई और आसानी से टूट रहे हैं, ऐसे में शेयर करेंगे हम आपके साथ एक अमेजिंग टिप जो एक्चुअली घर का ही नुस्खा है। अब आप में से जो लोग अंडे खाते हैं तो एग योक्स, जी हाँ एग योक्स को एक साथ बीट कर उन्हें लगाएं अपने बालों में, कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर रिंस ऑफ कर दें। अगर एग की स्मेल पसंद नहीं है तो उसमें ऐड कर सकते हैं आप कुछ ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। इससे आपके बाल भी हो जाएंगे मजबूत और फॉलिकल्स को भी मिलेगा नरिशमेंट। देखा हम किस तरह रखते हैं आपका ख्याल और उसी तरह रखते हैं एंटरटेनमेंट का ख्याल, तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये अगला अपडेट आपके फेवरेट रियलिटी शो से जिसका नाम है तुम होना।
4: एक्टर बनने के लिए मेरठ से मुंबई आए, उसके बाद उन्होंने तकरीबन हर रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि मास्टर शेफ की किचन तक पहुँच गई। और यही नहीं, उसके बाद इन्होंने मुंबई में अपना ही कैफे शुरू कर दिया। मेरठ से आई हमारी सुपरस्टार अर्चना गौतम जी के लिए। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आपकी बेटी ज़्यादा मुझे आपको देख कर बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर भी देखते रहते हैं। आप आई हमारे शो पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खाना कैसा बनाती हूँ?
5: मैं ही मदद करती हूँ, खाना फैला देती है तो संगवाता कौन है, बस मैं कहती हूँ हाथ जोड़ती हूँ, तू किचन में मत आ।
6: मम्मी ऐसे मत बोलो, पता चला मेरी सास इसमें से कोई देख रही हो।
4: अब आपको तस्वीर देख के सर उनको पता ना कि तस्वीर में क्या देखा।
6: सुनो मेरा फेवरेट है, तू सुबह के टाइम खाती है, शाम के टाइम खाती है,
4: मुलाकात का समय खत्म होता है,
6: इस तरह से
5: बोलना। डांटना नहीं है मास्टर साहब, जो बोल वाला लाती है तो भारी एकदम, और मेरे पे कट्टा नहीं।
6: भिलिया कद्दू?
5: अरे नहीं, मीठा मीठा
6: तरबूज,
5: जिसमें कलर रहता है मैं पीती हूँ, जिसे मेरे हाथ में दर्द रहता है।
6: अच्छा आम का जूस,
5: कलरफुल
4: अपना। आपसे पूछना चाहूंगा, आसान था मेरठ से निकलकर मुंबई में अपनी लिए जगह बनाना?
6: मेरा पहला सीरियल था बुद्धा और मेरा दूसरा तीसरा सीरियल था सीआईडी, तो आपको पता है उसमें एक मुर्दा का रोल था और मुझे वो करना था और मुझे पर डे मिल रहा था 3,000 रुपए। तो मैंने छोटे छोटे काम किए, तो मैं सूरत जाती थी, वहाँ साड़ी शूट करती थी। आपको पता है पूरा दिन में मैं यानी 100 साड़ियाँ चेंज करती थी, मेरे पैर दर्द होते थे, मेरे पैर सूज जाते थे, और वो भी 6-6 इंच की हील्स पहन के। पर जब मैंने कैफे खोला, मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने एक लोन अप्लाई किया, मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, एक काम करती हूँ मैं सुसाइड कर लूँ। आपको यकीन नहीं होगा मेरे पास एम्प्लॉय नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि मुझे एम्प्लॉय कहाँ से लेने हैं, मुझे नहीं पता है मुझे मार्केटिंग कहाँ से करनी। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, लाइफ स्ट्रगल, आज भी मैं यहाँ पे हूँ, सबको दिखता है एक्टर हूँ, बट भाई आज भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ।
4: ध्रुति आपसे पूछना चाहूंगा, शादी से पहले और शादी के बाद ध्रुति के लिए क्या बदला?
7: मेरी शादी के बाद कुछ बदला नहीं है क्योंकि मेरी लव मैरिज है। हमारी जब शादी हुई सर, पूरी सोसाइटी अगेंस्ट थी, उसके पेरेंट्स अगेंस्ट थे, पर फिर भी वो एक था जो मेरे साथ तभी खड़ा था, आज भी खड़ा है। मैं गुजराती हूँ, मारवाड़ी है, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। आज की डेट में भी मेरे बच्चे जाते हैं, पति जाता है, वो लोग मुझे नहीं बुलाते। और
4: कितने साल हो गए आपकी शादी?
7: 12 साल।
4: 12 साल तो बहुत लंबा समय।
7: हाँ, पर शायद कुछ खटका होगा उन्हें, पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा, भले वो ना बुलाए। और मेरी लाइफ में सर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ पहले से खड़े थे, चाहे मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे हर डिसीजन में मेरे पेरेंट्स थे मेरे साथ। और सर कहते हैं ना, भक्ति करने से भगवान मिलता है।
6: मैंने तो कोई भक्ति नहीं करी, कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले।

0: अब बालू का बिन मौसम झड़ना तो डेफिनेटली लेकर आता है जिंदगी में ट्विस्ट. खैर, बाल झड़ने के अनेक कारण हो सकते हैं, उसी तरह ये जो ट्विस्ट आते हैं ना हमारी कहानियों में, इनके पीछे भी अनेक कारण होते हैं. तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखा रहे हैं आपको ये तमाम ट्विस्ट वो भी एक साथ.
1: प्लस के सीरियल अनुपमा में एक तरफ अनुपमा अपना आशियाना बनाने की कोशिश कर रही है, देखिए कैसे वो पहुंच गई है घर देखने के लिए,

0: Ano pa ba? Joshi.
1: Hey, Anu! तूने हवा पे आस लिख दी है, अब विश्वास पे लिखकर देख ले। हमेशा तू सबके लिए सब कुछ मांगती है, बस एक बार कान्हा जी से अपने लिए भी कुछ मांग के देख। कान्हा जी की बनाई इतनी बड़ी दुनिया में अपने लिए एक छोटा सा कोना मांग के तो देख। मुझे पूरा विश्वास है कि कान्हा जी तेरी ये बात जरूर सुनेंगे। क्या होगा ये तू तय कर, कैसे होगा ये कान्हा जी पे छोड़ दे।

जाना चाहिए। कोई तो वजह होगी कि आपकी इस बड़ी सी दुनिया में मुझे ये छोटा सा कोना ही अपना सा लगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां तक मुझे आप ही लेकर आए हैं। अब यहां तक लाए हैं तो मेरे विश्वास का मान रख लीजिएगा। जो मेरा है मुझे दे दीजिएगा कान्हाजी। ये घर सच में मुझे चाहिए। अभी कैसे देना है ये आपको पता है।

0: कर सकती है अनुपमा, और दुख करके रहेगी।
1: तो वहीं दूसरी तरफ राही भी कर रही है कोशिश प्रेम को मनाने की, यानी कि रिश्तों की उलझने तो जारी है लेकिन सुलझाने की कोशिश भी है। इसी के साथ कहानी में नए नए ट्विस्ट भी आने वाले हैं।
2: कोई और बात भी है?
3: हाँ वो
2: बोलो ना।
3: प्रेम, आई नो कि तुम्हारे और अंश के बीच में एक दूरी आ गई है, पर एक टाइम पर तो तुम दोनों क्लोज थे ना, और प्रेरणा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। प्रेम, उसका उसका यहाँ और कोई नहीं है, और अंश, आई मीन वो मेरा छोटा भाई है।
2: ये सब मुझे पता है राही।
3: पर वो मैं, मेरा मतलब कि मैं कैसे उस शादी में,
4: प्रेरणा मेरी दोस्त थी,
2: वो खुद मुझसे दोस्ती तोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी मैं उसे इस रिश्ते के बारे में वॉर्न करना चाहता था। ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन अगर फिर भी तुम इस गलती में शामिल होना चाहती हो, फाइन, तुम इस शादी में जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं उस शादी में नहीं जाऊंगा।
5: महादेव एंड सन्स।
3: भाभी, बात तो सही है ना, सत्तू मामा ही तो हमारे लिए लट्टू लाए हैं, ये हमारी टीम है, तो बता देते हैं ना।
1: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में शुरू हो गया है नया गोलमाल, और ये गोलमाल है लड्डुओं का।
3: आपको क्या लगता है मामा जी, पिकनिक में रज्जी ने जो कुछ भी बोला, क्या वो होश में बोला था?
6: नहीं, इतना बड़ा और इतना घातक राज रज्जू होश हवास में खोल ही नहीं सकती। अरे इसके बचपन से जानते हम इसे।
3: थैंक यू मामा जी, थैंक यू हम पे भरोसा करने के लिए। वही ना मामा जी, जो बात बिना कहे आपको रज्जी के चेहरे पर दिख रही है, वो सच धीरू एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। उसे अभी भी लगता है कि रज्जी विलन है, लेकिन बस अब टाइम आ गया उसकी अकल ठिकाने लगाने का, और ये लड्डू उसी के लिए।
1: तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे धीरज कपड़े धो रहा है। इसी बीच परिवार में चल रहा है कंफ्यूजन।

0: भाभी हमें ना बहुत डर लग रहा है।
1: कहते हैं कि भांग पी के इंसान जो करता है वही करते रहता है, पता नहीं आज क्या क्या करेगा।
2: इसमें क्या लाई हो दीदी?
0: नई साड़ी लाया।
2: लाओ इसको भी धो देते हैं। अरे दीदी कितने सारे लोगों ने ट्राई करी होगी ना तो बदबू आने लगी होगी, अभी देखो हम धोएंगे ना तो एकदम खुशबू आएगी।
0: जीरू हमारी साड़ी।
2: भाभी इसमें कपड़े?
0: हाँ सुखाने लाए।
2: लो हम धो देते।
0: अरे धुले हुए ना हम। अरे धुले हुए धीरज।
3: वैसे जल्दी कहानी में रोमांटिक ट्विस्ट भी आएगा जब धीरज और रिची एक दूसरे के करीब आएंगे और बढ़ेगी इनकी नजदीकियाँ।
2: दो ना हम दो देंगे।
0: छोड़ो।

देखिए आज तो हमारा एपिसोड ये है हेयर केयर स्पेशल और हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ कुछ सिंपल हेयर केयर टिप्स और उसके साथ साथ लेकर आ रहे हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। और अगली एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़ तो अब जुड़ी हुई है आपके फेवरेट सितारे से जो यहाँ कर रहे हैं आप सबका इंतजार, क्योंकि इनसे ही की है हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने ये प्यारी सी मुलाकात। हमने तो जाना है इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल। हो रहा है ना आपके पेट में दर्द, फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इनके पास।

0: नाम नमिक पॉल। जिन्हें लोग जानते हैं सीरियल नागिन 7 के आर्यमन के रूप में,
1: साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट। मेरे हाथ में एक कुमकुम, जिसे तुम कुमकुम भाग्य कहते हो। मैं एक बार फिर इस भाग्य को तुम्हारी मांग में भरना चाहता हूँ।
0: और कुमकुम भाग्य के शिवांश के रूप में, लेकिन रियल लाइफ में इनकी है जाबाज पर्सनैलिटी। इतनी लंबी चौड़ी हाइट के साथ इनका फिजीक भी है कसरती। सिक पैक अब, तीखे नैन नक्श और एक शांत व्यक्तित्व। साथ वो बेटे आज आपको मिला रहा है अभिनेता नमिक पॉल से। देहरादून का ये लड़का कई सालों से अलग अलग किरदारों में दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में ये अपने फिजिक और खाने पीने को लेकर बहुत कॉन्शियस है।

0: I like to enjoy my workouts. So I take my time and I think about my workout ki kya karunga. Khud plan karta hu, mere koi trainer nahi hai. So I just think about ki kya kya karna hai, what do I want to achieve and then just get to it. Aaj mujhe pata nahi main kya kya karne aaya hu. Mera aise hi hota hai, like I'll just start with some pull-ups. Pehle main stretching karunga thodi si, pull-ups, maybe some back, some biceps, shoulders. Dekhte hain kya karte hain, kuch na kuch karenge.
1: सबसे पहले नमिक ने अपना कसरती बदन हमें दिखाया भाई, एक्सरसाइज से उन्होंने कुछ सिक्स पैक्स एब निकाले हैं, तो जरा देखते हैं उनका ये फिजिक जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है। यानी सीरियल में तो आपने नमिक को शर्टलेस देखा है, लेकिन आज उन्होंने खास अपना वेल टोन्ड फिजिक दिखाया।
0: एब्स तो अभी थोड़े कम है, 1, 2, 3, 4 सॉर्ट ऑफ 5-6 है, बट हाँ अभी थोड़ा डाइटिंग में वो चल रहा है, ठीक है इतना वैसे काफ़ी है। साल लग गए हैं, तो मैं वर्कआउट मैंने स्कूल में शुरू किया था स्कूल के बाद, तो इट्स बीन अबाउट ओवर 10 years दैट आई बीन वर्किंग आउट, बट सीरियसली करते हुए 3-4 साल। उसका मत पूछिए उसके बारे में, बहुत एम्बैरेसिंग है वो। स्कूल में बनवा लिया था जोश में, छुप छुपा के पकड़ा भी गया था, फिर बहुत प्रॉब्लम हुई थी। NBA बहुत देखता था मैं बास्केटबॉल प्लेयर्स को, तो उनके बहुत टैटूज होते हैं, तो उन्हें देख के थोड़ा इंस्पायर हुआ, और जो मेरा फेवरेट प्लेयर था उसका भी यही टैटू था, तो वो बनवा लिया। कोई सेंस नहीं बनता है, मैं उसका मीनिंग बताता नहीं ज़्यादातर। आई थिंक नोबडी वॉन्ट्स टू बी शॉर्ट, तो लंबा होना तो अच्छी बात ही होती है, बट काम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। गर्ल्स आर यूजली शॉर्टर्स। कई बार ऑडिशन में लड़कियों को गद्दे दे के बैठाया जाता था मेरे बगल में, खड़े हुए ऑडिशन नहीं कर पाते थे, बहुत छोटी पड़ जाती थी। एनीवे लाइक हाइट देख के लोग काफ़ी इंटिमिडेट हो जाते थे कि इसके कपड़े कहाँ मिलेंगे, लड़की कहाँ मिलेगी, तो उस वजह से काफ़ी वर्क में प्रॉब्लम हुई थी शुरू शुरू में। बट आई लाइक बींग टॉल, छोटा कोई होना नहीं चाहता, सो आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वियर्डली इनफ कि मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स काफ़ी छोटी रही हैं, 2 तो 5'3" की थी, एक थी 5'8" की, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट बिकॉज यूर टॉल डजंट मीन आपको लंबी लड़की चाहिए, बहुत अजीब लॉजिक होता है कि इतनी लंबी लड़की कहाँ से मिलेगी, लंबी लड़की चाहिए किसे, सो इट्स ओके। आई एम सिंगल, श्योर आई एम रेडी टू मिंगल, बट अभी टाइम बहुत कम है, अभी बहुत टाइम बहुत काम मिला है, तो दैट इज़ वॉट आई एम फोकसिंग ऑन। और अभी ऐसे मुझे कोई बाहर जाने में पार्टी करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, आई रादर स्लीप एंड वर्क, तो मैं अभी तो वो यही चल रहा है, देखते हैं अब जब थोड़ा अगर करियर सेटल डाउन हुए देन वील थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स।
1: अब चलते हैं नमिक के साथ जिम में, क्योंकि वो रेडी हैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करने के लिए। सबसे पहले वार्म अप और प्री एक्सरसाइज वो क्या करते हैं, आइए देखते हैं।

सबसे पहले रोटेटर कफ्स को स्ट्रेच किया बिकॉज शोल्डर की अपर बॉडी में यू शुड ऑलवेज स्ट्रेच योर शोल्डर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स कम फ्रॉम हियर और अगर इसमें इंजरी होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. नाउ वी गोइंग टू डू सम पुलअप्स. उसके बाद थोड़ा बैक करेंगे थोड़े शोल्डर और बाइसेप्स. दैट्स द प्लान. मारने को तो 20-25 मार दूंगा लेकिन फिर उसके बाद 2-3 मिनट बैठना पड़ेगा. सो आई डू सेट्स ऑफ 10.

ये है मशीन प्रेस फॉर योर चेस्ट, इट ऑल्सो वर्क्स योर ट्राइसेप्स एंड योर शोल्डर्स बीच में. थोड़ा सा हमने बैक से शुरू किया, वार्म अप किया, अब थोड़ा सा चेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद बाइसेप्स और एब्स से ख़त्म करेंगे.

0: नमी रहने वाले देहरादून के और उनका आर्मी परिवार से ताल्लुक है, इसलिए फिटनेस के साथ उनका गहरा नाता रहा है। लेकिन जिम में एक्सरसाइज बढ़ाने के अलावा अपनी डाइट का भी ख्याल रखते हैं और वो चाहते हैं कि पर्दे पर पहलवान जैसे न दिखें बल्कि फिट नजर आएं।
1: जब शुरू शुरू में शो हुआ था तो उन्होंने मुझे एक महीने पहले बता दिया था कि आपको आपका एक शर्टलेस सीन है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। तब मैं शूट भी नहीं कर रहा था, तो मैं चार चार पाँच पाँच घंटे वर्कआउट करता था। और इवेंचुअली जब सीन आया तो उससे तीन दिन तक पहले हमने नाइट शूट की थी। मैंने दो तीन हफ्ते से वर्कआउट नहीं किया था, मेरे लिए एकदम शौक था कि इतना सारा काम करना पड़ रहा है। तो तब मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की और अब दिखाने को नहीं मिल रही। बट व्हेन इट केम ऑन स्क्रीन, ऑनेस्टली इतना फर्क नहीं दिखा। सो वही मैंने रियलाइज किया कि नेचुरल सी जो लुक आती है कि आप वर्कआउट करते हैं लेकिन दैट इज नॉट ऑल यू डू, वो ज्यादा अच्छी लगती है। और वैसे देखिए, शर्ट उतारना इज पार्ट ऑफ द जॉब, सो थोड़ा आपको शेप में रहना ही पड़ता है। बट दैट आई मैनेज टू डू नाउ आई थिंक।

देखिए खाने पीने का ध्यान देना चाहिए और कंपैरेटिवली आई एम ओके. लाइक मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे हर दो घंटे खाना है, या मैं अगर चॉकलेट खा लूँ तो मैं पूरे दिन रोता रहा हूँ उसके बारे में कि यार मैंने ये क्या कर दिया, आपने आपका मैंने पूरी डाइट खराब कर दी. अगर मेरा मन करता है कुछ खाने का मैं खा लेता हूँ, बट कंट्रोल्ड अमाउंट में. तो जैसे अगर चॉकलेट खानी है चॉकलेट खा ली तो इट्स ओके, आई वर्कआउट. इसीलिए मैं वर्कआउट करता हूँ कि जो मेरा मन है वो मैं खा सकूँ. मुझे बॉडी बिल्डर जैसा लगना नहीं है कि हर टाइम मेरे एब्स पूरे 8 के 8 बाहर हों और मेरी नसें निकल रही हों. तो आई ईट व्हाट आई वांट. ज़्यादातर मैं 3-4 मील अच्छे क्लीन खाता हूँ, चिकन, थोड़े से कार्ब्स और वेजिटेबल्स हो पाए तो वो भी खा लेता हूँ. लेकिन नथिंग लाइक कि मैं बॉयल्ड फूड खा रहा हूँ या फिर सॉल्ट नहीं खाता, मिल्क नहीं पीता, ये सब कुछ नहीं है. मैं सब कुछ खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ और बैलेंस अमाउंट में खाता हूँ जो भी खाता हूँ. एंड दैट इज़ बिन समथिंग दैट्स वर्क फॉर मी. ये मुझे थोड़े साल लगे पता करने में, नो कार्ब्स और ये बॉयल्ड फूड सब कर चुका हूँ मैं. बट इवेंचुअली आई फाउंड कि 5-6% का फर्क पड़ता है, जो ऑनेस्टली अनलेस यू डूइंग अ मूवी जहाँ पे आपको जैसे भाग मिल्का भाग थी कि उन्हें दिखाना था कि वो बिल्कुल ही रिप्ड है, या फिर 300 जैसे हॉलीवुड में मूवी आई थी, अगर आपको वैसी मूवी करनी है तो सेंस बनता है. वरना थोड़ा अजीब सा लगता है अगर आप हमेशा ऐसे बॉडी बिल्डर जैसे बने घूम रहे हैं. तो नेचुरल लुक चाहिए, एथलेटिक लुक चाहिए, एंड उसी हिसाब से मैं खाता हूँ.

अगर आपको ऐसी मूवी करनी है जहाँ पे आपकी फिजिकल लुक इज अ ह्यूज कंपोनेंट की ऑफ द रोल, तो जैसे वो सुल्तान में अब वो रेसलर प्ले कर रहे हैं कुश्ती वाले, तो उन्हें लगना है एक सर्टन फिजिकलिटी है जो चाहिए। जैसे आमिर खान ने गजनी में जब की थी तो उनकी फिजिकलिटी थी कि उन्हें लगना था ये थोड़ा पागल मैड डॉग सी लुक आनी थी जब वो गुस्से में आते थे। तो आमिर खान बहुत अच्छी एग्जांपल है कि उन्होंने जब उन्हें चाहिए होता तो वो बॉडी बना लेते हैं, और जब उन्हें नहीं चाहिए होता तो ही स्टॉप्स वर्किंग आउट। तो आई थिंक इफ द रोल कॉल्स फॉर इट यू गो टू दैट एक्सटेंट कि आप बिल्कुल ही डाइट बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं, दो बार कार्डियो कर रहे हैं, एक बार वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जरूरी नहीं है तो आई थिंक इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। जो अगर आप इतने एक्सट्रीम में चले जाएंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो मुझे जैसे आजकल मुझे काम पे जाना पड़ता है तो समटाइम्स आई ओनली गेट 20 मिनट्स टू वर्कआउट, क्योंकि सोना भी है, काम पे भी पहुंचना है, लेट नहीं हो सकते, तो 20 मिनट्स में मुझे सब कुछ खत्म करना पड़ता है। तो उस हिसाब से यू जस्ट हैव टू मेक समथिंग वर्क कि वर्कआउट भी चलता रहे और आप अपना नॉर्मल लाइफ भी जी सकें। लाइफ यू वर्कआउट देन यू गेट गुड रिएक्शंस, वो तो शूट पे भी नहीं हर जगह ही मिलता है अच्छा रिएक्शन।

जिनकी मशीनों पर कसरत के बाद अब बारी है रोप के साथ कुछ अलग करने की। भाई ये एक्सरसाइज बहुत की जाती है, इससे माइंड और बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होता है। वैसे फिटनेस के बारे में काफी ज्ञान रखते हैं नमी, तो जानते हैं कुंते कुंते कुछ फिटनेस टिप्स।

0: Kučma.
1: जरूरी नहीं है कि अगर आपको फिट होना है तो जिम ही एक जगह है. कई लोग बोलते हैं कि मुझे फिट होना है लेकिन मुझे जिम पसंद नहीं है, लाइक दे डोंट लाइक द एटमॉस्फेयर. मे भी थोड़ा कॉन्शियस फील करते हैं शुरू करने में. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जिम ज्वाइन करें, आपको जो पसंद है आप वो करिए. क्योंकि आप स्पेशली बॉम्बे और दिल्ली जैसी सिटीज़ में बहुत ऑप्शन है आप लोगों के पास. आप MMA कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, क्रॉसफिट कर सकते हैं, वेट्स कर सकते हैं, स्पिनिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, इतने सारे ऑप्शन हैं जो सब आपको फिट होने में हेल्प करेंगे. सो ट्राई करिए, करते रहिए, आपको कुछ ना कुछ पसंद आएगा. ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये जो फीलिंग होती है कि आप अपने पे वर्क कर रहे हैं, आप कुछ चेंज ला रहे हैं अपनी बॉडी में, इससे अच्छी फीलिंग नहीं है. मतलब मुझे, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है. जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब काम नहीं था, तो दिस इज़ वॉट हेल्प मी कोप विद अ लॉट ऑफ इशूज़. जो फ्रस्ट्रेशन होता है आप सब यहाँ पर आके निकाल सकते हैं. और एक फीलिंग है कि आप जो आप अपनी बॉडी में चेंज ला रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो आपके सामने दिखता है. आप अगर एक हफ्ते भी वर्कआउट करेंगे तो आपको सामने चेंज दिखेगा. और अगर आप करियर से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप कोई किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं, तो ऐसे एक चीज़ पे कंट्रोल होना जो आप इतनी बड़ी चीज़ है जिसका जो आपके साथ हमेशा होती है आपकी बॉडी, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, तो इससे ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है. मेरे कई दोस्तों के ब्रेकअप हुए, मेरे ब्रेकअप हुए, काम नहीं मिला, कोई भी फ्रस्ट्रेशन है, हम लोग यहाँ आए, बास्केटबॉल एक और मेरी कोपिंग था. तो यहाँ आइए, मेहनत करिए, डांस जाके डांस कर लीजिए अगर आपको डांसिंग पसंद है, योगा करिए, योगा बहुत अच्छी चीज़ होती है. और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल चेंज आते हैं, इसमें मेंटल चेंज भी बहुत आता है. तो आई वुड रिकमेंड कि कुछ ना कुछ ढूंढिए और प्लीज़ उस पर वर्क कीजिए. बिकॉज जैसे सिटी में हम रह रहे हैं, जैसे हम काम करते हैं, स्ट्रेस बहुत हाई होता है और उससे डील करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए. थैंक यू सास बहू और बेटियाँ, आप हमारे जिम आए, मेरे साथ वर्कआउट किया सुबह सुबह, काफ़ी अर्ली है. सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर, होप यू एंजॉय द वीडियो.
2: नागिन साथ की शूटिंग खत्म कर चुके हैं नमिक और जल्द ही वो अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो उनके फैंस को बहुत एक्साइटमेंट है कि आगे वो कहाँ दिखेंगे. फिलहाल वो अभी ब्रेक ले रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं और जल्द ही होगा उनका कमबैक.
1: थैंक यू सो मच कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा शो देख रहे हैं. आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत हेल्प करता है. काफ़ी लंबे लंबे घंटे काम करना पड़ता है, उसके साथ फिट भी रहना पड़ता है, उसके साथ सही खाना भी खाना पड़ता है. तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है, अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी टफ हो जाता है. और अप्रिसिएशन मिलता है तो काफ़ी आसान हो जाता है. सो थैंक यू, आप हमारा काम इतना आसान करते हैं, आपको आपका हमें प्यार मिलता है. और फिटनेस के लिए मैं जो अभी कहा, मैं वही कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ ढूंढिए और आपके लिए फ़ायदा ही होगा, इसमें कोई बुराई नहीं.
2: तो ये थे नमिक पाल और इनके साथ आज सास बहू और बेटियां ने किया एक फिटनेस डे आउट. जाना कि नागिन और कुमकुम भाग्य जैसे किरदारों के उस पर रियल लाइफ में नमिक पाल कैसे हैं और कैसी होती है उनकी दिनचर्या. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
3: जुल्फे तो आज बगावत पर है मेरी, तेरे हाथों से सवरने की जिद है उन्हें पिया. कुछ ऐसा ही है यहाँ पर आज अभीरा के दिल का हाल. लेकिन कैसा है अरमान के दिल का हाल, क्या कुछ हो रहा है इन दोनों की कहानी में, क्या आ रही है यहाँ से कोई गुड न्यूज या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा. वेल जो भी हो, हमारे लिए एंटरटेनमेंट तो पक्का है. तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर. हम हंसे
4: तो कभी खुशियों से झूम उठता अरमान अभीरा का परिवार,

तो दूसरी तरफ छाए गम के अंधेरे बादल। स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आज अरमान और अभिरा की बेटियां मायरा और मुक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं है। जरा देखिए कैसे उन्होंने घर में एंट्री करते ही डांस करना शुरू कर दिया और अपने मम्मी पापा यानी अभिरा और अरमान दोनों को अपने डांस में शामिल कर लिया। भाई घर में खुशखबरी आई है और ये खुशखबरी है अरमान से जुड़ी हुई। असल में मायरा और मुक्ति को डर लग रहा था कि कहीं उनके पापा को कोई बड़ी बीमारी ना हो, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बता दिया है कि उनके पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और इसीलिए तो इस गुड न्यूज के चलते घर में डांस धमाल मचा हुआ है।

0: ये फैमिली मिली पापा ठीक होने वाले हैं। बंदर तेरे लिए ही हो तो मुझे तो पता हमारे पापा को तो कुछ नहीं होने वाला।
1: अरे रहने दो तुम दोनों की तो किक्की बंदी हुई थी।
0: What's किक्की?
1: इसका मतलब तुम दोनों की तो बैंड बजी पड़ी थी
0: लेकिन मैं तो ट्रिपल सी थी।
1: Cool, calm and confident.
0: बड़े आए मिस सीसीसी आपके चेहरे पे बोल्ड लेटर से था ये हॉलीडे हो चुकी है।
2: चलो थैंक गॉड आज कोई अच्छी न्यूज़ तो आई तो हॉलीडे से मुझे याद आया आप लोगों के स्कूल की तो बहुत अच्छी।
3: जैसे ही बात आई स्कूल की तो मन और मुक्ति दोनों ने ही आनाकानी शुरू कर दी और तो और उन्होंने फरमाइश भी रख दी कि उन्हें किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए। ऐसे में अचानक अरमान की तबीयत बिगड़ जाती है जिसके चलते मुक्ति मायरा दोनों टेंशन में आ जाती है। मुक्ति और मायरा को परेशान देखकर अरमान ने बात को संभाल लिया और दोनों से प्रॉमिस ले लिया कि दोनों दादी से माफी भी मांगेंगी और उसी स्कूल में भी जाएंगी। अगले ही दिन जैसे ही अभीरा वापस घर में आई तो अभीरा ये गुड न्यूज देने के लिए आगे बढ़े कि दोनों बेटियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है लेकिन अभीरा उसकी आंखों में आंसू है। वो कुछ भी कहने लायक नहीं है। ये देख अरमान हैरान और परेशान हो जाता है। वो तो अभीरा से जानने की कोशिश भी करता है लेकिन अभीरा अरमान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते रोते उसे वो सच बताती है कि तान्या का मिसकैरेज हो गया है।
4: मुझे पता चला कि तान्या प्रेग्नेंट है। थोड़ी देर बाद उसका मिसकैरेज हो गया।
5: आजकल एक तो गर्मी अगर आप देखो बाहर बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो वो थकी हारी आई है ऊपर से इतनी गर्मी से जब आई तो वो शी स्टार्ट्स क्राइंग। थकी हारी तो नहीं आई है क्योंकि थकती तो नहीं है अभीरा इतना काम करती है लेकिन वो बहुत ही दिल तुड़वा कर आई है। वापस से घर वालों ने उसे ब्लेम कर दिया है और बहुत उसको सुनाई है गलत गलत की जो भी उस तान्या के साथ जो भी हो रहा है वो सब कहीं ना कहीं अभीरा की वजह से हो रहा है ऐसा मुझे लगता है कि वो उसको ऐसा सब कुछ सुनाया गया इसलिए जब घर आई वो अभीरा की वजह से ही होता है तो इसलिए बहुत ही उसका दिल टूटा हुआ है और इसलिए वो फिर जब घर पे आती है अपने हस्बैंड और बच्चों के पास में तो ऑब्वियसली वो अपने आंसू रोक नहीं पाती।
6: जब से बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है मेरा जब से मैं यहाँ पे आई हूँ इस वाले घर में तब से मैं इस कॉस्ट्यूम में पोदार हाउस में या तो अपनी बेइज्जती करवाने जाती हूँ या तो उनकी बेइज्जती करने जाती हूँ इसी कॉस्ट्यूम में जाती हूँ। क्यों? क्योंकि अब कोई तो करे और फिर मुझे
5: मैं कर दूंगा बेइज्जती मेरे को भी फिर भी मैं कर देता हूँ ना। मैंने तो देखो अभी आके वहाँ पे कैसे चाय पिलाई दादी सा का मुंह देखने लायक था कि ये क्या बदतमीजी कर रहा है ये।
6: हमारी मुंह के सामने दादी सा उस टाइम पे बीच में आ भी नहीं पाई रोमांस।
5: हाँ वो आ भी नहीं पाई उस टाइम कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि अब तो वो वैसे ही वो बात ही खत्म हो गई है कि जहाँ पे उनकी वजह से कोई चीज रुके सो वो काफी दोनों एक फ्लॉन्ट करते हैं एक दूसरे को वहाँ पे बिल्कुल बिंदास चाय पीते हैं इतने हाई ड्रामेटिक सीन में भी तो अभीरा ही जाती है यही कॉस्ट्यूम है लॉयर अभी यही है ना।
3: अभीरा ने तो फिलहाल सिर्फ यही बताया है कि तान्या का मिसकैरेज हुआ है पर उसने ये बात नहीं बताई कि घर वालों ने उस मिसकैरेज का जिम्मेदार अभीरा को ठहराया है इसीलिए अभीरा की आंखों में आंसू है। इसी बीच अभीरा की नज़र पड़ जाती है टेबल पर जहां पर अरमान की दवाई पड़ी हुई है और ये देखकर वो अरमान पर नाराज होती है कि अरमान ने सही समय पर दवाई नहीं ली।
1: बताओ ना, तुमने अपनी दवा क्यों नहीं खाई? नहीं नहीं नहीं खरूस मान, दिस इज नॉट डन। दवाइयों की वजह से ही तुम बेहतर फील कर रहे हो। सूरज निकलना भूल सकता है लेकिन तुम अपनी दवाइयां निकलना नहीं भूल सकते। बच्चों ने घर की क्या हालत बना के रखी।
5: तानिया की मदद तुम कर तो रही हो, तो मैं तो अभी तानिया की क्या मदद करूं, क्योंकि मुझे तो खुद अभी मदद की ज़रूरत है। आई नीड हेल्प। तो मैं अभी फ़िलहाल किसी की मदद नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अबीरा की मदद करना चाहता हूं इस वक्त।
6: कि दवाई क्यों नहीं खाई?
5: मैं भूल गया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं चीज़ें भूल रहा हूं। अब फिलहाल तो चीज़ें ही भूल रहा हूं।
6: बाद में इंसान भूल।
5: राजू
3: फिलहाल तो अभीरा की पहली प्रायोरिटी अरमान है, ऐसे में वो सिर्फ अरमान का ही ख्याल रखना चाहती है, लेकिन देखना होगा क्या अरमान अभीरा की कही हुई ये बात भी भूल जाएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: वैसे ये सवाल तो मुझे पूछना है हमारी जगदात्री से, जिनकी जिंदगी में कितना ड्रामा है और उसके ऊपर देखे हैं आपने इनके ये स्टंट्स, अरे फुल ऑन एक्शन। तो कैसे रखती हैं ये अपने बालों का ख्याल? Well, जगदात्री तो कह रही हैं कि इनका हेयर केयर रूटीन बहुत ही सिंपल है। ये डेफिनेटली ऑयलिंग करती हैं 3 से 4 बार हफ्ते में, और ट्राई करती हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें। जितना नेचुरली रख सकती हैं ये अपने बालों का ख्याल उतना ही रखती हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको फटाफट आपकी फेवरेट जगदात्री के पास, और दिखाते हैं इस कहानी का क्विक अपडेट।

0: रंजक धात्री शिवाय का एक चुटकी सिंदूर।
1: साथ में मैं मुसाफिर, तू मुसाफिर।
0: सिंदूर ने बना दी शिवाय जगधात्री की जोड़ी।

0: नकली रिश्ते की शुरू हुई असली कहानी।
1: तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है।
0: जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री और शिवाय की रिश्ते की परीक्षा शुरू हो गई है। जल्द ही इनके सामने आएगा सिंदूरी ट्विस्ट, जहां पर अपने रिश्ते को सभी घर वालों के सामने असली साबित करने के लिए भरनी पड़ेगी शिवाय को जगधात्री की मांग। और इसी ट्विस्ट का आज फिल्माया जा रहा है प्रोमो शूट, जहां पर एक मिशन को पूरा करने के लिए जगधात्री नकली रिश्ते को असली में बदलने की तैयारी कर रही है।

0: तो आने वाला ट्विस्ट है। फिलहाल तो आज जगधात्री के घर में बवाल मच गया है क्योंकि रेखा और संपदा को पता चल गया है जगधात्री और शिवाय के रिश्ते के बारे में। तभी तो देखिए कैसे रेखा जगधात्री के हाथों में उसकी माँ की तस्वीर पकड़ाती है और तो और उससे जिद करती है कसम खाने की और अपने और शिवाय के रिश्ते को सभी के सामने बताने की। ऐसे में जगधात्री इमोशनल होने लगती है अपनी माँ की तस्वीर देखकर और अपनी माँ से ही बातें करने लगती है।
1: कभी साथ तेरे नहीं लिया, शिवाय ने मुझे कभी सिंदूर नहीं लगाया, ना ही कभी मंगलसूत्र पहना।
2: वो सारी देखी थी जो सच,
1: हमारी शादी सिर्फ एक झूठ थी जो मैंने यहाँ रहने के लिए बोला।
2: तुमने कहा
1: और छूट नहीं,
2: ये भी कहा था। मैं
1: आई की कसम खा के कहती हूँ,
2: दिल को मेरे न समझ तेरा बिन बोल।
1: सबके सामने बोल कि ये शादी नकली है, झूठ है। जगदात्री बोल।
3: वो तो सब घर के सब लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, स्पेशली रेखा संपदा प्रेशराइज कर रहे हैं कि उन दोनों की शादी की असलियत जानना चाहते हैं। उनको शक है कि वो असल में शादीशुदा नहीं है और ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि शादीशुदा हैं। वो ढूंढ के उनको परेशान करना चाहते हैं, तो इसकी कसम खाओ उसकी कसम खाओ वो बार बार बोलते रहते हैं। लेकिन लास्ट रेखा का क्या बोलते हैं उसको ट्रम्प कार्ड है कि वो उसकी माँ की फ़ोटो लेके आती है, तो इसकी झूठी कसम नहीं खा सकती वो, तो उसको पता है कि ये अगर सामने आता है तो वो सच बोल ही देगी।
0: भाई जगधात्री ने अपनी माँ की तस्वीर के आगे तो सच कह दिया, लेकिन जैसे ही सभी के सामने सच कहने की बारी आई तो वो हिचकिचाने लगी। ऐसे में रेखा उस पर दबाव बनाने लगी। जगदीश ने आकर रेखा को समझाया चिल्लाया, लेकिन रेखा मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में रेखा को शांत करने के लिए सामने आती है माया, क्योंकि माया ने ही जगधात्री और शिवाय दोनों को ही इस घर में रहने की अनुमति दी थी। ऐसे में माया जगधात्री के सामने अपने दिल की बात रखती है और उनसे सभी के सामने सच कहने के लिए कहती है, लेकिन जगधात्री वो अब भी खामोश है। बस फिर क्या, माया के सामने कोई और रास्ता नहीं बचता और वो ले आती है जगधात्री और शिवाय के बीच सिंदूरी ट्विस्ट।
1: तुम अपनी आई की कसम नहीं खाना चाहती, मत खाओ, एब्सोल्युटली फाइन है। लेकिन एक काम है जो तुम दोनों का, और अगर तुम दोनों ने वो काम कर दिया तो उसके बाद तुम्हारी शादी को लेकर कोई भी सवाल नहीं करेगा। आई विल मेक श्योर।

0: भाई इस सिंदूर ने तो शिवाय और जगधात्री दोनों को ही असमंजस में डाल दिया है। जगधात्री के ना चाहते हुए भी शिवाय पर दबाव बन गया है सिंदूर लगाने का। ऐसे में शिवाय अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि तभी आजी आकर ब्रेक लगा देती है।
1: शिवाय ऐसे जगधात्री को सिंदूर नहीं लगाएगा। बाकी किसी से पहले मेरे सामने शादी साबित करनी होगी तुझे। इतने महीनों से मैं तुझसे दूर रही हूँ, क्योंकि तूने भाग के शादी की थी। लेकिन आज तो तेरे ये फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं, और तेरी कसम खाने से झिझक से तो मेरे मन में भी सवाल पैदा हो रहे हैं। इसीलिए माया से पहले तुझे मुझे साबित करना होगा कि शादी सच है या झूठ।
2: होनी तो चाहिए। माय विशफुल थिंकिंग इज कि उनकी शादी होनी चाहिए, बिकॉज दे आर करेक्ट टुगेदर। दोनों के वैल्यू सेम है, दोनों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उसका चॉइस जो है उनका वो सही है। तो ऐसे ही लोगों की शादी होनी चाहिए, जैसे रुद्र और तपस्या भी करेक्ट है, मैचिंग टू इवल माइंड्स टुगेदर और टू डिवाइन माइंड्स टुगेदर।
0: अब आजी तो जगधात्री के साथ है क्योंकि वो जगधात्री का सच जानती है। ऐसे में उन्हें बहाना मिल गया है घर वालों के इस दबाव पर ब्रेक लगाने का। इतना ही नहीं, उन्होंने तो सभी के सामने ये तक कह दिया कि वो जगधात्री और शिवाय की शादी अपनी नजरों के सामने कराएंगी। और तो और जगधात्री का हाथ पकड़कर वो अपने साथ ले गई। ऐसे में घर वाले बस यही सोच रहे हैं कि घर में ये कैसे प्रूफ होगा कि जगधात्री और शिवाय ने एक दूसरे से शादी रचाई है। है आज तो आजी ने जगधात्री और शिवाय दोनों को बचा लिया है। तभी तो देखिए कैसे कमरे में जगधात्री अपनी आजी के गले लगकर उनका धन्यवाद कर रही है, और आजी अपना आशीर्वाद जगधात्री को दे रही है कि तभी कमरे में आ जाती है माया भी, जो उनकी शादी को लेकर सवाल जवाब करती है। ऐसे में आजी बात घुमाने की कोशिश तो करती है, लेकिन माया अपना फैसला उनको सुनाती है कि शादी इसी घर से होगी। बस फिर क्या, आजी को माया की बात माननी पड़ती है। जगदात्री को ये भी समझा रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरा मिशन कितना जरूरी है मुझे पता है, लेकिन उसके लिए ये चाल भी सही है कि तुम दोनों की शादी हो जाए, तुम ऑफिशियली इस घर में रहो, तो सब तुम्हारा काम आसान होगा मिशन अकम्प्लिश करने में। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा अपना चाल बदल बदल के माया की तरफ से थोड़ा ये करके ऐसा उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखना होगा कि ये सिंदूरी ट्विस्ट कैसे बदलेगा शिवाय और जगधात्री की कहानी को, या फिर मिशन पे लगा देगा ब्रेक। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: और हाँ, सबसे जरूरी हेयर केयर टिप है कि आप ऑयलिंग जरूर करें। ये तो है हमारी दादी माँ नानी माँ का नुस्खा, और हमने अपने इंडियन हाउस होल्ड में तो इसे सालों से देखा है। जी हाँ, हेयर ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे हेयर स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं, नरिश्ड होते हैं। तो प्लीज आप ऑयलिंग को कभी भी मिस ना करें, और यहाँ हम भी नहीं मिस आउट कर रहे हैं ये अगली खबर। वेल, इस कहानी में तो फिर से आया है एक हाई वोल्टेज ड्रामा। अब जैसे ही आता है ड्रामा, वैसे ही आता है एंटरटेनमेंट। फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
4: ईशान का खास परफॉर्मेंस

0: दिया का डांस स्टेशन। कॉन्सर्ट में आएगा ट्विस्ट।
1: मैं डॉक्टर नोएनिका रॉय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आए।
0: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में हो रहा है ईशान का कॉन्सर्ट और देख लीजिए कैसे वो इस कॉन्सर्ट में धमाल मचा रहा है, अपने गाने से सबका दिल जीत रहा है। और आपको बता दें कि इस कॉन्सर्ट में शामिल है नोएनिका भी, जो कर रही है इस परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय।

0: भई इसमें खास बात ये है कि सुर और आवाज तो ईशान की है लेकिन बोल नयनिका के हैं। और इसी बात का क्रेडिट देने के लिए आज ईशान ने नयनिका को स्टेज पर भी बुलाया है।
1: मैं डॉक्टर नयनिका रॉय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। पिछले हफ्ते जब मैं कोलकाता आया था उसी दौरान इन्होंने एक गाना लिखा, इन शब्दों को मैंने धुन दी और रिजल्ट आप सबके सामने।
0: तो भाई कॉन्सर्ट तो रहा काफी धमाकेदार और ईशान ने रॉकस्टार वाले अंदाज में सबका दिल भी जीता।
2: कुछ कुछ करता है।
0: बात करें दिया के डांस की तो इस कॉन्सर्ट में ही उसकी खास परफॉर्मेंस है जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड है और देखिए कैसे उसने अपने नट से चार चांद लगा दिए। सभी ने दिया का डांस काफी एंजॉय किया।
3: you know,

0: तो भाई धीरे धीरे ही सही नयनिका और ईशान के प्यार की गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि इस लव स्टोरी में कौन कौन से ट्विस्ट आते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: आज तो शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ है क्या टिप्स। वैसे आपको रखना है अपने बालों का खास ख्याल, उसी तरह हम रखते हैं आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल। तभी तो लेकर हाजिर हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जी हाँ, जो है हमारा टीआरपी मीटर। तो चलिए फिर पता करके आते हैं आज कौन सा शो है नंबर वन और किसने मारी है एक लंबी छलांग, कौन गिरा है टीआरपी की इस लिस्ट में और कौन है यहाँ पर टॉप फाइव में। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ, लेट्स चेक इट आउट।
0: आ गया है सीरीज की टीआरपी का रिजल्ट यानी कि टीआरपी चार्ट। तो आइए देखते हैं इस हफ्ते कौन सा सीरियल रहा नंबर वन और कौन सा नंबर दस पर पहुंचा है, क्योंकि काफी फेरबदल हुई है। तो भाई नंबर वन पर पहुंच गया है सीरियल गंगा माई की बेटियां। लगता है स्नेहा और सिद्धू की शादी वाले ट्विस्ट और इनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई, जिसके चलते सीरियल नंबर वन हो गया है।
2: पूछ कर ही सब हो रहा है।
3: आज हमारी पहली रसोई है। इस घर में जो कमाई का तरीका है ना, हम उससे सहमत नहीं।
2: अपनी मन मर्जी से बाज नहीं आई है ये लड़की।
3: हम बस अपना खाना अलग बनाएंगे।
2: हम किसी की नहीं सुनेंगे यहाँ सिद्धू। जब तक ये दूसरी रसोई इस घर में है, खाना नहीं खाएंगे हम सिद्धू और ना ही पानी पिएंगे।
0: नंबर टू पर आ गया है वसुधा, जो कई समय से नंबर वन बना हुआ था और अब वसुधा नंबर टू की पोजीशन पर आ गया है।
4: कि चुप रहकर जुर्म सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है। उन्होंने घर की बहुरानी को नौकरानी बनाकर रखा, डरना तो उन्हें चाहिए आपको नहीं।
0: और उसी के साथ है नंबर टू की पोजीशन पर सीरियल तुम से तुम तक।
5: मैंने खाना नहीं खाया।
2: चरण क्या हुआ बेटा?
6: जो आदमी उसे यहाँ लाया था उसका कोई अता पता ही नहीं, तो मैंने उस लड़के को यहाँ इस मंदिर में रख लिया और फिर एक दिन वो आई और उसे लेकर चली गई।
7: कौन लेकर चली गई?
6: जिसके सर पर देवी माँ विराजती है।
7: सिंधी माता की बात नहीं पता?
6: हाँ। चरण कहाँ है? चरण प्लीज
2: आराम से मुझसे वादा कर तो चरण को कुछ नहीं कहेगा।
0: तीन पर पहुंच गया है नागिन सेवन। भाई नागिन में कई सारे ट्विस्ट आ रहे हैं और वो लोगों को पसंद आ रहे हैं।
8: क्यों किया तुमने? अरे ये तुमने क्या किया? जान देनी थी तो अपने बाबा के लिए देनी थी, अपने मकसद के लिए देनी थी।
9: मैंने आज तक हमेशा गलत रिश्तों को अपना माना और अपने रिश्तों को समझा। आज जब सब खत्म हो रहा है तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ था।
0: तो वही तीसरे नंबर पर पहुंचा है क्योंकि सास भी कभी बहू थी तुलसी और मिहिर के घर में नए नए तमाशे लोगों को भा रहे हैं।
10: यू डोंट डिजर्व दिस। आई नो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुमने मेरे बारे में इस तरीके से कभी सोचा भी नहीं है। इट्स ओके, मेरे लिए अगर तुम मुझे इज्जत दोगे वही काफी है। आई ऑल्सो रिस्पेक्ट यू और मैं तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। जो पार्ट ने तुम्हारे साथ किया वो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। मैं इतना कठोर तुम्हारे साथ कभी नहीं बनूंगा वैष्णवी, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए।
0: नंबर चार पर है तीन तीन सीरियल्स अनुपमा, लास्ट शेफ और जगधात्री।
11: पहले झूठ बोला
12: नहीं जगधात्री,
11: शिवाय और मेरी शादी एक झूठ है। शिवाय और मैं कभी साथ फेरे नहीं लिए।
0: नंबर पाँच पर पहुंच गया है ये रिश्ता क्या कहलाता है, अरमान की बीमारी, अभीरा की चिंता, कहानी में ट्विस्ट पसंद आ रहे हैं दर्शकों को।
13: All the best. I hope ये केस तुम्हें मिल जाए।
14: एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं केस के लिए मीटिंग पर जा रही हूँ?
0: नंबर छह पर है उड़ने की आशा सपनों का सफर।
15: ये सबके लायक नहीं है तुम।
16: घर वालों के सामने मुझे बेइज्जत करते थे, सबके सामने मुझ पर हाथ उठा रहे थे, ये सब मैं क्यों सहूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। पर क्या है ना सचिन, इस रिश्ते को रखना चाहो या ना चाहो वो तुम पर है, वो तुम पर है।
0: बरेली के बच्चन, जो नया नवेला सीरियल आया है।
17: समझे
5: मुझे, किसने विकी का किडनैप कर लिया।
17: छा गए हमारे बरेली के बच्चे।
0: तो वही, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं।
18: तुमने किया क्या है मेरे साथ, पता तुम्हें? तुमने मुझे जेल भेज दिया है, अंदाजा है?
19: अगर तुम मेरी बात सुनो, हमें एक बात,
18: हमें, हम हैं अभी भी एक साथ तुम्हारी नजरों में वृंदा
0: और लक्ष्मी निवास।
20: सब कहते हैं कि सावित्री ने सत्यवान की जान बचाई थी, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर सावित्री मुसीबत में हो तो सत्यवान कुछ नहीं करेंगे। जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, वैसे ही आज हमने अपनी पत्नी के लिए व्रत, अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा है।
0: नंबर 7 पर है उड़ने की आशा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, डॉक्टर आरंभी और रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर का नया सीजन।

0: नंबर 9 पर है सीरियल मन्नत।
1: मुझे वहाँ मिलेंगे, प्लीज इस बार आप मेरी उम्मीद मत टूटने देना।
2: अच्छा सुनो। हाँ। जी भैया, तुम दोनों अमृतसर जा ही रहे हो तो गुरुद्वारे जाकर मत्था जरूर टेक देंगे, ये भी सही है। जा, जा।
3: पता नहीं क्यों ऐसे ज्यादा जैसे गुरुद्वारे जाके मुझे सुकून मिलेगा और ये बेचैनी कम होगी।
1: विक्रांत और मेरी कहानी की शुरुआत गुरुद्वारे से ही हुई थी।
0: तो वही नंबर 10 पर है शहर।
4: मैं हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं। और यकीन कीजिए हमने उन्हें उस संदूक के अंदर छुपाया था।
0: तो जूलियट जटदी।
5: मैम, हम दोनों का नाम बिल्कुल साथ है, कितने अच्छे लग रहे हैं हम दोनों। तुम फर्स्ट, मैं सेकंड।
0: हस्तिनापुर के वीर और जाने अनजाने हम मिले।
6: ज्यादा चोट पहुंचाई, मैं उसके कदमों में बैठ जाऊं।
7: मेरा वो मतलब नहीं।
6: तो क्या मतलब था आपका राघव?
7: बस
6: नहीं राघव।
0: तो भाई ये रही इस हफ्ते की टीआरपी चार्ट। अब देखते हैं अगले हफ्ते इसमें क्या फेरबदल होती है और कौन सा सीरियल नंबर 1 पर पहुंचता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
8: तो फिर कैसी लगी आपको हमारी ये हेयर केयर टिप्स? आप इन्हें जरूर आजमाइएगा और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन अब तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल और हाँ, अपने बालों का भी। बाय बाय।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।

0: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
2: You're listening to CNBC.
3: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
4: Keep it on smooth jazz.
5: This is Roots Reggae
6: exclusively on TuneIn.
7: This is classic hip-hop
8: exclusively on TuneIn.
1: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज, इसी महीने शुरू हो सकती है UPI और ATM के जरिए PF अकाउंट से सीधे पैसे निकालने की सुविधा। MP के मऊ में गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण, तेज फायरिंग की क्षमता से लैस GPS और लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल करके लगाया सटीक निशाना। बिहार के गया के पत्थरगट्टी गांव में बनी मूर्तियों को GI टैग से मिली वैश्विक पहचान, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर, विदेशों में भी जाएंगी यहां बनी प्रतिमाएं। कश्मीर

0: लेकर अंतिम चरण में तैयारियां, कल होगा उत्सव का आगाज। खीर भवानी मेले की तैयारियों को लेकर मंदिर पहुंचे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, विधि विधान से की मां की पूजा अर्चना। मां से सीएम उमर अब्दुल्ला ने की विशेष प्रार्थना, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और सद्भाव के लिए मांगा आशीर्वाद। सीएम उमर अब्दुल्ला ने खीर भवानी मेले की तैयारियों का लिया जायजा, श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं और सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए सीएम उमर अब्दुल्ला, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। रामबन के चंदरकोट स्थित यात्री निवास में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां हो गई है शुरू, सुरक्षा ठहरने और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को किया जा रहा है मजबूत। यात्रा मार्ग पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आवास, भोजन और मेडिकल सुविधाओं को भी किया जा रहा है अपग्रेड, प्रशासन ने व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू की। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को देखते हुए चंदरकोट यात्री निवास पर सुरक्षा बलों की तैनाती और भीड़ प्रबंधन की बनाई जा रही है योजना, यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने पर दिया जा रहा है जोर। अमरनाथ यात्रा से पहले कुलगाम पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता, हाईवे पर वाहनों की सघन जांच जारी, संवेदनशील इलाकों की हो रही है हवाई निगरानी। यात्रियों के बालटाल और पहलगाम मार्ग की सुरक्षा के लिए K9 स्क्वाड और अत्याधुनिक व्हीकल एक्सरे मशीनें तैनात की गई, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। ओडिशा के बारीपदा में 1,50,00,000 साल पुराने समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इलाका कभी उथले समुद्र का हिस्सा था। जीवाश्मों में शार्क के दांत, मछलियों के अवशेष शामिल, इससे करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवन की दुनिया की जानकारी मिली। बुदावलंगा नदी के किनारे फैले बारीपदा फॉसिल बेड्स ने वैज्ञानिकों का खींचा ध्यान, भारत के महत्वपूर्ण भू वैज्ञानिक स्थलों में गिनी जा रही है ये खोज। वैज्ञानिकों का कहना, पूर्वी भारत का ये क्षेत्र कभी खुले समुद्र से जुड़ा हुआ था, जीवाश्मों से प्राचीन समुद्री दुनिया के दे रहे हैं सबूत। इंटैक ने ओडिशा सरकार से यहां पर फॉसिल पार्क बनाने की मांग की है, दुर्लभ जीवाश्मों का संरक्षण और वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देना है इसका मकसद। एमपी के महू में गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण, तेज फायरिंग की क्षमता से लैस जीपीएस और लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल करके लगाया सटीक निशाना।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: can never have too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी दिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज, इसी महीने शुरू हो सकती है UPI और ATM के जरिए PF अकाउंट से सीधे पैसे निकालने की सुविधा। MP के मऊ में गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण, तेज फायरिंग की क्षमता से लैस GPS और लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल करके लगाया सटीक निशाना। बिहार के गया के पत्थरगट्टी गांव में बनी मूर्तियों को GI टैग से मिली वैश्विक पहचान, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर, विदेशों में भी जाएंगी यहां बनी प्रतिमाएं। कश्मीर में गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने की पूजा, मेले की तैयारियों का लिया जायजा, कहा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा होगी सुनिश्चित। फिल्म वेलकम टू द जंगल के रिलीज से पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में दिखे एक्टर अक्षय कुमार, माथा टेक कर लिया मां का आशीर्वाद, फिल्म की सफलता की कामना। नूह के सुखपुरी में बदलाव की बयार, युवाओं के 55 मोबाइल तोड़कर ली क्राइम छोड़ने और नई जिंदगी शुरू करने की शपथ, पुलिस ने की पहल की सराहना।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो
3: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना और स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज हम आपको बताएंगे देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के महामंत्र और बृहस्पति का जीवन में महत्व। जीवन में संपन्नता की इच्छा पूरी करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन की जाने वाली पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के महामंत्र कैसे आपको दिला सकते हैं देवताओं के गुरु की कृपा, देखिए इस खास पेशकश में।

0: ज्ञान और विवेक में वृद्धि करेंगे बृहस्पति के मंत्र। विवाह की बाधा दूर करने का यही है मूल मंत्र। जब संतान के मन में हो विफलता का भाव, भय से मुक्ति दिलाना ही देव गुरु का स्वभाव। जब आती है नौकरी और तरक्की में अड़चन, तब बृहस्पति के मंत्र दूर करते हैं सारी उलझन। जब आपको सेहत से हो रही हो परेशानी या कारोबार में हो रही हो हानि, तब बृहस्पति के मंत्रों में छिपी है सफलता की कहानी। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। नौ ग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है। ज्योतिषी मानते हैं कि कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो जीवन में इंसान तरक्की करता है, क्योंकि सबसे बड़ा और शुभ ग्रह बृहस्पति हैं। बृहस्पति मजबूत हो तो दूसरे खराब ग्रह भी इंसान को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाते।
1: देखिए, बृहस्पति ग्रह यदि आपके कुंडली में शुभ है तो आप जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे वो काम आपका सफलता की ओर बढ़ेगा। आप विद्वान होंगे, हर चीज का ज्ञान होगा, सुख स्वास्थ्य समृद्धि की प्राप्ति होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप निरोग रहेंगे और आपके चेहरे पे हमेशा तेज रहेगा।
0: बृहस्पति के मंत्र मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करते हैं, जिससे व्यक्ति तनाव और चिंता से मुक्त हो सकता है। लेकिन अगर बृहस्पति कमजोर हो तो जीवन में बाधाएं बढ़ती हैं। आज हम बृहस्पति के प्रभाव की विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिषी मानते हैं कि अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ हो तो यकीनन इंसान बुलंदियों तक पहुंच जाता है, लेकिन अशुभ बृहस्पति के प्रभाव से जीवन में अंधकार छा जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से जीवन पर क्या असर पड़ता है। बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं, विद्या और धन प्राप्ति में बाधा आने लगती है, व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें आती हैं, व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है। गंभीर और लाइलाज बीमारियां बृहस्पति की वजह से ही होती हैं। संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान करती हैं। अगर बृहस्पति का संबंध विवाह भाव से बन जाए तो विवाह होना असंभव हो जाता है। शनि की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो सकता है, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण बहुत ही मुश्किल होता है।
1: हमारे जो नवग्रह होते हैं उन नव ग्रहों के गुरु हैं, और हमारे जीवन में जो है सुख स्वास्थ्य समृद्धि ज्ञान इन सभी के जो है वो कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि जीवन में लगातार असफलता प्राप्त हो रही है, जीवन में जो है हमेशा रोग घेरे हुए हैं, या फिर आपका रोजगार नहीं चल रहा है, तो इन सभी कारकों के जो है वो ग्रह बृहस्पति होते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि घर में जो है व्यक्ति का गुरु जो है यानी बृहस्पति वो खराब चल रहे हैं।
0: अगर सही तरीके से बृहस्पति के उपाय करें तो आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा में बहुत जल्दी सुधार आ सकता है। गुरुवार को कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ये वो दिन है जो श्री हरि विष्णु को तो समर्पित है ही, साथ ही गुरु ग्रह को भी आप मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है या फिर आप बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं, तो हम आपको इसका समाधान बताएंगे। हम आपको बताएंगे बृहस्पति के वो दिव्य मंत्र जिनके जाप से आपके दुखों का हो जाएगा अंत। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: अगर आप कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और देवगुरु से खुशहाल जीवन का वरदान चाहते हैं तो आपको करनी होगी देवगुरु बृहस्पति की पूजा उपासना, साथ ही जपने होंगे बृहस्पति के दिव्य मंत्र, क्योंकि देवगुरु के ये दिव्य मंत्र आपको दुखों का अंत कर देंगे। तो चलिए बताते हैं आपको गुरु कृपा पाने के महामंत्र।

0: जीवन में शुभता का संचार करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति। धन समृद्धि के योग बनाने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पतिवार की उपासना से जीवन में होगा मंगल। देव गुरु के महामंत्र दूर करेंगे संकट और अमंगल। देव गुरु बृहस्पति को जिसने साध लिया, समझिए उसके जीवन के कष्टों और दुखों का अंत हुआ। यानी बृहस्पति अपने जीवन के सभी कष्ट काट सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति देव की आराधना कैसे की जाए। बृहस्पतिवार को प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। बृहस्पति देव के चित्र या केले के पौधे के समक्ष बैठें। धूप बत्ती और दीपक जलाएं। चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद आवश्यकता अनुसार बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का जाप हल्दी या रुद्राक्ष की माला से करें। बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का आहार ग्रहण करें। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही कुंडली से अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। चलिए जानते हैं कि बृहस्पति के दोष दूर करने के महा उपाय कौन से हैं। गुरुवार को शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, बिना नमक का खाना खाएं, भोजन में पीले रंग का पकवान शामिल करें। गुरु बृहस्पति की प्रतिमा या फोटो को पीले कपड़े पर स्थापित करें। पूजा में केसरिया चंदन, पीले चावल, पीले फूल चढ़ाएं। पीले पकवान का प्रसाद बनाएं। मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 108 बार जाप करें। गुरु से जुड़ी पीली वस्तुओं का दान करें, इससे गुरु ग्रह के दोष दूर होते हैं।
1: बृहस्पति की कृपा पाने के लिए आपको भगवान विष्णु हरि का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और केले की सेवा करनी चाहिए, गौ माता को जो है वो चने खिलाने चाहिए, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए और सबसे प्रमुख अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं बुजुर्गों का जो है आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। इससे जो है बृहस्पति ग्रह अति प्रसन्न होते हैं।
0: बृहस्पतिवार का दिन श्री हरि विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की उपासना के लिए सर्वोत्तम है और इस दिन अगर बृहस्पति के मंत्रों का जाप किया जाए तो यकीन मानिए आपकी हर बाधा दूर हो जाएगी। ज्योतिषी कहते हैं कि इन मंत्रों के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है और देवता प्रसन्न होते हैं।
1: बृहस्पति के कल्याणकारी मंत्र में सबसे प्रमुख उनका बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जो 108 बार प्रतिदिन पाठ करता है तो निश्चित ही उसके कुंडली में जो है बृहस्पति ग्रह बलवान हो जाते हैं और उसे शुभता प्रदान करते हैं।
0: परम फलकारी और जीवन में आशा का संचार करने वाले हैं ये मंत्र। इन मंत्रों की महाशक्ति को समझिए, मंत्रों के सही उच्चारण को जानिए, क्योंकि मंत्रों की शक्ति के आगे आपके जीवन की बाधाएं धराशायी हो सकती हैं। बृहस्पति कुछ खास मंत्रों का उच्चारण पूजा उपासना का संपूर्ण फल आपको दे सकते हैं। जब सामान्य रूप से बृहस्पति देव की कृपा चाहिए तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। जब बृहस्पति के कारण स्वास्थ्य की समस्या हो तो ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः का दोनों वेला जाप करें। जब बृहस्पति के कारण संस्कारों की समस्या हो तो ओम देव पूजिताय नमः का जाप करें। बृहस्पति के कारण संतान की समस्या हो तो ओम आंगिरसाय विद्ये दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात् का जाप 3 माला करें। ऐसा माना जाता है कि इन दिव्य मंत्रों में अद्भुत शक्ति है और इसके जाप से सभी दुख संताप दूर हो जाते हैं। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि इन चमत्कारिक मंत्रों के प्रयोग से आपकी समस्त बाधाओं का अंत हो सकता है। पूरी श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करें। इन उपायों को अपनाकर आप देव गुरु बृहस्पति से कृपा हासिल कर सकते हैं। आपकी जैसी सुविधा और आस्था हो, बस उसी के अनुसार इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। बृहस्पति से जुड़ी आपकी हर समस्या का समाधान ये मंत्र कर सकते हैं।
2: प्रार्थनाओं स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
4: क्या बृहस्पति की वजह से जीवन के संस्कार कमजोर होते हैं? क्या बृहस्पति की वजह से बड़ी और गंभीर बीमारियां होती हैं? कौन सी हैं बृहस्पति की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
5: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits to timeless favorites. New discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: जानने के लिए देखिए News Pulse रात सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या बृहस्पति की वजह से जीवन के संस्कार कमजोर होते हैं? क्या बृहस्पति की वजह से बड़ी और गंभीर बीमारियां होती हैं? कौन सी हैं बृहस्पति की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
3: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
2: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits. You're listening to MSNBC. No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आज

जार्म शिक्षा से शानदार खबर, राज्य में 1 जुलाई से खुलेंगे 211 नए डिग्री कॉलेजेस, 6 विषयों की होगी पढ़ाई। एमपी के मऊ में गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण, तेज फायरिंग की क्षमता से लैस जीपीएस और लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल करके लगाया सटीक निशाना। फिल्म वेलकम टू द जंगल की रिलीज से पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में दिखे एक्टर अक्षय कुमार, मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया, फिल्म की सफलता की कामना की। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां तेज, जियांगशी प्रांत में दिखा ड्रैगन बोट में टग ऑफ वॉर का रोमांच, ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश।

0: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। चर्चा आज इसी को लेकर होगी क्योंकि फ्रांस से ईरान और अमेरिका से भारत तक सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर हर ओर बातचीत हो रही, चर्चा हो रही। अक्सर निवेशक कीमती धातुओं में दिलचस्पी दिखाते हैं और उन्हें निवेश के लिहाज से बेहतर माना भी जाता है, सेफ हेवन इन्हें कहा जाता है, खासतौर पर अगर सोने और चांदी की बात करें। और यही वजह कि सोने चांदी को हमेशा सेफ हेवन माना गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट संकट पर आज शांति समझौता भारी पड़ गया। अमेरिका ईरान के बीच डील पर साइन हो गए हैं, ऐसे में सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट देखी जा रही है। तो आज चर्चा हम सोने और चांदी के उतार चढ़ाव पर ही करेंगे। मिडिल ईस्ट के हालात का भारत के सराफा बाजार पर कितना असर होगा, किन फैक्टर्स की वजह से निवेशकों का रुख बदला है, आगे क्या होगा, तेल सोना चांदी क्लीन गोल्ड, आपके शहर में गोल्ड सिल्वर का क्या है रेट, क्या और गिरेगा सोना और चांदी, यूएस ईरान की गोल्डन पीस डील, इन तमाम पहलुओं पर हम बाजार की जानकारों से चर्चा करेंगे। तो यूएस ईरान के बीच हुई है गोल्डन पीस डील, इसका असर वैसे दुनिया भर के सराफा बाजार पर पड़ा है, लेकिन आज अगर हम सोने और चांदी के रेट्स की बात की जाए, आज क्या दाम है, तो भारी गिरावट इसमें देखने को मिली है। चांदी सुबह 2.5% से ज्यादा नीचे थी और अब से कुछ ही देर पहले 3.5% से ज्यादा नीचे लुढ़क गई है। सोने की बात कर लेते हैं जो सुबह लगभग 1.5% सस्ता खुला था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो 2% तक गिरावट है। सोने के दाम प्रति 10 ग्राम शुरुआती कारोबार में करीब 2000 रुपए नीचे थे, तो अब ये 3000 रुपए की गिरावट के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी सुबह 6000 रुपए सस्ती थी, तो अब ये 8000 रुपए सस्ती हो चुकी है। जनवरी में सोना और चांदी अपने हाई पर थे। सोने चांदी के दामों पर दुनिया भर की नजरें हमेशा से ही बनी रहती हैं। ईरान और अमेरिका के शांति समझौते का असर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए हैं। 4 महीने की जंग खत्म करने पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने फ्रांस में G7 समिट में साइन किए हैं। इस दौरान ट्रंप ने कहा है कि डील पर साइन हो गए हैं। अब माना यह जा रहा है कि तेल बिक्री और प्रतिबंधों में राहत संभव हो सकेगी। मिडिल ईस्ट तनाव घटने का सराफा बाजार पर असर दिखेगा। सोने चांदी का आगे हाल होगा क्या, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि सबके जहन में सवाल यही है, क्या और गिरेंगे दाम या फिर उठेगा सोना। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है और आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से। हमारे साथ इस वक्त बिजनेस टुडे के एडिटर शैलेंद्र भटनागर मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट तनाव कम होने से भारत में सोने चांदी पर असर कितना पड़ा है, थोड़ा समझा दीजिए।
1: जैसे जैसे युद्ध में विराम आपको लगता हुआ दिख रहा है, तो सोने और चांदी में जो रिस्क प्रीमियम था वो आपको कम होता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से हमारे सामने एक गिरावट का दौर चलता हुआ दिख रहा है। हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उसकी वजह से भी सोना और चांदी का दाम भारत के अंदर थोड़ा ज़्यादा था मुकाबले ग्लोबली, अब वो आपको धीरे धीरे नर्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो डर का माहौल था, और डर में हम अक्सर देखते हैं कि

0: सेंट्रल बैंक्स और अन्य कई निवेशक सोना और चांदी को खरीदते हैं, जैसे जैसे वो डर कम होता जा रहा है तो सोने और चांदी के भाव में गिरावट आती हुई दिख रही है, ये कुछ समय तक और आगे चल सकती है।
1: यही है मेरा अगला सवाल आपसे शैलेन जी, क्या ये जो गिरावट है इसका असर आगे जारी रहेगा, क्या भाव और ज्यादा गिरेंगे?
0: आप उम्मीद कीजिए कि सोना और चांदी के भावों में आपको और नरमी दिखेगी, वो इसलिए क्योंकि अब दलाल स्ट्रीट पर शेयर बाजार चहकने लगा है तेजी में, और क्योंकि सबके पास पैसा जो होता है वो कम ही होता है, तो वो सोना और चांदी में से पैसा निकाल के अब आपको शेयर्स खरीदते हुए दिखेंगे। तो उम्मीद कीजिए कि आगे आने वाले 5-6 महीनों में शेयर के दाम बढ़ेंगे और सोना और चांदी के दाम नर्म होंगे।
1: तो सीधा सा सवाल है फिर, निवेशकों के लिए क्या सलाह आप देंगे, खरीदा जाए या वेट की जाए?
0: अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपके पोर्टफोलियो में सोना और चांदी लगभग 10-12% होना चाहिए ETFs के जरिए, ज्यादा सोना और थोड़ा बहुत चांदी, ये आपके पोर्टफोलियो का हेज होगा, जिससे बुरे समय में अगर दोबारा आता है, लड़ाइयां दोबारा छिड़ती हैं, तो सोना और चांदी के दाम बढ़ेंगे और उस वक्त हो सकता है कि शेयर मार्केट के दाम गिरें, तो ये एक हेज की तरह काम करेगा और इसको आप हर साल बैलेंस कीजिए, जहां सोना 12-15% हुआ आपके पोर्टफोलियो को उसको वापस 10% कर दीजिए, जहां सोना गिरा 5-7% पहुंचा उतना सोना आप और खरीद दीजिए। अगर आप बैलेंस रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में लगभग 8-9% ओवरऑल पोर्टफोलियो का सोना, तो आपको लंबी अवधि में एक बहुत आरामदायक अच्छा रिटर्न मिलेगा।
1: बहुत शुक्रिया शैलेन जी इस पूरी जानकारी के लिए, लेकिन सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, वही कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाह रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, यूएस ईरान की गोल्डन पीस डील, स्पेसिफिकली अगर हम भारत की बात करें तो कितना असर भारत पर होगा, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। परिचय करा देती हूं, मेजर जनरल संजय सोई डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एसपी शर्मा चीफ इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश सिंगल जी हैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बुलियन एसोसिएशन से हमारे साथ, प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सोने और चांदी पर ही, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिल रहा है, और जैसे मेरे सहयोगी शैलेंद्र भी कह रहे थे अभी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते तो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से खरीद सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने सलाह दी है कि फिलहाल नहीं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उस पर भी जानेंगे। लेकिन संजय सोई जी, पहला सवाल सीधा आपसे, क्या हम इसको भारत के लिहाज से गोल्डन डील माने?
2: बिल्कुल नवजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप कह रहे हैं सोने चांदी की बात कर रहे हैं, मौका अच्छा है तो एक गोल्डन डील ही कहूंगा मैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ही नहीं, देखिए पूरी दुनिया ही इस डील का काफी इंतजार कर रही थी कि क्योंकि आम आदमी, मेरे और आपके जैसे जो बाकी हमारे साथी बैठे हैं, हमारे दिमाग में हमेशा ये सवाल होता था कब ये जंग खत्म होगी, कब ये शांति होगी। हालांकि भारत में आप देखिए कमी नहीं महसूस हुई हमें तेल की, और पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनें नहीं लगी, कहीं भी मिलता रहा, थोड़ा महंगा हुआ, लेकिन वो तो सिचुएशन है, उसके हिसाब से ग्लोबल रेट के हिसाब से होगा। तो अब ये चीज है, देखिए तेल आना शुरू हो जाएगा, दुनिया में तेल आपूर्ति बढ़ जाएगी, मध्य पूर्व के देश रात की सांस लेंगे, वहां पर जो भारत का इन्वेस्टमेंट है, भारत के जो लोग वहां काम करते हैं उनके लिए फिर अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, और साथ साथ में देखा जाए तो भारत को व्यापार मध्य पूर्व के देश के साथ है, चाहे वो ओमान हो, UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, कतार हो, सभी देशों के साथ भारत का बहुत काफी व्यापार है, और UAE के साथ खास तौर से देखा जाए तो अब सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इन सबको देखते हुए ये बात निश्चित है कि लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ कुछ इश्यूज हैं जो अगर एक मिनट में फटाफट गिना देता हूं कि क्या वो यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो, चाहे वो मिसाइल की रेंज की बात हो, चाहे वो हमास हुती हिजबुल्ला की बात हो, क्या इसराइल इसके साथ खड़ा हुआ है, क्या ईरान टैक्स लेता रहेगा, क्या अमेरिका की जनता इनको जो पैसा देंगे $300 बिलियन जिसमें $24 बिलियन अभी देंगे उसके लिए तैयार है, काफी पेच है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी में एक अच्छी खबर आई है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए, और जिसका स्वागत बाजार ने, शेयर मार्केट ने और क्रूड ऑयल प्राइसेस ने डेफिनेटली किया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर शर्मा आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अब यकीनन गोल्डन डील इसको माना जाए, लेकिन सवाल सर थोड़ा सा इस, हमें इसका गणित इसके पीछे का भी समझाइए। सोने और चांदी के दाम कम हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर अभी देखिए बाजार की बात करें तो 3% की गिरावट के साथ फिर से सोना बंद हुआ है। डॉक्टर शर्मा सर ऑडियो म्यूट है आपका।
3: जी जी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो डेजिग्नेशन है अभी आई एम चीफ इकोनॉमिस्ट एसोचैम, आई एम नो लॉन्गर विद पीएचडी सीसीआई,
1: जी
3: सो प्लीज आप
1: सर
3: इसको चेंज कर लीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और दूसरा जो सोने और चांदी की बात है, जो गिरावट का आपने रवैया बताया, आपने चर्चा की, मेरे से पहले भी एक जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बताया, आपने विचार दिए, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सोने और चांदी में, खास करके जो सोने में भी बढ़त हमने देखी थी पिछले साल में 2025 में एक रिकॉर्ड स्तर पे गया और हर एक महीने ही रिकॉर्ड स्तर पे जा रहा था, तो उसके लिए कारण जो था वो खाली मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया क्राइसिस या फिर जो अभी 2-3-4 वर्षों से जो युद्ध शुरू हुआ वो नहीं था, वो उनमें से एक कारण था। वो टोटल उसकी वजह से ही जो गोल्ड प्राइसेस या सिल्वर के प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे थे। अगर आप देखेंगे कि जो गोल्ड में रैली शुरू हुई असल में वो 2001 में शुरू हो चुकी थी। 2001 में जो गोल्ड के प्राइसेस थे पर ट्रायंस लगभग कोई $271 होते थे पर ट्रायंस, जो बढ़ के लगभग कोई $1,500-1,600 हो गए थे 2011 तक 10 साल में। उसके बाद फिर 2011 से लेके 2021 तक थोड़ा उस पेस पे चले कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी लेकिन गिरावट भी नहीं थी, एक स्टेडी मोड में आगे इंक्रीज हुए, $600-700 और भी इंक्रीज हुए। उसके बाद फिर 2020 से जब कोरोना का संकट था उसके बाद में फिर और तेज गति से बढ़ने लगे। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है वो दैट इज नॉट ओनली सिंगल फैक्टर फॉर द गोल्ड प्राइसेस। आप गोल्ड के प्राइसेस को अगर देखेंगे तो 2001 से निरंतर बढ़ रहे हैं, बीच में ऐसी फ्लक्चुएशन आती हैं, जैसे आज हम गिरावट देख रहे हैं, तो मैंने ऐसी गिरावट 2008 में भी देखा था, इससे पहले भी बहुत बार ऐसी गिरावट आती है और बहुत बार तेजी आती है। तो आप इसका जो ओवरऑल जो इसका लॉन्ग टर्म ट्राजेक्टरी है, जो लॉन्ग टर्म इसकी ग्रोथ मोमेंटम है, उसको अंडरमाइन करके ना चले, मेरा ये सलाह है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड की परिस्थितियां रहेंगी वो ऐसे ही थोड़ी, अभी जो पीस है वो भी फ्रेजाइल है, आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है और उसके लिए जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उनमें भी एक नर्म रवैये की जरूरत पड़ेगी, खास करके यूएस में भी फेड को नर्म रवैया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो यूएस के इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाएंगे जो अभी जिसका ग्रोथ रेट जो है वो डिसिलेरेट कर रहा है, जो अभी IMF ने जो पहले आंकड़ा दिया था वो लगभग कोई 3.5% का था, उससे कम करके करते करते वो अब 2.3% पे अभी आ गया है, जो पहले काफी हाई पे था। लेकिन धीरे धीरे जो गिरावट है ये GDP में, उसको आगे बूस्ट करने के लिए वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है उनको बूस्ट करने के लिए सरकार को वहां पे जो फेड है उसको नर्म रवैया बनाना पड़ेगा, जिससे कि गोल्ड को सपोर्ट मिलेगी। और दूसरा कारण क्या है कि जो आपने सेंट्रल बैंक्स की बात की कि उन्होंने पहले गोल्ड के ऊपर बहुत तेजी से खरीदारी की लेकिन अभी वो शायद नहीं कर रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है। गोल्ड के ऊपर उनकी खरीदारी अभी नहीं शुरू हुई, ये काफी वर्षों से चल रही है, जिसमें वो गोल्ड ज्यादा अपने रिजर्व्स में रख रहे हैं, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज का बिल्डअप करने में जुटे हैं, जो हम पिछले काफी वर्षों से देख रहे हैं। ये जरूर है कि अभी क्रूड प्राइसेस ऊपर गए थे, शायद डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज हुई जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो गोल्ड में बाइंग है उसको थोड़ा पॉज किया हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आप इन सब चीजों को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के ऊपर कोई ऐसा संकट नहीं है कि उसके प्राइसेस,
1: यानी आज भी जो हम कहते थे सेफ हेवन है, आज भी गोल्ड बिल्कुल सेफ हेवन ही माना जाएगा। एक बार प्रोफेसर
3: मैं बिल्कुल इसको सेफ हेवन मानता हूँ, मैं इसको लॉन्ग टर्म में जो इसका ट्राजेक्टरी है जो 2001 से निरंतर बढ़ रहा है, जिसको ETF की बहुत सपोर्ट मिली है, ETF के आने के बाद ही गोल्ड में रैली थी जो 2001 में शुरू हुई, और मैं समझता हूं कि ऐसी टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी। हो सकता है ये इस मोड में गोल्ड 6 महीने लगा दे या 1 साल लगा दे, लेकिन गोल्ड को अखीरी ऊपर ही जाना है। और गोल्ड का मैं जो प्राइस समझता हूं कि कोई भी एसेट, चाहे वो स्टॉक मार्केट है चाहे वो रियल स्टेट है, आने वाले टाइम में गोल्ड के जो रिटर्न्स हैं वो उनसे ज्यादा ही रहेंगे।
1: बिल्कुल, चलिए तो सर लौटती हूं एक बार प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ आपके पास आते हुए। आपको याद हो प्रोफेसर साहब, क्योंकि पिछले कई चर्चाओं में हमने इसको लेकर भी बातचीत की कि प्रधानमंत्री ने अपील की थी और बहुत हद तक लोगों ने इस पर अमल भी किया कि गोल्ड न खरीदे, अपना जो पुराना सोना है उसी को आप यूज करें, कुछ हद तक उस पर अमल हुआ भी है। सर अब क्योंकि हालात सामान्य हो रहे हैं, खबर आ रही है हम इसको गोल्डन डील के तौर पर देख रहे हैं, तो क्या ये जो लोगों ने अपनी तरफ से सोना खरीदना बंद कर दिया था उनके लिए फिर अब आप क्या सलाह देंगे? कब तक इस अपील पर गौर करना चाहिए, मानना चाहिए? क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अभी आप ही लोग बता रहे कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड सबसे अच्छा है और बिल्कुल इसे सेफ हेवन माना जाता है। यकीनन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इंतजार कर रहे होंगे कि प्राइसेस कम है तो अभी खरीद लिया जाए। सलाह उनके लिए क्या है प्रधानमंत्री की अपील को भी देखते हुए?
4: नवजोत जी, आज का दिन बहुत बड़ा दिन इसलिए है पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए, जो अमन पसंद लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि जिस वजह से लास्ट वीक ऑफ फरवरी से पूरी वर्ल्ड में अनिश्चितता का माहौल था और निवेशकों में जो डर का माहौल था, तो निवेशक जो है ना वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से और गोल्ड को खरीदने से रुक रहे थे। अब यूएस ईरान की जो गोल्डन पीस डील हुई है इसके मायने क्या है, इसको अगर मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूं, समझौते के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग $78 प्रति बैरल के हिसाब से आ गया है, जो युद्धकालीन के ऊंचाई से काफी नीचे है। यानी कि भारत आज की डेट में 85% से अपनी आवश्यकता का आयात करता है, इसलिए तेल सस्ता होने से निवेशकों में भरोसा बढ़ा है। दुनिया के स्टॉक मार्केट्स, खासतौर पर भारत की बात करें तो भारत का स्टॉक मार्केट में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। अगर मैं तेल की कीमतों की बात करूं तो इसका फर्क क्या पड़ता है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि $1 में $10 की भी गिरावट आती है तो अरबों डॉलर का कमी भारत के आयात बिल में होती है। यानी कि इसको मैं एक और सरलीकरण करके बताने की कोशिश करूं, करंट अकाउंट डेफिसिट में जो है ना घाटा जो दबाव पड़ रहा था वो कम मिलेगा, राहत होगा, और राजकोषीय घाटा जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कम होगा। और इससे होगा क्या, भारत के अंदर आखिर क्या परिवर्तन हम देखने को अभी शॉर्ट टर्म में ही मिलेगा ये देखने को, महंगाई की में जो बढ़ रही थी उसमें राहत मिलती देखते हैं। और निश्चित तौर पर जो CPI था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, जो 4.46% नवज्योति चला गया था, वो तेल के सस्ता होने से हमारा लॉजिस्टिक, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारा उर्वरक, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट और जो खाद्य की जो फूड इन्फ्लेशन था वो कहीं ना कहीं नीचे दिखते मैं देख रहा हूं।
1: सही कह रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर दिनेश बात तो यही है ना, अभी तो डील हुई है, मेरा सवाल यही है कि ग्राउंड पर ये कब तक नजर आएगा? महंगाई आपने कहा कि कम हो सकती है, यकीनन इसका सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ संबंध है, लेकिन ग्राउंड पर ये कब नजर आना शुरू होगा?
4: मैडम देखिए, जब भी हम लोग अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक्स में या किसी पॉलिसीज में देखते हैं तो क्वार्टरली इकोनॉमी की चाल को हम लोग देखते हैं। मैं मानता हूं कि अभी आने वाले एक क्वार्टर में यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर में इसके असर देखेंगे और विश्व वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो डॉलर 95.7 लेवल 96 के आसपास चला गया था, डॉलर का प्राइस घट रहा है और रुपया मजबूत हो रहा है, इससे हम निश्चित तौर पर मैडम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव संकेत है और भारत के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। जितने भी पैनल में जो हमारे साथी लोग बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं, हमारे जो जो जो पहले के पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि निश्चित रूप से भारत के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। और निश्चित हो क्या रहा है कि जब तेल का आयात बिल घटता है तो डॉलर की मांग कम होती है, इससे रुपए की दर पर दबाव कम होता है, जो कि हमें देखने को तुरंत दिख रहा है मैडम। और वो तुरंत इसलिए दिख रहा है, जैसे आपने कहा कितने दिनों में दिखेगा, इसके इम्पैक्ट की जो कैलकुलेशन है वो तो हम लोग 3 महीने में कर पाएंगे, लेकिन तुरंत इस बात का हम लोग प्रभाव आजकल देख सकते हैं जो कि पॉजिटिव संकेत है। और इसमें जो RBI के लिए जो प्रश्न एक जो पॉलिसीज की बात होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी से हम कैसे हम लोग जो अपना वित्तीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, इसको कम कर सकते हैं, उसकी ओर जो एक दबाव आ रहा था वो कहीं ना कहीं हमें कम होता दिख रहा है। तो ये सबके लिए खुशी की बात है, जो व्यापार घाटा कम होने की उम्मीद है, और निश्चित रूप से विदेशी निवेशकों का विश्वास भी मजबूत होगा, और भारत एक अर्थव्यवस्था जो
1: बिल्कुल
4: कि लगभग लगभग तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी, जो पांचवें और छठवें नंबर पर खिसक गई थी, निश्चित रूप से हम पर आने वाले क्वार्टर में चौथे नंबर पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही हम लोग अपने आप को पाएंगे।
1: यकीनन पूरी दुनिया ने, सही कहा प्रोफेसर दिनेश, पूरी दुनिया ने इसको लेकर राहत की सांस ली है। सीधा योगेश सिंघल जी आपके पास आते हुए, ये खबर सराफा बाजार के लिए क्या एक बड़ी गुड न्यूज लेकर आई है?
5: सराफा बाजार में एक तो फेड रेट पे हमारा ध्यान था कि भी फेड रेट में कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या घटाते हैं, क्या करते हैं। जापान ने भी अभी 25 बेसिस पॉइंट अपने बढ़ाए हैं ब्याज दर, और अमेरिका ने अनचेंज रखा है। तो इसमें भी बहुत बड़ा दबाव था बाजार में, और उसकी जैसी घोषणा हुई तुरंत से ही रात को ही बाजार टूट गया। और दूसरी चीज, जो ये समझौता हुआ है इसका भी असर होगा क्रूड का, जो जैसा बताया हमारे पूर्व पैनलिस्ट ने कि भाई आयात बिल घटेगा तो हमारा रुपया मजबूत होगा, तो उससे भी सोने में गिरावट आती है और कमिक्स में भी। तो दोनों चीजों से ही गिरावट आने से सोने के भाव में अभी और मंदी देखने को मिल सकती है।
1: निवेशकों का रुख कैसा है सोने को लेकर?
5: निवेशक तो अभी गायब है बाजार से, अभी तो ग्राहक भी गायब है, अभी ज्वेलरी की भी कोई डिमांड ज्यादा नहीं है अभी। और निवेशक तो 1,30,000 आया था पहले, अभी 1,46,000 होकर जब परिपक्व हुआ तब भी निवेशक गायब है। मुझे ऐसा लगता है कि निवेशकों के घर में माल फंसा हुआ है ऊंचे भाव का, जो कि वो अभी नीचे भाव में खरीदारी नहीं कर पा।
1: क्या इसको हम प्रधानमंत्री की अपील का असर भी देख सकते हैं?
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी की अपनी एक डिग्निटी है, एक अपना ओरा है, और काफी लोग मानते हैं। एक ज्वेलर ने तो अपना शोरूम ही बंद कर दिया था, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो लोग वो मानते हैं प्रधानमंत्री जी की बात को, और ये निवेशकों के हित में भी है। अगर प्रधानमंत्री जी की बात मान के 1,000 टन सोना एक साल में अगर हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं तो ये बहुत सस्ता हो जाएगा फॉरन में, क्योंकि हम बहुत बड़े खरीदार हैं सोने के। तो तैयारी माल अगर नहीं बिकेगा तो इसमें मंदी आएगी। अगर निवेशक थोड़ा सा पेशेंस रखता है तो उसको बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। जो उसने अपनी गाड़ी छोड़ दी थी वो सारे भाव नीचे के मिलेंगे, क्योंकि 9% कस्टम ड्यूटी भी बढ़ी हुई है, और 12% का तकरीबन रुपए में कमजोरी है। 21% अगर देखें तो 30-32 हजार रुपए तो सोने का भाव आज की तारीख में भी कम है। तो ये भाव, हमें 1,00,000 रुपए तक की उम्मीद थी जो अब बढ़ के 1,30,000 रुपए तक का टारगेट हो गया है। तो यहाँ अच्छी बाइंग बनती है निवेशकों की, और लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग बनती है, क्योंकि तो ऊपर के भाव में फंसने से हो सकता है उनको काफी वेट करना पड़े, और वो कहीं ना कहीं निवेशक जब घबरा जाता है तो पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग में आ जाता है। जैसे पीछे भी हुआ कि 4 लाख के भाव में लाओ चांदी लाओ सोना, 1.5 लाख से ऊपर चलती, 1.25 लाख, 2 लाख, 1,93,000 रुपए तक सोने की डिमांड रही। लेकिन अभी हम देखने में आ रहा है कि कोई भी सोने चांदी का निवेशक बिल्कुल बाजार में नहीं आ रहा है, और वो पूछता है कि भाई भाव कब बढ़ेंगे, यानी कि वो तेजी चाहता है, लेकिन बाजार में अभी तेजी आने को तैयार नहीं है।
1: बिल्कुल, अब जुनसोई आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए यकीनन हम कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, और तमाम मुल्कों में, खासतौर पर अगर हम अमेरिका की भी बात कर ले तो वहां भी कहीं ना कहीं मंदी को लेकर चर्चाएं हो रही थी, संकेत मिल रहे थे, और हर जगह भारत की भी बात कर लेते हैं, महंगाई यहां पर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। राहत कितनी मिलने वाली है, कहां कहां राहत मिल सकती है, और कितने समय में?
2: इसमें कोई शक नहीं है, एक थोड़ा सोने की बात मैं अपने यूजर एंगल से बता दूं, बाकी सभी एक्सपर्ट हैं।
1: बिल्कुल,
2: कि जब हम थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं तब बाकी एरिया ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, पर जब हम सुरक्षित हो जाए तब हम सोना शुरू से ही हिस्टोरिकली एक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है कि कभी भी इमरजेंसी में हम सोना खरीदें। ये भारत की साइकोलॉजी में है शायद, और जिसकी वजह से एक इसको खरीद के रखा जाता है। ये तो बात, एक छोटी सी बात मैंने कहा कि एक यूजर एंगल से मैं बता दूं कि ये है। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर अगर ये शांति होती है तो देखिए कौन परेशान था। एक तो बायर परेशान थे, चाहे भारत हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, यूरोप हो, या अमेरिका के अंदर भी तेल की कीमतें बढ़ गई, दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने से ये आम आदमी को दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, और ये खतरा लगाया जा रहा था कि स्लो डाउन इकोनॉमी का ना हो जाए और रिसेशन में ना चली जाए, जिसकी वजह से काफी चिंतित थे। प्रेशर अमेरिका को बहुत था, साथ साथ में ना केवल बायर्स बल्कि सेलर्स भी। आप देखिए मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं, जो चाहे वो सऊदी हो, कतार हो, ओमान हो, यूएई हो, इराक हो, उनकी इकोनॉमी किससे चल रही है? तो तेल बेच के चल रही है। अगर ये तेल इनका नहीं बिकेगा, वहीं पे दुनिया भर के झंझट है और उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट और निकल ही नहीं रहा वहां से, तो इनकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ गया। दूसरा, वहां पे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर काफी भाग गए वहां से, और वहां पे एक इकोनॉमी उनकी काफी स्लो डाउन हो रही है वहां। उसकी वजह से भी, जो एक हब है, उसकी वजह से भी आज दुनिया में एक इकोनॉमी को शांति से फिर एक चर्न मिलेगा, दोबारा से एक मूवमेंट शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया में इकोनॉमी का। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खबर है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, तेल की कीमतें कम होने से जिसका असर, जैसे हमारे बाकी साथियों ने बताया, कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर पड़ेगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी और एक आम आदमी को फर्क पड़ेगा, उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो मैं मानता हूं, मैं तो हर तरह से स्वागत करता हूँ। देखिए, बातचीत जरूरी होती है, बातचीत से ही एक एक छोटा छोटा हल निकलता है। आज मान लीजिए छोटी सी बात, मान ली उन्होंने ब्लॉकेट हटा दिया और वो हॉर्मोन से हट गए, तेल आलस हो गया, बाकी कंडीशन भी धीरे धीरे 60 दिन में होंगी कि एनरिचर यूरेनियम कहाँ जाएगा, मिसाइल्स की क्या वो रेंज कम करेंगे या
1: जी
2: मिसाइल बना कर रखेंगे, या फिर जो बाकी इनका आर्मी के ऊपर है, या फिर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के तरफ में अमेरिका की सेना कम करना है, ये सब चीजों में बातचीत चलती रहेगी। लेकिन एक शुरुआत अच्छी होना बड़ा
1: बिल्कुल
2: जरूरी था नवजोत जी।
1: बिल्कुल। चलिए, तमाम खास मेहमान आप हमारे साथ बने रहिए। यूएस ईरान की गोल्डन पीस डील को लेकर चर्चा हम आगे भी करेंगे। फिलहाल यहां पर एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।

0: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
1: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
2: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: डील को लेकर चर्चा आज हो रही है और इसका असर सराफा बाजार पर कितना पड़ रहा है, सोने चांदी के दामों पर इसका कितना असर पड़ रहा है, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर एसपी शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी। सर, अगर आपको याद हो, तनाव जिस तरीके से बढ़ा था, भारत में खुद प्रधानमंत्री ने अपील की थी, लोगों से कहा था कि आप सोना नहीं खरीदिए, पुराना सोना जो उसको रीयूज कीजिए। इसके अलावा कारपूलिंग की बात हो रही थी, तमाम ऐसे मेजर्स थे जो भारत ने अपनी तरफ से उठाए थे। इस डील से कम से कम ये तो लग रहा है कि भारत अब राहत की सांस ले सकता है, लेकिन इसके बाद अगर हम खासतौर पर सिर्फ सराफा बाजार की बात की जाए, अभी अगर देखा जाए तो अधिक मास चल रहा था, ज्यादातर लोग पहुंच नहीं पा रहे थे खरीदारी करने के लिए, लेकिन अब थोड़ा समय है जब शादियों के सीजन की शुरुआत हुई है। ऐसे में आपकी सलाह क्या रहेगी, चाहे वो एक नॉर्मल जिसको जरूरत का सोना खरीदना हो, एक आम व्यक्ति जिसको जरूरत का सोना खरीदना है उसके लिए, या फिर कोई निवेशक हो जिसको खरीदना है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, क्या सलाह आप उनको देंगे?
1: देखिए, इसमें मेरी सलाह ये रहेगी कि जो वॉलेटिलिटी है, जो अभी अनसर्टेनिटी है, चाहे वो थोड़ी कम होगी क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी सेटल होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो पीस है जो अभी फ्रेजाइल है या जैसे भी है, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी तो कम हुई है जिसकी वजह से प्राइसेस में जो है एक करेक्शन आई है। लेकिन इस दौर में अब निवेशक को क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि स्टेप्स में, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आज के जमाने में जिस तरीके से परिस्थितियां चेंज होती हैं, शाम के टाइम स्थिति कुछ और होती है, सुबह उठते हैं तो कुछ और होती है, तो हमें एक ग्रेजुअल अप्रोच से चलना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करना है तो वो भी ग्रेजुअल होना चाहिए, जो सिप है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट होती है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होती है। और अगर कोई अपने तरीके से भी करना चाहता है तो उसको स्टेप्स में ही करना चाहिए, ना कि एक ही सिंगल गो में। मान लीजिए किसी का कोई फंक्शन है, कोई वेडिंग है या कोई और फंक्शन है तो उसको गोल्ड की जरूरत है, तो एक ही बार में मत खरीदें, थोड़ा उसको स्टेप्स में खरीदें, थोड़ा वेट करें। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल 1,00,000 रुपए का सोना खरीदना चाहते हैं तो उसको मैं समझता हूँ कि 4 स्टेप्स में 25-25 करके खरीदा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे जो वॉलेटिलिटी है उसका भी एक लाभ हो सकता है। और दूसरे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो गोल्ड की बात हुई थी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गोल्ड के ऊपर हम अगर थोड़ा उसका जो खरीदारी है वो थोड़ा टाल दें, वो बिल्कुल उनकी बहुत सही सलाह थी, क्योंकि गोल्ड में एक तो प्राइसेस बहुत हाई हैं और दूसरा जो हमें डॉलर की बहुत जरूरत अभी महसूस हुई, जो जब क्रूड प्राइसेस बढ़े तो उसमें एक स्वाभाविक सी बात है कि जब डिमांड पर डॉलर इंक्रीज होती है तो हम डॉलर को उस चीजों में ना लगाएं जिनकी अभी जरूरत नहीं है, जो हम आने वाले टाइम में जिनको पोस्टपोन कर सकते हैं, और हमें जो इसेंशियल चीजें, जो जैसे कि हमारा एनर्जी है, एनर्जी के बिना हम नहीं चल सकते, तो उसके लिए उसके ऊपर तवज्जो दी गई, वो बिल्कुल सही एक स्टेप था। और तीसरे नंबर पे मैं ये बताना चाहता हूं कि जो घरों में जो गोल्ड है, जो बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक जो गोल्ड के भंडार हैं वो लगभग कोई $5 ट्रिलियन के बराबर है, अगर हम जो टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं उनका कुल गोल्ड मिला लें तो उससे भी ज्यादा हमारे जो डोमेस्टिक गोल्ड है हमारे पास है, तो उसके मद्देनजर अगर सरकार कोई ऐसी स्कीम लेके आए कि जिससे वो एक बहुत ही लुक्रेटिव स्कीम हो, जो कि गोल्ड को लोगों में अगर वो 1% या 2% भी अपना गोल्ड जो है वो फाइनेंशियल चैनल में ले आते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, तो उनको एक अच्छा भरपूर लाभ मिले तो उससे काफी गोल्ड जो है वो बाहर आ सकता है। जैसे कि अभी सरकार ने NRIs के डिपॉजिट्स के ऊपर एक स्कीम रखी है कि डॉलर डिपॉजिट के ऊपर एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो उसी तरीके से जो गोल्ड के ऊपर भी कोई ऐसी स्कीम अगर सरकार लेके आए जो ज्यादातर जो लोगों के बेनिफिट में हो, तो उसे गोल्ड में एक अच्छी जो है उसका चैनलाइजेशन हो सकता है फ्रॉम फिजिकल एसेट टू फाइनेंशियल एसेट। जैसे गोल्ड लोन में बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है, गोल्ड लोन बहुत लोगों ने लिया है जिसे कि कम से कम जो गोल्ड है लोगों ने लोन लेके उसको किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम में लगाया होगा तो कम से कम उसका यूज तो हुआ, लेकिन आने वाले लेकिन वो स्कीम आगे नहीं चली। तो एक कुल मिला के एक अच्छा अगर कोई स्कीम आती है जिससे कि जो लोग हैं उनको अच्छा लाभ मिले तो बहुत सहायक हो सकती है, बहुत सारा गोल्ड जो है बाहर आ सकता है।
0: ठीक है प्रोफेसर,
1: तो ये मेरे कुछ सुझाव है जो आने वाले टाइम में जो क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस तो फिर वॉलेटिलिटी आएगी, वो
0: ठीक
1: स्वाभाविक
0: है
1: है। आप
0: ठीक
1: 10 दिन
0: है।
1: के बाद और वॉलेटिलिटी देखेंगे,
0: हाँ
1: और हो सकता है आप 10 दिन के बाद बढ़त देखें, वापस रिबाउंड करें, तो
0: इसी
1: ये सब सिलसिला चलता रहेगा।
0: ठीक है, इसी पर एक बार प्रोफेसर धीरेश आप क्या कहेंगे, क्या इस तरह की स्कीम्स की जरूरत है? क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति आगे कभी इन फ्यूचर आती है, अब देखिए यहां तक प्रधानमंत्री को अपील करने की जरूरत पड़ेगी कि लोग सोना नहीं खरीदें। अगर हम भारत के लिहाज से देखें, अपने देश के लिहाज से देखें, तो ऐसी स्कीम्स की क्या और जरूरत है हमें?
2: निश्चित रूप से मैडम, क्या था, जिस जिस दौर से विश्व की अर्थव्यवस्था गुजर रही थी फरवरी लास्ट वीक से लेके इस यूएस और ईरान युद्ध के कारण, प्रधानमंत्री जी को अपील करने का मूल कारण जो मुझे लगता है, डॉलर के जो रेट थे वो 96 टच कर गए थे। तो
0: बिल्कुल
2: जब हम सोने को खरीदते तो निश्चित रूप से हमारा और रुपया कमजोर होता। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को या पॉलिसी मेकर्स को आगे आके एयरलाइंस को अभी कहने की जरूरत है। अभी देखते हैं, एक दो वीक के अंदर अगर प्राइसेस घटते हैं, चूंकि 79 और 78 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, जो 112 के आसपास था लगभग, तो मुझे मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स को अभी रेट डाउन इंडिया के अंदर करना चाहिए, जिससे कि एयरलाइंस के जो प्राइसेस हाइक्स हुए हुए हैं भारत के अंदर वो कम हो। पेंट, केमिकल, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनमें जो है ना उनको आगे आकर के प्राइसेस कट डाउन करने की जरूरत है। रही बात जो हमारे पास जो जियोपॉलिटिकल डायमेंशन से जो टेंशंस था वो कम हो रहा है, ये बहुत अच्छा खबर है, गुड न्यूज है। और चूंकि गुड न्यूज टुडे चैनल ने इसको दिया है, तो मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि गुड न्यूज टुडे का ये अथक प्रयास रहा है कि ऐसे विषयों पर, ऐसे व्यापक विषयों पर हम लोग हमेशा ही बात करते हैं। तो इस वक्त जो सुरक्षित सेफ हेवन है वो
0: हाँ
2: निवेश है हमारे यहाँ का स्टॉक मार्केट है।
0: ठीक
2: और
0: है
2: बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो आरबीआई के ऊपर मैडम दबाव था, कि आरबीआई जो है ना ब्याज दरें बढ़ाने का जो दबाव हो रहा था कि ब्याज रेट बढ़ने वाली है, ईएमआई बढ़ेगी, निश्चित रूप से जो है ना होम लोन पे भी बढ़ने वाला है, तो एक जो है ना जो रियल एस्टेट के अंदर एक डर का वातावरण पैदा हो गया था, मुझे लगता है कि वो घटेगा। इससे हमारे देश की व्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था है उसको, विकास को जो है ना समर्थन देने वाली ये शांति नीति है। निश्चित रूप से गोल्डन पीस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, पीस पीस
0: ठीक
2: डील
0: है
2: है। और सबसे बड़ी बात एक जो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, जो कि आपके खबरों में भी आ रहा है, कि 2025-26 में
0: हाँ
2: 863 बिलियन डॉलर के आसपास जो है ना हमारा रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया भारत के निर्यात का, जो कि 441 हुआ करता था। कुल भारत का कुल निर्यात जो है ना 441 बिलियन डॉलर से बढ़कर के इस साल 2025-26 में 863 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, यानी कि लगभग दोगुना हो गया है।
0: ठीक
2: ये
0: है
2: बहुत बड़ी गुड न्यूज है, और
0: हाँ
2: इसलिए गुड न्यूज है क्योंकि इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि भारत ने भले ही पूरी विश्व में जो है ना एक अनिश्चितता का माहौल था और बहुत बड़ी टेंशन थी, भारत ने दूसरे तरीके ढूंढ लिए जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रूप से मजबूत है।
0: ठीक है
2: जबकि आईएमएफ ने मैडम डिक्लेरेशन दिया है कि -3.1 जो है ना ग्लोबल जीडीपी का रिडक्शन रहेगा,
0: ठीक है
2: उस ऐसे माहौल में 441 बिलियन डॉलर से बढ़ा करके 863 बिलियन डॉलर तक ले जाना अपनी अर्थव्यवस्था को, ये
0: इस
2: सराहनीय
0: पर
2: कदम
0: एक
2: है।
0: हाँ इस पर एक जवाब मेजर जनरल संजय सोई आपका बनता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो कहें योगदान है वो डिफेंस सेक्टर का है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य दिया गया था उस पर काफी हद तक भारत आगे बढ़ रहा है।
1: कोई शक नहीं है कि देखिए, जब सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, पर डिफेंस सेक्टर की जब बात होती है तो इस साल प्रोडक्शन, रिकॉर्ड प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ गया है, और एक्सपोर्ट भी तकरीबन 38,000 करोड़ गया है, जो कि आप समझिए कि 2014 में तकरीबन 681 करोड़ हुआ करता था। ये बढ़ोतरी दिखा रहा है कि आज जो हमारा फोकस रहा है आत्मनिर्भरता के ऊपर, ये आत्मनिर्भरता ही अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ मिलती है तो उससे ना केवल नौकरियां मिलती हैं बल्कि इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, ओवरऑल एंसिलरी इंडस्ट्रीज काफी बन जाती है, ये पूरा इको सिस्टम जब डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ती है तो उससे आपका इको सिस्टम डेवलप होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो छोटे छोटे बॉल बेयरिंग हो, टायर हो, सस्पेंशन सिस्टम हो, बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं। और एक्सपोर्ट के द्वारा तकरीबन अगर हम 100 के लगभग देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक संबंध, एक अच्छी दोस्ती, और एक तरह से हमें फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है जैसे हमारे साथी बता रहे थे, और हमारे देश में नौकरियां भी ज्यादा मिल रही हैं, हर तरह से मेरे हिसाब से विन विन सिचुएशन है। बहुत
0: बिल्कुल
1: अच्छा एक डायरेक्शन दी गई, मूवमेंट
3: आत्मनिर्भरता का
0: बिल्कुल, हथियार खरीदने से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ज्यादा फोकस हो रहा है, चाहे वो रूस हो या फिर इसराइल हो। चलिए जल्दी से एक बार सर, सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि क्या सोने के दाम और कम होंगे या फिर आगे जारी रहेंगे? योगेश सिंघल जी, आपके पास सीधे तौर पर आना चाहूंगी, अब क्या करें, उम्मीद रखें कि और कम आएंगे या फिर यहां से आगे गोल्ड और सिल्वर दोनों बढ़ेंगे?
4: मैंने पिछले शो में भी कहा था, पैड लगी ली उसी दिन भाव बल के बढ़ गए थे थोड़े, लेकिन अभी सोने में मंदी है, निवेशक को बहुत धैर्य रखना चाहिए, पैनिक बाइंग में नहीं घुसना चाहिए। $4,000 से $3,500 के बीच में उसको धीरे धीरे SIP के तौर पे या जैसे भी बाइंग करते रहना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। अभी निवेशक शेयर बाजार की तरफ भी मूव कर सकता है, उसकी तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि शेयर बाजार में अभी काफी गुंजाइश है बढ़ने की। तो अभी गोल्ड और सिल्वर में तो अभी थोड़ा सा मंदा ही दिमाग में रखना चाहिए, बहुत ज्यादा जो तेजी 2025 की देखी थी उस तरह का दिमाग अपना अपने नहीं बनाना चाहिए।
0: और फोमो बायर्स के लिए आप क्या कहेंगे, फिर ऑफ मिसिंग आउट, तमाम ऐसे बायर्स भी होते हैं, फटाफट से जाइए और खरीद लीजिए।
4: इनको फोमो हुआ था, अब उनका फोमो जो है ना, वो ग्राहक हम चाहते हैं कि ये भाव में 1,40,000 1,45,000 जैसे 1,46,000 से पलटा बाजार, तो यहाँ पे जो फोमो वाले ग्राहक हैं यहाँ पर वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, उनको आना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि तेजी वो चलते हुए जहाज, उड़ते हुए जहाज में बैठना चाहता है हर आदमी, आगे नहीं खाना चाहता है। अभी शेयर बाजार है जैसे घटा हुआ है, अभी सोने का बाजार है जैसे अभी घटेगा, 20-25 हजार रुपए घटते हैं यहाँ से, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी और सेफ बाइंग रहेगी जो कि कभी भी नुकसान नहीं देगी।
0: ठीक है, जल्दी से डॉक्टर शर्मा, क्या पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है? डॉक्टर शर्मा, आपसे सवाल है, इस गोल्डन पीस डील के बाद जो गुड न्यूज आई है उसको देखते हुए क्या अपने पोर्टफोलियो में चेंज किया जाए या सेम ही रखा जाए? प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ, आप इसका जवाब रख दीजिए, लगता है आवाज नहीं जा रही। जी
2: बिल्कुल नवजोत जी, मुझे लगता है इस वक्त जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये बहुत आगे जाने वाली है, तो पोर्टफोलियो में बदलाव की आवश्यकता है। और मैं ये सहमत करता हूँ सिंघल साहब से और अन्य हमारे जो साथीगण हैं कि जो आभूषण है, जो सिल्वर और जो आपका गोल्ड है, वो अभी मंदी के दौर से गुजरेगा आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि अब वो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। यानी कि जो आप कह रहे हैं कि क्या पोर्टफोलियो चेंज करना है, निश्चित रूप से पोर्टफोलियो चेंज करने का ये राइट टाइम है।
0: बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस गोल्डन डील का असर भारत पर कितना होगा और कितनी बड़ी गुड न्यूज ये भारत के लिए, खासतौर पर भारत के सराफा बाजार के लिए, इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
3: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
2: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
4: Williams keeps it. First down. Touchdown!
2: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
5: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेश ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की थी, तो गुड न्यूज टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने के लिए कह रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर दिखाएं और उन पर्यटक स्थलों तक लोग पहुंच सके, सैर सपाटा कर सके। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बिहार के रोहतास लिए चलते हैं, जहां कैमूर की पहाड़ियों के बीच गुप्त धाम वाटरफॉल आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
13: ऊंची नीची घुमावदार पथरीले पहाड़, गुफा के भीतर जलते हुए दिए और कुदरती सुंदरता में सिमटी अलौकिक आस्था। अगर आप सोचते हैं कि बिहार सिर्फ इतिहास और मैदानों का प्रदेश है, तो कैमूर की इन वादियों को देखिए। घने जंगलों के बीच गूंजती झरने की आवाज, चारों तरफ फैली हरियाली और एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जिसके भीतर खुद महादेव विराजमान है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास में मौजूद गुप्त धाम की है, जिसे गुप्तेश्वर धाम भी कहा जाता है। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां प्रकृति का रोमांच भी है और महादेव की भक्ति का सुकून भी है। लेकिन इस पवित्र गुप्त धाम की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप इस शीतल कुंड वाटरफॉल का दीदार न कर ले। पहाड़ों की ऊंचाई से गिरता ये वाटरफॉल इतना खूबसूरत है कि इसे देखकर आपकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। इस झरने का पानी गर्मियों में भी बर्फ जैसा ठंडा रहता है, इसीलिए इसे शीतल कुंड कहा जाता है। रास्ते में पड़ने वाली सुगवा नदी और पहाड़ों के बीच बहते छोटे छोटे झरने इस पूरे ट्रैक को किसी जन्नत जैसा बना देते हैं। रहस्यमय गुफा के लगभग 360 फीट अंदर जाने पर कुदरती तौर पर बना एक स्वयंभू शिवलिंग दिखाई देता है, जिस पर सदियों से प्रकृति खुद पानी की बूंदों से अभिषेक कर रही है। प्रकृति और भक्ति के इस अद्भुत संगम तक पहुंचना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। कई किलोमीटर पहाड़ी रास्ता, इसके बाद घने जंगलों से होते हुए छोटे छोटे कई झरनों को पार करते हुए लगभग कुछ ही किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है, जो ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी एक यादगार लम्हा है। सावन के महीने में और महाशिवरात्रि पर तो यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है, मानो पूरा कैमूर पर्वत बोल बम के नारों से गूंज रहा हो। लोग गंगा जल लेकर बाबा गुप्तेश्वर नाथ पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप भी प्रकृति की गोद में सुकून के दो पल बिताना चाहते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो बिहार का ये गुप्त धाम आपका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: तो अगर आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव या शहर में सैलानियों को इनवाइट करना चाहते, करना सिर्फ इतना है आपको कि अपने आसपास की किसी भी खूबसूरत जगह का वीडियो बनाइए और इसे हमें तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए 7303409922 पर। हम आपका भेजा हुआ वीडियो गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: क्या बृहस्पति की वजह से जीवन के संस्कार कमजोर होते हैं? क्या बृहस्पति की वजह से बड़ी और गंभीर बीमारियां होती हैं? कौन सी हैं बृहस्पति की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
1: जाएगा. And experience breathtaking IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
2: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है.
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाएगी. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाएगी. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाएगी. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे.
3: इस तपती जलती गर्मी के बीच अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो है मानसून का और अच्छी बारिश का. देखिए भले मानसून ने देरी से दस्तक दी है, लेकिन हम सब इंतजार कर रहे हैं कि हमारे शहर में फुहारे कब बरसेंगे. तो पहली बात तो देरी क्यों हुई है इसको लेकर आज चर्चा करेंगे. और आपके शहर में कब मानसून दस्तक देगा इस पर आज चर्चा होगी. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा. स्वागत है चाय पर चर्चा में.
9: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा. देखिए मानसून की बात हम करेंगे, लेकिन मानसून देखिए भले ही अभी दिल्ली से थोड़ा दूर हो, लेकिन यहाँ लगातार पारा जो है ना वो कंट्रोल में, इससे थोड़ा बहुत तो खुश हम जरूर है.
3: क्योंकि टेंपरेचर डिप है.
9: आई नो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को थैंक यू हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि उसकी वजह से बार बार टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में आता है. एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है. लेकिन यहाँ कि अगर हम बात करें तो खबर यह है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसके चलते दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल सकता है. तो इस खबर पर आगे हम बात करेंगे.
3: नमस्कार, मैं शुगुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में. आज आपकी मुलाकात ऐसे महायोगी के साथ करवाएंगे जिनके नाम 36 घंटे से ज्यादा सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड है. योग के ये साधक एक बार नहीं बल्कि 6 बार सूर्य नमस्कार से

0: ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात, निवेश, तकनीक और औद्योगिक सहयोग पर चर्चा। दिल्ली एनसीआर में बदल सकता है मौसम का मिजाज, 21 जून तक मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। नीट री एग्जाम को लेकर दिल्ली के परीक्षा केंद्रों पर होंगे विशेष इंतजाम, गर्मी को देखते हुए 97 परीक्षा केंद्रों के बाहर बनेंगे कूलिंग जोन, अभिभावकों के लिए पानी, ओआरएस और शिकंजी की व्यवस्था। बिहार में शिक्षा से जुड़ी शानदार खबर, राज्य में 1 जुलाई से खुलेंगे 211 नए डिग्री कॉलेज, 6 विषयों की होगी पढ़ाई। उज्जैन में मंदिर में स्थापित है हनुमान जी की उल्टी प्रतिमा, पाताल लोक से जुड़ी है पौराणिक कथा, हनुमान जी को उल्टा स्वास्तिक और चोला चढ़ाने की अनूठी परंपरा। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां तेज, जियांगशी प्रांत में दिखा ड्रैगन बोट में टग ऑफ वॉर का रोमांच, ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: तो चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मॉनसून की। इंतजार क्योंकि उसी का है सभी को और सबके मन में यही सवाल है कि अभी तक मॉनसून क्यों नहीं आया, लेकिन खास करके दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं। भाई थैंक्स बोलना चाहिए ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को।
2: अरे आए तो तभी तो थैंक्स बोलूं, मैं तो वेट कर रही हूं, मैं थैंक्स बोलूं।
0: बार बार आ रहा शगुफ्ता, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो फिर से आ रहा है जिससे कंट्रोल में है तापमान,
2: बट वैसे नहीं आ रहा ना जिस लेवल का हमारी एक्सपेक्टेशन है,
0: उसके लिए मॉनसून का इंतजार करना पड़ेगा।
2: मॉनसून शुरू जरूर हो चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, इसकी वजह यह है कि सूखी हवाएं चल रही हैं, इसकी वजह से अभी बादल रुके हुए हैं तो बारिश हो नहीं रही है, लेकिन उम्मीद है कि अभी 20-21 जून से शुरुआत हो जाएगी।
3: फिर WD का बोल दिया वैसे, लेकिन वो अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कहा जा रहा है कि 25 जून के बाद शायद यहां दस्तक दे सकता है।
0: बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार मॉनसून का भले ही हमें करना पड़े, 22 जून से फुल स्पीड में मॉनसून के आने की बात कही जा रही है आपको बता दें, लेकिन फिलहाल जो है थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। 18 जून कहा जा रहा है कि और इस तारीख तक देश के बड़े हिस्से में मॉनसून दस्तक दे चुका है, लेकिन
4: मौसम मॉनसून का है लेकिन आसमान से बादल गायब हैं। जिन बादलों को अब तक आधे हिंदुस्तान तक पहुंच जाना चाहिए था वो कहीं ठहर गए हैं, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें अच्छी खबर यही है कि करीब 2 हफ्तों की धीमी रफ्तार के बाद दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये तेजी से आगे बढ़ सकता है। दरअसल बादलों से लोगों की उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि मॉनसून के सीजन की शुरुआत शानदार रही थी और मॉनसून तय समय से पहले देश के कई हिस्सों में पहुंच गया था, लेकिन 8 जून के बाद मॉनसून थम गया और तो और 15 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में देश के बड़े हिस्से से बादलों का नामो निशान तक मिट गया था, लेकिन अब फिर से मॉनसून जोर पकड़ने की तैयारी में है। मॉनसून के शुरुआती चरण में ऐसा ठहराव लगातार तीसरे साल देखने को मिला है, हालांकि राहत की बात यह है कि 2024 और 25 में शुरुआती ब्रेक के बावजूद पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। 21 से 23 जून के बीच मॉनसून के दोबारा रफ्तार पकड़ने की संभावना है। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर मॉनसून आते आते ठहर क्यों गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह रही है सूखी हवा। जून से पहले पखवाड़े में बार बार शुष्क हवाएं पश्चिमी और मध्य भारत में पहुंचती रहीं। इन हवाओं ने बादलों को बनने से रोका जिसकी वजह से बारिश नहीं हो सकी। नतीजा ये हुआ कि मॉनसूनी सिस्टम कमजोर पड़ा और कई इलाकों में गर्मी का असर बढ़ गया, लेकिन अब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के पश्चिमी तट पर नमी की वापसी शुरू हो चुकी है। अरब सागर से आने वाली नम हवाएं धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं

0: से बारिश वाले बादलों के बनने के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि 20 जून के बाद ये बादलों के बनने और आगे बढ़ने की रफ्तार और तेज होगी। जिस सोमाली जेट को मानसून का इंजन कहा जाता है, उसने भी अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। अब तक अरब सागर के रास्ते भारत में नमी पहुंचाने वाला सोमाली जेट कमजोर था, लेकिन अब उसके भी मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से 20 जून के बाद मानसून का सिस्टम तेजी से मजबूत हो सकता है, जिसके चलते महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम भारत के अन्य हिस्सों में बारिश की फिर से शुरुआत हो सकती है। जाहिर है, संकेत साफ है, सूखी हवाओं का जोर कम हो रहा है, मानसून का इंजन कहा जाने वाला सोमाली जेट मजबूत हो रहा है, और तो और नमी को समुन्दर से जमीन पर लाने वाला क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो भी सक्रिय हो रहा है। कुल मिलाकर मानसून को फिर से पूरी ताकत मिलने वाली है। अगर अनुमान सही साबित हुए तो अगले कुछ दिनों में मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और देश के बड़े हिस्से में राहत की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मैंने ना आज इंस्टाग्राम पे एक फोटो देखी, डेलियाइट्स वेटिंग फॉर मानसून, मीन वाइल गोवा वालों के लिए इतना खूबसूरत मौसम था वहां, तो सच में खैर मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन हम लोग अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे ही टिके हुए हैं।
2: डेलियाइट्स के साथ उन्होंने नोएडाइट्स नहीं लिखा जो ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा है
1: दिल्ली एनसीआर,
3: क्योंकि कल मैंने सुना कि दिल्ली में सुबह सुबह बारिश हुई थी लेकिन नोएडा में नहीं हुई थी।
2: हाँ, थोड़ी बहुत बारिश
3: थोड़ी बहुत हुई थी,
2: लेकिन अच्छे से बरसने चाहिए बादल पता नहीं कहाँ रुक गए, कहीं ब्रेक लग गया है बादलों के ऊपर, मानसून शुरू हो चुका है लेकिन बरसने का नाम नहीं ले रहे हैं।
1: देखिए पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि सितंबर तक बादल बरसते रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल तो इंतजार है जल्दी से बरसो रे मेघा मेघा। तो फिलहाल बता दे कहां कहां कब कब कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है मॉनसून, तो आपको जरा देश के बाकी हिस्सों के मौसम का हाल भी बता देते हैं। मॉनसून ने फिलहाल गुजरात पहुंचने में भी टाइम है, लेकिन वहां भी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर अभी फिलहाल बारिश हो रही है। गुजरात में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश है, पहली तस्वीर जामनगर की जहां जोरदार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। हालांकि यह बारिश यहां गर्मी से राहत जरूर लेकर आई है।
2: बिल्कुल, देखिए राहत का इंतजार हालांकि कई और इलाकों को भी है। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देख लीजिए, दक्षिण 24 परगना में मौसम का बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिला। हुगली नदी के ऊपर एक साथ दो ट्विंट और नेडो दिखाई दिए, जिसके बाद इलाके में तेज हवाओं और बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। दिल्ली में मानसून का इंतजार है, हालांकि यहां भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है, तापमान में हल्की गिरावट है।
4: तो वहीं पश्चिम बंगाल में मॉनसून एक्टिव है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में मॉनसून एक्टिव है और ऐसे में वहां के सागर द्वीप के पास हुगली नदी पर एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक साथ दो बवंडर बनने की दुर्लभ घटना ने सभी को चौंका दिया है। महेशमारी इलाके में नदी के ऊपर बने इस जुड़वा बवंडरों की वजह से आसमान में काले बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है।
3: इस अनोखी घटना ने देखते ही देखते पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। शुरुआत में आसमान सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक नदी के ऊपर घूमते हुए दो विशाल भवन जैसे आकार का नजर आना, कुछ ही मिनटों में काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया और दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। इसके बाद तेज रफ्तार हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस दुर्लभ घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही।
1: और इस तस्वीर के बाद चलिए अब आपको बताते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के मौसम में बदलाव के संकेत दिखाई देने लगे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
2: अब देखिए राजधानी दिल्ली की बात करें तो 19 जून के बाद भी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। हालांकि इस दौरान व्यापक बारिश की संभावना बहुत कम दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि 20 और 21 जून को दिल्ली एनसीआर के मौसम में बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के होने के आसार भी हैं।
3: तो वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर में 15 और 16 जून को पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला, कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई।
4: तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर 19 जून के बाद बादल और बारिश की संभावना है। कई जिलों में बारिश और आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 18 और 19 जून को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
3: आपको बता दें कि राजस्थान की बात अगर करें हम तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान जहां लंबे समय से लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं वहां 19 से 21 जून के बीच मौसम करवट ले सकता है। तो दिल्ली और गुजरात में मौसम का मिजाज आगे कैसा रहने वाला है चलिए आपको दिखाते हैं।
5: देश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं पर जो है उमस की स्थिति बनी हुई है तो कहीं पर जो है लगातार बारिश देखी जा रही है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे। आज तापमान में हालांकि कमी नहीं है लेकिन उसके बाद भी जो है थोड़ी सी राहत लोगों को जो है वो नजर आ रही है क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त पहाड़ी राज्यों में जो है सक्रिय है जिसका असर जो है कहीं ना कहीं मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर के लिए दिया गया है कि जो बारिश है वो हल्की बारिश जो है वो भी देखी जा सकती है। उसके साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है लेकिन इस वक्त की मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो मौसम एकदम साफ नजर आएगा। बीच बीच में धूप जो है वो आ रही है और जा रही है। इस तरीके से जो हालात है वो इस वक्त के बने हुए हैं लेकिन लोगों को गर्मी से अभी राहत यहां पर नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात करूं तो वहां पर लगातार जो है बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर 3 दिन तक कुछ इसी तरीके से मौसम जो है वो रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अलग अलग मौसम अलग अलग राज्यों पे इस वक्त बना हुआ है लेकिन बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो अभी तापमान बढ़े हुए हैं लेकिन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
6: आमतौर पर गुजरात में 15 जून तक आधिकारिक तौर पर मानसून की शुरुआत हो जाती है लेकिन अलनीनो की असर के चलते इस बार अभी तक आधिकारिक तौर पर मानसून की शुरुआत नहीं हुई है। मौसम विभाग का माने तो अगले 5 दिन तक आधिकारिक मानसून के किसी प्रकार के संकेत नहीं है। हालांकि मानसून महाराष्ट्र तक आ पहुंचा है लेकिन अभी भी गुजरात में आधिकारिक मानसून को लेकर इंतजार और भी अगले 5 दिन तक करना होगा। लेकिन इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात के अलग अलग शहरों में सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के अलग अलग हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं लेकिन 2 दिन से अगले 5 दिनों तक की अगर बात करें तो मात्र सूरत और वापी समेत जो दक्षिण गुजरात के हिस्से हैं वहां पे सामान्य बारिश होगी। लेकिन ये जो सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर के चलते होने के संकेत हैं। यानी आधिकारिक मानसून के लिए गुजरात को अभी भी अगले 5 दिनों का इंतजार करना होगा। इस बीच जो गुजरात के अंदर महत्तम टेम्परेचर की भी बात कर लें तो अहमदाबाद में लगातार 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 5 दिन तक किसी भी प्रकार की गर्मी से राहत के गुजरात में संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे, अहमदाबाद।
2: चलिए इस मौसम से दूसरे मौसम की तरफ ले चलते हैं, फिल्मों वाला मौसम। जी हाँ, यहाँ देखिए 2 बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्में, एक है रामायण, दूसरा है वाराणसी, सबको इंतजार है इसका। इन्हें भारतीय सिनेमा का गेम चेंजर बताया जा रहा है लेकिन रिलीज से पहले ही इन फिल्मों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है।
1: खबर यह है कि इन फिल्मों के मेकर्स डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए की डील चाहते हैं लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स इस कीमत पर दाव लगाने को तैयार नहीं है।

रामायण और वाराणसी भारतीय सिनेमा की दो ऐसी फिल्में जिनकी रिलीज से पहले ही इनके बारे में दावे किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। कहीं ने भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा विजन बताया जा रहा है तो कहीं हॉलीवुड लेवल के स्केल और प्रोडक्शन की बात हो रही है। बड़े स्टार कास्ट, बड़े डायरेक्टर्स, विशाल बजट और दावे उससे भी बड़े, लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि करोड़ों की नहीं, सैकड़ों करोड़ की नहीं बल्कि हजार करोड़ रुपए तक की उम्मीद रखने वाली ये फिल्में अब तक ओटीटी मार्केट में अनसोल्ड हैं। यानी जिस डिजिटल बाजार को आज फिल्मों का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है, वहीं इन फिल्मों के लिए अब तक कोई फाइनल डील नहीं हो पाई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण के मेकर्स डिजिटल राइट्स के लिए ऐसी कीमत चाहते हैं जो भारतीय ओटीटी इतिहास की सबसे बड़ी डील साबित हो सकती है। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने रामायण के दोनों पार्ट्स के लिए करीब 700 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, लेकिन मेकर्स ने उसे स्वीकार नहीं किया। रामायण के मेकर्स इस डील के लिए 1000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। उधर वाराणसी के लिए भी करीब 650 करोड़ रुपए के ऑफर की चर्चा है, मगर वहां भी सौदा नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यही है कि जब ओटीटी कंपनियां सैकड़ों करोड़ देने को तैयार हैं, तो फिर डील अटक क्यों रही है।

0: गौर से देखा जाए तो यहाँ टकराव दो सोच का है। एक तरफ मेकर्स हैं जो मानते हैं कि वो सिर्फ फिल्म नहीं बेच रहे बल्कि एक इवेंट बेच रहे हैं, एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं। उनका तर्क है कि रामायण सिर्फ भारत की कहानी नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे में इसकी कीमत सामान्य फिल्मों जैसी नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भावनाओं पर नहीं निवेश और रिटर्न्स पर फैसला लेते हैं। उन्हें नहीं देखना है कि फिल्म कितनी भव्य है, उन्हें ये देखना है कि फिल्म कितने नए सब्सक्राइबर्स लाएगी, कितने पुराने दर्शकों को रोक के रखेगी और आखिर में निवेश पर रिटर्न कितना देगी। ओटीटी की दुनिया में एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या ये कंटेंट उतना पैसा वापस ला सकता है जितना हम लगा रहे हैं? और यहीं पर हजार करोड़ की डील सुनकर प्लेटफॉर्म्स सावधान हो जाते हैं। क्योंकि इतनी रकम में वो कई बड़ी वेब सीरीज, दर्जनों फिल्में और पूरे साल का कंटेंट लाइनअप खरीद सकते हैं। हाल ही में एक्टर मनोज वाजपेयी से जब फिल्मों के भारी भरकम बजट और उनके प्रचार पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद दिलचस्प बात कही। मनोज वाजपेयी ने कहा कि कई सालों से फिल्मों को बड़ा और सफल दिखाने के लिए बजट और कमाई के आंकड़ों का इस्तेमाल एक तरह के पब्लिसिटी टूल के रूप में किया जाता रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बजट का शोर मार्केटिंग का हथियार है? आज रामायण और वाराणसी दोनों फिल्मों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपनी संभावनाओं को वास्तविक परिणामों में बदले, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म ट्रेलर नहीं खरीदते, वो परफॉर्मेंस खरीदते हैं, वो वायदे नहीं खरीदते, वो दर्शकों की गारंटी खरीदते हैं। और जब तक फिल्म रिलीज होकर अपनी ताकत साबित नहीं कर देती तब तक सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी सावधानी बरतते हैं। ऐसे में ओटीटी कंपनियों का संकोच भी पूरी तरह से जायज है, क्योंकि उनका कारोबार भावनाओं से नहीं मुनाफे से चलता है। सच यही है कि आज रामायण और वाराणसी से उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, लेकिन उम्मीद और वास्तविक सफलता के बीच की दूरी सिर्फ दर्शक ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म अल्फा का ट्रेलर रिलीज हो गया है और रिलीज के साथ ही ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर गदर काटना शुरू कर दिया है। फैंस को ट्रेलर खूब पसंद आ रहा है, खास तौर पर आलिया का एक्शन अवतार।
2: बिल्कुल, ट्रेलर देखिए उन सारे कंफ्यूजन और फैंस की नाराजगी को दूर कर दिया है जो हाल ही में इनके रिलीज हुए टीजर के साथ उठे थे। मसलन बॉबी और आलिया का रिलेशन क्या है, शर्वरी वाघ को टीजर में स्पेस ना देना, इन तमाम सवालों के जवाब के साथ ट्रेलर ने ऋतिक रोशन के रूप में एक नया सरप्राइज दे दिया है।
3: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है?
4: वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर।
5: एक्शन, रोमांच और सस्पेंस से भरपूर अल्फा, आलिया और शर्वरी का पहली बार एक्शन पैक्ड अवतार। अल्फा के मोस्ट अवेटेड ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। यशराज ने अपनी स्पाई यूनिवर्स की इस अनोखी पेशकश से हीरोइन बेस्ड स्पाई थ्रिलर फिल्मों की एक दमदार नींव रख दी है, जो भविष्य के बॉलीवुड स्पाई थ्रिलर फिल्मों को नई दिशा दिखा सकते हैं। अल्फा की यूएसपी है आलिया, जो सीता के किरदार में जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैं। स्क्रीन पर उनका कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और पावरफुल प्रेजेंस बताने के लिए काफी है कि इस बार वो रोमांस नहीं दुश्मनों का खात्मा करने आई है। आलिया और बॉबी देओल के किरदार को लेकर टीजर ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया था, अल्फा के ट्रेलर रिलीज के साथ ही उन सारे कयासों और कंफ्यूजन पर विराम लगा दिया है। टीजर में आलिया और बॉबी देओल को बाप बेटी के रूप में दिखाया गया था, लेकिन ट्रेलर ने इस रिश्ते की सच्चाई उजागर कर दी है। ट्रेलर से साफ हो चुका है कि बॉबी का किरदार अपने दुश्मनों के खिलाफ आलिया का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सीता तो अब खुद लंका जलाने के लिए तैयार है।
6: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
5: ट्रेलर से ये भी साफ हो चुका है कि बॉबी देओल ही रियल विलेन है। बॉबी का किरदार एक बागी जासूस का है जो किसी भी कीमत पर भारत से बदला लेने पर आतुर है। ट्रेलर में बॉबी की मौजूदगी भले ही कम है, लेकिन उनका खौफ कहीं से भी कम दिखाई नहीं देता। फिल्म के टीजर में शर्वरी वाघ की गैर मौजूदगी को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठे थे। लेकिन ट्रेलर में शर्वरी को भरपूर स्क्रीन स्पेस देकर फैंस की नाराजगी दूर कर दी गई है।

0: लो, तो बात कर लो।
1: आलिया के साथ एक्शन सीक्वेंस से लेकर इंटेंस एक्सप्रेशन तक शर्वरी ने साबित कर दिया है कि वो फिल्म की मजबूत कड़ी बनने वाली हैं। वही अनिल कपूर अल्फा में आलिया और शर्वरी का मार्गदर्शन करते नजर आते हैं। अल्फा का एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट है जिसे ट्रेलर के आखिर में दिखाया गया है। ट्रेलर में उस कैरेक्टर की सिर्फ आंखें दिखाई गई हैं, लेकिन ये हल्की सी झलक बताने के लिए काफी है कि वो ऋतिक रोशन है जो आलिया और शर्वरी की जान की रक्षा करते दिखाई देंगे। अल्फा के ट्रेलर ने इस धमाकेदार एक्शन फिल्म की झलक दिखाकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। इंतजार अब 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
3: हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए मुंबई आने वाले हैं। उनकी फिल्म द ओडिसी की पूरी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है और फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है। और इस रिलीज से पहले क्रिस्टोफर नोलन ने दुनिया के 4 शहरों में ओडिसी का प्रीमियर करने का फैसला किया है और खास बात यह है कि इन 4 शहरों में मुंबई का नाम भी शामिल है। क्रिस्टोफर पहली बार अपनी फिल्म का प्रीमियर भारत में लॉन्च करने जा रहे
4: हैं।
5: मुंबई में सजने जा रहा है हॉलीवुड के दिग्गज सितारों का मेला। भारत में पहली बार होगा क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी का प्रीमियर। हॉलीवुड को बैटमैन सीरीज, इंटरस्टेलर, ओपनहाइमर और मोमेंटो जैसी यादगार फिल्में देने वाले मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन बहुत जल्द मुंबई आने वाले हैं। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओडिसी का पूरी दुनिया के दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म 17 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। जैसे जैसे रिलीज की तारीख करीब आ रही है, फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल सभी की नजरें द ओडिसी के ग्लोबल प्रीमियर पर टिकी हैं। इस प्रीमियर से जुड़ी एक खबर ने हिंदुस्तान के दर्शकों का जोश और बढ़ा दिया। क्रिस्टोफर नोलन ने पहली बार अपनी नई फिल्म का प्रीमियर भारत में भी करने का फैसला किया है। इस प्रीमियर के लिए उन्होंने माया नगरी मुंबई को चुना है। खास बात यह है कि इस ग्लोबल प्रीमियर के लिए खुद क्रिस्टोफर नोलन मुंबई आने वाले हैं। फिल्म की पहली स्क्रीनिंग में उनके साथ मुख्य अभिनेता मैट डेमन और टॉम हॉलैंड भी मौजूद रहेंगे। ये शानदार इवेंट मुंबई के लोअर परेल में फिनिक्स पैलेडियम के PVR आइकॉन IMAX में आयोजित किया जाएगा। प्रीमियर की तारीखों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये प्रीमियर जुलाई की शुरुआत में हो सकता है। क्रिस्टोफर नोलन ने द ओडिसी के प्रीमियर के लिए दुनिया के 4 शहरों को ही चुना है। मुंबई के साथ ही प्रीमियर लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में भी किया जाएगा। ऑस्कर जीतने के बाद क्रिस्टोफर नोलन पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर पर निकल रहे हैं। नोलन के द ओडिसी प्राचीन यूनानी कवि होमर के मशहूर महाकाव्य पर आधारित एक मेगा बजट एक्शन एपिक फिल्म है। इस फिल्म की भव्यता, स्टार कास्ट और फिल्म मेकिंग की आधुनिक तकनीक की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। फिल्म में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड के साथ एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिसन और जेंडाया मुख्य किरदार निभा रहे हैं। यह हॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसे पूरी तरह 70mm IMAX कैमरों से शूट किया गया है। फिल्म का बजट करीब $250 मिलियन यानी करीब 2000 करोड़ से ज्यादा है। इसकी शूटिंग ग्रीस, इटली, आइसलैंड और स्कॉटलैंड में हुई है। क्रिस्टोफर नोलन की हर फिल्म अपने आप में बड़े पर्दे के जादू को समेटे हुए होती है। साल 2024 में नोलन ने ब्लॉकबस्टर फिल्म ओपनहाइमर के लिए 2 अकेडमी अवार्ड जीते थे। उनकी फिल्मों की कहानी और निर्देशन की सिनेमा के क्रिटिक्स भी जमकर तारीफ करते हैं। यही वजह है कि द ओडिसी से भी दर्शकों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। भारत में भी दर्शकों को द ओडिसी के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है और ऐसे में प्रीमियर के लिए मुंबई को चुनकर क्रिस्टोफर नोलन ने भारतीय सिनेमा प्रेमियों के उत्साह को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे उस महायोगी से जिसके नाम से 36 घंटे से ज्यादा लगातार सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
14: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पेरिस में ग्लोबल कंपनियों के CEOs के साथ मुलाकात, निवेश, तकनीक और औद्योगिक सहयोग पर चर्चा। दिल्ली NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, 21 जून तक मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अनुमान। नीट री एग्जाम को लेकर दिल्ली के परीक्षा केंद्रों पर होंगे विशेष इंतजाम, गर्मी को देखते हुए 97 परीक्षा केंद्रों के बाहर बनेंगे कूलिंग जोन, अभिभावकों के लिए पानी, ORS और शिकंजी की व्यवस्था। बिहार में शिक्षा से जुड़ी हुई शानदार खबर, राज्य में 1 जुलाई से खुलेंगे 211 नए डिग्री कॉलेज, 6 विषयों की होगी पढ़ाई। उज्जैन में मंदिर में स्थापित है हनुमान जी की उल्टी प्रतिमा, पाताल लोक से जुड़ी है पौराणिक कथा, हनुमान जी को उल्टा स्वास्तिक और चोला चढ़ाने की अनूठी परंपरा। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां तेज, जियांगशी प्रांत में दिखा ड्रैगन बोट में टग ऑफ वॉर का रोमांच, ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश। भैया आप ये बताइए कि एक इंसान कितने सूर्य नमस्कार कर सकता है मैक्सिमम? शगुफ्ता बताएंगे, योगा क्वीन हमारी।
15: मैंने अभी तक 50 किए, उससे ज्यादा नहीं।
3: 50?
15: हाँ, एक टाइम, मतलब वो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, डेली आप नहीं कर पाते। डेली अगर आप प्रैक्टिस में हैं देन ओनली यू कैन डू इट, अदरवाइज नहीं होगा।
3: आपने?
16: नहीं भाई, मतलब सूर्य नमस्कार इतना आसान नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे पोज होते हैं जो आपको करने होते हैं, और वो मुझे वही जो शगुफ्ता ने जैसे बताया कि अगर आप प्रैक्टिस में हैं तभी कर सकते हैं, एक साथ बहुत कर पाना मुश्किल है, एक दिन में आप एक ही कर ले तो बहुत।
3: मैंने एक बार किए थे 25 बट वो बहुत पहले किए थे, लेकिन अब मेरी प्रैक्टिस छूट गई है।
15: मुझे ऐसा लगता है अगर कोई चैलेंज है तो 20 से 25 किए जा सकते हैं, लेकिन इतने
3: बात है।
15: वेरी नाइस।
3: तो ऐसा ही एक चैलेंज है, और देखिए अब क्योंकि हम योग दिवस की चर्चा भी कर रहे हैं, योग दिवस आने वाला 21 तारीख को है, दुनिया को स्वस्थ जीवन जीने का रास्ता ये दिन दिखाता भी है, और इस योग की ताकत को अपनी साधना से दुनिया के सामने साबित किया है एक ऐसे युवक ने जिसने सूर्य नमस्कार को केवल व्यायाम नहीं बल्कि तपस्या बना दिया।
16: आपको बता दें 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार, 6-6 वर्ल्ड रिकॉर्ड, और अब करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आपको मिलवाते हैं योग के उस योद्धा से जिसने अपने संकल्प के दम पर पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है।

0: एक ऐसा लड़का जो बचपन से स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन एक इंजरी ने उसका ये सपना तोड़ दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब दो वक्त की रोटी के लिए उसे दिहाड़ी मजदूर बनना पड़ा, लेकिन फिर उस लड़के ने योग का रास्ता लिया और आज उसके सूर्य नमस्कार का डंका न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी धूम से बज रहा है।
1: जब इरादे मजबूत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। एक साधारण परिवार से निकलकर योग की दुनिया में असाधारण पहचान बनाने वाले संदीप आर्य ने यही कर दिखाया है। 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार कर संदीप आर्य ने विश्व रिकॉर्ड बनाया और पूरी दुनिया को अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया।
2: शुरुआत करी 2018 के अंदर पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की और धीरे धीरे 5,000 सूर्य नमस्कार से लेकर 8,000, 10,000 और 12,000, 15,000 से लेकर अभी जो वर्तमान में करंट जो 20,000 लगातार का रिकॉर्ड स्थापित हुआ।
0: आप थोड़ा अच्छे से बताएं कि 5,000 कितने वक्त में, 10,000 कितने वक्त में?
2: जी, 5,000 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड था 10 घंटे लगातार करने का, और उसके बाद फिर 8,000 सूर्य नमस्कार का जो रिकॉर्ड बनाया था वो 16 घंटे लगातार करने का, उसके बाद 10 घंटे का था वो 17 घंटे 30 मिनट 31 सेकंड का, और उसके बाद 12,000 का 24 घंटे लगातार करने का, फिर 15,000 का 30 घंटे लगातार करने का, और अभी जो 20,000 का बना वो 36 घंटे 21 मिनट लगातार लगभग 37 घंटे सूर्य नमस्कार करने का।
1: संदीप के नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार करने का है। विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले संदीप आर्य आज देश विदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। संदीप ने अब तक 6 बार सूर्य नमस्कार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक नई मिसाल भी कायम की है। 5,000 सूर्य नमस्कार 8 घंटे लगातार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 8,700 सूर्य नमस्कार 15 घंटे लगातार, 10,000 सूर्य नमस्कार 17 घंटे 30 मिनट तक लगातार, 12,000 सूर्य नमस्कार 24 घंटे लगातार, 15,000 सूर्य नमस्कार 30 घंटे लगातार, 20,000 सूर्य नमस्कार 37 घंटे लगातार। हरियाणा के रहने वाले संदीप आर्य का बचपन भी आम बच्चों की तरह था, लेकिन उनके सपने आम नहीं थे। जब दूसरे बच्चे खेल और मनोरंजन में व्यस्त रहते थे, तब संदीप अनुशासन, व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके थे। उन्हें बचपन से ही कुछ ऐसा करने की चाह थी जिसे दुनिया याद रखे। संदीप का पहला सपना एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बनने का था, लेकिन लिगामेंट इंजरी ने उनका रास्ता बदल दिया। हालात ने सपना बदला लेकिन जुनून नहीं। यहीं से उनकी जिंदगी में योग ने प्रवेश किया और फिर शुरू हुई एक नई यात्रा।
2: मैंने तो 10 साल की उम्र से शुरुआत कर दी थी और बचपन से ही सुबह 3 बजे उठकर दौड़ लगाना शुरू किया था। एक सपना था बचपन से ही कि देश के लिए गोल्ड मेडल ले जाएंगे 400 मीटर में, लेकिन 2015 में इंजरी होने के कारण वहीं से वो सपना छूट गया था, लिगामेंट टूट गया था ACL और PCL। लेकिन फिर सपना देखा कि योग के फील्ड में जाके अपनी भारतीय संस्कृति का जो प्रतीक है, जो आज पूरे विश्व के अंदर पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, तो उसी क्षेत्र में जाके अपने भारत देश का नाम रोशन करेंगे।
1: आज संदीप आर्य लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनका मानना है कि योग केवल शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित बनाने की कला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उनका संदेश है कि हर युवा अपनी दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करे। दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
3: एक वक्त था जब भारत की गलियों में क्रिकेट नहीं, गिल्ली डंडा राज करता था। हाथ में दो लकड़ियां, दोस्तों की टोली और घंटों तक चलने वाला खेल, और यही था बचपन का असली मनोरंजन। वक्त बदला, नए खेल आए, गिल्ली डंडा धीरे धीरे यादों के पन्नों में सिमट कर रह गया।
4: लेकिन अब देखिए, हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के एक देश से आई कुछ तस्वीरों और वीडियोस ने भारतीयों की पुरानी ताजे यादा करती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है स्पेन का पारंपरिक खेल बिलार्डा, जिसे देखकर हर भारतीय की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या ये हमारा गिल्ली डंडा है?

0: एक वक्त था जब भारत की गलियों में क्रिकेट नहीं गिल्ली डंडा राज करता था। हाथ में दो लकड़ियां और दोस्तों की टोली, बस इतना ही काफी था घंटों मस्ती करने के लिए। लेकिन वक्त बदला, खेल बदले और गिल्ली डंडा धीरे धीरे यादों का हिस्सा बनकर रह गया। लेकिन अब सालों बाद ये देसी खेल एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन वजह भारत नहीं बल्कि स्पेन है। जब से सोशल मीडिया पर स्पेन के पारंपरिक खेल बिलार्डा के वीडियो वायरल हुए हैं, लोग हैरान हैं। पूछा जा रहा है कि भारत का गिल्ली डंडा स्पेन कब पहुंच गया। स्पेन का बिलार्डा ठीक वैसा ही है जैसा हमारा गिल्ली डंडा। इसमें भी एक छोटी लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर रखकर उछाला जाता है और फिर जोरदार प्रहार किया जाता है। वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर हिंदुस्तानियों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग लिख रहे हैं कि पश्चिम ने आखिरकार गिल्ली डंडा खोज लिया। तो कुछ लोग मजाक में लिख रहे हैं कि कुछ साल बाद यही खेल अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप का हिस्सा होगा और दुनिया इसके आविष्कार का श्रेय किसी और को दे देगी। दिलचस्प बात यह है कि स्पेन के उत्तर पश्चिमी गैलिसिया में खेला जाने वाला बिलार्डा कोई नया खेल नहीं है। इसकी जड़ें मध्यकालीन इतिहास में मिलती हैं और 13वीं शताब्दी के ग्रंथों में इसका उल्लेख भी है। आज वहां इसकी आधिकारिक लीग होती है, टीमें बनती हैं और तगड़ा मुकाबला होता है। वहीं भारत का गिल्ली डंडा इससे भी कहीं ज्यादा पुराना माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसकी शुरुआत करीब 2500 साल पहले हुई थी। प्राचीन संस्कृत और तमिल साहित्य में इसका जिक्र मिलता है और माना जाता है कि इसी तरह के खेलों ने आगे चलकर क्रिकेट, बेसबॉल और टिप कैट जैसे खेलों को प्रेरित किया। हालांकि सिर्फ भारत और स्पेन ही नहीं, दुनिया के कई देशों में गिल्ली डंडा जैसा खेल अलग अलग नामों से खेला जाता रहा है। इंग्लैंड में टिप टैक, इटली में लिप्पा, जर्मनी और नेदरलैंड्स में क्लिप्पे, ईरान में मिट्स मिट्स और थाईलैंड और म्यांमार में इसके दूसरे रूप देखने को मिलते हैं। यानी खेल भले ही अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता हो, लेकिन एक बात तो साफ है, गिल्ली डंडा सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि बचपन की वो याद है जो आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: रुक रहे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे कोलकाता के सर चढ़कर बोल रहा है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का जादू।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
4: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
5: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
6: Good news today.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए अब आपको उनसे मिलवाते हैं जिनके दम पर रोशन है कामयाबी की दुनिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने लेटेस्ट आइकन अवार्ड विनर्स की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में पॉप बैंड ब्लैक पिंक से लेकर जॉन सीना तक एक से बढ़कर एक नाम शामिल हैं।
2: लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अब से पहले बहुत कम लोग जानते थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आइकॉन अवार्डी की लिस्ट में एक कछुआ भी शामिल है। जी हाँ, अब भला इसे इस लिस्ट में क्यों जगह मिली है, इसके पीछे भी एक कहानी है।

0: ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने दुनिया में अपने लिए विशेष जगह बनाई है, बेजोड़ जुनून और जज्बे से खुद की खास पहचान बनाई है। बेशक इनकी दुनिया अलग है, कोई पर्वतारोही है, कोई शेफ है, कोई रेसलर है, कोई स्पेस में उड़ान भरता है, तो कोई जमीन पर रेंगने वाला कछुआ है। यूं तो अलग अलग दुनिया से ताल्लुक रखने वाले इन आम से दिखने वाले किरदारों का आपस में कोई संबंध नहीं, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है, ये सब के सब सफलता की ऐसी इबारत लिख चुके हैं कि आज दुनिया इनके आगे सजदा कर रही है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लेटेस्ट आइकन विनर हैं। ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो दुनिया में खास मुकाम हासिल कर चुके हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 17 जून को आइकन अवार्ड विजेताओं की घोषणा की थी। दिलचस्प ये है कि इस लिस्ट में जोनाथन नाम का एक कछुआ भी शामिल है। जोनाथन दक्षिण अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना आइलैंड पर रहता है। इसकी उम्र है 194 साल और ये अब तक का सबसे उम्रदराज कछुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अगले अवार्डी हैं हरी बुद्ध मगर। दोनों पैर गंवा चुका बेजोड़ हौसले वाला ये पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट फतह कर चुका है और भी कई बेहतरीन रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं। नाइजीरिया के शेफ हिल्दा बाकी ने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आइकन अवार्डी की लिस्ट में जगह बनाई है। हिल्दा ने स्वाद के साथ ऐसा इतिहास और कारनामा रचा जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। इन्होंने चावल की सबसे बड़ी सिंगल सर्विंग का रिकॉर्ड बनाया है। हिल्दा ने ये कमाल पिछले साल नाइजीरिया के लागोस शहर में अब तक के सबसे बड़े बर्तन में जोलोफ राइस पकाकर किया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आइकन अवार्डी का विशेष सम्मान पाने वालों में और भी कई जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। इनमें WWE के बेहद पॉपुलर रेसलर और एक्टर जॉन सीना, जिनके नाम सबसे ज्यादा WWE चैंपियनशिप टाइटल्स हैं, के पॉप गर्ल ब्लैक पिंक, जिनके नाम YouTube पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले बैंड का रिकॉर्ड है। इसके अलावा क्रिस्टियाना कोच को महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेस में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने के लिए सम्मानित किया गया। जापानी बेसबॉल स्टार शोहोई ओहटानी को मेजर लीग बेसबॉल इतिहास के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड बनाने के लिए आइकन सूची में जगह मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फीफा वर्ल्ड कप का खुमार पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी देखा जा सकता है। कोलकाता में एक गली तो वर्ल्ड कप के रंग से सज गई है। इस गली को लोग फीफा गली के नाम से जानते हैं।
2: बिल्कुल, और खास बात यह है कि हर बार वर्ल्ड कप में इस गली को खास अंदाज में सजाया जाता है। इस बार भी दीवारों पर मशहूर खिलाड़ियों के पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए फीफा गली की रौनक।

0: ये तस्वीरें भारत में फुटबॉल की दीवानगी बयां कर रही है। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होते ही पूरी दुनिया पर फुटबॉल का खुमार दिख रहा है। भारत में भी फुटबॉल के फैंस इस खेल की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। कोलकाता में तो फुटबॉल फैंस ने कुछ रास्तों को ही फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंग दिया है। हर गली मोहल्ले में फीफा वर्ल्ड कप का उत्साह दिख रहा है। फैंस ने अपने पसंदीदा प्लेयर्स के बड़े बड़े पोस्टर चिपका रखे हैं। कोई मेसी के लिए अपनी दीवानगी बयां कर रहा है तो किसी ने रोनाल्डो और नेमार के पोस्टर लगा रखे हैं। नॉर्थ कोलकाता में मौजूद इस गली को तो फीफा गली का नाम दे दिया गया है।
1: In the year 2022, what we did was in 2018, the whole gully was decorated with the colors of Brazil emblem. And in 2022, we decorated it with many supporters from each and every country. Maradona was being painted, then on there, Ronaldinho was being painted, here Cristiano Ronaldo was being painted. And in 2022, the name came up as FIFA Valence. And today, we are almost 95% of the work is finished. Only some of the drawings are pending, which will be completed by tomorrow. And it will be open to all, for everyone to come here to shoot here.
0: पूरी गली फीफा में खेलने वाली फुटबॉल टीमों के झंडों से सजी है। कहीं ब्राजील के झंडे लहरा रहे हैं, तो कहीं अर्जेंटीना को चीयर किया जा रहा है। इन रंग बिरंगे झंडों से लोगों ने पूरी सड़क को ही फुटबॉल कार्निवल में तब्दील कर दिया है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मचाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
5: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
5: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
7: You're listening to MSNBC.
5: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
8: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
9: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachchai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल का रंग इस बार सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि चिड़ियाघर के नन्हे मेहमानों पर भी चढ़ा है। दक्षिण पश्चिमी चीन के वाइल्ड लाइफ पार्क में बाघ और काले भालू के बच्चों ने ऐसी दावत उड़ाई जिसे देख कर हर कोई मुस्कुरा उठा। आमतौर पर ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर लोग पारंपरिक व्यंजन जोंगजी का स्वाद लेते हैं, लेकिन चिड़ियाघर वाले जब इस त्योहार को मनाते हैं तो जंगल के नन्हे सितारे भी साथ हो लेते हैं। साइबर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, रखिए ख्याल, कल फिर शाम 5 बजे होगी मुलाकात चाय पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
3: If one party is saying we will never raise taxes even on millionaires and billionaires,
2: more top sports.
4: And he's gonna go! There's the tying goal!
2: And everything in between.
4: This game is over!
2: Upgrade now for the premium listening experience.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ एयर कुशन व्हीकल H-561 समुद्री सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती, पूरी तरह मेक इन इंडिया है आधुनिक वेसल। फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पेरिस में ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात, निवेश, तकनीक और औद्योगिक सहयोग पर भी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। गर्मी के चलते सैलानियों से गुलजार पहाड़, शिमला में पर्यटकों का हुजूम, खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां तेज, जियांगशी प्रांत में दिखा ड्रैगन बोट में टग ऑफ वॉर का रोमांच, ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपने समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा का ये कवच अब कुछ और मजबूत होने जा रहा है। जून 2026 ये वो तारीख है जो भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। आने वाली 21 जून को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। इन तीन युद्धपोतों में पहला है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, दूसरा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और तीसरा है भारतीय नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों का कमिश्निंग समारोह होगा जिसमें PM मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कोलकाता में होने वाला ये समारोह हाल के सालों में दूसरा ऐसा मौका होगा जब तीन एडवांस नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया जाएगा। इससे पहले ऐसा आयोजन पिछले साल जनवरी में हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को कमीशन किया था। भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमता को पंख लगाने वाले ये तीन महाबली तैयार हैं। ये न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाएंगे बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने साल 2047 तक समुद्री सुरक्षा के लिए जो रोड मैप तैयार किया है ये उसी का हिस्सा है।
1: सूत्रों के मुताबिक 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये इंडक्शन हो सकता है और ये दूसरा मौका होगा जब एक ही साथ तीन अलग अलग योद्धा नेवी में कमीशन किए जाएंगे। अगर इन तीनों युद्धपोतों की बात करें तो ये सभी भारत में बनाए गए हैं और भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि 2047 तक वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी स्वदेशी युद्धपोतों के साथ लैस होगी और उसी कड़ी में ये भारतीय नौसेना का तेजी से चलता हुआ सफर है। यानी भारतीय नौसेना को अब एक बार फिर दूनागिरी जैसे युद्धपोत मिलेंगे जिनमें ब्रह्मोस के साथ साथ तमाम दूसरी मिसाइल्स की ताकत है, साथ ही अग्रय जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जाना जाएगा और संशोधक जो एक सर्वे वेसल है। भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत में ये एक ट्रिपल कमिशनिंग होगी जो वाकई में एक नई उपलब्धि की तरह देखी जा रही है।
0: तीन युद्धपोतों की एक साथ कमिशनिंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्धपोतों, मिसाइलों और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा है। चलिए अब आपको नेवी में शामिल होने वाले इन तीनों महाबलियों से मिलवा देते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दूनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इस घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है।
2: दूनागिरी की बात करूं तो मैं आपको INS दूनागिरी का एक मॉडल दिखाना चाहूंगा।

0: पहला शिफ्ट था जो पुराना एनएस दुनागिरी, जो बहुत समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद डीकमीशन हुआ और ऑपरेशन पवन श्रीलंका में इसने भूमिका निभाई, इसी का नाम नया दिया गया है। ये मेरा पहला शिफ्ट था जहां मैं पायलट के रूप में मैंने हवाई जहाज यहां से उड़ान भरी और आप यहां पे हेलीकॉप्टर देख सकते हो। यही शिफ्ट फिर से कमीशन हुआ है गार्डन रीच के द्वारा, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अधीन, 17 अल्फा के अधीन बनाया हुआ 8 से ज्यादा शिफ्ट। इसमें नीलगिरी, हिमगिरी, दुनागिरी, उदयगिरी, विंध्यागिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, तो ये दुनागिरी ये शिफ्ट अभी कमीशन हो रहा है। ये सरफेस शिप्स के साथ साथ 3,500-4,000 टन से ज्यादा का एक बहुत ही बेहतरीन फ्रिगेट है।
1: आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS दुनागिरी कमीशन होने वाला है उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल ने साल 2009 के जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। 2013 में इसके डिजाइन तैयार कर लिए गए। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था। 17A प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हेमगिरी, दुनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं।
0: बहुत ही कैपेबल शिप, एक कैपेबल फ्रिगेट, काफी हाई स्पीड के साथ, अच्छे पावरफुल इंजन के साथ, 80% भारतीय पुर्जों के साथ और अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए इसके जो पकड़ है उसको हम इससे देख सकते हैं कि एंटी सबमरीन रॉकेट, टॉर्पीडो, डेप्थ चार्जेस, सबमरीन को खोजने के लिए टोही सोनार, रेडार, इसके सरफेस के ब्रह्मोस मिसाइल, इसमें शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसमें एंटी सबमरीन बड़े हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो जैसे जो अमेरिका से खरीदे गए हैं, ये सब मिलके इसको एक बहुत ही कैपेबल फ्रिगेट बनाते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक सूट्स की और दुश्मनों को दूर से पकड़ने की और टोह करके घात लगा के बियॉन्ड द रेंज जो दूर तक रडार से सर्च करके मारना, चाहे हवाई जहाज को, चाहे तो सरफेस शिप को, चाहे सबमरीन को, तीनों कैपेबिलिटी के साथ ये शिप भारतीय नौसेना को मिलने वाली है।
1: अब बात सागर की उस योद्धा की जो याद दिलाएगा भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून का नौसेना में कमीशन होने जा रहा है INS अग्रय, एंटी सबमरीन वॉरफेयर का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी, और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। कमीशनिंग से पहले INS अग्रय के क्रेस्ट का अनावरण किया गया। INS अग्रय अर्नाला क्लास का 5वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है। इसे विशेष रूप से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। ये युद्धपोत भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती देगा।
0: अग्रय में साइड स्कैनिंग सोनार लगे हैं, शैलो वाटर में सबमरीन को पकड़ना, पेट्रोलिंग करना, सर्च एंड रेस्क्यू करना, और इनके पास अंडर वाटर ऑटोनोमस बोट्स हैं जो पानी के अंदर अपने आप चल के और उसमें से रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स निकल के समुद्र की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और पूरी तरह से जो हमारा रख रखाव, जो हमारे सबमरीन के लिए जो बैथी हमको चाहिए, जो प्रेशर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से जो डेप्थ में चेंजेज आती है, जो उनको सबका अध्ययन करते हुए जो हमारे सेना के लिए, सबमरीन के ऑपरेशन के लिए या मौसम विभाग के लिए, ये सब जरूरी है।
1: इक्कीस जून को कोलकाता में INS दुनागिरी और अग्रय के साथ सागर की लहरों पर उतारा जाएगा INS संशोधन। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। ये संधायक क्लास के सर्वे वेसल प्रोग्राम का 4था और आखिरी जहाज है। INS संशोधक सागर की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने का काम करेगा।
0: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधाय क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई, वहां के जो मैपिंग है समुद्र की सतह का अनुमान और हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर की जो चेंजेस है जो सतह के नीचे के पानी के सतह में होती है उनकी भी जानकारी जरूरी, इससे सबमरीन ऑपरेशन और दूसरे काम करने में अंडर वाटर मदद मिलती है। तो इन सबको करने के लिए ये हाइड्रोग्राफी शिप्स जरूरी है जो भारतीय नौसेना में लगातार इंडक्ट किए जा रहे हैं, पहले संधायक, उसके बाद निरूपक और उसके बाद इच्छक, और अब हम संशोधक को 21 जून को भारतीय नौसेना में शामिल करने वाले हैं। ये शिप शांति के दौरान और युद्ध के दौरान दोनों में अपनी भूमिका निभा सकेगा और हॉस्पिटल शिप के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।
1: खास बात यह है कि ये तीनों युद्धपोत पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं। अब ये तीनों मिलकर भारतीय नौसेना की सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमताओं को मजबूत करेंगे। इन तीनों योद्धाओं के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब बात उस अभूतपूर्व रिकॉर्ड की जो भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में बनाकर दिखा दिया है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का परचम खूब लहरा रहा है। नया भारत आज हर पल आत्मनिर्भरता का नया कीर्तिमान रच रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का कुल रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। इतना ही नहीं बल्कि अब की बार भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को पिछले साल की तुलना में 62% तक बढ़ा दिया। लगभग 38,500 करोड़ रुपए के हथियार बनाकर हमने दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट भी किए हैं।

0: स्वदेशीकरण। सशक्तिकरण। आत्मनिर्भरता। आत्मविश्वास। आत्मगौरव। ये शब्द नहीं, ये मुकम्मल दास्तां है राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की। ये जय घोष है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का। ये वो दौर है जब दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई देती है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार है। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। वही लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। तभी तो अब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये अभूतपूर्व है। एक समय था जब भारत हथियारों, लड़ाकू विमानों और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हिंदुस्तान लगातार ऐसे ऐसे आयाम हासिल करता जा रहा है जिसे देखकर दुनिया दंग है। बता दें कि पिछले साल भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ था, जो साल 2026 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 15.6% ही छलांग लगाई है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि साल 2020-21 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपए था। यानी साल 2020-21 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश में डिफेंस प्रोडक्शन में 125% से ज्यादा की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2013-14 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 4 गुना यानी 400% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और 2025-26 में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन हुआ है। ये आंकड़ा 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% इजाफा हुआ है और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनका हिस्सा 24% का है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दर अगर पिछले कुछ सालों यानी एक दशक से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बढ़ोतरी 110% है। यानी लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस से लेकर व्हील्ड व्हीकल्स तक सब कुछ भारत बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और साथ ही सैकड़ों ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब भारत आयात नहीं करता, भारत में ही बनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वृद्धि को देश के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। वास्तव में ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जिसके बूते आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में रक्षा क्षेत्र के PSUs के साथ साथ इस साल निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के नए आंकड़ों में DPSUS यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs यानी दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल उत्पादन के 76% का योगदान दिया। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% रहा। इसे यूं समझिए कि 2025-26 में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 42,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। देश के डिफेंस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी सशक्त होते भारत की पहचान है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं, बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि न केवल प्रोडक्शन बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2024-25 तक ये आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए का था, यानी पिछले साल की तुलना में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहले साल की तुलना में 62.66% ज्यादा है। भारत दुनिया में पांचवा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। आज दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर न केवल अपनी सरहदों को अभेद्य बना रहा है, बल्कि दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन का नया पावर सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी के स्पेशल पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अच्छी खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें
7: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
9: है। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ एयर कुशन व्हीकल H561 समुद्री सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती, पूरी तरह मेक इन इंडिया है आधुनिक वेसल। री नीट के पेपर को लेकर छिंदवाड़ा में लैंड हुआ एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर, कड़ी सुरक्षा के बीच उतारे गए पेपर, 21 जून को होगी परीक्षा। दिल्ली NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। गर्मी के चलते सैलानियों से गुलजार पहाड़, शिमला में पर्यटकों का हुजूम, खुशनुमा मौसम का मजा ले रहे सैलानी। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां तेज, जियांगशी प्रांत में दिखा ड्रैगन बोट में टग ऑफ वॉर का रोमांच, ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: जम्मू कश्मीर खीर भवानी मंदिर में लगने वाले भव्य मेले को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां, कल होगा इस उत्सव का आगाज। खीर भवानी मेले की तैयारियों को लेकर मंदिर पहुंचे जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला, विधि विधान के साथ की मां की अर्चना पूजा। मां से CM उमर अब्दुल्ला ने की विशेष प्रार्थना, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और सद्भाव के साथ मांगा आशीर्वाद। CM उमर अब्दुल्ला ने खीर भवानी मेले की तैयारियों का जायजा लिया, श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं सुविधाओं का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए CM उमर अब्दुल्ला, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रामबन के चंद्रकोट स्थित यात्री निवास में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां शुरू, सुरक्षा ठहरने रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा। यात्रा मार्ग पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आवास, भोजन, मेडिकल सुविधाओं को किया जा रहा अपग्रेड, प्रशासन ने व्यवस्थाओं को परखा। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को देखते हुए चंद्रकोट यात्री निवास पर सुरक्षा बलों की तैनाती और भीड़ प्रबंधन की बनाई जा रही योजना, यात्रा को सुरक्षित बनाने पर जोर। अमरनाथ यात्रा से पहले कुलगाम पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया, हाईवे पर वाहनों की सघन जांच भी लगातार जारी है। यात्रियों के बालटाल और पहलगाम मार्ग की सुरक्षा के लिए K9 स्क्वाड, अत्याधुनिक व्हीकल, एक्सरे मशीनें तैनात की गई, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। उज्जैन के सांवेर में स्थित है अद्भुत उल्टे हनुमान मंदिर, सिर के बल खड़ी प्रतिमा को माना जाता है स्वयंभू स्वरूप। देशभर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं मंदिर, 5 मंगलवार दर्शन से कष्ट दूर होने की मान्यता। सुबह शाम आरती के साथ होता है हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर में राम दरबार की भी नियमित पूजा होती है। मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने की है धार्मिक परंपरा, भक्तों में चोला चढ़ाने की विशेष परंपरा प्रचलित है। हर 3 साल में नगर भ्रमण पर निकलते हैं भगवान, ढोल ताशों और भजनों से गूंजता है पूरा परिसर। ओडिशा के बारीपदा में 1,50,00,000 साल पुराने समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले, वैज्ञानिकों का मानना है कि इलाका कभी उथले समुद्र का हिस्सा था। जीवाश्मों में शार्क के दांत, मछलियों के अवशेष शामिल, इससे करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवन की दुनिया की जानकारी मिली। बुद्धाबलंगा नदी के किनारे फैले बारीपदा फॉसिल बेड्स ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा, भारत के महत्वपूर्ण भू वैज्ञानिक स्थलों में गिनी जा रही है खोज। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वी भारत का एक क्षेत्र कभी खुले समुद्र से जुड़ा हुआ था, जीवाश्म उसी प्राचीन समुद्री दुनिया के सबूत दे रहे। ओडिशा सरकार से यहां फॉसिल पार्क बनाने की मांग की गई है, दुर्लभ जीवाश्मों का संरक्षण और वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद। MP के महू में गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण, तेज फायरिंग की क्षमता से लैस GPS और लेजर गाइडेंस का भी इस्तेमाल करके लगाया सटीक निशाना। करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज, इस महीने शुरू हो सकती है UPI ATM के जरिए PF अकाउंट से सीधे पैसे निकालने की सुविधा। फिल्म वेलकम टू द जंगल की रिलीज से पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में देखे एक्टर अक्षय कुमार, माथा टेक कर लिया आशीर्वाद, फिल्म की सफलता की कामना। जम्मू कश्मीर आजीविका मिशन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए हीरानगर में उल्टा सेल्स आउटलेट शुरू किया, महिलाओं को मिलेगा रोजगार। अरावली में वन्य जीवों की बढ़ी संख्या, 50 से ज्यादा लेपर्ड्स और 200 के करीब हाइना यहां पर। गया के पत्थरकट्टी गांव की काले पत्थर की मूर्तियों को जीआई टैग, इस उपलब्धि से गांव के शिल्पकारों में खुशी। पत्थरकट्टी गांव में पीढ़ियों से पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही, यहां के कारीगरों ने विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका दी। इस टैग से पत्थरकट्टी की मूर्तियों की मांग देश विदेश में बढ़ेगी, स्थानीय शिल्पकारों की अब वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीदें बढ़ी। जम्मू कश्मीर के संत निरंकारी 14वें वनडे ग्रैंड सत्संग के साइडलाइन में बड़ा सेवा कार्य देखने को मिला। पटनी टॉप में लगे इस शिविर में 128 स्वयं सेवकों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता और समाज सेवा की एक मजबूत मिसाल कायम की। हरियाणा के संदीप आर्य जांगड़ा के नाम अनोखा सा कीर्तिमान, लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। विश्व योग दिवस से पहले संदीप ने दुनिया में रोशन किया अपना नाम, संदीप के नाम अब तक 6 विश्व रिकॉर्ड। संदीप ने गुजरात के मोढ़ेरा में लगातार 37 घंटे और 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। संदीप आर्य जांगड़ा की इस बेमिसाल उपलब्धि को अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली। 20,000 सूर्य नमस्कार करने से पहले संदीप ने लगातार 15,000 सूर्य नमस्कार का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। सूरत के सिर्फ 1 साल 8 महीने के मासूम करण मिथुन भाई परमार की याददाश्त बनी चर्चा का विषय, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आईबीआर अचीवर की किताब से नवाजा। छोटी सी उम्र में करण ने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, 20 जंगली जानवरों, 10 पालतू जानवरों, 20 पक्षियों, 18 फलों, 20 सब्जियों की पहचान आसानी से कर ली। नीदरलैंड्स के रोटरडैम में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का शानदार खेल, FIH प्रो लीग में भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से मात दी। मैच के 7वें मिनट में मनदीप सिंह ने किया गोल, फिर 13वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा ने किया गोल। जर्मनी के खिलाफ मैच में अपना 413वां मैच खेल रहे स्टार मिडफील्डर के नाम जुड़ गई नई उपलब्धि, देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने मनप्रीत। महाराष्ट्र पुणे और साई भक्तों को नई रेल कनेक्टिविटी की सौगात, पुणे से साईनगर के बीच एक्सप्रेस ट्रेन रेल सेवा की शुरुआत। रेल मंत्री ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया, मुख्यमंत्री फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। बंगाल पुलिस को आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अहम समझौता किया गया। महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर मथुरा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पहुंचे। कोयला खनन से जुड़े कर्मचारियों की बढ़ेगी सुरक्षा, हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट सिस्टम को डिजिटल तकनीक के साथ अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब के पठानकोट के किसानों के लिए गुड न्यूज आई है, लीची की बंपर पैदावार से खिले किसानों के चेहरे। पठानकोट में लीची की अच्छी पैदावार ने खोले विदेशों में निर्यात के दरवाजे, फसल से अच्छी आमदनी के संकेत। पठानकोट की प्रीमियम लीची लंदन सिंगापुर दुबई एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे किसान, पठानकोट में करीब 4,000 हेक्टेयर इलाके में हो रही लीची की बागवानी। जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनिक खेती से बदल रहे किसानों के हालात, रियासी जिले में ऑर्गेनिक लीची की बागवानी से बढ़ी किसानों की आमदनी। भराक में ऑर्गेनिक खेती से किसानों को मिली सफलता, लीची की बागवानी से किसानों को हो रही अच्छी कमाई। अमेरिका और ईरान में महीनों से चली आ रही जंग आखिरकार खत्म हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने MOU पर साइन किए। महीनों से चल रही जंग के बाद ये एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, से वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान अग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर आधिकारिक रूप से साइन किए। फ्रांस में हुए औपचारिक साइनिंग के बाद डील तुरंत प्रभावी हुई, भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों पर नजर। हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और नौसैनिक तनाव घटाने पर समझौता हुआ, तेल आपूर्ति को बड़ी राहत, ऊर्जा महंगाई का दबाव कम होने की संभावना। कुल्लू में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली बड़ी राहत। लगातार बारिश से कुल्लू घाटी की वादियां हरी भरी, नजारे और भी मनमोहक नजर आ रहे। मौसम ठंडा होने से कुल्लू के बाजारों में चहलकदमी बढ़ी, कारोबार को मिला सहारा। वीकेंड पर पर्यटकों की आमद बढ़ने की संभावना जताई गई, मौसम में आए बदलाव से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। यहां पर सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता पर छाया फीफा फुटबॉल विश्व कप का खुमार, फुटबॉल के रंग में रंगी कोलकाता की सड़कें। कोलकाता में दिख रही फुटबॉल को लेकर लोगों की दीवानगी, फुटबॉल विश्व कप का अखाड़ा बना कोलकाता। फुटबॉल के दीवाने शहर में जगह जगह दिख रहे फुटबॉल से जुड़े झंडे और म्यूरल्स, गलियों से लेकर सड़कों तक दिख रहा फुटबॉल का क्रेज। फुटबॉल से जुड़े चिन्हों से शहर में जबरदस्त सजावट, शहर में दिख रहा फीफा फुटबॉल विश्व कप का जोश। फुटबॉल फैंस ने सड़कों को फुटबॉल कार्निवल में बदल दिया, पूरे शहर में दिख रही फुटबॉल की दीवानगी। रोम के कार पार्क में ट्रक बना ओपेरा थिएटर, द बार्बर ऑफ सेविल का अनोखा ओपन एयर मंचन। ओपेरा कैमियन ने ओपेरा को लोगों के दरवाजे तक पहुंचा दिया, बाजार पार्किंग के बीच गूंजा रोशनी का संगीत। कार पार्क में फिगारो की एंट्री ने जीता दिल, क्लाउन और एक्रोबैट्स ने शो को बनाया और रंगीन। दर्शकों की भागीदारी ने शो को बनाया और जीवंत, पारंपरिक ओपेरा को मिला आधुनिक और अनोखा अंदाज। खुले मंच पर फिगारो के अंदाज ने बटोरी वाहवाही, गर्मियों की शाम में संगीत और समुदाय का अनूठा संगम। दक्षिणी चीन में पारंपरिक ड्रैगन बोट उत्सव मनाया गया, कई गांवों की नावें एक साथ नदी में उतरी। अलग अलग गांव के लोग ड्रैगन बोट लेकर एक दूसरे से मिलने पहुंचे, इस दौरान लोगों ने उत्सव का जमकर मजा लिया। यह आयोजन नाव रेस से ज्यादा गांवों के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए किया जाता है, लोग मिलकर सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाते हैं। सजाई गई ड्रैगन बोट्स ने नदी में शानदार परेड निकाली, इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गांव वालों ने बाहर से आने वाले नाव दलों को चाय और खास पेस्ट्री खिलाई, इससे आपसी रिश्ते मजबूत हुए। चीन की पोयांग झील में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां तेज, ड्रैगन बोट टग ऑफ वॉर बना आकर्षण का केंद्र। नए फॉर्मेट ने पारंपरिक खेल में भरा अद्भुत रोमांच, पोयांग झील में दिखा खेल और संस्कृति का अनूठा संगम। चीन ने 53 अफ्रीकी देशों के आयात पर घटाया टैरिफ, चीन अफ्रीका व्यापार में पिछले साल करीब 18% की बढ़ोतरी। केन्या से चीन को एवोकाडो निर्यात में रिकॉर्ड उछाल, 2022 में 10 से 20 कंटेनर, अब तक 200 कंटेनर प्रति सप्ताह की मांग। 2030 तक हर हफ्ते 1000 कंटेनर पहुंच सकती है चीन की मांग, अफ्रीकी निर्यातक डॉलर की जगह युआन में कारोबार पर कर रहे विचार। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 194 साल के कछुए जोनाथन को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया, दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित कछुओं में शामिल। नेपाली ब्रिटिश पर्वतारोही हरि बुधा मगर को आइकन अवार्ड मिला, दोनों पैर ना होने के बावजूद एवरेस्ट और सेवन समिट्स कर चुके फतेह। नाइजीरिया की शेफ हिल्डा बाची को गिनीज आइकन अवार्ड दिया गया, उन्होंने एक बहुत बड़े बर्तन में सबसे ज्यादा चावल पकाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। रेस्ट अभिनेता जॉन सीना और के पॉप ग्रुप ब्लैक पिंक को आइकन अवार्ड मिला, दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां हासिल की। अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और बेसबॉल खिलाड़ी शोहेई ओहतानी को आइकन अवार्ड मिला, दोनों ने अपने क्षेत्र में ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड बनाए। फीफा वर्ल्ड कप में शानदार जीत के बाद मैक्सिको सिटी पर छाया कोलंबिया का पीला रंग, एत्सेका स्टेडियम में कोलंबियाई फैंस का दबदबा। मैक्सिको सिटी की सड़कों पर गूंजे कोलंबियाई गीत, कोलंबियाई समर्थकों ने एत्सेका को बनाया होम ग्राउंड। फुटबॉल और जश्न के रंग में रंगी मैक्सिकन राजधानी वर्ल्ड कप में कोलंबिया ने शानदार जीत के साथ किया आगाज। मैक्सिको दक्षिण कोरिया मैच से पहले दिखी दोस्ती की मिसाल, के पॉप और के ड्रामा ने दोनों ने देशों को जोड़ा। मैक्सिको में दक्षिण कोरियाई प्रशंसकों का गर्मजोशी से स्वागत, मैच से पहले खेल भावना, सांस्कृतिक मेलजोल पर चर्चा भी। रोमानियाई रेफरी इस्तवान कोवाक्स को ऐतिहासिक सम्मान, 20 जून को फीफा वर्ल्ड कप का 1000वां मैच कोवाक्स करेंगे रेफरी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिका ने जारी किया यादगार सिक्के, फिलाडेल्फिया मिंट में तैयार हुए लिमिटेड एडिशन कॉइन्स। हाफ डॉलर, सिल्वर डॉलर, गोल्ड कॉइन होंगे उपलब्ध। सिक्कों पर दिखी फुटबॉल वर्ल्ड कप की झलक। बाइसिकल किक वाले डिजाइन ने खींचा प्रशंसकों का ध्यान। स्मारक सिक्कों के साथ मिलेगा प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट। अमेरिका में फुटबॉल विरासत को समर्पित ये पहल। कलेक्टर्स के साथ खास आकर्षण बने वर्ल्ड कप कॉइन्स। मायामी बीच पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। पर्यटक गर्मी से बचने के लिए छांव तलाशते नजर आए। गर्मी से परेशान दिखे इंग्लैंड से आए पर्यटक। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा मायामी। गर्मी में भी फुटबॉल का जुनून हाय। विश्व कप मंच पर फैंस का चरम पर दिखा एक्साइटमेंट। ओशन ड्राइव पर लगी विशाल फुटबॉल के साथ सेल्फी लेते नजर आए सैलानी। फैंस ने कहा मौसम चाहे जैसा भी हो फुटबॉल का मजा नहीं रुकेगा। मायामी की गर्मी और नमी खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को ले सकते हैं परीक्षा। पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: क्या बृहस्पति की वजह से जीवन के संस्कार कमजोर होते हैं? क्या बृहस्पति की वजह से बड़ी और गंभीर बीमारियां होती हैं? कौन सी हैं बृहस्पति की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
12: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
2: मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए अब आपको बताते हैं खबर एक कमाल के कुत्ते की। कुत्तों की वफादारी की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी। आपने ये भी सुना होगा कि महाभारत में हस्तिनापुर का त्याग कर जब युधिष्ठिर उनके चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकले तो एक कुत्ता रास्ते में उनके साथ जुड़ गया। अंत तक उनके साथ रहा ये कुत्ता। इस कुत्ते के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे शांति दूत भी कहा जा रहा है।

0: बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठा ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये अलोका है, जिसे द पीस्ट डॉग के नाम से जाना जाता है। इस कुत्ते से मिलने के लिए, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों में बड़ी उत्सुकता नजर आ रही है, क्योंकि ये डॉग ही बेहद खास है। कभी कोलकाता की गलियों में घूमने वाला ये कुत्ता अब दुनिया भर में शांति और करुणा के दूत के रूप में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के एक होटल की है, जहां अलोका के लिए खास तौर से भव्य मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि इसके मुरीद लोग यहां पर आकर इसका दीदार कर सकें, क्योंकि इसके पीछे वजह भी खास है।
1: अलोका के साथ एक फोटो खिंचाने के लिए 300 लोग आए। वी आर सो ग्रेटफुल कि एक इंडियन डॉग ने वर्ल्ड पीस एम्बेसडर बन गया, कि एक सड़क पर आने वाला इंडियन डॉग ने ऐसा पीस का मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचाया है। और वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, हर कुत्ता इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक स्पिरिचुअल लैंड है, हमारा भारत देश एक लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ हर जीव सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में एक मैसेज लेके जाता है।
0: अलोका नाम के इस डॉग ने कई देशों में शांति के लिए पदयात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संग रहकर शानदार शोहरत हासिल की है। सोशल मीडिया पर करीब 5 लाख लोग इसे फॉलो करते हैं। शांति और करुणा के एम्बेसडर के रूप में इसने कोलकाता से अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड सहित कई देशों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा सफर पैदल ही पूरा किया है। बौद्ध भिक्षुओं के मुताबिक अलोका इन्हें कोलकाता में एक शांति यात्रा के दौरान मिला था। इसके बाद ये इनके साथ ही रहने लगा और शांति यात्राओं का हिस्सा बनता चला गया। तब से अब तक ये इनके हर वॉक फॉर पीस अभियान में शामिल होता आ रहा है।
1: इन्होंने यूएस के अंदर 110 दिन का इनका पीस वॉक थी। अलोका के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलोका द डॉग जो आप देख रहे हैं। और साथ में अभी इनकी थाईलैंड में भी वॉक थी, तो पीस वॉक के चलते उनका लंबा एक इनिशिएटिव चल रहा है उसको लेकर।
0: दुनिया भर में शांति का संदेश फैलाने वाले इस मशहूर भारतीय डॉग अलोका के स्वागत में इससे मिलने और इसके साथ यादगार तस्वीर खिंचवाने के लिए दिल्ली एनसीआर के कोने कोने से सैकड़ों डॉग लवर्स गुरुग्राम में हुए कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम का मकसद बेसहारा पशुओं के प्रति लोगों में दया और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है, और साथ ही ये संदेश देना भी है कि समाज में हर जीव को सम्मान देना चाहिए। नेपाल के दौरे के बाद भारत पहुंचे अलोका का अगला पड़ाव एक बार फिर अमेरिका है, जहां ये एक बार फिर से शांति के संदेश को फैलाने में इन भिक्षुओं का साथ देगा। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में
7: विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ एयर कुशन व्हीकल H-561 समुद्री सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती, पूरी तरह मेक इन इंडिया है आधुनिक वेसल। री नीट के पेपर लेकर चंदवाड़ा में लैंड हुआ एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर, कड़ी सुरक्षा के बीच उतारे गए पेपर, 21 जून को होगी परीक्षा। दिल्ली एनसीआर में बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। गर्मी के चलते सैलानियों से गुलजार पहाड़, शिमला में पर्यटकों का हुजूम, खुशनुमा मौसम का उठा रहे लुत्फ। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां तेज, जियांगशी प्रांत में दिखा ड्रैगन बोट में टग ऑफ वॉर का रोमांच, ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर।
11: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। IIT दिल्ली देश का अग्रणी संस्थान बन गया है। IIT दिल्ली को QS रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, तो इसी से जुड़ी आज की हमारी पहली गुड न्यूज है और वो है QS रैंकिंग में IIT दिल्ली देश में नंबर 1। जी हाँ, भारत के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में शामिल IIT दिल्ली ने एक बार फिर दुनिया भर में अपनी पहचान मजबूत कर ली है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में लगातार दूसरे साल IIT दिल्ली देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना है। इस बार इंस्टीट्यूट ने 5 रैंक की छलांग लगाते हुए ग्लोबल रैंकिंग में 118वां स्थान हासिल किया है, जो किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। IIT दिल्ली ने अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार करते हुए देश में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर प्लेसमेंट रिकॉर्ड,

0: के इंडस्ट्री कनेक्शन यूनिवर्सिटी के इन सारे पैमानों पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग तैयार होती है और इन सभी पैमानों पर IIT दिल्ली ने इस बार झंडे गाड़ दिए हैं।
1: अहमदाबाद में सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा पेलिकन यानी कि पुश बटन ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल किया गया है। शहर के CG रोड पर पहली बार इस सिग्नल को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है रेड लाइट खुद से कंट्रोल करेंगे पैदल यात्री। आपको बता दें कि इस पेलिकन ट्रैफिक सिग्नल को इंस्टॉल करने में 6 लाख रुपए की लागत आई है। इस सिस्टम के लग जाने से पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में कोई असुविधा नहीं होगी।
2: विदेशों में पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए पुश बटन यानी पेलिकन ट्रैफिक सिग्नल की सुविधा उपलब्ध है। वैसी ही सुविधा अब गुजरात के अहमदाबाद में पहली बार शुरू की गई है। अहमदाबाद में पहला पेलिकन ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल किया गया है। इसे सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा शहर के CG रोड पर लगाया गया है। इस पेलिकन ट्रैफिक सिग्नल को इंस्टॉल करने में 6 लाख रुपए की लागत आई है। इस सिस्टम के लग जाने से पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में सुविधा मिलेगी।
3: अहमदाबाद में पहली बार पेडिस्ट्रियन के लिए पेलिकन सिग्नल सिस्टम लगाया गया है, जिसका उद्देश्य है जो भी सड़क को क्रॉस करने वाले लोग हैं, जब वो क्रॉस करें तब एक बटन पुश करें और उस बटन पुश करने के साथ ही सिग्नल रेड हो जाए ताकि वो आसानी से सड़क क्रॉस कर सकें। और ये जो सिग्नल है वो लगाया गया है अहमदाबाद के CG रोड पर, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में इस जो सिग्नल के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं।
2: CG रोड पर सड़क के दोनों तरफ आमने सामने पेलिकन ट्रैफिक सिग्नल बॉक्स लगाए गए हैं, जिस पर लगे बटन को पुश करने पर वेट एंड वॉक ऑप्शन हाईलाइट होता है। वॉक ऑप्शन हाईलाइट होने पर सड़क पर लगा सिग्नल ग्रीन से रेड हो जाता है। इससे सड़क से गुजर रही गाड़ियां रुक जाती हैं।
4: राहदारी को रास्ता क्रॉस करना होता है तो सबसे पहले उनको पुश बटन दबाना रहता है, तो सबसे पहले वेट का सिग्नल आता है। जैसे ही वेट का सिग्नल आएगा उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा, तो ग्रीन होते टाइम ये पेडेस्ट्रियन लोग हैं वो शांति से रास्ता क्रॉस कर पाएंगे और व्हीकुलर है वो रुक जाएंगे, तो वो शांति से रास्ता क्रॉस कर पाएंगे और उनको आसानी से 25 से 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। आखिरी के 5 सेकंड में एक हूटर बजेगा जिसपे वो राहदारियों को पता चलेगा कि अब उनके लिए रास्ता बंद होने वाला है और व्हीकल शुरू हो जाएंगे।
2: बटन पुश करने के बाद जब वॉक ऑप्शन शुरू होता है उस दौरान पैदल यात्री को सड़क पार करने के लिए 25 सेकंड का समय मिलता है। उस समय ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन से रेड रहता है, लेकिन उसके बाद अगले 30 सेकंड तक दोबारा इस सिग्नल का इस्तेमाल पैदल यात्री नहीं कर सकते। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसे शुरुआत के तौर पर CG रोड पर लगाया है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो कई और जगहों पर इसे इंस्टॉल किया जा सकता है।
5: ये सिस्टम अभी प्रायोगिक धोरण पे है, अगर ये सफल हो तो ऐसे दूसरे पेडेस्ट्रियन मूवमेंट वाले एरिया से वो आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी इस तरह की व्यवस्था कर सकेंगे, लेकिन सबसे पहले पब्लिक एक बार अवेयर हो जाए इसके लिए ये प्रायोगिक धोरण पे चालू किया गया।
2: पैदल यात्रियों के लिए ऐसा सिस्टम लगाना और लोग उसके नियमों का पालन करें इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। एक बार लोगों में जागरूकता फैलेगी तो पेलिकन ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था न केवल अहमदाबाद बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी शुरू की जा सकती है। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे।
1: योग स्वच्छ जीवन जीने का माध्यम है और भारतीय योग ने पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन जीने का रास्ता दिखाया है। इसी योग की ताकत को अपनी साधना से दुनिया के सामने साबित किया है एक ऐसे युवक ने जिसने सूर्य नमस्कार को केवल व्यायाम नहीं बल्कि तपस्या बना दिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। 36 घंटे तक सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड, संदीप आर्य ने 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया है। सूर्य नमस्कार से दुनिया को योग की ताकत से परिचित कराने वाले संदीप अब करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं।

0: एक ऐसा लड़का जो बचपन से स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन एक इंजरी ने उसका ये सपना तोड़ दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब दो वक्त की रोटी के लिए उसे दिहाड़ी मजदूर बनना पड़ा, लेकिन फिर उस लड़के ने योग का रास्ता लिया और आज उसके सूर्य नमस्कार का डंका न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी धूम से बज रहा है।
1: जब इरादे मजबूत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। एक साधारण परिवार से निकलकर योग की दुनिया में असाधारण पहचान बनाने वाले संदीप आर्य ने यही कर दिखाया है। 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार कर संदीप आर्य ने विश्व रिकॉर्ड बनाया और पूरी दुनिया को अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया।
2: शुरुआत करी 2018 के अंदर पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की और धीरे धीरे 5000 सूर्य नमस्कार से लेकर 8000, 10000 और 12000, 15000 से लेकर अभी जो वर्तमान में करंट जो 20000 लगातार का रिकॉर्ड स्थापित हुआ। 5000 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड था 10 घंटे लगातार करने का, और उसके बाद फिर 8000 सूर्य नमस्कार का जो रिकॉर्ड बनाया था वो 16 घंटे लगातार करने का।
1: संदीप के नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार करने का है। विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले संदीप आर्य आज देश विदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। संदीप ने अब तक 6 बार सूर्य नमस्कार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक नई मिसाल भी कायम की है। हरियाणा के रहने वाले संदीप आर्य का बचपन भी आम बच्चों की तरह था, लेकिन उनके सपने आम नहीं थे। जब दूसरे बच्चे खेल और मनोरंजन में व्यस्त रहते थे, तब संदीप अनुशासन, व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके थे। उन्हें बचपन से ही कुछ ऐसा करने की चाह थी जिसे दुनिया याद रखे।
2: मैंने तो 10 साल की उम्र से शुरुआत कर दी थी और बचपन से ही सुबह 3 बजे उठकर दौड़ लगाना शुरू किया था। एक सपना था बचपन से ही कि देश के लिए गोल्ड मेडल ले जाएंगे 400 मीटर में, लेकिन 2015 में इंजरी होने के कारण वहीं से वो सपना छूट गया था, लिगामेंट टूट गया था ACL और PCL। लेकिन फिर सपना देखा कि योग के फील्ड में जाके अपनी भारतीय संस्कृति का जो प्रतीक है, जो आज पूरे विश्व के अंदर पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, तो उसी क्षेत्र में जाके अपने भारत देश का नाम रोशन करेंगे।
1: आज संदीप आर्य लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनका मानना है कि योग केवल शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित बनाने की कला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उनका संदेश है कि हर युवा अपनी दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करे। दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
3: गया जिले के एक छोटे से गांव ने अपनी कला के दम पर दुनिया में पहचान बनाई है। यहाँ हर घर में छेनी हथौड़ी की आवाज गूंजती है और हर हाथ पत्थर को जीवन देने का हुनर जानता है। इस गांव को उसके हुनर के लिए GI टैग मिला है। ऐसे में आज के हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। मूर्तियां तराशने वाले गांव को मिला GI टैग। इस गांव की सदियों पुरानी शिल्प कला को अब पहचान मिली है। GI टैग मिलने के बाद इस गांव के शिल्पियों के हुनर को हौसला मिला है।
4: गया का पत्थर कट्टी गांव, यहां के पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि आस्था का आकार हैं। छेनी की हर चोट में इतिहास की गूंज है और कारीगरों के हाथों में सदियों पुरानी विरासत की पहचान। यहां लगभग हर घर में मूर्तियां बनती हैं और हर परिवार में एक शिल्पकार है। काले पत्थर को तराश कर देवी देवताओं और आकर्षक कलाकृतियों को आकार देने वाले इस गांव को अब देश भर में नई पहचान मिली है। पत्थर कट्टी की प्रसिद्ध शिल्प कला को GI टैग प्रदान किया गया है। ये वही गांव है जिसके पत्थरों से विश्व प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर का निर्माण हुआ था।
5: माने राजस्थान से हमारे पूर्वज जो आए थे मंदिर बनाने के लिए, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर विष्णु पद मंदिर को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों को लाई थी। 300 परिवार वहाँ से आए थे। शायद उस समय 1700 कुछ ईस्वी में माने हमारे पूर्वज आए थे उस मंदिर को बनाने के लिए, और 1785 या 84 में मंदिर तैयार हो गया था।
4: आज हालात ऐसे हैं कि पत्थर कट्टी में हर घर इस शिल्प कला से जुड़ा हुआ है। यहाँ बनने वाली मूर्तियाँ बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों और विदेशों तक भेजी जाती हैं। अब GI टैग मिलने से शिल्पकारों के हुनर को ग्लोबल पहचान मिलेगी।
6: एक ऐसी चीज है जिसे पूरा वर्ल्ड हमें पत्थर कट्टी के काले पत्थरों से बनी चीजों को देख सकेगा, और इसकी डिमांड बढ़ेगी और लोगों को, कलाकारों को काम मिलेगा। हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत इंतजार किए हैं अप्लाई करने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा कि भाई कब मेरा होगा, कब होगा, लेकिन एक समय आया कि आज काम हो गया।
4: शिल्पकारों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से पत्थर कट्टी की मूर्तियां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ेगी। खास बात यह है कि यहां के पहाड़ों से निकलने वाला काला पत्थर बेहद मजबूत और टिकाऊ माना जाता है, जिसकी चमक और गुणवत्ता वर्षों तक बरकरार रहती है।
5: जब पूर्वज लोग यहाँ आए तो सबसे पहले पत्थर का सर्वे हुआ कि सबसे मजबूत और टिकाऊ पत्थर कहाँ माने मिलेगा। तो उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही राज्य था, तो उड़ीसा तक पत्थर की खोज में हमारे पूर्वज गए थे, लेकिन सबसे मजबूत पत्थर इस पत्थरकट्टी की पहाड़ में ही मिला।
4: पत्थरकट्टी और आसपास के इलाके में करीब 100 से अधिक दुकानें संचालित हैं और लगभग 3000 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शिल्प कला से जुड़े हुए हैं। जीआई टैग मिलने के बाद अब वैश्विक बाजार में इसकी पहचान और मजबूत होने की उम्मीद है। सदियों पुरानी परंपरा, पत्थरों में बसती कला और अब जीआई टैग की नई पहचान। गया का पत्थरकट्टी गांव सिर्फ मूर्तियां नहीं बनाता बल्कि अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। जीआई टैग ने इस गांव के हुनर को नया सम्मान दिया है और अब उम्मीद है कि पत्थरकट्टी की चमक दुनिया के नक्शे पर और भी दूर तक पहुंचेगी। पंकज कुमार, गया, गुड न्यूज टुडे।
3: कहते हैं खेती में सफलता सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि सोच से भी मिलती है। नरसिंहपुर जिले के एक किसान ने यही साबित कर दिखाया। जिस जमीन को लोग कम उपजाऊ मानते थे, वहां आज विदेशी तकनीक से तैयार आम के बाग से लाखों का कारोबार किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, यहां उगाए गए आम दुबई और लंदन तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है 70 एकड़ रेतीली भूमि में आम के बाग। नरसिंहपुर जिले के छेना कछार गांव में फैला ये आम का बगीचा किसी कृषि प्रयोगशाला से कम नहीं है। करीब 70 एकड़ में विकसित इस बगीचे में आम की कई उन्नत किस्में लगाई गई हैं। नदी किनारे की जिस जमीन को खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता था, उसी भूमि पर आज हजारों आम के पेड़ किसानों के लिए मिसाल बन गए। इस बगीचे को तैयार किया है किसान विजयपाल सिंह पटेल ने। मूल रूप से छिंदवाड़ा के रहने वाले विजयपाल ने पारंपरिक खेती से अलग हटकर बागवानी को अपनाया और इसराइल की अल्ट्रा हाई डेंसिटी तकनीक से आम के पौधे लगाए। इस तकनीक में कम जगह में अधिक पौधे लगाए जाते हैं, जिससे उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ते हैं। विजयपाल के बगीचे में केसर आम की भी बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश में कम देखने को मिलती है। विजयपाल ने जम्बो केसर आम के करीब 6000 पौधे लगाए हैं। इस प्रजाति का एक आम 1.5 से 2 किलो तक वजन का हो सकता है। आम उत्पादन के साथ यहां आमों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2 वर्ष पहले यहां के आम दुबई और लंदन तक निर्यात किए जा चुके हैं।
7: नरसिंहपुर जिले के किसान विजयपाल साहब ने करीब 70 एकड़ में आम की खेती की है और बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। उनसे जानेंगे कि ये खेती कितनी लाभदायक है किसानों के लिए। जहां किसान अपनी पारंपरिक मूंग और गेहूं गन्ना लगाते हैं, तो ये आम की और अन्य फसल में क्या फर्क?
8: सर, गेहूं गन्ना मूंग चना जो भी आप लगाते हैं उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसमें ये जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, चाहे आप आम ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए या सीताफल कोई भी लगाएंगे, उसमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत विकल्प है। आप देख रहे हैं कि हमने आम का जो लगा है बाग 70 एकड़ में लगा है, इसमें इसराइल की अल्ट्रा हाई डेंसिटी तकनीक हमने यूज की है। इसमें कम जमीन में अधिक पौधे रोपित करके अधिक उत्पादन प्राप्त करके अधिक लाभ कमाना है, ये इसका पहला उद्देश्य है अल्ट्रा हाई डेंसिटी का। और इसमें हमने वैल्यू एडिशन के लिए ये देखिए आप बैगिंग तकनीक अपना है। ये बैग लगाने से क्या होता है कि इसकी वैल्यू एडिशन हो जाता है, कलर इसका चेंज हो जाता है।
3: लीची अपने रसीले, मीठे और सुगंधित स्वाद के लिए गर्मियों का एक बेहद लोकप्रिय फल है। भारत में इसकी कई किस्में पाई जाती है। ऐसी ही लीची की खेती करके पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसान मालामाल हो रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है लीची की खेती से बदल रही किसानों की तकदीर। आपको बता दें कि पठानकोट के किसान इस बार लीची की बंपर पैदावार का फायदा उठा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के रियासी में किसान ऑर्गेनिक खेती करके अपनी किस्मत बदल रहे हैं।
9: गर्मियों के मौसम में लीची की मिठास स्वाद के दीवानों को खूब लुभाती है। अपनी प्राकृतिक मिठास हल्की खुशबू और बेहतरीन स्वाद के लिए पसंद किया जाने वाला ये फल शरीर को हाइड्रेटेड रखने और पोषण देने में बहुत फायदेमंद होता है। इस बार पंजाब के पठानकोट में लीची उपजाने वाले किसान बेहद खुश हैं, क्योंकि इस बार उनके लीची की बम्पर पैदावार हुई है। दरअसल इस बार पठानकोट का मौसम लीची के पैदावार के लिए अनुकूल है, ऐसे में इस बार यहाँ किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। यहाँ से लीची देश के दूसरे हिस्सों में तो भेजी जा रही है, बल्कि इस बार इसे लंदन और सिंगापुर में भी एक्सपोर्ट करने की तैयारी है।
10: क्वालिटी तो ठीक ही है, हम तो दिल्ली भेजते हैं, वहाँ से लोग फिर आगे भेजते हैं, विदेश तक जाते हैं, दूसरे देश।
9: पठानकोट जिले में करीब 4000 हेक्टेयर में लीची की पैदावार हो रही है और पठानकोट को लीची जोन घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के रियासी में भी लीची की ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। ऑर्गेनिक लीची की खेती से स्थानीय किसानों को बहुत फायदा हुआ है, इससे किसानों की कमाई बढ़ी है और टिकाऊ खेती के तरीकों से रियासी के लीची उत्पादक समृद्ध हुए हैं।
11: आजकल मेरा लीची का सीजन है और लीची मेरी ऑर्गेनिक है, बिल्कुल एकदम कोई केमिकल नहीं डालता हूँ, फर्टिलाइजर नहीं डालता हूँ, तो बहुत अच्छे ढंग से भी चल रही है। और मेरे सराउंडिंग एरिया में जितने भी काफ़ी आबादी है, वो लोग मेरे से आके आराम से लीची ले जाते हैं, क्योंकि मेरा अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत अच्छा चल रहा है।
9: ऑर्गेनिक खेती की पहल ने रियासी में लीची की खेती का तरीका बदला। लीची की खेती से ग्रामीणों की आजीविका बेहतर हुई है। बेहतर मुनाफे के लिए जम्मू कश्मीर के किसान ऑर्गेनिक लीची का उत्पादन कर रहे हैं और किसानों की इस पहल को बागवानी विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है।
12: हमारे जो फार्मर्स हैं, इस समय लीची की फार्मिंग उनकी हुई है और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हम फार्मर्स को पूरा बताते हैं कि कैसे लीची का प्लांट लगाना है, कैसे उसकी पिट निकालना है और कैसे किस सीजन में उसको लगाना है। उसके अलावा उसको हम पूरा बताते हैं कि भाई कैसे आपने जो है लीची की क्रॉप को बीमारियों से बचाना है, उसको इंसेक्ट पेस्ट से बचाना है। लीची की फार्मिंग करके इस समय फार्मर्स काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।
9: प्राकृतिक तरीके से उगाई जा रही लीची की मांग बाजार में तेजी से बढ़ी है, लिहाजा रियासी के किसानों को लीची की फसल से अच्छा मुनाफा हो रहा है। पठानकोट से पवन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: उत्तराखंड के चमोली में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में इस बार बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सैलानियों से पूरी घाटी गुलजार नजर आ रही है। विश्व धरोहर सूची में शामिल इस राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 3,500 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, वर्ल्ड हेरिटेज फूलों की घाटी पर्यटकों से गुलजार। चारधाम यात्रा पर सैलानियों के बड़ी संख्या में पहुंचने के साथ साथ श्रद्धालु चमोली के वैली ऑफ फ्लावर्स भी पहुंच रहे हैं। विश्व धरोहर सूची में शामिल इस राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 3600 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब दोगुने हैं। पिछले साल इस समय तक करीब 1900 पर्यटक ही घाटी पहुंचे थे, जबकि इस वर्ष उनकी संख्या बढ़कर 3600 हो गई है। पर्यटकों के साथ साथ राजस्व के मामले में भी जबरदस्त उछाल आया है। फूलों की घाटी से इस सीजन में अब तक 6,00,000 रुपए से अधिक राजस्व जमा हो चुका है। फूलों की घाटी में इस बार श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वर्तमान में घाटी में रंग बिरंगे फूल खिलने शुरू हो गए हैं और पर्यटक इनकी खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। घाटी का मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त तक माना जाता है, ऐसे में आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। फूलों की घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविध वनस्पतियों और दुर्लभ फूलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
14: क्या बृहस्पति की वजह से जीवन के संस्कार कमजोर होते हैं? क्या बृहस्पति की वजह से बड़ी और गंभीर बीमारियां होती हैं? कौन सी हैं बृहस्पति की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
15: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला। That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
16: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
17: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up to three and nails it.
16: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
18: Because people who all watch games, they hear the voice.
16: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
19: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
16: गुड न्यूज टुडे.
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
19: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
16: गुड न्यूज टुडे.
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
19: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
16: गुड न्यूज टुडे.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: QS रैंकिंग में आज दिल्ली बना देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। ग्लोबल रैंकिंग में हासिल किया 118वां स्थान। दुनिया के टॉप संस्थानों में DU, जामिया समेत भारत की 52 यूनिवर्सिटीज। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ एयर कुशन व्हीकल H-561। समुद्री सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती, पूरी तरह से मेक इन इंडिया है आधुनिक मिसल। ग्रीनीट पेपर को लेकर छिंदवाड़ा में लैंड हुआ एयर फोर्स का हेलीकॉप्टर। कड़ी सुरक्षा के बीच उतारे गए पेपर,
9: 21 जून को होगी परीक्षा। गर्मी के चलते सैलानियों से गुलजार पहाड़, शिमला में पर्यटकों का हुजूम, खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे ने सच मान लेते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे ने सच मान लेते हैं, शेयर करना शुरू कर देते हैं और यहीं से अफवाहों की आधी शुरू होती है। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल और हर झूठ का पर्दाफाश हम करते हैं फैक्ट चेक में। तो आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं उनमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि धार्मिक पहचान को लेकर एक शख्स ने एक बुजुर्ग आदमी को पीटा। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो पीओके में हो रहे बवाल से जुड़ा हुआ है। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, बताएंगे आप। आगे शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
9: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि धार्मिक पहचान को लेकर एक शख्स ने एक गरीब बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति के साथ पहले बहस की और फिर उसे पीटा। दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए युवक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि इस्लामिक टोपी पहने एक बुजुर्ग शख्स के पास एक शख्स खड़ा है। पहले ये शख्स बुजुर्ग आदमी को कुछ कहता है और फिर थप्पड़ मारने लगता है। इसके बाद युवक वहां से कुछ कहता हुआ आगे निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर वापस लौटता है और बुजुर्ग को मारता है। वीडियो शेयर करने वालों का दावा है कि युवक हिंदू था और उसने एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग पर हमला किया। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि एक गरीब बुजुर्ग और दिव्यांग मुस्लिम व्यक्ति के साथ एक बदमाश ने सिर्फ इसलिए बेरहमी और अमानवीय तरीके से मारपीट की क्योंकि उन्होंने नमाज वाली टोपी पहनी हुई थी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इसे शेयर करते हुए ये कह रहे हैं कि एक गरीब बुजुर्ग और दिव्यांग मुस्लिम व्यक्ति के साथ एक शख्स ने सिर्फ इसलिए बेरहमी और अमानवीय तरीके से मारपीट की क्योंकि उन्होंने नमाज वाली टोपी पहनी हुई थी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि शख्स बुजुर्ग व्यक्ति को थप्पड़ मार रहा है, लेकिन इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करते। इस दौरान हमारा ध्यान गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर भी गया। जब हमने इसे जूम करके गौर से देखा तो ये यूपी के नंबर प्लेट्स नजर आए, मतलब वायरल वीडियो का लिंक यूपी से हो सकता है। लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें घटना के बारे में छपी कई रिपोर्ट्स मिली। 9 जून को एक आधिकारिक वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। रिपोर्ट में बताया गया था कि जो व्यक्ति बुजुर्ग हाजी तहसीन के साथ मारपीट करता हुआ दिख रहा है वो उनका बेटा गुलफिशान है। सर्च के दौरान हमें घटना से संबंधित एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर 72 साल के तहसीन के साथ उनके बेटे ने मारपीट की। ये घटना कुतुब शेर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है। वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद पुलिस ने गुलफिशान को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हाजी तहसीन ने पुलिस से अपने बेटे को रिहा करने की अपील की। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का कोई धार्मिक एंगल नहीं है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है जहां संपत्ति विवाद को लेकर गुलफिशान नाम के एक शख्स ने अपने पिता से मारपीट की थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो पीओके में ताजा बवाल के बीच प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते पाकिस्तानी पुलिस वालों का है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इन दिनों भारी बवाल मचा हुआ है। पीओके विधानसभा की 45 सीटों में से 12 सीटें आरक्षित किए जाने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आंदोलन की अगुवाई ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी कर रही है। पाकिस्तान में हाल ही में JAAC को एक प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था। पुलिस कार्रवाई में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। इसी संदर्भ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें लोगों की भीड़ और कुछ पुलिस वालों के बीच झड़प देखी जा रही है। पुलिस वाले अपनी पोजीशन लेते और लोगों पर गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आंसू गैस का धुआं भी दिख रहा है। लोग इसे पीओके के ताजा बवाल का वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तान निकला भारत से 2 कदम आगे। पीओके में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया तो 12 को गोली मारकर जन्नत रवाना किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लोगों की भीड़ और कुछ पुलिस वालों के बीच झड़प देखी जा रही है और पुलिस वाले अपनी पोजीशन लेते और लोगों पर गोली चलाते हुए भी दिख रहे हैं। इसके अलावा आंसू गैस का धुआं भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। लोग इससे पीओके के ताजा बवाल का वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। जांच के लिए सबसे पहले दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस के जवानों के ड्रेस के कलर पर गया। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो ये सामने आया कि इस कलर का ड्रेस पाकिस्तानी पुलिस पहनती है। यहां से ये तो साफ हो गया कि वायरल वीडियो पाकिस्तान का हो सकता है, लेकिन इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें वायरल दावे की पुष्टि हो सके। पीओके को लेकर हाल फिलहाल में कई वीडियो सामने आए हैं, कई आधिकारिक एजेंसियों ने वीडियो और तस्वीरें जारी भी की हैं, लेकिन वायरल हो रहा वीडियो जैसा कोई वीडियो नहीं मिला। लिहाजा हमें वायरल वीडियो पर शक हुआ, हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो का संबंध पाकिस्तान के किस इलाके से है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को पीओके के साथ जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में देखिए।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें इसका लंबा वर्जन एक पाकिस्तानी पत्रकार के YouTube चैनल पर मिला। यहाँ ये वीडियो 3 मार्च 2026 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यहाँ साफ हो गई कि ये वीडियो पुराना है और पीओके के ताज़ा हालात से संबंधित नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये कराची में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले और विरोध प्रदर्शन के वक्त का वीडियो है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन हुए थे। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर तोड़फोड़ और आगजनी की और यूएस कॉन्सुलेट में घुसने की भी कोशिश की। इस दौरान पुलिस कार्रवाई में कई लोगों की मौत भी हो गई। वीडियो में पुलिस एक शख्स को पकड़कर ले जाती हुई दिखाई देती है। कई रिपोर्ट्स में भी इस शख्स की तस्वीर देखी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस प्रदर्शनकारी को अमेरिकी दूतावास के पास से हिरासत में ले लिया था। सर्च के दौरान हमें इस जगह हुए प्रदर्शन की कई तस्वीरें और वीडियो भी मिले। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ कि मार्च 2026 में कराची स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन का वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
3: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's global hits to start listening now.
4: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
8: सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की सड़क किनारे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। जब उसके इस नेक काम पर एक बुजुर्ग की नजर पड़ी तो वह उसके पास आकर उसके इस काम के लिए एक छोटा सा इनाम देता है। ये वीडियो दिल्ली के शेख सराय इलाके का बताया जा रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली के वेस्ट कनॉट प्लेस में रोज की तरह भीड़ थी। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। इस भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला हाथ में पेन लेकर उन्हें बेचने की कोशिश कर रही थी। गर्मी थी, थकान थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बरकरार थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टीव बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं और उनकी मुस्कुराहट की तारीफ करते हुए पेन खरीदने की बात कहते हैं। महिला बताती है कि एक पेन की कीमत 50 रुपए है। स्टीव पहले 100 रुपए देकर 2 पेन खरीद लेते हैं, लेकिन जब उन्हें महिला की सादगी और मुस्कान पसंद आती है तो वे 2 और पेन खरीदने के लिए 100 रुपए और दे देते हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा कि उनके पास कुल कितने पेन बचे हैं। महिला ने बताया कि पूरे स्टॉक की कीमत करीब 900 रुपए है। स्टीव के पास उस समय केवल 550 रुपए बचे थे। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी जेब में रखे सभी पैसे बुजुर्ग महिला को दे दिए। खास बात ये रही कि उन्होंने सारे पेन अपने साथ नहीं लिए, सिर्फ 2 पेन रखे और बाकी महिला के पास ही छोड़ दिए, ताकि वे उन्हें आगे भी बेच सकें। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उम्मीद है कि आप बाकी सारे पेन भी बेच लेंगी। महिला ये देखकर भावुक हो गईं और हिंदी में उन्हें दुआएं देने
9: लगीं।
8: सोशल मीडिया पर यह कमाल का वीडियो खूब देखा जा रहा है। यूजर्स इस शख्स के दिमाग की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में नजर आता है कि एक पर स्नैक्स और कैंडी के कई सारे पैकेट रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। अब गेम ये है कि वहां से लोगों को भागकर पैकेट्स के पास पहुंचना है और जो जितने पैकेट एक बार में ला सकते हैं उन्हें लेकर आना है। इसके लिए वो अपना तरीका अपना सकते हैं। अब कोई दोनों हाथों से पैकेट उठाता तो कोई अपने जैकेट में उठाता, लेकिन वहीं एक शख्स गजब का दिमाग अपनाता है। वो पैकेट के दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है और एक दूसरा शख्स उसे धकेलते हुए अपने एंड की तरफ लाता है। अब उस आदमी के लेटने से खूब सारे एरिया कवर हुआ, जिससे कई सारे पैकेट वो एक बार में ही लेकर इधर आ गया। सोशल मीडिया पर दो गोरिल्लाओं के बीच रूठने मनाने का एक बेहद दिलचस्प और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों के बीच ये अनोखी और हूबहू इंसानी कपल्स जैसी नोकझोंक सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। वीडियो की शुरुआत एक रूठी हुई मादा गोरिल्ला से होती है, जो किसी बात पर बेहद खफा है और मुंह फुला कर बैठी है। वहीं उसका साथी एक अच्छे पार्टनर की तरह उसे मनाने और उसका गुस्सा शांत करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। जैसे ही नर गोरिल्ला प्यार से उसके पास जाता है और उसे मनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मादा गोरिल्ला झटके से उसका हाथ झटक देती है, मगर नर गोरिल्ला हार नहीं मानता है। वो बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे मादा गोरिल्ला की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया ही मिलती है। मादा गोरिल्ला का ये एटीट्यूड और दोनों के बीच की ये प्यारी सी तकरार हूबहू इंसानी रिश्ते की याद दिलाती है। यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। जानवरों के भीतर छिपे इन इंसानी भावों को देखना वाकई जादुई और बेहद खुशनुमा एहसास है। ये भावुक कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस वीडियो में एक छोटी सी चिड़िया अपने अंडों की बचाने के लिए जो किया उसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। वीडियो की शुरुआत एक खेत से होती है, जहां खेती का काम चल रहा होता है। खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है और चालक नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा होता है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन तभी एक ऐसा सीन सामने आता है जो पूरे माहौल को बदल देता है। खेत में मौजूद एक चिड़िया अपने घोंसले और उसमें रखे अंडों के पास मंडरा रही होती है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि ट्रैक्टर उसके अंडों के बेहद करीब पहुंचने वाला है, वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। अपने नन्हे बच्चों की सुरक्षा की चिंता में चिड़िया बिना किसी डर के ट्रैक्टर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आकार में बेहद छोटी होने के बावजूद वो बड़े साहस का परिचय देती है। वो अपने पंख पूरी तरह फैला लेती है और लगातार तेज आवाज निकालने लगती है। ऐसा लगता है मानो वो आने वाले खतरे को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। उसकी हर हरकत में अपने अंडों को बचाने की बेचैनी और ममता साफ दिखाई देती है। ये सीन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि माँ चाहे इंसान हो या पक्षी, अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बंदर अपने साथ दो आम लेकर किसी घर की छत पर पहुंच जाता है। वहां वह बड़े आराम से बैठकर आम खाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। वो पूरे सुकून के साथ आम का आनंद ले रहा होता है। उसकी ये हरकत देखकर ऐसा महसूस होता है कि मानो वो अपने पसंदीदा फल का स्वाद लेने में पूरी तरह मग्न है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर की एक महिला छत पर पहुंचती है और बंदर को आम खाते हुए देख लेती है। शायद उसे यह पसंद नहीं आता। दिलचस्प बात यह है कि बंदर महिला के इस व्यवहार से बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाई देता। आमतौर पर बंदर तेजी से भाग जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में नजर आने वाला बंदर काफी मोटा और भारी भरकम दिख रहा है। यही वजह है कि वो किसी जल्दीबाजी में नहीं दिखता। महिला के भगाने के बाद भी वह आराम से उठता है और धीरे धीरे वहां से चलता हुआ नजर आता है। उसकी ये बेफिक्र चाल लोगों को काफी मजेदार लग रही है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
3: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's global hits to start listening now.
4: जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। समंदर में उतरेंगे नौसेना के 3 योद्धा जो दुश्मन जहाजों के बनेंगे साइलेंट किलर। बिहार की कला को अब मिलेगी ग्लोबल पहचान, गया की पत्थरकट्टी कला को GI टैग। और बटन दबाते ही रुक जाएगा ट्रैफिक। अहमदाबाद में पैदल यात्रियों के लिए पुश बटन सिग्नल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
10: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
1: अयोध्या में कल होगा रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण. सीएम योगी करेंगे शुभारंभ. आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण कथा. देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा. अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन. केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु. पीएस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली बना देश का नंबर वन इंस्टीट्यूट. ग्लोबल रैंकिंग में हासिल किया 118वां स्थान. दुनिया के टॉप संस्थानों में डीयू जामिया समेत भारत की 52 यूनिवर्सिटीज. इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ एयर कुशन व्हीकल H561. समुद्री सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती. पूरी तरह मेक इन इंडिया है आधुनिक वेसल. रीनीट के पेपर को लेकर छिंदवाड़ा में लैंड हुआ एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर. कड़ी सुरक्षा के बीच उतारे गए पेपर्स. 21 जून को होगी परीक्षा. गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम. जामनगर में तीनों सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग. 21 जून को भव्य अंदाज में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस. पंजाब में 100 साल का इंतजार खत्म. ऐतिहासिक कादियां ब्यास रेल प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए की मंजूरी. स्वदेशी कवच तकनीक से लैस होगी रेल लाइन. अच्छी और सच्ची खबरों में हम बात सबसे पहले भारतीय नौसेना की करेंगे, जिसके लिए खुशखबरी है. और खुशखबरी ये कि इसी हफ्ते नौसेना के बेड़े में एक साथ 3 युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं. और इन युद्धपोतों के नाम हैं INS दूनागिरी, INS अग्रह और INS संशोधक. इनका नेवी के बेड़े में शामिल होना सिर्फ नए जहाजों की तैनाती भर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की बढ़ती समुद्री ताकत और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का भी बड़ा प्रतीक है, क्योंकि ये तीनों जहाज पूरी तरह से मेड इन इंडिया हैं.

0: जब एक ही साथ तीन अलग अलग योद्धा नेवी में कमीशन किए जाएंगे। अगर इन तीनों युद्ध पोतों की बात करें तो ये सभी भारत में बनाए गए हैं और भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि 2047 तक वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी स्वदेशी युद्ध पोतों के साथ लैस होगी।
1: इन तीनों युद्ध पोतों का निर्माण कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने किया है, जो कमीशनिंग के बाद देश के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां निभाएंगे। INS दूनागिरी जहां समुद्री युद्ध के लिए है, वहीं INS अग्रय दुश्मन पनडुब्बियों की तलाश करेगा, जबकि INS संशोधक समुद्र की गहराइयों का अध्ययन और सर्वेक्षण की जिम्मेदारी निभाएगा। ये तीनों ही युद्धपोत पूरी तरह से स्वदेशी हैं, यानी इन्हें डिजाइन और डेवलप देश में किया गया है।
0: भारतीय नौसेना को अब एक बार फिर दूनागिरी जैसी युद्धपोत मिलेंगे, जिनमें ब्रह्मोस के साथ साथ तमाम दूसरी मिसाइल्स की ताकत है, साथ ही अग्रय जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जाना जाएगा और संशोधक जो एक सर्वे वेसल है। भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत में ये एक ट्रिपल कमीशनिंग होगी, जो वाकई में एक नई उपलब्धि की तरह देखी जा रही है।
1: पहले बात INS दूनागिरी की करते हैं, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बना एक घातक स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसका नाम उत्तराखंड की दूनागिरी चोटी के नाम पर रखा गया है। करीब 149 मीटर लंबा और 6,670 टन वजनी ये युद्धपोत आधुनिक स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिसके चलते दुश्मन का रडार इसे आसानी से पहचान नहीं पाएगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसमें लगी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और बराक 8 मिसाइलें हैं, जो दुश्मन के लिए काल है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि INS दूनागिरी के नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत को जबरदस्त मजबूती मिलेगी।
2: दूनागिरी का एक मॉडल दिखाना चाहूंगा। ये मेरा पहला शिप था जो पुराना INS दूनागिरी, जो बहुत समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद डीकमीशन हुआ और ऑपरेशन पवन श्रीलंका में इसने भूमिका निभाई, इसी का नाम नया दिया गया है। ये मेरा पहला शिप था जहां मैं पायलट के रूप में मैंने हवाई जहाज यहां से उड़ान भरी और आप यहां पे हेलीकॉप्टर देख सकते हो। यही शिप फिर से कमीशन हुआ है गार्डन रिच के द्वारा, एक कैपेबल फ्रिगेट काफी हाई स्पीड के साथ, अच्छे पावरफुल इंजन के साथ, 80% भारतीय पुर्जों के साथ और अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए इसके जो पकड़ है उसको हम इससे देख सकते हैं कि एंटी सबमरीन रॉकेट, टॉर्पीडो, डेप्थ चार्जेस, सबमरीन को खोजने के लिए टोही, सोनार, रेडार इसके सरफेस के, ब्रह्मोस मिसाइल इसमें शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसमें एंटी सबमरीन बड़े हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो जैसे जो अमेरिका से खरीदे गए हैं, ये सब मिलके इसको एक बहुत ही कैपेबल फ्रिगेट बनाते हैं।
1: दूसरा जहाज INS अग्रय भी खूबियों के मामले में कुछ कम नहीं है। ये अर्नाला क्लास के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट प्रोग्राम के तहत पांचवा जहाज है, जिसे तटीय इलाकों में ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। इस युद्धपोत में हल्के टॉर्पीडो, देश में बने एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और एडवांस सोनार सिस्टम लगे हैं, जिनके बूते ये दुश्मन की पनडुब्बी की हल्की सी आहट को भी भाप कर उसे पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। इसीलिए इसे पनडुब्बियों का साइलेंट किलर भी कहा जाता है।
2: गार्डन रिच शिपयार्ड से बना हुआ ये बहुत ही बेहतरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए कॉर्बेट है, जो शैलो वाटर में वाटर इंजन जो जेट इंजन है उसके साथ लगा हुआ हाई स्पीड चलने वाला ये करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से फास्ट पेट्रोल करेगा कोस्टल वाटर्स में और सबमरीन की टोह लेगा। सबमरीन की टोह के लिए इसमें साइड स्कैनिंग सोनार बड़े एडवांस लगे हुए हैं जो पानी के अंदर सबमरीन को खोजते हैं, इसमें रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं, इसमें टॉर्पीडोज लगे हैं, इसमें बॉम्ब स्टेप चार्जर्स लगे हैं जो सबमरीन को पलक झपकते ही खत्म कर सकते हैं उनके टोह लेने के बाद।
1: नेवी के बेड़े में शामिल होने जा रहा तीसरा युद्धपोत INS संशोधक भी अपनी खूबियों के चलते बेजोड़ माना जा रहा है। करीब 110 मीटर लंबा और 3300 टन वजनी ये विशाल पोत नौसेना की हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं में बढ़ोतरी करेगा। इसका काम नेवी के दूसरे जहाजों के लिए समुद्री मार्गों की जानकारी जुटाना, समुद्र की गहराई मापना और फिर मैप तैयार करना है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में भी किया जा सकेगा।
2: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधायक क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में।

0: या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई, वहां के जो मैपिंग है, समुद्र की सतह का अनुमान, और हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर की जो चेंजेस है जो सतह के नीचे के पानी के सतह में होती है, उनकी भी जानकारी जरूरी, इससे सबमरीन ऑपरेशन और दूसरे काम करने में अंडर वाटर मदद मिलती है। तो इन सबको करने के लिए ये हाइड्रोग्राफी शिप्स जरूरी है जो भारतीय नौसेना में लगातार इंडक्ट किए जा रहे हैं, पहले संधायक, उसके बाद निरूपक और उसके बाद इच्छक, और अब हम संशोधक को 21 जून को भारतीय नौसेना में शामिल करने वाले हैं।
1: समुद्र में बढ़ते खतरों को देखते हुए बीते कुछ सालों में इंडियन नेवी ने तेजी से अपने बेड़े को मजबूत किया है। इसी कड़ी में अब ये तीन नए युद्धपोत उसे मिलने जा रहे हैं, जिनके आने से न केवल भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा अभेद्य होगी, बल्कि हिंद महासागर में भारत का दबदबा और बढ़ जाएगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अगली अच्छी खबर है बिहार के गया जी से, जहां के पत्थरकटी गांव की स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने का मतलब यह है कि पत्थरकटी गांव की इस कला की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब मजबूत होगी, और साथ ही साथ स्टोन आर्ट से जुड़े शिल्पकारों की आमदनी बढ़ने की भी संभावना है। यही वजह है कि जीआई टैग मिलने की खबर से इस कला से जुड़े शिल्पकार बेहद खुश हैं।

0: कोई पत्थर को मूर्ति का आकार दे रहा है, कोई मूर्तियों की घिसाई कर रहा है और कोई तैयार मूर्तियों में रंग भरकर उन्हें मनमोहक बना रहा है। ये स्टोन आर्ट बिहार के गया जिले के पत्थरकट्टी गांव की पहचान है, जिसे अब GI टैग मिल चुका है, जिसके बाद से इस स्टोन आर्ट से जुड़े तमाम शिल्पकारों में खुशी की लहर है। बताया गया कि पत्थरकट्टी गांव के शिल्पकारों ने साल 2022 में अपनी इस शिल्प कला के लिए सरकार से GI टैग देने की मांग की थी, जिसके बाद अब जाकर इन लोगों की ये मांग पूरी हुई है।
1: 2022 में हमारा GI का मैंने अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। बहुत इंतजार करते हुए मैंने सोचा कि पता नहीं कब आएगा मेरा नंबर। 2025 में जनवरी 2025 29 जनवरी को मेरी 28 को मैंने रांची गया था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो GI के जो थे और 10 जजेज आए हुए थे, उनके सामने मेरी सारे इस ब्लैक स्टोन जो हमारे पत्थरकट्टी का जो पत्थर उसकी हियरिंग हुई। उसके बाद मुझे वहीं पर समझ में आ गया था कि मेरा ये ओके GI टैग हो गया है, लेकिन जब तक ये नहीं हो तब तक उम्मीद में ही हम बैठे रहे। लेकिन गूगल पर जब चढ़ गया तो मुझे उम्मीद हो गया था कि मेरा GI टैग ओके हो गया। परसों नाइट में मुझे इन्फॉर्मेशन हुई कि आप GI टैग फाइनल हो गया है, 2-3 दिन में रजिस्ट्री आ जाएगी आपकी, उसके बाद गया में प्रोग्राम के तहत आपको ये रजिस्ट्री दिए जाएगी।
0: इस स्टोन आर्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग मिलने का मतलब है कि इस कला को एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान मिल गई है, जिसके चलते अब पत्थरकट्टी गांव की इस शिल्प कला की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी। इस शिल्प कला से जुड़े लोग बताते हैं कि अब उनके गांव पत्थरकट्टी की मूर्ति कला का एक अपना ब्रांड होगा और पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान होगी।
2: पहचान तो ये विदेश तक जाएगा। GI टैग का मतलब है कि वो तो इंटरनेशनल हो जाएगा। वैसे भी मेरा गांव तो खैर इंटरनेशनल तो है ही, माने सब जगह इसकी माने जानकारी है लोगों को, क्योंकि 1966 में जब वो जापान का एक ऑर्डर माने बुद्ध की मूर्ति जब बनी थी, उसी समय माने उस मूर्ति के कारण ही इस जगह माने रोड और लाइट आ गए। जैसे उससे तो बहुत लाभ होगा हमको, जैसे इंटरनेशनल ऑर्डर मिलेगा, देश ही नहीं विदेश के ऑर्डर भी आएंगे उस GI टैग के माध्यम से।
0: पत्थरकट्टी गांव की ये शिल्पकला करीब 300 साल पुरानी बताई जाती है। इस आर्ट से जुड़े रविंद्रनाथ गौड़ बताते हैं कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1720 में राजस्थान से गौड़ परिवार को लाकर पत्थरकट्टी में बसाया था, और इनके ही पूर्वजों ने पत्थरकट्टी के पत्थर से विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर निर्माण के बाद कई परिवार यहीं बस गए और उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को आगे बढ़ाया। आज पत्थरकट्टी और खुकड़ी गांव में करीब 100 दुकानें चल रही हैं, जहां से 2,500 से 3,000 लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं।
1: हमारी फैमिली जो है जयपुर से बिलोंग करती थी, वो पत्थरकट्टी आई थी मंदिर बनाने के लिए, उसी के कुछ वंशजों में हम हैं।
3: कौन सा मंदिर बनाने
1: गया कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाना था, तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर सन 1720 में वहाँ जयपुर से कलाकारों को पत्थरकट्टी लेके आई थी, और उसी के पत्थरकट्टी के पत्थर को तराश के ही उस मंदिर का पूरा निर्माण हुआ।
0: पत्थरकट्टी गांव के शिल्पकार मुख्य रूप से देवी देवताओं, भगवान बुद्ध, शिवलिंग और अन्य तरह की मूर्तियां बनाते हैं, जिनकी देश में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, जापान और थाईलैंड जैसे देशों में भी डिमांड है। बताया जाता है कि यहां 100 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की मूर्तियां बेची जा चुकी हैं। GI टैग मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यहां बनी मूर्तियों की डिमांड जल्द ही और बढ़ सकती है। गया से पंकज कुमार, गुड न्यूज टुडे।
4: चले बात है एक ऐसे जादुई बटन की जिसको दबाते ही पैदल यात्रियों के लिए तेज रफ्तार ट्रैफिक तक रुक जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में पेडेस्ट्रियन के लिए सड़क सुरक्षा से जुड़ी नई सुविधा शुरू की गई है। अहमदाबाद के CG रोड पर पहली बार ऐसी पेलिकन सिग्नल लगाया गया है, जिससे पैदल यात्री खुद बटन दबाकर ट्रैफिक रोक सकते हैं और 25 सेकेंड के अंतराल में सड़क पार कर सकते हैं। इस व्यवस्था के जरिए अब व्यस्त सड़कों को पार करना ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा।

0: हरकत में आपकी एक उंगली आए और तेज रफ्तार ट्रैफिक रुक जाए। क्या ऐसी कल्पना कभी आपने की है? अहमदाबाद के सीजी रोड पर बिजली बॉक्स का दिखने वाला ये नया ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम आपको आपकी एक उंगली की ताकत का एहसास करवा देगा। 25 सेकंड तक हर वाहन को रोकने के लिए मजबूर कर देगा और ऐसा नहीं करने वाले वाहन चालकों को 1000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पूरे ट्रैफिक को थामने की ताकत रखने वाली इस व्यवस्था का नाम है पेलिकन ट्रैफिक सिग्नल, जो सड़क क्रॉस करने वाले पैदल यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा है। पैदल पैदल चलने वाले लोग खुद एक बटन दबाकर इसे नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि व्यस्त सड़कों पर वो सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें।
1: पहली बार पेडेस्ट्रियन के लिए पेलिकन सिग्नल सिस्टम लगाया गया है, जिसका उद्देश्य है जो भी सड़क को क्रॉस करने वाले लोग हैं, जब वो क्रॉस करें तब एक बटन पुश करें और उस बटन पुश करने के साथ ही सिग्नल रेड हो जाए, ताकि वो आसानी से सड़क क्रॉस कर सकें। और ये जो सिग्नल है वो लगाया गया है अहमदाबाद के सीजी रोड पर, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में इस जो सिग्नल के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पे वेट वॉक पुश बटन टू क्रॉस लिखा हुआ एक बॉक्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यही पेलिकन सिग्नल सिस्टम है और पेलिकन सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल करके जो भी पेडेस्ट्रियन होंगे वो सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे जा सके, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। खास करके इस प्रकार के सिस्टम हम विदेशों में देखते हैं और विदेश में रहने वाले लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल बखूबी करते हैं, लेकिन गुजरात में पहली बार अहमदाबाद के सीजी रोड पर यह सिस्टम लगाई जा रही है।
0: जब कोई पैदल यात्री सड़क को पार करना चाहे तो पोल पर लगे सिग्नल बॉक्स के बटन को पुश करना होगा। बटन दबाते ही वेट लिखा ऑप्शन वॉक में बदल जाता है, जिसके बाद पैदल यात्री को सड़क पार करने के लिए 25 सेकंड का समय मिलता है।
2: ये इसको हम पुश बटन बोलते हैं। जब भी राहदारी को रास्ता क्रॉस करना होता है तो सबसे पहले उनको पुश बटन दबाना रहता है, तो सबसे पहले वेट का सिग्नल आता है। जैसे ही वेट का सिग्नल आएगा उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा, तो ग्रीन होते टाइम ये पेडेस्ट्रियन लोग हैं वो शांति से रास्ता क्रॉस कर पाएंगे और व्हीकुलर है वो रुक जाएंगे, तो वो शांति से रास्ता क्रॉस कर पाएंगे और उनको आसानी से 25 से 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा।
0: आखिरी के 5 सेकेंड में एक हूटर की आवाज सुनाई देगी, जिसका मतलब होगा कि पैदल यात्रियों के लिए ग्रीन सिग्नल से लाल होने वाला है। 5 सेकंड पूरा होते ही सिग्नल पर खड़े वाहनों के लिए आगे बढ़ने का संकेत दिख जाएगा।
1: तो अब आप आवाज भी सुन पा रहे हैं कि एक हूटर बज रहा है यहाँ पे। हूटर का अर्थ यही है कि जो 25 सेकंड है वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरों में भी देखिए, ये जो 25 सेकंड का जो दायरा तय किया गया है उसका अर्थ ये है कि 25 सेकंड के दौरान जो लोग हैं वो ये रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अगली फिर से 30 सेकंड ऐसी रहेगी कि आप वापस दोबारा अगर इस बटन को पुश करना चाहेंगे तो ये बटन पुश नहीं होगा। और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, इस बटन को मैंने पुश किया लेकिन अगले 30 सेकंड जब तक ख़त्म नहीं होते हैं ये वापस से पुश नहीं होगा। फिर से एक बार कोशिश करता हूँ यही आपको दिखाने की, जो कि पुश बटन लिखा हुआ है, अगर 30 सेकंड पूरे हो गए हैं तो फिर से ये सिस्टम काम करेगा। और फिलहाल यहाँ पे वेट लिखा आ रहा है और यहाँ पे 30 सेकंड अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, तो एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं बटन को प्रेस करने की। अब आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे वॉक लिखा हुआ आ गया और फिर मैं कोशिश करूँगा मेरे पीछे की तरफ मेरे सहयोगी को बताऊँ कि जो सिग्नल है वो भी सिग्नल आप देख पा रहे हैं कि वॉक का एक सिग्नल आ रहा है, और अब 25 सेकंड तक जो ग्रीन सिग्नल है वो आपको दिखाई भी देगा और 25 सेकंड खत्म होने के बाद वही ऊपर की तरफ रेड सिग्नल वहां पे दिखाई देगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं अब रेड सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब जो पेडेस्ट्रियन है उन्हें अब सड़क क्रॉस नहीं करनी है। इस दौरान जो भी सड़क से गुजरने वाले व्हीकल होंगे वो आसानी से इस सड़क को क्रॉस कर पाएंगे।
0: पेडेस्ट्रियन यानी पैदल यात्रियों में पेलिकन ट्रैफिक सिग्नल के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अभियान चलाया जाएगा।
3: जी, पब्लिक जैसे जैसे अवेयरनेस होगी और उनको पता चलेगा, ये सिस्टम अभी प्रायोगिक धोरण पे है, अगर ये सफल हो तो ऐसे दूसरे पेडेस्ट्रियन मूवमेंट वाले एरिया से वो आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी इस तरह की व्यवस्था कर सकेंगे, लेकिन सबसे पहले पब्लिक एक बार अवेयर हो जाए इसके लिए ये प्रायोगिक धोरण पे चालू किया गया।
1: अच्छा, लोग कह रहे हैं कि हो सके तो आने वाले दिनों में पुलिस को यहाँ पे कुछ दिनों के लिए खड़ा रखना चाहिए कि लोग अवेयर हो जाएं, क्या कुछ कॉरपोरेशन के ऐसे प्लानिंग है कि आने वाले एक हफ्ते या दस दिन के लिए यहाँ पे किसी एक आध व्यक्ति को खड़ा रख के इस सिस्टम को मैनेज करवा जाए, क्योंकि लोगों तक इसका अवेयरनेस पहुँचना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदेशों में तो अब जरूरत नहीं होती है, खुद ही लोग ऐसे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और फॉलो भी करते हैं।
3: जी, हमने ट्रैफिक पुलिस से इसे बात की है, वो अभी आदमी डिप्लॉय करेंगे इसकी अवेयरनेस के लिए थोड़े दिन के लिए, बाद में ये सिस्टम ऑटोमेटिक मोड में चालू हो जाए।
0: पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए विदेश जैसे अमेरिका, यूरोप या सिंगापुर में पेलिकन ट्रैफिक सिग्नल आम बात है, लेकिन भारत में ये स्मार्ट व्यवस्था पहली बार इस्तेमाल होने जा रही है, जिसकी शुरुआत अहमदाबाद के व्यस्त इलाके से शुरू हो रही है। सफल होने पर शहर के दूसरे इलाकों में इस पुश बटन ट्रैफिक सिग्नल को अपनाया जा सकता है, ताकि व्यस्त सड़कों को पैदल पार करने में लोग सुरक्षित महसूस करें।
1: पुश बटन सिस्टम जो है वो लगाया गया है, अगर ये यहाँ पे सफल होता है तो आने वाले दिनों में अहमदाबाद के अलग अलग जो पेडिस्ट्रियन जो हैं उनके लिए शहर के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही पुश बटन सिग्नल लगाए जाएंगे, और विदेशों में जो सिस्टम हम देखते हैं कि लोग जब सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो इसी तरह से पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, वही सिस्टम गुजरात और खास करके अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी।
4: सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop. Latin dance. And Afrobeats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव
4: खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं को दूर करने के मंत्रों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 जून 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 4:59 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 10:06 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:06 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 19 जून 2026, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह की समस्याओं के बारे में और बृहस्पति ग्रह की समस्याओं के समाधान के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में बृहस्पति का स्थान क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक मानते हैं, समझाने और सलाह देने का कार्य करता है। ये ग्रहों में सर्वाधिक पवित्र और सर्वाधिक शुभ माना जाता है। ये मुख्य रूप से जीवन में संस्कारों को और ईश्वर की कृपा को नियंत्रित करता है। बृहस्पति आकाश तत्व के स्वामी हैं, इस वजह से इनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। संतान, ज्ञान, धर्म, कानून, कोष और बड़ी बीमारियों से बृहस्पति का सीधा संबंध माना जाता है। महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से तय होती है। आपके जीवन में धर्म कितना है, ज्ञान कितना है, संस्कार कैसे हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है, ये बात आपकी कुंडली का बृहस्पति बताता है। और बृहस्पति की वजह से अगर वो शुभ स्थिति में है तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से आप बच जाते हैं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो बृहस्पति कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपने समझा। अब अगर आपके ऊपर या किसी व्यक्ति पर बृहस्पति का बुरा असर पड़े तो क्या होता है? देखिए, बृहस्पति के गड़बड़ होने से या कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या और धन प्राप्ति में व्यक्ति के जीवन में बाधा आती है और व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें आती हैं। अगर बृहस्पति गड़बड़ हो तो व्यक्ति का पाचन तंत्र यानी डाइजेशन कमजोर होता है, कैंसर और लीवर की सारी गंभीर बीमारियां बृहस्पति की वजह से पैदा होती हैं। बृहस्पति अगर गड़बड़ है कुंडली में तो संतान पक्ष की समस्या भी व्यक्ति को परेशान करती है। और बृहस्पति अगर ज्यादा गड़बड़ हुआ तो कभी कभी संतान नहीं हो पाती। अगर बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव है और वो विवाह के स्थान से बन जाए तो विवाह होना असंभव हो जाता है। यानी बृहस्पति अगर विवाह पर नकारात्मक असर डाले तो विवाह होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। शनि की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो सकता है बड़े आसानी से, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण, बृहस्पति के बुरे प्रभाव का निवारण बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो अगर आपके जीवन में बृहस्पति से संबंधित अलग अलग समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के लिए क्या उपाय करें, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि बृहस्पति की अलग अलग समस्याओं के मामले में किन मंत्रों का जप कैसी स्थिति में किया जाएगा। अगर आपको सामान्य रूप से बृहस्पति देव की कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, तब आप एक मंत्र रोज सुबह 108 बार पढ़िएगा। मंत्र होगा ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। अगर बृहस्पति की वजह से स्वास्थ्य की दिक्कत हो, लिवर की दिक्कत हो, कैंसरस प्रॉब्लम हो, डाइजेशन में गंभीर समस्या हो, तब आप मंत्र पढ़िएगा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिएगा। अगर बृहस्पति की वजह से आदतें, स्वभाव और संस्कार खराब हो रहे हों, तब मंत्र पढ़िएगा ओम देव पूजिताय नमः, ओम देव पूजिताय नमः। इस मंत्र का सुबह के समय जप करिएगा। अगर बृहस्पति के कारण संतान होने में समस्या हो या संतान की तरफ से कोई समस्या हो तब बृहस्पति गायत्री का जप करिएगा। स्क्रीन पर देखिए, ओम आंगी रसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ओम आंगी रसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इस मंत्र का रोज सवेरे 3 माला 108 × 3 बार इस मंत्र का जप करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, व्यर्थ की चिंता ना करें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा नकारात्मक है, मारक फल दे रहा है, आपको बीमार कर रहा है, आपके लिए जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव की पूजा करिए। बृहस्पति स्वयं शिव जी के स्वरूप माने जाते हैं, इसीलिए अगर आप शिव जी की निरंतर पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का या शिव मंत्र का अगर निरंतर जप करें तो बृहस्पति की जो नकारात्मकता है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। अगर बृहस्पति की बड़ी खराब दशा चल रही हो और बृहस्पति की वजह से जीवन में दिक्कतें बढ़ रही हो तो नमः शिवाय इस मंत्र का हर समय निरंतर जप करना चाहिए और रोज सुबह प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करके प्रार्थना करनी चाहिए, आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो आज हमने आपको बताया बृहस्पति की समस्याओं के बारे में और बृहस्पति की समस्याओं के समाधान के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपनी कुंडली के सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं, सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, तो लकड़ी के फर्नीचर का और लकड़ी के दरवाजों का प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
3: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
2: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
4: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
5: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
6: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
5: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें
10: कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: अयोध्या में कल होगा रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ एयर कुशन व्हीकल H-561, समुद्री सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती, पूरी तरह मेक इन इंडिया है आधुनिक वेस्ट। रीनीट के पेपर लेकर छिंदवाड़ा में लैंड वायर फोर्स का हेलीकॉप्टर, कड़ी सुरक्षा के बीच उतारे गए पेपर, 21 जून को होगी परीक्षा। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में तीनों सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग, 21 जून को भव्य अंदाज में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा साउथ 24 परगना में हुबली नदी पर छाए दो जुड़वा बवंडरों की भी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में सागर द्वीप के पास हुगली नदी पर एक साथ दो बवंडर बनने की दुर्लभ और चौंकाने वाली मौसमी घटना सामने आई है। अचानक नदी के ऊपर दो विशाल भंवर छा गए। पहले सामान्य दिख रहे आसमान में इन जुड़वा बवंडरों के चलते काले बादल छा गए और दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। स्थानीय लोग इस नजारे को देखकर हैरान रह गए क्योंकि एक साथ दो बवंडर का बनना बेहद कम देखने को मिलता है। यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल की श्रेणियों में बहती गंगा में आज दो श्रद्धालुओं को डूबने से बचाने की तस्वीरें देखने को मिली। मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए गोरखपुर से आए दो दर्शनार्थी गंगा स्नान के दौरान डूबने लगे। डूबते युवकों की चीख पुकार सुनकर घाट पर मौजूद नाविक बिना देर किए नाव उनके पास ले गए। नाविकों ने पहले दोनों श्रद्धालुओं के पास नाव से लकड़ी की लग्गी को फेंका, जिसकी मदद से दोनों को नाव पर चढ़ाया। नाविकों के सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इसी के मद्देनजर जम्मू रेलवे स्टेशन पर व्यापक और सघन तलाशी अभियान चलाया। विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों और संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों की गहन जांच की गई। यात्रा से पहले कुलगाम पुलिस ने भी संवेदनशील इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और नाका चेकिंग तेज कर दी है। बालटाल और पहलगाम जाने के लिए यात्री जिस हाईवे का इस्तेमाल करेंगे उसका एक बड़ा हिस्सा कुलगाम जिले में पड़ता है। यहां गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ लगातार हवाई निगरानी भी की जा रही है और K9 स्क्वाड के साथ साथ गाड़ियों की जांच करने वाली आधुनिक एक्सरे मशीनें भी तैनात की गई हैं। दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा के रहने वाले संदीप आर्य ने अब तक 6 बार सूर्य नमस्कार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक नई मिसाल कायम की है। उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार करने का है। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बनने की चाह रखने वाले संदीप ने लिगामेंट इंजरी के बाद योग को चुना। संदीप के लिए योग केवल शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित बनाने की कला है। आज संदीप आर्य लाखों युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। संदीप अब पीएम मोदी के साथ सूर्य नमस्कार करने की इच्छा रखते हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के अरावली इलाके में वन्य जीवों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ तेंदुआ, हाइना जैसे अन्य वन्य जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अरावली में अब तेंदुओं की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है और वहीं हाइना की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। यहाँ ट्रैप कैमरे लगाकर वन्य जीवों पर नजर रखी जा रही है।

0: गुजरात में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में उत्तर और मध्य गुजरात के 62 तालुकाओं में जमकर बारिश हुई। इससे न सिर्फ मौसम सुहावना हुआ बल्कि बारिश के सीजन का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। समंदर में उठती ये लहरें गुजरात के देवभूमि द्वारका की हैं। द्वारका के समंदर में 12 से 15 फीट तक ऊंची उठती ये लहरें प्री मॉनसून की है, यानी समंदर की ये लहरें मॉनसून का आह्वान कर रही हैं। और प्रशासन का भी कहना है कि मॉनसून के दौरान समुद्र का मिजाज अचानक बदल सकता है। गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मॉनसून से पहले की पहली फुहारों ने खेड़ा के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। खेड़ा जिले के कठलाल और महुदा इलाके के ग्रामीण इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने न सिर्फ मौसम को ठंडा कर दिया बल्कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटा दी। खरीफ फसलों की बुआई का इंतजार कर रहे किसान अब राहत की सांस ले रहे हैं। गुजरात के ही जामनगर में भी बारिश ने सबको भिगो कर रख दिया। तपती गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ की पहली बारिश इतनी जोरदार हुई कि गली मोहल्लों में पानी भर गया।
1: आमतौर पर गुजरात में 15 जून तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अलनीनो की असर के चलते इस बार अभी तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की शुरुआत नहीं हुई है। मौसम विभाग का माने तो अगले 5 दिन तक आधिकारिक मॉनसून के किसी प्रकार के संकेत नहीं है। हालांकि मॉनसून महाराष्ट्र तक आ पहुंचा है, लेकिन अभी भी गुजरात में आधिकारिक मॉनसून को लेकर इंतजार और भी अगले 5 दिन तक करना होगा। लेकिन इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात के अलग अलग शहरों में सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के अलग अलग हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं। लेकिन 2 दिन से अगले 5 दिनों तक की अगर बात करें तो मात्र सूरत और वापी समेत जो दक्षिण गुजरात के हिस्से हैं वहां पे सामान्य बारिश होगी। लेकिन ये जो सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर के चलते होने के संकेत हैं। यानी आधिकारिक मॉनसून के लिए गुजरात को अभी भी अगले 5 दिनों का इंतजार करना होगा। इस बीच जो गुजरात के अंदर महत्तम टेम्परेचर की भी बात कर लें तो अहमदाबाद में लगातार 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 5 दिन तक किसी भी प्रकार की गर्मी से राहत के गुजरात में संकेत भी नहीं मिल रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, दाहोद, पंचमहाल, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, मेहसाणा, भरूच समेत कुछ और जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: जो फोरकास्ट दिया गया है 18 से लेकर 24 जून तक, इसमें हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। गुजरात रीजन और सौराष्ट्र को दोनों रीजन में ही वो अगले 3 दिन तक। आज जो थंडरस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया गया है, बिजली गिरने के साथ मेघ गर्जना भी रहेगा और जो स्पीड रहेगा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होने का भी संभावना है। और कल से हल्का से मध्यम बरसात का संभावना है, कोई वार्निंग नहीं है। आज खाली थंडरस्टॉर्म वार्निंग दिया गया है येलो वार्निंग के साथ। कोस्टल क्षेत्रों में अभी जो पवन का दिशा है दोनों क्षेत्रों में, उत्तर और दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है इसमें मेनली दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति है। जो स्पीड है स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कारण 15 से 20 नॉट गस्टिंग जो स्पीड रहेगा 25 नॉट होने का संभावना है। इसमें आइसोलेटेड प्लेसेस में रेन थंडर शावर का भी संभावना है।
0: वहीं अगले कुछ दिन ऐसा ही माहौल रहने की संभावना है। दिन में बादल छाए रहेंगे और हल्की मध्यम बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट बने रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी बारिश और तूफान तो कभी आसमान में बादलों की आवाजाही से गर्मी और उमस से लोगों को

0: पूरी राहत है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधि 21 जून तक जारी रहेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद के 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो 21 जून को लू चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं और उमस का सामना करना पड़ सकता है।
1: देश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं पर जो है उमस की स्थिति बनी हुई है तो कहीं पर जो है लगातार बारिश देखी जा रही है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे। आज तापमान में हालांकि कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है थोड़ी सी राहत लोगों को जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त पहाड़ी राज्यों में जो है सक्रिय है, जिसका असर जो है कहीं ना कहीं मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर के लिए दिया गया है कि जो बारिश है वो हल्की बारिश जो है वो भी देखी जा सकती है। उसके साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। लेकिन इस वक्त की मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो मौसम एकदम साफ नजर आएगा। बीच बीच में धूप जो है वो आ रही है और जा रही है। इस तरीके से जो हालात है वो इस वक्त के बने हुए हैं, लेकिन लोगों को गर्मी से अभी राहत यहां पर नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात करूं तो वहां पर लगातार जो है बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर 3 दिन तक कुछ इसी तरीके से मौसम जो है वो रहने वाला है। तो वहीं मानसून भी लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि वहां पर अच्छी खासी बारिश जो है मानसूनी बारिश जो है वो देखी जा सकती है। और उसी के लिए पूरे चाहे मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, वहां पर लगातार जो है ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसके साथ ही दक्षिण हिस्से से मानसून की जो शुरुआत हुई थी और वो अब महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, जिसका असर जो है वो भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अलग अलग मौसम अलग अलग राज्यों पर इस वक्त बना हुआ है। लेकिन बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो अभी तापमान बढ़े हुए हैं, लेकिन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद।
0: हालांकि जून के तीसरे हफ्ते में भी मॉनसून देश के बड़े हिस्सों को कवर नहीं कर पाया है। 17 जून की सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपर मॉनसूनी बादल नहीं है। मॉनसून ने लगातार तीसरे साल जून में लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि 2024 और 2025 में शुरुआती ब्रेक के बावजूद पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल 4 जून से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। मॉनसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है, लिहाजा 22 जून से पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 723 जिलों में सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है, यानी देश के 40% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया का ना बनना है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मॉनसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। पिछले एक हफ्ते से ये तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हो गई है। जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हेताली शाह, जामनगर से ब्रिजेश दोषी और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
2: आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 118वां स्थान मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मऊ में गरुड़ास्त्र का सफल टेस्ट हुआ है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी दिल्ली ने एक बार फिर भारत के सबसे अच्छे एजुकेशन और रिसर्च संस्थान के तौर पर अपनी जगह बना ली है। आज जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में संस्थान ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए विश्व स्तर पर 118वां स्थान हासिल किया। संस्थान ने 123वीं रैंक से लंबी छलांग लगाकर 118वीं ग्लोबल रैंक हासिल की। ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 118वीं रैंक के साथ आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसी भी भारतीय संस्थान के अब तक हासिल की गई सबसे ऊंची ग्लोबल रैंक की बराबरी भी कर ली है। करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके तहत पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाया जाएगा। अब तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन क्लेम डालना पड़ता था और कई बार इसमें कई दिन या हफ्तों का समय लग जाता है, लेकिन नए सिस्टम में ये प्रक्रिया लगभग तुरंत पूरी हो सकेगी। हालांकि निकासी के नियम और लिमिट मौजूदा शर्तों के अनुसार ही रहेंगे, जैसे रिटायरमेंट या बेरोजगारी पर ही पूरा पीएफ निकाला जा सकेगा। माना जा रहा है कि जून के आखिर तक पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए निकलना शुरू हो सकता है। रक्षा कंपनी नाइब लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इन्फेंट्री स्कूल महू में अपने एडवांस गरुड़ास्त्र 120 mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया। ये एक वाहन पर लगाया जाने वाला 120 mm का भारी मोर्टार है, जो तेजी से आगे बढ़कर हमला करने और तुरंत दूसरी जगह पर जाने की क्षमता रखता है। पारंपरिक मोर्टार सिस्टम की तुलना में ये ज्यादा सटीक, ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित है। ये सिस्टम भारतीय सेना की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिहार के गया के पत्थरकट्टी गांव की काले पत्थर की मूर्तियों को जीआई टैग मिल गया है। गांव को मिले इस उपलब्धि से गांव के शिल्पकारों में बेहद खुशी है। पत्थरकट्टी गांव में पीढ़ियों से पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यहां के कारीगरों ने विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। अब जीआई टैग मिलने से पत्थरकट्टी की मूर्तियों की मांग देश विदेश में बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय शिल्पकारों की कला को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में आजीविका मिशन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए हीरानगर में नया सेल्स आउटलेट शुरू किया है। ये सेल्स आउटलेट उम्मीद स्कीम के तहत शुरू हुआ है। कश्मीर में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाओं, मिशन और अभियानों में ये सेल्स आउटलेट एक ऐसी पहल है जो हीरानगर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने में कारगर साबित होगी।
2: अब कोयला खदानों में नहीं फंसेंगे मजदूर। जी हाँ, कोयलांचल की पहचान सिर्फ कोयला उत्पादन तक ही सीमित नहीं, बल्कि खनन टेक्निक और सुरक्षा से जुड़े नवाचारों में भी धनबाद अलग पहचान रखता है। आज हम आपको एक ऐसी ही ऐतिहासिक मशीन के बारे में बताएंगे जो ब्रिटिश शासनकाल की धरोहर होने के बावजूद आज भी अंडरग्राउंड माइंस में सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है। धनबाद का IIT ISM अब इस डिवाइस में आधुनिक वॉल्व सिस्टम जोड़ने के साथ साथ डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर इसे ऑटोमेटिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

0: धनबाद के IIT ISM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की लैब में रखी ये डिवाइस सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि खनन इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है। ब्रिटिश शासनकाल में इसे ISM को गिफ्ट के रूप में दिया गया था, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी इसकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई है।
1: बहुत दिनों तक ये जो आप मशीन देख रहे हो उसका रिसर्च ने यूज किया था, शोध के लिए भी उन्होंने काम किया, तो जाते जाते उन्होंने हमें ये यहाँ पे गिफ्ट में देकर चले गए ताकि हम अब इसमें हम अपना शोध कर सके।
0: अंडरग्राउंड माइनिंग दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे कार्यों में से एक है। जब अंडरग्राउंड खदानों से कोयला या दूसरे खनिज निकाले जाते हैं तो उस स्थान की छत यानी रूफ कमजोर हो जाती है, लिहाजा अगर समय पर उसे सहारा नहीं दिया जाए तो कभी भी रूफ फॉल हो सकता है, जिससे खदान में काम कर रहे श्रमिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी खतरे को कम करने के लिए हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
1: जितने भी अंडरग्राउंड कोल माइंस हैं या मेटल माइंस में हैं, वहाँ हमें एक मैंडेटरी जो रेगुलेशन है कि हमें वहाँ के रूफ को सपोर्ट करना है। तो रूफ सपोर्ट करने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें एक आपका होता है रूफ बोल्टिंग, जिसमें ड्रिल करके हम उसको हैंग करके रखते हैं। उसी तरीके में एक और तरीका है ये रूफ पावर रूफ सपोर्ट। इसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक फ्लूइड से एक कैनोपी लगा रहता है, कैनोपी ऊपर की तरफ उठती है पावर सपोर्ट से और इसको छत को सपोर्ट करती है जो माइनिंग खनन के टाइम में निकाली जाती है। तो इसका काफी माइनिंग्स में यूज हो रहा है, बहुत सारे अंडरग्राउंड कोल माइंस में इसका यूज होता है, लेकिन इसका लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होता है अभी।
0: IIT ISM के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार बताते हैं कि जैसे ही खदान में किसी हिस्से से कोयला निकाल लिया जाता है वहाँ खाली जगह बन जाती है, लिहाजा उस खाली स्थान की छत को सहारा देने के लिए इस डिवाइस को लगाया जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है।
1: ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट, हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि कोयला के खनन के बाद जो जगह खाली रह जाती है, जैसे अंडरग्राउंड जो कोल माइंस होता है जमीन के नीचे में जहाँ पे खनन होती है, तो जब कोयला निकल जाने के बाद हमको उसको सपोर्ट भी करना रहता है ताकि वो गिरे नहीं, तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट। ये जो मशीन आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको हमें ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट में दिया था, एड में दिया था, इसको अभी हम अपने तरीके से मॉडिफाई करके इसको प्रयोग में लाने वाले हैं, जिस पे हम लोग अभी शोध करेंगे।
0: समय के साथ तकनीक बदल रही है और अब IIT ISM इस ऐतिहासिक मशीन को नई पहचान देने की तैयारी में जुटा है। संस्थान इस डिवाइस में आधुनिक वॉल्व सिस्टम जोड़ने के साथ साथ डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर इसे ऑटोमेटिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। नई तकनीक जुड़ने के बाद इससे न केवल सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा बल्कि श्रमिकों के लिए काम करना भी अधिक सुरक्षित और आसान होगा। विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि आज जब माइनिंग सेक्टर में ऑटोमेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है, तो ऐसे समय में ब्रिटिश काल की इस मशीन को अपडेट करना खनन सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ये पहल न केवल एक ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करेगी बल्कि आने वाले समय में सुरक्षित और स्मार्ट माइनिंग के लिए भी नई राह खोलेगी। धनबाद से सितुन मोडक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज वक्त पर आगे है धनबाद, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धनबाद।
0: कच्चे तेल की कीमतें कम होने और वेस्ट एशिया में तनाव घटने से कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला BSE सेंसेक्स 254 अंकों की बढ़त के साथ 77,409 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 82 अंकों की बढ़त के साथ 24,168 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी के बीच आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 960 रुपए गिरकर 153,440 रुपए पर पहुंच गया। वहीं एक किलोग्राम चांदी की कीमत 6,660 रुपए से गिरकर 2,48,740 रुपए पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनने के कारण 18 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 94.36 के स्तर पर बंद हुआ।
2: वेलकम टू द जंगल का जोश से भरा गाना दीवाने हैं हुआ रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
3: अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना रिलीज हो गया है। अगले हफ्ते होने वाली वर्ल्ड वाइड रिलीज से पहले वेलकम टू द जंगल के मेकर्स ने एक नया गाना दीवाने हैं रिलीज किया है। ये गाना एक जोश भरा और जश्न मनाने वाला गाना है जिसमें फिल्म की पूरी स्टार कास्ट नजर आ रही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता और राजपाल यादव जैसे कई बड़े कलाकार एक साथ नजर आएंगे। फिल्म 26 जून को रिलीज होगी।
4: What should we call her, sir?
5: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलाएंगे।
6: एक कहानी सुनाती हूँ।
3: एक्शन रोमांच सस्पेंस से भरा आलिया की एक फिल्म अल्फा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अल्फा के मोस्ट अवेटेड ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। यशराज ने अपनी स्पाई यूनिवर्स की सनोखी पेशकश से हीरोइन बेस्ड स्पाई थ्रिलर फिल्मों की एक दमदार नींव रखी है जो भविष्य के बॉलीवुड स्पाई थ्रिलर फिल्मों को नई दिशा दिखा सकती है। अल्फा में आलिया और शर्वरी का पहली बार एक्शन पैक्ड अवतार देखने को मिल रहा है। वहीं आलिया और बॉबी देओल के किरदार को लेकर टीजर ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया था, अल्फा के ट्रेलर रिलीज के साथ ही उन सारे कयासों कंफ्यूजन पर विराम लग गया। फिल्म 3 जुलाई को थिएटर्स में नजर आएगी।
6: मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, रोक लो।
3: काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी का पहला पोस्टर जारी हुआ है। द इंडिया स्टोरी के मेकर्स ने फिल्म का पहला ऑफिशियल पोस्टर जारी किया है। इसमें लीड एक्टर्स का शानदार लुक दिखाया गया। ये फिल्म खाने में मिलावट के मुद्दे पर आधारित है। जी स्टूडियोज द्वारा MIG प्रोडक्शंस एंड स्टूडियोज के साथ मिलकर पेश की जा रही इस फिल्म को चेतन डीके ने डायरेक्ट किया है। सागर बी शिंदे ने इसे लिखा और प्रोड्यूस किया है। सुमित फागड़े, अनीता जाधव, विनायक कल्पेश देवयानी आपको इसमें नजर आएंगे। फिल्म 24 जुलाई को हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। द केरला स्टोरी और 1920 फिल्म की स्टार अदा शर्मा गजरा से मराठी फिल्मों में डेब्यू करने वाली हैं। फिल्म गजरा 2027 में रिलीज होने वाली है। गजरा में अदा मुख्य भूमिका में है। श्रेयस जाधव के निर्देशन और अमोल बोरकर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म का पोस्टर जारी हुआ है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित एक डार्क, बेचैन करने वाली और जबरदस्त कहानी का संकेत देता है। मुंबई में हॉलीवुड के दिग्गज सितारों का मेला लगेगा। दरअसल हॉलीवुड को बैटमैन सीरीज, इंटरस्टेलर, ओपनहाइमर और मोमेंटो जैसी यादगार फिल्में देने वाले मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी का प्रीमियर भारत में होने वाला है जिसके लिए वो बहुत जल्द मुंबई आने वाले हैं। उन्होंने पहली बार अपनी नई फिल्म का प्रीमियर भारत में करने का फैसला किया। फिल्म की पहली स्क्रीनिंग में उनके साथ मुख्य अभिनेता मैट डेमन और टॉम हॉलैंड भी मौजूद रहेंगे। सबकी नजरें द ओडिसी के ग्लोबल प्रीमियर पर हैं। मुंबई के साथ ये प्रीमियर लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में किया जाएगा।
2: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: अयोध्या में कल होगा रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण। सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ एयर कुशन व्हीकल H-561, समुद्री सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती। पूरी तरह मेक इन इंडिया है आधुनिक वेस्ट। चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
9: कुछ लोग जिस काम को रोजगार समझते हैं उसे कुछ लोग कला बना देते हैं। अपने काम में कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों की मिसाल है ये वायरल तस्वीरें। ये शेफ सिर्फ पिज्जा नहीं बना रहा बल्कि अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहा है। अपने काम को वो इस तरह मजा लेकर कर रहा है कि उसका कंट्रोल और स्पीड दोनों एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं। हवा में परफेक्ट स्पिन के साथ चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जो ये तस्वीरें देख रहा है इस हुनरबाज को सलाम किए बिना नहीं रह रहा। तपती गर्मी में कम ही लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो इंसान की ही प्यास बुझा दे, लेकिन इस बच्ची को देखिए, गाय को इस चुभती गर्मी में हैंडपंप से पानी पिलाती इस बच्ची को देखिए, जिसने गाय माता की प्यास को महसूस किया। अब ये तस्वीरें वायरल हैं और यूजर्स बच्ची के संस्कार पर फिदा हो गए हैं। करुणा, दया और संवेदनशीलता की एक और तस्वीर लोगों का दिल जीत रही है, जहां एक स्ट्रीट वेंडर एक भूखी प्रेग्नेंट डॉगी की भूख को महसूस करता है। ये डॉगी उसकी दुकान पर बनते भोजन को टुकुर टुकुर देख रही थी। वेंडर को समझ आ जाता है कि ये भूखी भी है और गर्भवती भी। तब वो उसे अपने ठेले से गर्मा गर्म खाना पेट भर खिलाता है। लोग वीडियो देखकर स्ट्रीट वेंडर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको अपने आसपास के लोगों और पशुओं के प्रति ऐसे ही करुणामयी होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस डिसेबल्ड डॉगी का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। ये डॉगी चलती सड़क पर वाहनों की आवाजाही के बीच फंस जाता है, तब स्कूटी पर बैठा ये लड़का उसे सड़क के पार जाने में मदद करता है। डॉगी पहले तो मदद का एक कदम समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही समझता है लड़के के साथ सड़क पार करने लगता है। यूजर्स अब लड़के की सूझबूझ को सराहा रहे हैं। गर्मी में जानवरों हो या इंसान, सबको पानी चाहिए, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी। गर्मी के मौसम में पानी की बौछारों के बीच इस डॉगी की तस्वीर वायरल है, जो गर्मी के बीच घर के दरवाजे से निकलते ही जमकर पानी की फुहारों का आनंद उठा रहा है। ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं कि इसे कहते हैं विशुद्ध आनंद।
2: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हिल स्टेशन शिमला की। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग शिमला का रुख कर रहे हैं। इस वजह से वहां सैलानियों का जमघट लगा हुआ है। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद होने से बड़ी तादाद में लोग शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के दूसरे हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। हिमाचल में टूरिस्ट वाहनों की संख्या बढ़ने से हाईवे और लिंक रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने शिमला सिटी को 5 सेक्टर में बांट दिया है, ताकि ट्रैफिक पर बेहतर तरीके से संभाला जा सके। शहर की पुलिस का अनुमान है कि 1 मई से 15 जून तक 45 दिनों में शिमला में लगभग 15 लाख वाहनों ने प्रवेश किया। शिमला में पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 5-पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई। शिमला में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त फोर्स, 22 सवार पुलिसकर्मी, कड़ी निगरानी, वैकल्पिक रास्ते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। कुफरी, नारकंडा, थियोग और किन्नौर जाने वाले यात्रियों को शोघी मेहली बाईपास रूट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इस रूट के इस्तेमाल से शिमला शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम होता है और यात्रा का समय भी बचता है। इसके साथ ही शिमला पुलिस पर्यटकों और आम जनता को ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जागरूकता और जानकारी वाले वीडियो भी शेयर कर रही है। शिमला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, तय पार्किंग जगहों का इस्तेमाल करें। शिमला ही नहीं, हिमाचल और उत्तराखंड के ज्यादातर हिल स्टेशन में पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए ट्रैफिक को संभालना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। शिमला में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
10: ये दिन में तो थोड़ा सनी है, लेकिन शाम तक बहुत चिली सा वेदर हो जाता है, तो अच्छा है, बहुत चिल सा मौसम है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और ये मॉल रोड तो बहुत ही सुंदर है। मेरा जो होम टाउन है दार्जिलिंग से बहुत पास है, तो आप भी मॉल रोड में बचपन से मैं लाइक घूमता रहता हूँ ऐसे, बट यहाँ पे इट्स मोर बिगर, इट्स मोर लाइक या सीन एक दार्जिलिंग का भी सीन बहुत अच्छा है, बट ये अलग सा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड क्लीन है, बहुत क्लीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग थैंकफुली वीकडे में आए तो थोड़ा सा कम था एंड हम लोग बहुत सुबह निकल गए थे 6 बजे अराउंड, एंड वीकेंड में इट्स रियली बैड, मैं सुना हूँ मेरे फ्रेंड्स से बहुत बुरा है, बट अगर एंड स्पेशली अभी सिंस समर सीजन चल रहा है तो इट्स लाइक टॉप सीजन, सब लोग प्लेन से आ रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली। तो अगर किसी को आना है शिमला तो ऑफकोर्स वीकडेज में आइए, वीकेंड्स तो छोड़ दीजिए, नहीं तो ऑफ सीजन में भी थोड़ा जब टाइम होता है इट्स अ बेटर टाइम।
11: वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, हम इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे खेलने, हम गतका मार्शल आर्ट करते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंह सभा गुरुद्वारा वहाँ से हम स्पेशल पंजाब का नगर कीर्तन छोड़ के हम यहाँ पे खेलने हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है एक तो, और दूसरा ये है कि सभी लोग इधर आ रहे हैं शिमला की तरफ, तो हमें भी वेदर अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, इसका वेदर व्यू चेक करने भी मेरे को बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम मैंने। हाँ जी,
12: पहाड़ों का तो मजा अलग ही है, और ये छुट्टियों के दिन चल रहे हैं तो सभी अपना अपना टाइम निकाल के दिल्ली NCR से तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पे, मसूरी भी है एक ऑप्शन लेकिन हमने शिमला को चूज किया है।
13: अच्छा, शिमला क्यों आपने चूज किया?
12: क्योंकि मैं आ गया था और मैंने अपनी मिसेज को बता दिया कि यहाँ वेदर अच्छा है, और तो फिर ये जीत करके ले ही आई मुझे यहाँ पे। देखो पैसा तो फिर भी कमा लोगे लेकिन पैसा कम खर्च करोगे तभी कमा पाओगे, तो मेरा तो यही मैसेज है कि इंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि खुशी तो कभी कभी मिलती है और उसको इंजॉय मतलब हमेशा करना चाहिए।
14: बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ तो बहुत गर्मी इस टाइम पे जज्जर में तो, और यही सोच के आए थे कि थोड़े दिन कुछ माइंड फ्रेश करके जाएंगे तो इसलिए आए थे।
13: अच्छा, कैसा लग रहा है शिमला में? फैमिली
14: बहुत अच्छा, ये मेरी फैमिली बहुत अच्छा लग रहा है। रील्स देख के सभी ये कह रहे कि बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम निकालो और बच्चों को लेके आओ, हम लेके नहीं आए, हम सोच रहे लेके आना था उनको भी, तो बच्चों को भी साथ में लेके आओ, खूब इंजॉय करो।
15: वेदर कुल मिला के अच्छा है शिमला का, और जहाँ पे टूरिस्ट की बात करें टूरिस्ट एक्सपेक्ट करके यही आता है, क्योंकि टूरिस्ट को भी पता है कि अगर आप जून में जाओगे तो आपको यहाँ पे स्नो नहीं मिलेगी, बट ये होगा कि आपका गुड़गांव NCR का कंपैरिजन में देखोगे तो वहाँ का वेदर आपको अच्छा मिलेगा, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, आप पूरे साल काम करते हो तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप फैमिली को टाइम दे रहे हो तो क्वालिटी टाइम आपका स्पेंड होगा फैमिली के साथ, बच्चे खुश हो जाएंगे। मैंने जो ट्रैफिक देखा मुझे शिमला में तो इतना ट्रैफिक नहीं मिला, जब मैं कंपैरिजन करूँ इससे ज्यादा तो मैं गुड़गांव से अपने घर से अपने ऑफिस जाता था, वहाँ मुझे ज्यादा ट्रैफिक।
2: रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहाँ ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बात धौलपुर के उस बेटे की जिस पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि हिम्मत और हौसला हो तो तरक्की के आगे कोई रोड़ा नहीं बन सकता। गरीबी में पैदा हुए एक हलवाई के बेटे रजत बघेल ने विपरीत परिस्थितियों और तमाम अड़चनों के बावजूद हौसले से उड़ान भर अंडर-19 भारतीय क्रिकेट वनडे टीम में जगह बनाई है। बचपन से ही दृढ़ आत्मविश्वास और सतत लगन के सहारे रजत बघेल अब श्रीलंका जाकर चंबल का नाम रोशन करेंगे।
16: राजस्थान का धौलपुर जिला और वहां का बाड़ी, एक छोटा सा कस्बा। बाड़ी में रहने वाले एक हलवाई के घर इन दिनों उत्सव का माहौल है। वजह है यहां का बेटा रजत बघेल, जिसने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में जगह बना ली है। रजत 6 जुलाई से शुरू होने वाले श्रीलंका दौरे में वनडे मुकाबला खेलेंगे। अंडर-19 क्रिकेट टीम में उनके चयन की खबर आई है, पूरा धौलपुर जिला खुशी से झूम उठा। जिले भर में खुशी का माहौल है, घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया और उनका जगह जगह सम्मान किया जा रहा है। छोटे शहर से राष्ट्रीय स्तर तक का रजत का सफर मेहनत, समर्पण और जुनून की मिसाल है। खुद रजत अपने चयन को अपने जीवन का सपना पूरा होने जैसा बताते हैं।
17: बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बता नहीं सकता, और ऐसा है कि सपोर्ट पूरा था घर वालों का, बस
18: जी
17: पसंद है खेलना
18: जी।
17: मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, इससे पहले मैं विजय मर्चेंट ट्रॉफी और अंडर-19 कूच बिहार वीनू मंकड़ और अंडर-23 कॉल सी के नायडू ट्रॉफी खेला हूँ, और इससे रिसेंटली 3 साल से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इंडिया का NCA कैंप है वो कर रहा हूँ।
16: रजत के पिता भगवान बघेल बाड़ी में हलवाई का काम करते थे। 2007 में एक्सीडेंट होने से घर के पालन पोषण की जिम्मेदारी धौलपुर में रहने वाले शिक्षक बुआ पर आ गई। पिता का ठीक होने के बाद हलवाई का काम शुरू करने के बाद भी रजत अपनी बुआ के पास ही रहे। आज धौलपुर और बाड़ी का नाम रोशन करने वाले पिता को तो खुशी है ही, रजत का बेटे की तरह पालन पोषण करने वाली बुआ भी उत्साह से झूम रही है, क्योंकि रजत बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहता था और आज उसका सपना पूरा हुआ है।
18: बुआ जी हैं, उनके कोच हैं। टाइम पे हम कोचिंग की भी फीस नहीं दे पाते थे, उसके लिए सामग्री भी नहीं कर पाते इकट्ठी, मगर ये सब छोटे मिलजुल के पूरे परिवार ने उसका सहयोग किया है। ये सब परमात्मा की लीला है भाई।
19: नहीं
18: सोचा, कोई सोचता है कि हमारा बच्चा आगे चल के, हम तुम तो सब प्रयास ही तो कर रहे हैं
19: जी।
18: ये तो सब ऊपर वाले की लीला है।
20: 5 साल का था साहब, ये मान लो मैं कहीं ले जाती तो लोग बच्चे छोटे छोटे खाने की चीजें मांगते, खिलौने मांगते, वो केवल बॉल और बल्ला मांगता। मैं उसे कहती भी कि तुझे कुछ और नहीं दिलाऊं, कि हाँ मत दिलाना, मुझे बस बॉल और बल्ला ही चाहिए। और उसने अपना 100% खेल को ही दिया है। खेलने के उसके ऊपर एक जुनून ऐसा सवार है, बस खेलने के प्रति पूरी तरीके से वो डेडिकेट है। और हमने तो खैर क्या ही मदद की है, उसके खेलने ही उसको अपनी प्रतिभा की ओर ले गया है, वो अपने खेल की तरफ तरह से।
16: बुजुर्ग दादा दादी रजत को दुआएं दे रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया खेले और भारत का नाम रोशन करे।
21: बहुत बढ़िया देश के लिए खेले, हमारे बहुत खुशी।
19: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये तस्वीर से हम यही लाए, हाँ, हाँ, पैटा लाए, बहुत बहुत पैटा बहुत लाए।
16: रजत की सफलता के पीछे उनके बड़े भाई पौरुष बघेल का भी बड़ा हाथ रहा है, जो उनकी हर संभव मदद करते हैं। रजत ने अंडर 16 विजय मर्चेंट टूर्नामेंट में 2 तिहरे शतक जड़कर अपनी पहचान बनाई। उनका लगातार शानदार प्रदर्शन ही उनके चयन की वजह बना है। रजत के अंडर 19 में सिलेक्शन को धौलपुर के लोग गौरव का क्षण मानते हैं। रजत का चयन धौलपुर क्रिकेट इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जाहिर है, रजत की ये उपलब्धि युवा खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी। धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
22: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सुन।
23: कौन सा ग्रह किस कुंडली के लिए मारक होता है? मारक ग्रहों के परिणाम क्या होते हैं? और अगर मारक ग्रहों की दशा चल रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? जानिए मारक ग्रहों के रहस्य मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
24: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
25: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
26: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
25: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
27: और दुर्भाग्य कहता है
25: कि
26: क्योंकि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
22: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
26: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
26: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
22: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
26: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
26: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच
1: की। गर्मी की वजह से जल्द शुरू हो सकता है अगले साल आईपीएल। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
2: बीसीसीआई अगले साल से आईपीएल का सीजन समय से पहले शुरू करवाने पर विचार कर रहा है। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकैया ने बताया कि देश के अधिकांश हिस्सों में मई में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचने के लिए आईपीएल को अगले साल से 10 मार्च से 15 मई तक आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए मैचों की संख्या 74 ही रहेगी और इसे बढ़ाकर 94 नहीं किया जाएगा। भारत की T20 टीम में डेब्यू के लिए तैयार वैभव सूर्यवंशी के साथ उनके माता पिता भी इस महीने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे। बीसीसीआई के इस फैसले के बारे में बोर्ड के सचिव देवजीत सैकैया ने कहा कि 15 साल के बच्चे को सीनियर टीम में आसानी से ढलने की सहूलियत देना जरूरी है। भारतीय T20 टीम में पहली बार जगह बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को 7 मैचों के लिए चुना गया है। इनमें 2 मैच आयरलैंड के खिलाफ खेले जाएंगे और 5 मैच इंग्लैंड के खिलाफ होंगे। भारत ने बृहस्पतिवार को वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप में दबदबा बनाते हुए गत चैंपियन चीन को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने 7 साल पहले म्यांमार में चैंपियनशिप जीती थी और अब शनिवार सुबह को होने वाले फाइनल में उसका सामना मेजबान चीन ए और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। युगल मुकाबले में थोड़ी परेशानी के बावजूद पंकज अडवाणी और आदित्य मेहता जीत गए।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
1: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
3: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर। ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर। ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
9: कौन सा ग्रह किस कुंडली के लिए मारक होता है? मारक ग्रहों के परिणाम क्या होते हैं? और अगर मारक ग्रहों की दशा चल रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? जानिए मारक ग्रहों के रहस्य मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
12: फ्रांस में बंजोर मोदी कार्यक्रम, पेरिस में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, बोले यहां भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व। अयोध्या में कल रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु। यूएस ईरान पीस डील के बाद बदला हॉर्मूज का नजारा, 3 महीने बाद जहाजों की शांतिपूर्ण आवाजाही, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की गिरावट।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दुनिया को मिली सबसे बड़ी गुड न्यूज की। जी हां, फ्रांस में हुए शांति समझौते के साथ 110 दिनों से जारी अमेरिका और ईरान की जंग खत्म हो गई। यह न सिर्फ मध्य एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। आज आपको बताएंगे कि भयानक युद्ध के बाद फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में शांति की प्रस्तावना पर मुहर कैसे लगी, वो 14 बिंदु क्या है जिन पर अमेरिका और ईरान राजी हुआ है, और सबसे बड़ी बात, इस समझौते से आगे भी शांति की गुंजाइश है या नहीं। यकीनन इस जंग की वजह से ईरान को भारी नुकसान हुआ है, अमेरिका को भी 10 लाख करोड़ की चपत लगी है, पर इसके साथ ही दुनिया को भारी नुकसान हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी को झटका देने वाले इस जंग के खत्म होने का क्या असर होने वाला है, और खासकर भारत को इसके क्या फायदे होंगे, आज आपको विस्तार से बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते से। जी हां, जंग रुकेगी ये बात चंद रोज पहले ही साफ हो गई थी, लेकिन फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन

0: फ्रांस दौरे पर G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे ट्रंप ने फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में जंग रोकने वाले शांति समझौते पर दस्तखत किए। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति पज़िश्कियान ने भी फारसी भाषा में लिखी समझौते की कॉपी पर मोहर लगा दी। हालांकि दोनों देशों ने MOU पर डिजिटल तरीके से पहले ही सहमति दे दी थी, लेकिन अब आधिकारिक दस्तखत के साथ समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। ईरान सरकार की ओर से समझौते की तस्दीक भी हो गई है।
1: این متن الان میتونیم بگیم که رسما نهایی شده به خاطر اینکه دو طرف امضا کردن. در مورد توانمندی دفاعی ایران به هیچ عنوان در هیچ روندی و با هیچ طرفی صحبت نخواهد شد.
0: اس طرح 110 دن بعد اس جنگ کے ختم ہونے کا اعلان ہو گیا جس نے نہ صرف مدھے ایشیا کو بلکہ دنیا کو خوف زدہ کر رکھا تھا۔ जिस जंग में हजारों जाने गई, शहर तबाह हुए और ग्लोबल इकोनॉमी लड़खड़ा गई, उसका थम जाना दुनिया समेत भारत के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है। और इसकी वजह है हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना, जिसे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लाइन भी कहा जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 40 किलोमीटर का ये समुद्री रास्ता इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके जरिए खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस दुनिया तक पहुंचता है। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी और उसके फौरन बाद ईरान ने हॉर्मुज की नाकाबंदी कर दी। बेशक ईरान अमेरिका और इजराइल के धारदार हमले झेलता रहा, पर हॉर्मुज पर उसका दबदबा कायम रहा। नतीजा ये हुआ कि तेल लेकर जाने वाले जहाजों का सफर बंद हो गया और एक तरह से ईंधन का संकट शुरू हो गया। इसीलिए दुनिया बेसब्री से जंग रुकने का इंतजार कर रही थी। चंद रोज पहले जब समझौते पर सहमति बनी तो ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट किया कि दुनिया के सभी जहाज अपने इंजन चालू करें, तेल का बहाव शुरू होने दे। यानी जंग खत्म होने का सबसे बड़ा हासिल तो ये है कि हॉर्मुज से होकर जहाज चलेंगे। ये अलग बात है कि हॉर्मुज पर ईरानी दबदबा खत्म करने का ट्रंप का दावा बेअसर साबित हुआ है। शांति समझौते के तहत ये रास्ता खुल तो गया है और अगले 60 दिनों तक यहाँ से जहाज बिना टोल के बेरोक टोक जाएंगे, पर उसके बाद हॉर्मुज के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात भी कही गई है और जानकार मान रहे हैं कि वहीं पर पेच फंस सकता है।
2: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का खात्मा उस समझौते पर दस्तखत के साथ हुआ जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पज़िश्कियान ने अपनी गुहार लगाई। साथ ही दुनिया ने राहत की सांस ली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल जाएगा, लेकिन अभी कई पेच बाकी। जबकि ईरान ने यह साफ कर दिया है कि 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद वो नई और बदली हुई व्यवस्था के अंदर जहाजों के ऊपर चार्ज लगाएगा, उनसे टोल वसूल करेगा। यानी इस समझौते में अभी भी कई कड़ियां ऐसी हैं जो आगे इसके भविष्य को लेकर सवाल खड़ा कर सकती हैं। शायद यही वजह है कि अपेक्षाओं का दबाव कम करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया गया, किसी साइनिंग सेरेमनी या किसी बड़े आयोजन को नहीं किया गया।
0: जैसे जंग खत्म हुई है, उम्मीद है कि हॉर्मुज के लिए भी सहमति बन जाए, क्योंकि बगैर टोल के समुद्री जहाजों की आवाजाही दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी का आधार है। फिलहाल ये राहत भी कम नहीं है कि जंग रुकने से एक बड़ा संकट खत्म हो गया, क्योंकि करीब 100 दिन की लड़ाई में 7,000 लोगों की जान गई, 40,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ईरान में करीब 225,000 इमारतें जमींदोज हो गई, अमेरिका के 1,000,000,000,000 खर्च हो गए और ग्लोबल इकोनॉमी को 1,220,000,000,000,000 का नुकसान हुआ। ईरान के लिए अच्छी खबर ये है कि उसके आर्थिक विकास के लिए अमेरिका $300 अरब की फंडिंग के लिए मान गया है। इसके अलावा ईरान पर लगे प्रतिबंध भी चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे। उसकी जो संपत्तियां फ्रीज हैं, उन्हें अब जारी कर दिया जाएगा। जिनेवा से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान में जिन 14 सूत्रीय सहमति पत्र पर दस्तखत हुए हैं उनमें क्या है। जो शुरुआती बातें हैं वो जंग रोकने से जुड़ी हुई हैं। पहला तो ये कि अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी देशों ने तत्काल प्रभाव से सभी मोर्चों पर जंग के खात्मे का ऐलान किया है। दूसरा, अमेरिका और ईरान एक दूसरे की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाने पर राजी हुए हैं। अमेरिका और ईरान ने अधिकतम 60 दिनों के भीतर

0: अंतिम समझौता तैयार करने पर सहमति जताई। जरूरत पड़ने पर यह अवधि आपसी सहमति से बढ़ाई भी जा सकती है। इसी के तहत अमेरिका ईरान के खिलाफ लागू नौसैनिक नाकेबंदी और अन्य बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा और 30 दिनों के भीतर इसे पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद समझौते में जो अहम बातें हैं जिनकी ज्यादा चर्चा है उसके मुताबिक ईरान फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को मुक्त और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराएगा। हालांकि ये सिर्फ 60 दिनों के लिए, बाद में इस पर नई प्रणाली लागू करने की बात है। लोगों को जो बात हैरान कर रही है कि अमेरिका ईरान के आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर यानी कि करीब 28 लाख करोड़ की फंडिंग करने के लिए तैयार हो गया है। यानी ईरान में जंग से जो नुकसान हुआ है ये एक तरह से उसकी भरपाई है। इतना ही नहीं, ईरान के सभी प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से खत्म होंगे। इसके एवज में ईरान ने दोहराया कि वो परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और यह भी कहा गया है कि अंतिम समझौते तक ईरान अपने मौजूदा परमाणु कार्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा। संवर्धित यूरेनियम को लेकर ईरान पर कोई दबाव नहीं है। ईरान से कहा गया है कि वो अपने पास मौजूद लगभग 11 टन संवर्धित परमाणु सामग्री को डाउन ब्लेंड करे यानी कि उसे कम शक्तिशाली बनाए। ईरान को ये संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजने या पूरी तरह छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करती। समझौते के मुताबिक ईरान को कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए छूट मिलेगी। साथ ही ईरान की फ्रीज या फिर प्रतिबंधित संपत्तियों और धनराशि को जारी किया जाएगा। समझौते में नीचे के पॉइंट इसे लागू करने से जुड़े हैं। कहा गया है कि इन सभी समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य में उसके पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष तंत्र बनाया जाएगा। एमओयू के शुरुआती प्रावधानों में लागू होने के बाद दोनों देश शेष बिंदुओं पर अंतिम समझौते के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करेंगे और अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के जरिए वैधता प्रदान की जाएगी। इस समझौते से साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कई मुद्दों जैसे कि यूरेनियम और ईरान की मिसाइलों को लेकर अपने सख्त रुख से पीछे हटे हैं। समझौते में मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र तक नहीं है। इसके अलावा ईरान की फंडिंग देने की बात पर भी उनका यूटर्न है। बहरहाल अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने तरीके से इस समझौते को अपने हक में बताएंगे। दोनों अपनी जीत का दावा करेंगे। अमेरिका और ईरान के दावे अपनी जगह हैं, पर सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस जंग की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से तेल, पेट्रोलियम पदार्थ और कई जरूरी चीजों को लाने ले जाने वाले जहाज रुक गए थे। जहां तक कि भारत की बात है, यहां तेल की कमी का बड़ा असर पड़ा। फर्टिलाइजर का उत्पादन भी कम हो गया। अब जबकि जंग थम गई है, जानकार मान रहे हैं कि हालात जल्द ही बदलेंगे और इससे भारत के व्यापार और विकास में तेजी आएगी। देखिए ये रिपोर्ट।
1: कहते हैं कि जंग मसलों का हल नहीं, जंग खुद बड़ा मसला है। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान की जंग ने भी 100 दिनों में दुनिया को हिला दिया। भारत के नजरिए से देखें तो बेशक ये युद्ध दायरे से दूर था, पर तेल ने खेल कर दिया। जंग शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत $72 प्रति बैरल थी, पर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। असर ये हुआ कि मार्च में भारत का इंपोर्ट बिल 15.22% बढ़ गया। इसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार घटा और रुपया कमजोर हुआ। साथ ही भारत में पेट्रोल, डीजल, घरेलू और कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ गई। लेकिन जैसे ही शांति समझौते का ऐलान हुआ, एक ही दिन में कच्चे तेल की कीमत करीब 4% घट गई। साफ सीधी सी बात है कि मध्य पूर्व में शांति भारत में सस्ते तेल और गैस की आपूर्ति की गारंटी है।
2: भारत में सबसे बड़ा फायदा मेरे को दो लगते हैं। एक तो आईएमएफ कॉरिडोर शायद वो खुलने की संभावना है और वो बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक उसमें एडवांटेज रहेगा। दूसरा जो है सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा जो ईरान के साथ भी अच्छे ट्रेडिशनल रिलेशंस हैं, जो छाबर पोर्ट में भी हम फंडिंग करके उसको भी खोल सकते हैं। तो ये अगर हो जाता है तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। और अभी शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस डाउन होना, ये सारी चीज़ें, ट्रेड होना, इंडियन सी फेयर जो आज वर्ल्ड में तकरीबन नंबर 2 हैं तकरीबन 3 लाख तो इंडियन सी फेयरर्स हैं, तो वो पूरे ग्लोब को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी एक मतलब एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वो पूरे ग्लोबल ट्रेड को चला रहे हैं देखा जाए तो, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि पॉजिटिविटी आउटलुक से अगर देखें तो विन विन सिचुएशन है पूरे विश्व के लिए, और विश्व की एक स्टेबिलिटी के लिहाज से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सबके लिए, जो इंडिया में एलएनजी गैस और फर्टिलाइजर ये सब कुछ, फूड प्राइसेस, तो सब कुछ मेरे को लगता है काफी फायदा रहेगा।
1: भारत पर इस जंग का असर कई तरीकों से हुआ, तेल और गैस के अलावा असर उर्वरकों के उत्पादन पर भी पड़ा। असल में भारत खाड़ी देशों से करीब 40% यूरिया और 60% एलएनजी इंपोर्ट करता है। फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूरिया और एलएनजी जरूरी हैं। जिनकी सप्लाई प्रभावित हुई तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन 24.6% गिर गया। जाहिर सी बात है कि जंग खत्म होने के बाद यूरिया और एलएनजी लाने वाले जहाजों का सफर शुरू होगा और भारत में उर्वरक उत्पादन की तस्वीर बदलेगी, लेकिन इसके साथ ही बड़ी राहत खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों के लिए भी है। जंग के दौरान ईरान के हमले की जद में ऐसे पड़ोसी देश रहे जहां भारतीयों की अच्छी खासी तादाद है, अब वो भी महफूज होंगे। इसके अलावा जानकार मान रहे हैं कि जंग रुकने से ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील मिलेगी और भारत और ईरान के बनाए चाबहार बंदरगाह पर व्यापार बढ़ेगा। इससे भारतीय सामान सीधे ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकेगा।
3: गल्फ में जहां हमारे ईरान से भी अच्छे संबंध रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से कनेक्टिविटी को देखा जाए, चाबहार पोर्ट या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, आईएमए कॉरिडोर, तो उसके लिहाज से और एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे रिलेशंस, और इंडियन डायस्पोरा जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर गल्फ में है, वहाँ पर काम करती थी, और आपको याद होगा कि यूएई से जब ये बम्बार्डमेंट हुई, काफ़ी सारे इंडियन लोगों ने वापस आना शुरू किया, हमारी रेमिटेंसेस कम हुई, तो इन सब को देखते हुए जो फ़ायदा तो होगा इंडिया को, पक्की बात है ये, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी गल्फ कंट्रीज़ में। वहाँ पर जो एक डाइकोटॉमी बन गई थी कि साइड लेने के लिए किसका साइड लिया जाए, वो ख़त्म हो जाएगी, और उम्मीद ये है कि फिर से दोबारा ये यूरोप से जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, कंडीशन है, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी प्राइसेस आज सवेरे तक इंडियन बास्केट के दाम $78 पर बैरल हो गए थे, ये विच इज़ द लोएस्ट सिंस मार्च। तो इसके अलावा और भी कम होने की उम्मीद है। ये सबसे बड़ी चीज़ फर्टिलाइजर्स और यूरिया, जिसके ऊपर हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता था, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो फायदा होगा, पक्का फायदा होगा। उम्मीद यही करते हैं कि ये अगर MOU पूरी तरह ठीक से इम्प्लीमेंट हो तो हमारे लिए फ़ायदा जारी रहे, और जो हमारे लोग वहाँ पर गल्फ में काम कर रहे हैं, जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है और हमारे इंडियन सी फेयरर्स हैं, वो फिर दोबारा अपनी एक रोजगारी या जो कमाते हैं लाइवलीहुड, उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: जंग बेशक पर आई थी, लेकिन तेल की वजह से इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। थोक और खुदरा महंगाई दर बढ़ गई, यानी आम आदमी प्रभावित हुआ। यकीनन जंग खत्म होने के साथ रातों रात हालात नहीं बदलेंगे, चीजों को पटरी पर आने में कुछ वक्त लगेगा, पर शांति समझौते की ये तस्वीर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत भरे दिनों की प्रस्तावना है।
4: इस MOU को, जो आप कह सकते हैं दोनों को विश्वास है, वो बहुत ही कच्ची डोर से बंधा हुआ है, दोनों में अविश्वास जरूर है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते वक्त के साथ माना यही जा रहा है कि ये चीजें, ये विश्वास और मजबूत होगा, और ना सिर्फ इससे ईरान अमेरिका के बीच में शांति हुई है बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक हालातों को लेकर भी अब ये उम्मीद की जा रही है कि वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतर हो पाएंगे।
1: सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: कौन सा ग्रह किस कुंडली के लिए मारक होता है, मारक ग्रहों के परिणाम क्या होते हैं, और अगर मारक ग्रहों की दशा चल रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? जानिए मारक ग्रहों के रहस्य मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए
0: न्यूज पर, राह सच्चाई की, रात 9 बजे।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
2: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
3: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: फ्रांस में बोंजोर मोदी कार्यक्रम, पेरिस में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, बोले यहाँ भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व। अयोध्या में कल रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु पहुंचे। यूएस ईरान पीस डील के बाद बदला हॉर्मूज का नजारा, 3 महीने बाद जहाजों की शांतिपूर्ण आवाजाही, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की गिरावट। चीन में धूमधाम से चल रही ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी, पर्यटकों से गुलजार हुआ हाविन आइस एंड स्नो वर्ल्ड, रंग बिरंगी नेचुरल बर्फ से बनाई गई भव्य आकृतियां।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: अयोध्या से राम भक्तों के लिए शुभ समाचार, रामनगरी में कल भव्य रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। 8000 वर्ग फीट में फैला म्यूजियम, राम सीता हनुमान सहित 50 पात्रों की जीवंत झलक, मोम के पुतलों से रामायण कालीन दृश्य होंगे जीवंत। परिक्रमा मार्ग पर नया पर्यटन आकर्षण बना म्यूजियम, श्रद्धालुओं को मिलेगा रामायण का सजीव अनुभव, 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार। वैक्स म्यूजियम बनेगा आस्था और इतिहास का संगम स्थल, मोम की प्रतिमाएं रामायण कथा को दृश्य रूप में देंगी प्रस्तुति, रामायण पात्रों को भाव और वेशभूषा पर विशेष ध्यान, पर्यटकों के लिए बनेगा बड़ा आकर्षण का केंद्र, नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास। उत्तराखंड में आस्था भक्ति के साथ पवित्र चारधाम यात्रा जारी, अब तक 37,70,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा 19,000 श्रद्धालु पहुंचे, अब तक 11,86,000 से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। केदारनाथ में 9,506 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, अब तक 12,70,000 से ज्यादा भक्तों ने की बाबा केदार की पूजा। गंगोत्री धाम में अब तक 6,21,000 भक्तों ने किए दर्शन, जबकि यमुनोत्री धाम में कुल आंकड़ा 5,87,000 के पार। हेमकुंड साहिब में 4,144 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका, अब तक 1,09,603 श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर खीर भवानी मंदिर में लगने वाले भव्य मेले को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां, कल होगा उत्सव का आगाज। खीर भवानी मेले की तैयारियों को लेकर मंदिर पहुंचे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, विधि विधान से की मां की पूजा अर्चना। मां से सीएम उमर अब्दुल्ला ने की विशेष प्रार्थना, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और सद्भाव के लिए मांगा आशीर्वाद। सीएम उमर अब्दुल्ला ने खीर भवानी मेले की तैयारियों का लिया जायजा, श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं और सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए सीएम उमर अब्दुल्ला, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया सघन तलाशी अभियान। ट्रेनों के सभी कोचों की बारीकी से जांच, स्नीफर डॉग्स और मेटल डिटेक्टर से हुई चेकिंग। प्लेटफॉर्म और वेटिंग रूम में बढ़ाई गई निगरानी, जम्मू स्टेशन को बनाया गया सुरक्षित ट्रांजिट पॉइंट। रेलवे, आरपीएफ और जीआरपी का संयुक्त अभियान, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा जांच जारी है। यात्रा सीजन से पहले सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। उज्जैन के सावेर में स्थित है अद्भुत उल्टे हनुमान मंदिर, सिर के बल खड़ी प्रतिमा को माना जाता है स्वयंभू स्वरूप। देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं मंदिर, 5 मंगलवार दर्शन से कष्ट दूर होने की मान्यता। सुबह शाम आरती के साथ होता है हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर में राम दरबार की भी होती है नियमित पूजा। मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने की है धार्मिक परंपरा, भक्तों में चोला चढ़ाने की विशेष परंपरा प्रचलित। हर 3 साल में नगर भ्रमण पर निकलते हैं भगवान, ढोल ताशों और भजनों से गूंजता है पूरा परिसर। विश्व स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में देश के लिए गुड न्यूज, दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग में छलांग। डीयू ने क्यूएस 2027 में 322वां स्थान किया हासिल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग 6 रैंकिंग ऊपर हुई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी, क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली बना देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली 118वें नंबर पर, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में अमेरिका का एमआईटी नंबर 1 पर। 106 देशों की 1504 यूनिवर्सिटी, 8,808 संस्थानों की रैंकिंग जारी, विश्व के टॉप संस्थानों में डीयू, जामिया समेत भारत की 52 यूनिवर्सिटी। शिमला में गर्मी से राहत पाने उमड़े सैलानी, रिज मैदान पर पर्यटकों की भारी भीड़, पर्यटकों में खासा उत्साह। रिज मैदान पर आइसक्रीम का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक, वीकेंड पर शिमला में दिख रहा जबरदस्त क्राउड। मैदानी इलाकों में 45 डिग्री गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का लोग कर रहे रुख, 15 लाख वाहनों की एंट्री से बढ़ा पर्यटन रिकॉर्ड। बारिश ने पहाड़ों के मौसम को बनाया और खुशनुमा, शिमला बना गर्मियों में पर्यटकों की पहली पसंद। शिमला में मौसम बना सुहाना, रोज बदल रहा मौसम का मिजाज, सुबह धूप और दोपहर बाद बारिश से बढ़ी ठंडक। ओडिशा के बारीपदा में 1,50,00,000 साल पुराने समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इलाका कभी उथले समुद्र का था हिस्सा। जीवाश्मों में शार्क के दांत, मछलियों के अवशेष शामिल, इसके करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवन के दुनिया की जानकारी मिली। बुद्धाबलंगा नदी के किनारे फैले बारीपदा फॉसिल बेट्स ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा, भारत के महत्वपूर्ण भू वैज्ञानिक स्थलों में गिनी जा रही है ये खोज। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वी भारत का ये क्षेत्र कभी खुले समुद्र से जुड़ा हुआ था, जीवाश्म उसी प्राचीन समुद्री दुनिया के दे रहे सबूत। इंडाश ने ओडिशा सरकार से यहां फॉसिल पार्क बनाने की मांग की, दुर्लभ जीवाश्मों का संरक्षण और वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देने का मकसद। मध्य प्रदेश के महू में गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण, तेज फायरिंग की क्षमता से लैस, जीपीएस और लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल करके लगाया सटीक निशाना। करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज, इसी महीने शुरू हो सकती है यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ अकाउंट से सीधे पैसे निकालने की सुविधा। फिल्म वेलकम टू द जंगल की रिलीज से पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में दिखे एक्टर अक्षय कुमार, माथा टेक कर लिया आशीर्वाद, फिल्म की सफलता की कामना की। जम्मू कश्मीर आजीविका मिशन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए हीरानगर में नया सेल्स आउटलेट किया शुरू, महिलाओं को रोजगार की देगी बेहतर अवसर। अरावली में वन्य जीवों की बढ़ी संख्या, 50 से अधिक लेपर्ड्स और 200 के करीब हाइना, जल्दी बनेगा वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मॉनिटरिंग सेंटर। गया के पत्थरकट्टी गांव की काले पत्थर की मूर्तियों को जीआई टैग, इस उपलब्धि से गांव के शिल्पकारों में खुशी। पत्थरकटी गांव में पीढ़ियों से पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही है। यहां के कारीगरों ने विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। टैग से पत्थरकटी की मूर्तियों की मांग देश विदेश में बढ़ेगी। स्थानीय शिल्पकारों की अब वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद बढ़ी। जम्मू कश्मीर के संत नरंगारी 14वें वन डे ग्रैंड सत्संग के साइडलाइन में बड़ा सेवा कार्य देखने को मिला। इस अवसर पर सेवा भाव से प्रेरित रक्तदान शिविर लगाया गया। पटनी टॉप में लगे इस शिविर में 128 स्वयं सेवकों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता और समाज सेवा की एक मजबूत मिसाल पेश की। कुल्लू में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली बड़ी राहत। लगातार बारिश से कुल्लू घाटी की वादियां हरी भरी, नजारे और भी मनमोहक, तापमान में आई गिरावट। मौसम ठंडा होने से कुल्लू के बाजारों में चहल पहल बढ़ी, कारोबार को मिला सहारा। वीकेंड पर पर्यटकों की आमद बढ़ने की संभावना जताई गई। मौसम में आए बदलाव से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। नदी किनारे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। रोम के कार पार्क में ट्रक बना ओपेरा थिएटर द बाब ऑफ सेवल का अनोखा ओपन एयर मंचन। ओपेरा कैमियन ने ओपेरा को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया। बाजार और पार्किंग के बीच गूंजा रोशनी का संगीत। कार पार्क में फिगारो की एंट्री ने जीता दिल। क्लाउन और एक्रोबैट्स ने शो को बनाया और रंगीन। दर्शकों की भागीदारी ने शो को बनाया और जीवन। पारंपरिक ओपेरा को मिला आधुनिक और अनोखा अंदाज। खुले मंच पर फिगारो के अंदाज में बटोरी वाहवाही। गर्मियों की शाम में संगीत और समुदाय का शानदार संगम। दक्षिणी चीन में पारंपरिक ड्रैगन बोट उत्सव मनाया गया। कई गांवों की नावें एक साथ नदी में उतरी। अलग अलग गांवों के लोग ड्रैगन बोट लेकर एक दूसरे से मिलने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उत्सव का जमकर आनंद लिया। क्या आयोजन नाव रेस से ज्यादा गांव के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए किया जाता है। लोग मिलकर सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाते हैं। सजाए गए ड्रैगन बोट्स ने नदी में शानदार परेड निकाली। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गांव वालों ने बाहर से आने वाले नाव दलों को चाय और खास पेस्ट्री खिलाई। इससे आपसी रिश्ते और मजबूत हुए। चीन की पोयांग झील में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारियां थी। इस ड्रैगन बोट टग ऑफ वॉर बना आकर्षण का केंद्र। ढोल की थाप पर खिलाड़ियों ने किया दमदार अभ्यास। नए फॉर्मेट ने पारंपरिक खेल में भरा अद्भुत रोमांच। पोयांग झील में दिखा खेल और संस्कृति का संगम। ड्रैगन बोट फेस्टिवल को लेकर उत्साह चरम पर। चीन ने 53 अफ्रीकी देशों के आयात पर घटाया टैरिफ। चीन अफ्रीका व्यापार में पिछले साल करीब 18% की बढ़ोतरी। केन्या से चीन को एवोकाडो निर्यात में रिकॉर्ड उछाल। 2022 में 10 से 20 कंटेनर और अब 200 कंटेनर प्रति सप्ताह की मांग। 2030 तक हर हफ्ते 1000 कंटेनर पहुंच सकती है चीन की मांग। अफ्रीकी निर्यातक डॉलर की जगह युआन में कारोबार पर कर रहे विचार। स्वीडन में लेगो ने बनाई असली साइज कार। 3.27 लाख से ज्यादा लेगो पार्ट्स से तैयार हुआ मॉडल। स्वीडन के एजन होम में अनोखी फुल साइज सुपर कार पेश। लेगो कार ने 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगाई दौड़। असल जेस्को एब्सोल्यूट की तरह खुलते हैं दरवाजे और बोनट। 1800 किलोग्राम वजन वाली कार में 400 किलो लेगो पार्ट्स। लेगो टेक्निक मॉडल लॉन्च के साथ दिखाया गया विशेष संस्करण। इसके सीईओ ने इसे बताया सपना सच होने जैसा। गुडवुड हिल क्लाइंब ट्रैक पर दिखाई दमदार परफॉर्मेंस। जुलाई में बिक्री के लिए आएगा 1:8 स्केल लेगो मॉडल। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 194 साल के कछुए जोनाथन को आइकन अवार्ड से किया सम्मानित। दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित कछुओं में शामिल। नेपाली ब्रिटिश पर्वतारोही हरिबुधा मगर को आइकॉन अवार्ड मिला। दोनों पैर ना होने के बावजूद एवरेस्ट और 7 समिट्स कर चुके हैं फतह। नाइजीरिया के शेफ हिल्डा बाची को गिनीज आइकॉन अवार्ड दिया गया। उन्होंने एक बहुत बड़े बर्तन में सबसे ज्यादा चावल पकाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। रेसलर अभिनेता जॉन सीना और के पॉप ग्रुप ब्लैकपिंक को आइकॉन अवार्ड मिला। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां हासिल की हैं। अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और बेसबॉल खिलाड़ी शोही ओतानी को आइकॉन अवार्ड मिला। दोनों ने अपने क्षेत्रों में ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। फीफा वर्ल्ड कप में शानदार जीत के बाद मेक्सिको सिटी पर छाया कोलंबिया का पीला रंग। एस्टेका स्टेडियम में कोलंबियाई फैंस का दबदबा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: और अब बात बिहार के गया जिले की, जहां के पत्थरकटी गांव की स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने का मतलब यह है कि पत्थरकटी गांव की इस कला की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी, साथ ही इस स्टोन आर्ट से जुड़े शिल्पकारों की आमदनी बढ़ने की भी संभावना है।
14: कोई पत्थर को मूर्ति का आकार दे रहा है, कोई मूर्तियों की घिसाई कर रहा है और कोई तैयार मूर्तियों में रंग भरकर उन्हें मनमोहक बना रहा है। ये स्टोन आर्ट बिहार के गया जिले के पत्थरकट्टी गांव की पहचान है, जिसे अब जीआई टैग मिल चुका है, जिसके बाद से इस स्टोन आर्ट से जुड़े तमाम शिल्पकारों में खुशी की लहर है। बताया गया कि पत्थरकट्टी गांव के शिल्पकारों ने साल 2022 में अपनी इस शिल्प कला के लिए सरकार से जीआई टैग देने की मांग की थी, जिसके बाद अब जाकर इन लोगों की ये मांग पूरी हुई है।
15: 2022 में हमारा जीआई का मैंने अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। बहुत इंतजार करते हुए मैंने सोचा कि पता नहीं कब आएगा मेरा नंबर। 2025 में जनवरी 2025 29 जनवरी को मैंने रांची गया था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जीआई के जो थे और 10 जजेज आए हुए थे, उनके सामने मेरी सारे इस ब्लैक स्टोन जो हमारे पत्थरकट्टी का जो पत्थर उसकी हियरिंग हुई। उसके बाद मुझे वहीं पर समझ में आ गया था कि मेरा ये ओके जीआई टैग हो गया है। लेकिन जब तक ये नहीं हो तब तक उम्मीद में ही हम बैठे रहे, लेकिन गूगल पर जब चढ़ गया तो मुझे उम्मीद हो गया था कि मेरा जीआई टैग ओके हो गया। परसों नाइट में मुझे इन्फॉर्मेशन हुई कि आप जीआई टैग फाइनल हो गया है, 2-3 दिन में रजिस्ट्री आ जाएगी आपकी, उसके बाद गया में प्रोग्राम के तहत आपको ये रजिस्ट्री दिए जाएगी।
14: इस स्टोन आर्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग मिलने का मतलब है कि इस कला को एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान मिल गई है, जिसके चलते अब पत्थरकट्टी गांव की इस शिल्प कला की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी। इस शिल्प कला से जुड़े लोग बताते हैं कि अब उनके गांव पत्थरकट्टी की मूर्ति कला का एक अपना ब्रांड होगा और पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान होगी।
16: पहचान तो ये विदेश तक जाएगा, जीआई टैग का मतलब है कि वो तो इंटरनेशनल हो जाएगा। वैसे भी मेरा गांव तो खैर इंटरनेशनल तो है ही, माने सब जगह इसकी माने जानकारी है लोगों को, क्योंकि 1966 में जब वो जापान का एक ऑर्डर माने बुद्ध की मूर्ति जब बनी थी, उसी समय माने उस मूर्ति के कारण ही इस जगह माने रोड और लाइट आ गए। जैसे उससे तो बहुत लाभ होगा हमको, जैसे इंटरनेशनल ऑर्डर मिलेगा, देश ही नहीं विदेश के ऑर्डर भी आएंगे उस जीआई टैग के माध्यम से।
14: पत्थरकट्टी गांव की ये शिल्पकला करीब 300 साल पुरानी बताई जाती है। इस आर्ट से जुड़े रविंद्रनाथ गौड़ बताते हैं कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1720 में राजस्थान से गौड़ परिवार को लाकर पत्थरकट्टी में बसाया था, और इनके ही पूर्वजों ने पत्थरकट्टी के पत्थर से विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर निर्माण के बाद कई परिवार यहीं बस गए और उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को आगे बढ़ाया। आज पत्थरकट्टी और खुकड़ी गांव में करीब 100 दुकानें चल रही हैं, जहां से 2,500 से 3,000 लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं।
15: हमारी फैमिली जो है जयपुर से बिलोंग करती थी, वो पत्थरकट्टी आई थी मंदिर बनाने के लिए, उसी के कुछ वंशजों में हम हैं।
17: कौन सा मंदिर बनाने आया था?
15: गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाना था, तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर सन 1720 में वहाँ जयपुर से कलाकारों को पत्थरकट्टी लेके आई थी, और उसी के पत्थरकट्टी के पत्थर को तराश के ही उस मंदिर का पूरा निर्माण हुआ।
14: पत्थरकट्टी गांव के शिल्पकार मुख्य रूप से देवी देवताओं, भगवान बुद्ध, शिवलिंग और अन्य तरह की मूर्तियां बनाते हैं, जिनकी देश में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, जापान और थाईलैंड जैसे देशों में भी डिमांड है। बताया जाता है कि यहां 100 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की मूर्तियां बेची जा चुकी हैं। जीआई टैग मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यहां बनी मूर्तियों की डिमांड जल्द ही और बढ़ सकती है। गया से पंकज कुमार, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन, टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
18: फ्रांस में बंजोर मोदी कार्यक्रम, पेरिस में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, बोले यहां भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व। अयोध्या में कल रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु। यूएस ईरान पीस डील के बाद बदला हॉर्मूज का नजारा, 3 महीने बाद जहाजों की शांतिपूर्ण आवाजाही। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की गिरावट। चीन में धूमधाम से चल रही ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी, पर्यटकों से गुलजार हुआ हार्विन आइस एंड स्नो वर्ल्ड। रंग बिरंगी नेचुरल बर्फ से बनाई गई भव्य आकृतियां।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनकर ही लोगों के मन में भय बैठ जाता है, यानी कि मारक ग्रहों की दशा। तो क्या आपकी कुंडली में मारक ग्रहों की दशा चल रही है? मारक ग्रहों की दशा क्या वाकई जीवन में कठिनाई दुख तकलीफ देती है, उसके बारे में आज के कार्यक्रम में पंडित जी से जानेंगे। और साथ ही में अगर ऐसा हो रहा है तो उससे बचने के क्या है अचूक उपाय, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप सरकारी समस्याओं से, गवर्नमेंट की तरफ की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो ये समस्या आपकी हल हो जाएगी।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 19 जून 2026 यानी कि दिन शुक्रवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 4:59 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 10:06 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:06 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी आपसे जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिरकार मारक ग्रह होता क्या है, क्योंकि अलग अलग राशियों के हिसाब से मारक ग्रह अलग होते हैं। ऐसे में क्या वाकई में वो जीवन में दुख तकलीफ देते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
1: जी देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि मारक ग्रह कौन से होते हैं और अगर कोई ग्रह मारक है तो उसकी दशा के परिणाम क्या हैं। देखिए, हर व्यक्ति की कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह और सामान्य यानी न्यूट्रल प्लेनेट। अशुभ ग्रह में 2 तरह के ग्रह होते हैं, एक जो नुकसान करते हैं और एक जो मारक होते हैं। मारक ग्रह कुंडली में समस्या और संघर्ष पैदा करते हैं। इन ग्रहों की दशा में व्यक्ति की या तो मृत्यु होती है या व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। कुंडली में ज्योतिष में कुल मिला के 12 लग्न हैं और हर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह मारक होते हैं। अगर मारक ग्रहों की दशा चल रही है और आप सावधानी नहीं रखते तो मारक दशाओं के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। जो ग्रह आपकी कुंडली में मारक हैं उनको समझना पड़ेगा और उनके हिसाब से जब आप उपाय करेंगे, सावधानी रखेंगे, तो उनकी मुश्किलों से बच जाएंगे।
0: तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष राशि और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा, दही का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, कोई यात्रा इस समय हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि सूर्य के मारक दशाओं से बचने के आखिरकार अचूक उपाय कौन से हैं।
1: देखिए, सूर्य सामान्यतः कुंभ लग्न के लिए मारक होता है, कर्क लग्न में भी मारक होता है, लेकिन कर्क लग्न में साहचर्य के अनुसार परिणाम देता है, तो कुंभ लग्न के लिए सूर्य परफेक्ट मारक है। अगर आपका लग्न कुंभ है, सूर्य की दशा चल रही है, मारक दशा है, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और हर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करिए। रविवार के दिन नमक का सेवन करना बंद कर दीजिए। और अगर सूर्य की मारक दशा चल रही है तो रोज शाम को

0: वहां पर उसकी पोजीशनिंग देखना जरूरी होगा। परफेक्ट मारक होता है मकर लग्न के लिए। अगर चंद्रमा की मारक दशा चल रही है तो इसके लिए सोमवार का व्रत रखें। सोमवार को चावल, चीनी या दूध का दान करें। नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह और शाम रोज 108 बार जप करें और काले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। चंद्रमा की अगर मारक दशा चल रही है तो भगवान शिव की पूजा अगर माता गौरी के साथ की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे।
1: तो मारक ग्रहों के बारे में हमारी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका दूर होता दिख रहा है, रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी मित्र की सहायता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब समय हो गया है आपके सवाल का। तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रही है।
0: जी, आज का पहला प्रश्न नीलिमा जी ने हमें लिखा है, हरिद्वार से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 1982, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है मेरठ। नीलिमा जी कह रही हैं कि काफी समय से ये और इनके पति मिल करके एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें बार बार अड़चने आ जाती हैं। तो अपनी प्रॉपर्टी कब तक खरीद पाएंगे, संपत्ति का लाभ कब तक होगा। नीलिमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदने का समय चल रहा है और अगर आप कोशिश करें तो नवंबर 2026 के पहले आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद लेंगी, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में सिर्फ दो बातों का ध्यान रखें।

0: रखिएगा। एक तो 8 नंबर का मकान या फ्लैट मत लीजिएगा जिसका टोटल 8 होता हो, और जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचिएगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न अंजू शर्मा ने हमें लिखा है, कैथल हरियाणा से लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 28 नवंबर 2004, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है कैथल। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, आगे उसे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकेगा। अंजू जी, आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से आपका बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, और ऐसा लगता है कि बीटेक की पढ़ाई करने के बाद आगे चल करके मैनेजमेंट की या फाइनेंस की पढ़ाई करेगा और उसी क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर अपना बनाएगा। अगर दुनिया भर के हालात ठीक रहे तो आपके बेटे को विदेश जाने का और विदेश जाके नौकरी करने का मौका भी मिलेगा। फिलहाल अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके गले में धारण करवाएं और इनको कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि मंगल के मारक होने से बचने के क्या अचूक उपाय हैं।
0: देखिए, अगर मंगल की बात करें तो मंगल वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए परफेक्ट मारक माना जाता है, परफेक्ट मारक होता है। अगर आपकी मंगल की मारक दशा चल रही है तो मंगलवार का व्रत रखिएगा। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइएगा। अगर आप महिला हैं तो आप केवल लाल फूल चढ़ाइएगा। रोज सुबह और रोज शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। और अगर मंगल की मारक दशा चल रही है तो रात में सोने के पहले महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो मंगल की मारक स्थिति से आपका बचाव अवश्य होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि बुध कौन से लग्न वालों के लिए मारक होता है और इससे बचने के अचूक उपाय क्या है।
0: देखिए, बुध जो है वो सिंह लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए और मीन लग्न के लिए मारक फल देता है। धनु और मीन में ज्यादा, सिंह में अपनी पोजीशन के हिसाब से। अगर आपकी बुध की मारक दशा चल रही है तो भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना करिएगा। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करिए या गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय को हरी पालक खिलाइए, और बुध की अगर मारक दशा चल रही है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बुधवार को गाय को हरा चारा अगर खिलाएं तो बुध की मारक दशा के प्रभाव से बच जाएंगे।
1: तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है, दशा चल रही है, तो बृहस्पति किन लग्न वालों के लिए मारक ग्रह होता है और इसकी दशा से किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं।
0: देखिए, बृहस्पति जो है वो मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न के लिए मारक होता है। अगर बृहस्पति की मारक दशा चल रही है तो बृहस्पति वार का व्रत आपको रखना चाहिए, और अगर बृहस्पति की मारक दशा है तो सोना यानी गोल्ड से और पीली चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। बृहस्पति की मारक दशा चले तो बृहस्पति वार को चने की दाल का दान करिए या केले का दान करिए, और बृहस्पति की मारक दशा में अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जप अवश्य करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र कम से कम 3 माला रोज सुबह जपिएगा अगर बृहस्पति की मारक दशा आपके लिए चल रही है।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा, अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं शुक्र के मारक दशा से बचने के अचूक उपायों के बारे में।
0: शुक्र जो है ये मेष लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए आम तौर पर मारक फल देता है। इनके लिए शुक्र के परिणाम मारक होते हैं। अगर आपकी शुक्र की मारक दशा चल रही है तो शुक्रवार को शिवलिंग पर इत्र और जल अर्पित करिए। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करिए। और अगर शुक्र की मारक दशा चल रही है तो हीरा भूल कर भी धारण ना करें। रोज सुबह और शाम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। अगर शुक्र की मारक दशा चल रही हो तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी लाभ होता है और शुक्र का जो मारक फल है वो कम हो जाता है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सैटर्न की यानी शनि की। तो शनि की मारक दशा से बचने के क्या कुछ उपाय हैं, आइए जानते हैं।
0: शनि की मारक दशा की बात करें, शनि कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न के लिए मारक होता है। और अगर आपकी शनि की मारक दशा चल रही है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें रोज सुबह। हर शनिवार को छाया दान करें यानी सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर सरसों का तेल दान करें। हर शनिवार अपने सर पर से वार करके उतार करके किसी पशु को रोटी खिलाएं। और शनि की अगर मारक दशा है तो परामर्श लेकर आप मूंगा भी पहन सकते हैं। सुबह और शाम 3-3 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा। अगर शनि की मारक दशा चल रही है तो इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत जरूरी है। और शनि की मारक दशा आम तौर पर लंबी होती है, इसीलिए इस समय में सावधानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा है।
1: तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। बेवजह की चिंता ना करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज के तीसरे सवाल का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न वर्षा जी ने हमें लिखा है और वर्षा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1994, जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 3:20, जन्म स्थान है मुंबई। वर्षा कह रही हैं कि मेरी एक शादी अभी फाइनल हुई थी लेकिन वो टूट गई और मेरी शादी होने में बहुत अड़चने आ रही हैं, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वर्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी साल 2027 के शुरुआती समय में होगी, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ, और वैवाहिक जीवन आपका आने वाले समय में कुल मिला जुला के ठीक रहेगा। एक पीला पुखराज, लगभग 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें, एक पीला पुखराज पहन लें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी जो ईमेल आईडी है वो फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी के साथ बात करते हुए जान लेते हैं कि अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न वैभव जी ने हमें लिखा है और वैभव जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं, पटना से। इनकी जन्म की तारीख है 1 फरवरी 1989, जन्म का समय शाम के 4:55, जन्म का स्थान है बेगूसराय बिहार। मेल लिखते हैं पटना से। वैभव जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तमाम तरह की सेहत की दिक्कतें मुझे परेशान कर रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। वैभव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य के बेहतर होने का समय चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपकी सेहत की स्थिति जुलाई के महीने से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। केवल खान पान का और डाइजेशन का ध्यान रखिए, खाने पीने को लेकर डाइजेशन को लेकर के मुश्किलें हो सकती हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक माणिक्य, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी के पसंदीदा सेगमेंट के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, यानी जिनका जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे। पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 19 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में स्थिरता बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और आपकी उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: लोगों का ऐसा कहना है कि जब मारक दशा चलती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्या मारक दशा चलने पर मृत्यु अवश्य हो जाती है? देखिए, मारक दशा में मृत्यु हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मारक दशाओं में अक्सर काफी कठिनाई और कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में सुरक्षा के ग्रह मजबूत हों तो मारक दशा में कष्ट कम हो जाता है और व्यक्ति की रक्षा होती है।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं आखिरकार आज का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा, आपकी धन संबंधी समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: और अब पंडित जी से कार्यक्रम के अंत में जान लेते हैं कि आखिरकार आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के शिक्षा के हाल कैसे रहते हैं। आज की गुडलक राशि है मकर। इनकी शिक्षा धीरे धीरे उत्तम चलती रहती है और कभी कभी ये जीवन भर पढ़ाई करते रहते हैं, लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
0: जी, अगर आपकी कुंडली में जेल जाने के, कारावास के योग बन गए हों तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर शनिवार दक्षिणमुखी हनुमान जी के दर्शन करिए और प्रार्थना करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो कारावास के योग कटेंगे और आप कारावास की समस्या से बच जाएंगे।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा के नए अध्याय की करेंगे। जल्द ही इंडियन नेवी को ताकत का डबल नहीं बल्कि ट्रिपल बूस्टर डोज मिलने जा रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत को पंख लगाने के लिए 21 जून को ऐसे 3 महाबली नेवी में शामिल किए गए हैं जो भारत की समुद्री सरहदों को मजबूत बनाएंगे। आने वाली 21 जून को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ 3 एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। इन 3 युद्धपोतों में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रे और नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक शामिल है। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों की कमिश्निंग का समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कोलकाता में होने वाला ये समारोह हाल ही के सालों में दूसरा ऐसा मौका होगा जब 3 एडवांस्ड नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया जाएगा।

0: लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपने समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा का ये कवच अब कुछ और मजबूत होने जा रहा है। इक्कीस जून 2026 ये वो तारीख है जो भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। आने वाली 21 जून को भारतीय नौसेना के बेड़े में 173 एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। इन तीन युद्धपोतों में पहला है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, दूसरा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और तीसरा है भारतीय नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों का कमीशनिंग समारोह होगा जिसमें PM मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कोलकाता में होने वाला ये समारोह हाल के सालों में दूसरा ऐसा मौका होगा जब तीन एडवांस नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया जाएगा। इससे पहले ऐसा आयोजन पिछले साल जनवरी में हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को कमीशन किया था। भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमता को पंख लगाने वाले ये तीन महाबली तैयार हैं। ये न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाएंगे बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने साल 2047 तक समुद्री सुरक्षा के लिए जो रोड मैप तैयार किया है ये उसी का हिस्सा है।
1: सूत्रों के मुताबिक 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये इंडक्शन हो सकता है और ये दूसरा मौका होगा जब एक ही साथ तीन अलग अलग योद्धा नेवी में कमीशन किए जाएंगे। अगर इन तीनों युद्धपोतों की बात करें तो ये सभी भारत में बनाए गए हैं और भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि 2047 तक वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी स्वदेशी युद्धपोतों के साथ लैस होगी और उसी कड़ी में ये भारतीय नौसेना का तेजी से चलता हुआ सफर है। यानी भारतीय नौसेना को अब एक बार फिर दूनागिरी जैसे युद्धपोत मिलेंगे जिनमें ब्रह्मोस के साथ साथ तमाम दूसरी मिसाइल्स की ताकत है, साथ ही अग्रय जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जाना जाएगा और संशोधक जो एक सर्वे वेसल है। भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत में ये एक ट्रिपल कमीशनिंग होगी जो वाकई में एक नई उपलब्धि की तरह देखी जा रही है।
0: तीन युद्धपोतों की एक साथ कमीशनिंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्धपोतों, मिसाइलों और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा है। चलिए अब आपको नेवी में शामिल होने वाले इन तीनों महाबलियों से मिलवा देते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दूनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इस घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है।
2: मैं दूनागिरी की बात करूं तो मैं आपको INS दूनागिरी का एक मॉडल दिखाना चाहूंगा। ये मेरा पहला शिप था जो पुराना INS दूनागिरी जो बहुत समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद डीकमीशन हुआ और ऑपरेशन पवन श्रीलंका में इसने भूमिका निभाई, इसी का नाम नया दिया गया है। ये मेरा पहला शिप था जहां मैं पायलट के रूप में मैंने हवाई जहाज यहां से उड़ान भरी और आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर देख सकते हो। यही शिप फिर से कमीशन हुआ है गार्डन रिच के द्वारा, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अधीन बनाया हुआ 8 से ज्यादा शिप्स। इसमें नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, विंध्यागिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, तो ये दूनागिरी ये शिप अभी कमीशन हो रहा है। ये सरफेस शिप्स के साथ साथ 3,500-4,000 टन से ज्यादा का एक बहुत ही बेहतरीन फ्रिगेट है।
0: आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS दूनागिरी कमीशन होने वाला है उसका इतिहास लगभग दो दशक

0: कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। 2013 में इसके डिजाइन तैयार कर लिए गए। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था। 17A प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हेमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं।
1: बहुत ही कैपेबल शिप, एक कैपेबल फ्रिगेट, काफी हाई स्पीड के साथ, अच्छे पावरफुल इंजन के साथ, 80% भारतीय पुर्जों के साथ, और अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए इसकी जो पकड़ है उसको हम इससे देख सकते हैं कि एंटी सबमरीन रॉकेट, टॉर्पीडो, डेप्थ चार्जेस, सबमरीन को खोजने के लिए टोही सोनार, रेडार इसके सरफेस के, ब्रह्मोस मिसाइल इसमें शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसमें एंटी सबमरीन बड़े हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो जैसे जो अमेरिका से खरीदे गए हैं, ये सब मिलके इसको एक बहुत ही कैपेबल फ्रिगेट बनाते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक सूट्स की और दुश्मनों को दूर से पकड़ने की और टोह करके घात लगा के बियॉन्ड द रेंज जो दूर तक रडार से सर्च करके मारना, चाहे हवाई जहाज को, चाहे तो सरफेस शिप को, चाहे सबमरीन को, तीनों कैपेबिलिटी के साथ ये शिप भारतीय नौसेना को मिलने वाली है।
0: अब बात सागर की उस योद्धा की जो याद दिलाएगा भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून का नौसेना में कमीशन होने जा रहा है INS अग्रय, एंटी सबमरीन वॉरफेयर का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी। और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। कमीशनिंग से पहले INS अग्रय के क्रेस्ट का अनावरण किया गया। INS अग्रय अर्नाला क्लास का 5वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है। इसे विशेष रूप से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। ये युद्धपोत भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती देगा।
1: अग्रय में साइड स्कैनिंग सोनार लगे हैं, शैलो वाटर में सबमरीन को पकड़ना, पेट्रोलिंग करना, सर्च एंड रेस्क्यू करना, और इनके पास अंडर वाटर ऑटोनोमस बोट्स हैं जो पानी के अंदर अपने आप चल के और उसमें से रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स निकल के समुद्र की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और पूरी तरह से जो हमारा रख रखाव, जो हमारे सबमरीन के लिए जो बैथी हमको चाहिए, जो प्रेशर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से जो डेप्थ में चेंजेज आती है, जो उनको सबका अध्ययन करते हुए जो हमारी सेना के लिए, सबमरीन के ऑपरेशन के लिए या मौसम विभाग के लिए, ये सब जरूरी है।
0: इक्कीस जून को कोलकाता में INS दूनागिरी और अग्रय के साथ सागर की लहरों पर उतारा जाएगा INS संशोधन। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। ये संधायक क्लास के सर्वे वेसल प्रोग्राम का चौथा और आखिरी जहाज है। INS संशोधक सागर की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने का काम करेगा।
1: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधायक क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई, वहां के जो मैपिंग है समुद्र की सतह का अनुमान और हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर की जो चेंजेस है जो सतह के नीचे के पानी के सतह में होती है उनकी भी जानकारी जरूरी, इससे सबमरीन ऑपरेशन और दूसरे काम करने में अंडरवाटर मदद मिलती है। तो इन सब को करने के लिए ये हाइड्रोग्राफी शिप्स जरूरी है जो भारतीय नौसेना में लगातार इंडक्ट किए जा रहे हैं, पहले संधायक, उसके बाद निरूपक और उसके बाद इच्छक, और अब हम संशोधक को 21 जून को भारतीय नौसेना में शामिल

0: करने वाले हैं। ये सिर्फ शांति के दौरान और युद्ध के दौरान दोनों में अपनी भूमिका निभा सकेगा और हॉस्पिटल शिप के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।
1: खास बात यह है कि ये तीनों युद्धपोत पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं। अब ये तीनों मिलकर भारतीय नौसेना की सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमताओं को मजबूत करेंगे। इन तीनों योद्धाओं के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब बात उस अभूतपूर्व रिकॉर्ड की जो भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में बनाकर दिखा दिया है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का परचम खूब लहरा रहा है। नया भारत आज हर पल आत्मनिर्भरता का नया कीर्तिमान रच रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का कुल रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। इतना ही नहीं बल्कि अब की बार भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को पिछले साल की तुलना में 62% तक बढ़ा दिया। लगभग 38,500 करोड़ रुपए के हथियार बनाकर हमने दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट भी किए हैं।

0: स्वदेशीकरण। सशक्तिकरण। आत्मनिर्भरता। आत्मविश्वास। आत्मगौरव। ये शब्द नहीं, ये मुकम्मल दास्तां है राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की। ये जय घोष है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का। ये वो दौर है जब दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई देती है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार है। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। वही लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। तभी तो अब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये अभूतपूर्व है। एक समय था जब भारत हथियारों, लड़ाकू विमानों और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हिंदुस्तान लगातार ऐसे ऐसे आयाम हासिल करता जा रहा जिसे देखकर दुनिया दंग है। बता दें कि पिछले साल भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ था, जो साल 2026 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 15.6% ही छलांग लगाई है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि साल 2020-21 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपए था। यानी साल 2020-21 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश में डिफेंस प्रोडक्शन में 125% से ज्यादा की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2013-14 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 4 गुना यानी 400% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और 2025-26 में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन हुआ है। यह आंकड़ा 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% इजाफा हुआ है और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनका हिस्सा 24% का है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दर अगर पिछले कुछ सालों यानी एक दशक से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बढ़ोतरी 110% है। यानी लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस से लेकर व्हील्ड व्हीकल्स तक सब कुछ भारत बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही सैकड़ों ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब भारत आयात नहीं करता, भारत में ही बनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वृद्धि को देश के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। वास्तव में ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जिसके बूते आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में रक्षा क्षेत्र के PSUs के साथ साथ इस साल निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के नए आंकड़ों में DPSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs यानी दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल उत्पादन के 76% का योगदान दिया। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% रहा। इसे यूं समझिए कि 2025-26 में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 42,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। देश के डिफेंस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी सशक्त होते भारत की पहचान है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि न केवल प्रोडक्शन बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2024-25 तक ये आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए का था, यानी पिछले साल की तुलना में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहले साल की तुलना में 62.66% ज्यादा है। भारत दुनिया में पांचवा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। आज दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर न केवल अपनी सरहदों को अभेद्य बना रहा है बल्कि दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन का नया पावर सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी के स्पेशल पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अच्छी खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: चलिए अब आपको बताते हैं खबर एक कमाल के कुत्ते की। कुत्तों की वफादारी की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी। आपने ये भी सुना होगा कि महाभारत में हस्तिनापुर का त्याग कर जब युधिष्ठिर उनके चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकले तो एक कुत्ता रास्ते में उनके साथ जुड़ गया। अंत तक उनके साथ रहा ये कुत्ता। इस कुत्ते के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे शांति दूत भी कहा जा रहा है।

0: बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठा ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये अलोका है, जिसे द पीस डॉग के नाम से जाना जाता है। इस कुत्ते से मिलने के लिए, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों में बड़ी उत्सुकता नजर आ रही है, क्योंकि ये डॉग ही बेहद खास है। कभी कोलकाता की गलियों में घूमने वाला ये कुत्ता अब दुनिया भर में शांति और करुणा के दूत के रूप में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के एक होटल की हैं, जहां अलोका के लिए खास तौर से भव्य मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि इसके मुरीद लोग यहां पर आकर इसका दीदार कर सकें, क्योंकि इसके पीछे वजह भी खास है।
1: अलोका के साथ एक फोटो खिंचाने के लिए 300 लोग आए। वी आर सो ग्रेटफुल कि एक इंडियन डॉग ने वर्ल्ड पीस एम्बेसडर बन गया, कि एक सड़क पर रहने वाला इंडियन डॉग ने ऐसा पीस का मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचाया है। और वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, हर कुत्ता इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक स्पिरिचुअल लैंड है, हमारा भारत देश एक लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ हर जीव सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में एक मैसेज लेके जाता है।
0: अलोका नाम के इस डॉग ने कई देशों में शांति के लिए पदयात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संग रहकर शानदार शोहरत हासिल की है। सोशल मीडिया पर करीब 5,00,000 लोग इसे फॉलो करते हैं। शांति और करुणा के एम्बेसडर के रूप में इसने कोलकाता से अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड सहित कई देशों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा सफर पैदल ही पूरा किया है। बौद्ध भिक्षुओं के मुताबिक अलोका इन्हें कोलकाता में एक शांति यात्रा के दौरान मिला था। इसके बाद ये इनके साथ ही रहने लगा और शांति यात्राओं का हिस्सा बनता चला गया। तब से अब तक ये इनके हर वॉक फॉर पीस अभियान में शामिल होता आ रहा है।
1: इन्होंने यूएस के अंदर 110 दिन का इनका पीस वॉक की। अलोका के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलोका द डॉग जो आप देख रहे हैं। और साथ में अभी इनकी थाईलैंड में भी वॉक थी, तो पीस वॉक के चलते उनका लंबा एक इनिशिएटिव चल रहा है उसको लेकर।
0: दुनिया भर में शांति का संदेश फैलाने वाले इस मशहूर भारतीय डॉग अलोका के स्वागत में इससे मिलने और इसके साथ यादगार तस्वीर खिंचवाने के लिए दिल्ली एनसीआर के कोने कोने से सैकड़ों डॉग लवर्स गुरुग्राम में हुए कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम का मकसद बेसहारा पशुओं के प्रति लोगों में दया और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है, और साथ ही ये संदेश देना भी है कि समाज में हर जीव को सम्मान देना चाहिए। नेपाल के दौरे के बाद भारत पहुंचे अलोका का अगला पड़ाव एक बार फिर अमेरिका है, जहां ये एक बार फिर से शांति के संदेश को फैलाने में इन भिक्षुओं का साथ देगा। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फीफा वर्ल्ड कप का खुमार पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में दिखाई दे रहा है। कोलकाता में एक गली तो वर्ल्ड कप के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। इस गली को लोग फीफा गली के नाम से जानते हैं, क्यों देखिए।

0: ये तस्वीरें भारत में फुटबॉल की दीवानगी बयां कर रही है। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होते ही पूरी दुनिया पर फुटबॉल का खुमार दिख रहा है। भारत में भी फुटबॉल के फैंस इस खेल की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। कोलकाता में तो फुटबॉल फैंस ने कुछ रास्तों को ही फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंग दिया है। हर गली मोहल्ले में फीफा वर्ल्ड कप का उत्साह दिख रहा है। फैंस ने अपने पसंदीदा प्लेयर्स के बड़े बड़े पोस्टर चिपका रखे हैं। कोई मेसी के लिए अपनी दीवानगी बयां कर रहा है तो किसी ने रोनाल्डो और नेमार के पोस्टर लगा रखे हैं। नॉर्थ कोलकाता में मौजूद इस गली को तो फीफा गली का नाम दे दिया गया है।
1: In the year 2022, what we did was in 2018, the whole gully was decorated with the colors of Brazil, and in 2022 we decorated it with many supporters from each and every country. Maradona was being painted, then on there Ronaldinho was being painted, here Cristiano Ronaldo was being painted, and in 2022 the name came up as FIFA Venice. And today we are almost 95% of the work is finished. Only some of the drawings are pending, which will be completed by tomorrow. And it will be open to all for everyone to come here to shoot here.
0: पूरी गली फीफा में खेलने वाली फुटबॉल टीमों के झंडों से सजी है। कहीं ब्राजील के झंडे लहरा रहे हैं तो कहीं अर्जेंटीना को चीयर किया जा रहा है। इन रंग बिरंगे झंडों से लोगों ने पूरी सड़क को ही फुटबॉल कार्निवल में तब्दील कर दिया है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits,
4: somebody save me,
3: to timeless favorites,
4: and life is like a song,
3: and new discoveries.
4: So much more than a history. Wake up.
3: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में तीनों सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग, 21 जून को भव्य अंदाज में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूएस ईरान पीस डील के बाद बदला हॉर्मूज का नजारा, 3 महीने बाद जहाजों की शांतिपूर्ण आवाजाही, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की गिरावट। चीन में धूमधाम से चल रही ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी, पर्यटकों से गुजार हुआ हावन आइस एंड स्नो वर्ल्ड, रंग बिरंगी नेचुरल बर्फ से बनाई गई भव्याकृतियां।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
5: अब बात मानसून की, देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। गुजरात में मानसून की एंट्री से पहले ही कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे कि तापमान में भारी गिरावट आई। वहीं दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, कई दिनों तक लू जैसे हालात झेलने के बाद अब मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आज से 21 जून के बीच रुक रुक कर बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी।

0: गुजरात में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में उत्तर और मध्य गुजरात के 62 तालुकाओं में जमकर बारिश हुई। इससे न सिर्फ मौसम सुहावना हुआ बल्कि बारिश के सीजन का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। समंदर में उठती ये लहरें गुजरात के देवभूमि द्वारका की हैं। द्वारका के समंदर में 12 से 15 फीट तक ऊंची उठती ये लहरें प्री मॉनसून की है, यानी समंदर की ये लहरें मॉनसून का आह्वान कर रही हैं। और प्रशासन का भी कहना है कि मॉनसून के दौरान समुद्र का मिजाज अचानक बदल सकता है। गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मॉनसून से पहले की पहली फुहारों ने खेड़ा के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। खेड़ा जिले के कठलाल और महुदा इलाके के ग्रामीण इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने न सिर्फ मौसम को ठंडा कर दिया बल्कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटा दी। खरीफ फसलों की बुआई का इंतजार कर रहे किसान अब राहत की सांस ले रहे हैं। गुजरात के ही जामनगर में भी बारिश ने सबको भिगो कर रख दिया। तपती गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ की पहली बारिश इतनी जोरदार हुई कि गली मोहल्लों में पानी भर गया।
1: आमतौर पर गुजरात में 15 जून तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अलनीनो की असर के चलते इस बार अभी तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की शुरुआत नहीं हुई है। मौसम विभाग का माने तो अगले 5 दिन तक आधिकारिक मॉनसून के किसी प्रकार के संकेत नहीं है। हालांकि मॉनसून महाराष्ट्र तक आ पहुंचा है, लेकिन अभी भी गुजरात में आधिकारिक मॉनसून को लेकर इंतजार और भी अगले 5 दिन तक करना होगा। लेकिन इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात के अलग अलग शहरों में सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के अलग अलग हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं। लेकिन 2 दिन से अगले 5 दिनों तक की अगर बात करें तो मात्र सूरत और वापी समेत जो दक्षिण गुजरात के हिस्से हैं वहां पे सामान्य बारिश होगी। लेकिन ये जो सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर के चलते होने के संकेत हैं। यानी आधिकारिक मॉनसून के लिए गुजरात को अभी भी अगले 5 दिनों का इंतजार करना होगा। इस बीच जो गुजरात के अंदर महत्तम टेम्परेचर की भी बात कर लें तो अहमदाबाद में लगातार 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 5 दिन तक किसी भी प्रकार की गर्मी से राहत के गुजरात में संकेत भी नहीं मिल रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, दाहोद, पंचमहाल, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, मेहसाणा, भरूच समेत कुछ और जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: का जो फोरकास्ट किया गया है 18 से लेकर 24 जून तक, इसमें हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। गुजरात रीजन और सौराष्ट्र को दोनों रीजन में ही वो अगले 3 दिन तक। आज जो थंडरस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया गया है, बिजली गिरने के साथ मेघ गर्जना भी रहेगा और जो स्पीड रहेगा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होने का भी संभावना है। और कल से हल्का से मध्यम बरसात का संभावना है, कोई वार्निंग नहीं है। आज खाली थंडरस्टॉर्म वार्निंग दिया गया है येलो वार्निंग के साथ। कोस्टल क्षेत्रों में अभी जो पवन का दिशा है दोनों क्षेत्रों में, उत्तर और दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है इसमें मेनली दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति है। जो स्पीड है स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कारण 15 से 20 नॉट गस्टिंग जो स्पीड रहेगा 25 नॉट होने का संभावना है। इसमें आइसोलेटेड प्लेसेस में रेन थंडर शावर का भी संभावना है।
0: वहीं अगले कुछ दिन ऐसा ही माहौल रहने की संभावना है। दिन में बादल छाए रहेंगे और हल्की मध्यम बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट बने रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी बारिश और तूफान तो कभी आसमान में बादलों की आवाजाही से गर्मी और उमस से लोगों को थोड़ी राहत है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधि 21 जून तक जारी रहेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद के 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो 21 जून को लू चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं और उमस का सामना करना पड़ सकता है।
3: देश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं पर जो है उमस की स्थिति बनी हुई है तो कहीं पर जो है लगातार बारिश देखी जा रही है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे। आज तापमान में हालांकि कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है थोड़ी सी राहत लोगों को जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त पहाड़ी राज्यों में जो है सक्रिय है, जिसका असर जो है कहीं ना कहीं मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर के लिए दिया गया है कि जो बारिश है वो हल्की बारिश जो है वो भी देखी जा सकती है। उसके साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। लेकिन इस वक्त की मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो मौसम एकदम साफ नजर आएगा। बीच बीच में धूप जो है वो आ रही है और जा रही है। इस तरीके से जो हालात है वो इस वक्त के बने हुए हैं, लेकिन लोगों को गर्मी से अभी राहत यहां पर नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात करूं तो वहां पर लगातार जो है बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर 3 दिन तक कुछ इसी तरीके से मौसम जो है वो रहने वाला है। तो वहीं मानसून भी लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि वहां पर अच्छी खासी बारिश जो है मानसूनी बारिश जो है वो देखी जा सकती है। और उसी के लिए पूरे चाहे मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, वहां पर लगातार जो है ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसके साथ ही दक्षिण हिस्से से मानसून की जो शुरुआत हुई थी और वो अब महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, जिसका असर जो है वो भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अलग अलग मौसम अलग अलग राज्यों पर इस वक्त बना हुआ है। लेकिन बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो अभी तापमान बढ़े हुए हैं, लेकिन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद।
0: हालांकि जून के तीसरे हफ्ते में भी मॉनसून देश के बड़े हिस्सों को कवर नहीं कर पाया है। 17 जून की सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपर मॉनसूनी बादल नहीं है। मॉनसून ने लगातार तीसरे साल जून में लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि 2024 और 2025 में शुरुआती ब्रेक के बावजूद पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल 4 जून से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। मॉनसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है, लिहाजा 22 जून से पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 723 जिलों में सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है, यानी देश के 40% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया का न बनना है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मॉनसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। पिछले एक हफ्ते से ये तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हो गई है। जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हेताली शाह, जामनगर से ब्रिजेश दोषी और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
4: आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 118वां स्थान मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मऊ में गरुड़ास्त्र का सफल टेस्ट हुआ है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी दिल्ली ने एक बार फिर भारत के सबसे अच्छे एजुकेशन और रिसर्च संस्थान के तौर पर अपनी जगह बना ली है। आज जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में संस्थान ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए विश्व स्तर पर 118वां स्थान हासिल किया। संस्थान ने 123वीं रैंक से लंबी छलांग लगाकर 118वीं ग्लोबल रैंक हासिल की। ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 118वीं रैंक के साथ आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसी भी भारतीय संस्थान के अब तक हासिल की गई सबसे ऊंची ग्लोबल रैंक की बराबरी भी कर ली है। करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके तहत पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाया जाएगा। अब तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन क्लेम डालना पड़ता था और कई बार इसमें कई दिन या हफ्तों का समय लग जाता है, लेकिन नए सिस्टम में ये प्रक्रिया लगभग तुरंत पूरी हो सकेगी। हालांकि निकासी के नियम और लिमिट मौजूदा शर्तों के अनुसार ही रहेंगे, जैसे रिटायरमेंट या बेरोजगारी पर ही पूरा पीएफ निकाला जा सकेगा। माना जा रहा है कि जून के आखिर तक पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए निकलना शुरू हो सकता है। रक्षा कंपनी नाइब लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इन्फेंट्री स्कूल महू में अपने एडवांस्ड गरुड़ास्त्र 120 mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया। ये एक वाहन पर लगाया जाने वाला 120 mm का भारी मोर्टार है, जो तेजी से आगे बढ़कर हमला करने और तुरंत दूसरी जगह पर जाने की क्षमता रखता है। पारंपरिक मोर्टार सिस्टम की तुलना में ये ज्यादा सटीक, ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित है। ये सिस्टम भारतीय सेना की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिहार के गया के पत्थरकट्टी गांव की काले पत्थर की मूर्तियों को जीआई टैग मिल गया है। गांव को मिले इस उपलब्धि से गांव के शिल्पकारों में बेहद खुशी है। पत्थरकट्टी गांव में पीढ़ियों से पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यहां के कारीगरों ने विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। अब जीआई टैग मिलने से पत्थरकट्टी की मूर्तियों की मांग देश विदेश में बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय शिल्पकारों की कला को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में आजीविका मिशन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए हीरानगर में नया सेल्स आउटलेट शुरू किया है। ये सेल्स आउटलेट उम्मीद स्कीम के तहत शुरू हुआ है। कश्मीर में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाओं, मिशन और अभियानों में ये सेल्स आउटलेट एक ऐसी पहल है जो हीरानगर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने में कारगर साबित होगी। न्यूज फुट पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कच्चे तेल की कीमतें कम होने और वेस्ट एशिया में तनाव घटने से कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 254 अंकों की बढ़त के साथ 77,409 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 82 अंकों की बढ़त के साथ 24,168 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी के बीच आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 907 रुपए गिरकर 153,440 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 6,607 रुपए से गिरकर 248,740 रुपए पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनने के कारण 18 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 94.36 के स्तर पर बंद हुआ।
4: चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: कुछ लोग जिस काम को रोजगार समझते हैं उसे कुछ लोग कला बना देते हैं। अपने काम में कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों की मिसाल है ये वायरल तस्वीरें। ये शेफ सिर्फ पिज्जा नहीं बना रहा बल्कि अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहा है। अपने काम को वो इस तरह मजा लेकर कर रहा है कि उसका कंट्रोल और स्पीड दोनों एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं। हवा में परफेक्ट स्पिन के साथ चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जो ये तस्वीरें देख रहा है इस हुनरबाज को सलाम किए बिना नहीं रह रहा।
5: तपती गर्मी में कम ही लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो इंसान की ही प्यास बुझा दे। लेकिन इस बच्ची को देखिए, गाय को इस चुभती गर्मी में हैंडपंप से पानी पिलाती इस बच्ची को देखिए, जिसने गाय माता की प्यास को महसूस किया। अब ये तस्वीरें वायरल हैं और यूजर्स बच्चे के संस्कार पर फिदा हो गए हैं। करुणा, दया और संवेदनशीलता की एक और तस्वीर लोगों का दिल जीत रही है, जहां एक स्ट्रीट वेंडर एक भूखी प्रेग्नेंट डॉगी की भूख को महसूस करता है। ये डॉगी उसकी दुकान पर बनते भोजन को टुकुर टुकुर देख रही थी। वेंडर को समझ आ जाता है कि ये भूखी भी है और गर्भवती भी। तब वो उसे अपने ठेले से गर्मा गर्म खाना पेट भर खिलाता है। लोग वीडियो देखकर स्ट्रीट वेंडर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको अपने आसपास के लोगों और पशुओं के प्रति ऐसे ही करुणामयी होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस डिसेबल डॉगी का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। ये डॉगी चलती सड़क पर वाहनों की आवाजाही के बीच फंस जाता है, तब स्कूटी पर बैठा ये लड़का उसे सड़क के पार जाने में मदद करता है। डॉगी पहले तो मदद का एक कदम समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही समझता है लड़के के साथ सड़क पार करने लगता है। यूजर्स अब लड़के की सूझबूझ को सराहा रहे हैं। गर्मी में जानवरों हो या इंसान, सबको पानी चाहिए, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी। गर्मी के मौसम में पानी की बौछारों के बीच इस डॉगी की तस्वीर वायरल है, जो गर्मी के बीच घर के दरवाजे से निकलते ही जमकर पानी की फुहारों का आनंद उठा रहा है। ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं कि इसे कहते हैं विशुद्ध आनंद।
6: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
6: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
4: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
8: सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की सड़क किनारे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। जब उसके इस नेक काम पर एक बुजुर्ग की नजर पड़ी तो वह उसके पास आकर उसके इस काम के लिए एक छोटा सा इनाम देता है। ये वीडियो दिल्ली के शेख सराय इलाके का बताया जा रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली के वेस्ट कनॉट प्लेस में रोज की तरह भीड़ थी। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। इस भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला हाथ में पेन लेकर उन्हें बेचने की कोशिश कर रही थी। गर्मी थी, थकान थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बरकरार थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टीव बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं और उनकी मुस्कुराहट की तारीफ करते हुए पेन खरीदने की बात कहते हैं। महिला बताती है कि एक पेन की कीमत 50 रुपए है। स्टीव पहले 100 रुपए देकर 2 पेन खरीद लेते हैं, लेकिन जब उन्हें महिला की सादगी और मुस्कान पसंद आती है तो वे 2 और पेन खरीदने के लिए 100 रुपए और दे देते हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा कि उनके पास कुल कितने पेन बचे हैं। महिला ने बताया कि पूरे स्टॉक की कीमत करीब 900 रुपए है। स्टीव के पास उस समय केवल 550 रुपए बचे थे। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी जेब में रखे सभी पैसे बुजुर्ग महिला को दे दिए। खास बात ये रही कि उन्होंने सारे पेन अपने साथ नहीं लिए, सिर्फ 2 पेन रखे। और बाकी महिला के पास ही छोड़ दिए ताकि वे उन्हें आगे भी बेच सकें। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उम्मीद है कि आप बाकी सारे पेन भी बेच लेंगी। महिला ये देखकर भावुक हो गईं और हिंदी में उन्हें दुआएं देने लगी।
9: And I'll take these two beautiful pens. Okay, have a nice day.
8: सोशल मीडिया पर ये कमाल का वीडियो खूब देखा जा रहा है। यूजर्स इस शख्स के दिमाग की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में नजर आता है कि एक पर स्नैक्स और कैंडी के कई सारे पैकेट रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। अब गेम ये है कि वहां से लोगों को भागकर पैकेट्स के पास पहुंचना है और जो जितने पैकेट एक बार में ला सकते हैं उन्हें लेकर आना है। इसके लिए वो अपना तरीका अपना सकते हैं। अब कोई दोनों हाथों से पैकेट उठाता तो कोई अपने जैकेट में उठाता, लेकिन वहीं एक शख्स गजब का दिमाग अपनाता है। वो पैकेट के दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है और एक दूसरा शख्स उसे धकेलते हुए अपने एंड की तरफ लाता है। अब उस आदमी के लेटने से खूब सारे एरिया कवर हुआ, जिससे कई सारे पैकेट वो एक बार में ही लेकर इधर आ गया। सोशल मीडिया पर दो गोरिल्लाओं के बीच रूठने मनाने का एक बेहद दिलचस्प और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों के बीच ये अनोखी और हूबहू इंसानी कपल्स जैसी नोकझोंक सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। वीडियो की शुरुआत एक रूठी हुई मादा गोरिल्ला से होती है, जो किसी बात पर बेहद खफा है और मुंह फुलाकर बैठी है। वहीं उसका साथी एक अच्छे पार्टनर की तरह उसे मनाने और उसका गुस्सा शांत करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। जैसे ही नर गोरिल्ला प्यार से उसके पास जाता है और उसे मनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मादा गोरिल्ला झटके से उसका हाथ झटक देती है, मगर नर गोरिल्ला हार नहीं मानता है। वो बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे मादा गोरिल्ला की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया ही मिलती है। मादा गोरिल्ला का ये एटीट्यूड और दोनों के बीच की ये प्यारी सी तकरार हूबहू इंसानी रिश्ते की याद दिलाती है। यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। जानवरों के भीतर छिपे इन इंसानी भावों को देखना वाकई जादुई और बेहद खुशनुमा एहसास है। ये भावुक कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस वीडियो में एक छोटी सी चिड़िया अपने अंडों की बचाने के लिए जो किया उसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। वीडियो की शुरुआत एक खेत से होती है, जहां खेती का काम चल रहा होता है। खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है और चालक नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा होता है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन तभी एक ऐसा सीन सामने आता है जो पूरे माहौल को बदल देता है। खेत में मौजूद एक चिड़िया अपने घोंसले और उसमें रखे अंडों के पास मंडरा रही होती है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि ट्रैक्टर उसके अंडों के बेहद करीब पहुंचने वाला है, वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। अपने नन्हे बच्चों की सुरक्षा की चिंता में चिड़िया बिना किसी डर के ट्रैक्टर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आकार में बेहद छोटी होने के बावजूद वो बड़े साहस का परिचय देती है। वो अपने पंख पूरी तरह फैला लेती है और लगातार तेज आवाज निकालने लगती है। ऐसा लगता है मानो वो आने वाले खतरे को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। उसकी हर हरकत में अपने अंडों को बचाने की बेचैनी और ममता साफ दिखाई देती है। ये सीन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि माँ चाहे इंसान हो या पक्षी, अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बंदर अपने साथ दो आम लेकर किसी घर की छत पर पहुंच जाता है। वहां वह बड़े आराम से बैठकर आम खाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। वो पूरे सुकून के साथ आम का आनंद ले रहा होता है। उसकी यह हरकत देखकर ऐसा महसूस होता है कि मानो वो अपने पसंदीदा फल का स्वाद लेने में पूरी तरह मग्न है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर की एक महिला छत पर पहुंचती है और बंदर को आम खाते हुए देख लेती है। शायद उसे यह पसंद नहीं आता। दिलचस्प बात यह है कि बंदर महिला के इस व्यवहार से बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाई देता। आमतौर पर बंदर तेजी से भाग जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में नजर आने वाला बंदर काफी मोटा और भारी भरकम दिख रहा है। यही वजह है कि वो किसी जल्दीबाजी में नहीं दिखता। महिला के भगाने के बाद भी वह आराम से उठता है और धीरे धीरे वहां से चलता हुआ नजर आता है। उसकी ये बेफिक्र चाल लोगों को काफी मजेदार लग रही है। इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच यूके के एक जू ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जा रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाथी के बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के प्रति उसकी जिज्ञासा और मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़े वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहते हैं। कभी किसी जानवर की मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत लेती हैं, तो कभी जंगल के जीवों की ताकत और आक्रामक अंदाज से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर छा जाते हैं। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथी अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कई हाथी एक घिरे हुए प्लॉट के अंदर दिखाई देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद हाथी ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं। हाथी सामने बनी दीवार की ओर बढ़ता है और पूरी ताकत से उसे जोरदार धक्का मारता है। ये धक्का इतना जोरदार था कि मजबूत दिखाई देने वाली दीवार कुछ ही सेकंड में ढह जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दीवार गिरने के बाद हाथियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद वे आराम से उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं। हाथी की ताकत और उसके आत्मविश्वास को देखकर लोग दंग रह गए हैं। आमतौर पर ऐसी दीवारों को तोड़ने के लिए मशीनों या भारी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस हाथी ने केवल एक जोरदार धक्के से पूरी दीवार को गिरा दिया।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
7: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
14: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में 3 सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग। 21 जून को भव्य अंदाज में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूएस ईरान पीस डील के बाद बदला हॉर्मूज का नजारा, 3 महीने बाद जहाजों की शांतिपूर्ण आवाजाही, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की गिरावट। चीन में धूमधाम से चल रही ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी, पर्यटकों से गुजार हुआ हावन आइस एंड स्नो वर्ल्ड, रंग बिरंगी नेचुरल बर्फ से बनाई गई भव्याकृतियां।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा के नए अध्याय की करेंगे। जल्द ही इंडियन नेवी को ताकत का डबल नहीं बल्कि ट्रिपल बूस्टर डोज मिलने जा रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत को पंख लगाने के लिए 21 जून को ऐसे 3 महाबली नेवी में शामिल किए गए हैं जो भारत की समुद्री सरहदों को मजबूत बनाएंगे। आने वाली 21 जून को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ 3 एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। इन 3 युद्धपोतों में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रे और नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक शामिल है। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों की कमिश्निंग का समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कोलकाता में होने वाला ये समारोह हाल ही के सालों में दूसरा ऐसा मौका होगा जब 3 एडवांस्ड नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया जाएगा।

0: लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपने समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा का ये कवच अब कुछ और मजबूत होने जा रहा है। इक्कीस जून 2026 ये वो तारीख है जो भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। आने वाली 21 जून को भारतीय नौसेना के बेड़े में 173 एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। इन तीन युद्धपोतों में पहला है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, दूसरा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और तीसरा है भारतीय नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों का कमिश्निंग समारोह होगा जिसमें PM मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कोलकाता में होने वाला ये समारोह हाल के सालों में दूसरा ऐसा मौका होगा जब तीन एडवांस नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया जाएगा। इससे पहले ऐसा आयोजन पिछले साल जनवरी में हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को कमीशन किया था। भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमता को पंख लगाने वाले ये तीन महाबली तैयार हैं। ये न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाएंगे बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने साल 2047 तक समुद्री सुरक्षा के लिए जो रोड मैप तैयार किया है ये उसी का हिस्सा है।
1: सूत्रों के मुताबिक 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये इंडक्शन हो सकता है और ये दूसरा मौका होगा जब एक ही साथ तीन अलग अलग योद्धा नेवी में कमीशन किए जाएंगे। अगर इन तीनों युद्धपोतों की बात करें तो ये सभी भारत में बनाए गए हैं और भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि 2047 तक वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी स्वदेशी युद्धपोतों के साथ लैस होगी और उसी कड़ी में ये भारतीय नौसेना का तेजी से चलता हुआ सफर है। यानी भारतीय नौसेना को अब एक बार फिर दूनागिरी जैसे युद्धपोत मिलेंगे जिनमें ब्रह्मोस के साथ साथ तमाम दूसरी मिसाइल्स की ताकत है, साथ ही अग्रय जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जाना जाएगा और संशोधक जो एक सर्वे वेसल है। भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत में ये एक ट्रिपल कमिशनिंग होगी जो वाकई में एक नई उपलब्धि की तरह देखी जा रही है।
0: तीन युद्धपोतों की एक साथ कमिशनिंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्धपोतों, मिसाइलों और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा है। चलिए अब आपको नेवी में शामिल होने वाले इन तीनों महाबलियों से मिलवा देते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दूनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इस घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है।
2: मैं दूनागिरी की बात करूं तो मैं आपको INS दूनागिरी का एक मॉडल दिखाना चाहूंगा। ये मेरा पहला शिप था जो पुराना INS दूनागिरी जो बहुत समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद डीकमीशन हुआ और ऑपरेशन पवन श्रीलंका में इसने भूमिका निभाई, इसी का नाम नया दिया गया है। ये मेरा पहला शिप था जहां मैं पायलट के रूप में मैंने हवाई जहाज यहां से उड़ान भरी और आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर देख सकते हो। यही शिप फिर से कमीशन हुआ है गार्डन रिच के द्वारा, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अधीन बनाया हुआ 8 से ज्यादा शिप्स। इसमें नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, विंध्यागिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, तो ये दूनागिरी ये शिप अभी कमीशन हो रहा है। ये सरफेस शिप्स के साथ साथ 3,500-4,000 टन से ज्यादा का एक बहुत ही बेहतरीन फ्रिगेट है।
0: आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS दूनागिरी कमीशन होने वाला है उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल ने साल 2009 के जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। 2013 में इसके डिजाइन तैयार कर लिए गए। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और

0: काफी हाई स्पीड के साथ, अच्छे पावरफुल इंजन के साथ, 80% भारतीय पुर्जों के साथ, और अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए इसके जो पकड़ है उसको हम इससे देख सकते हैं कि एंटी सबमरीन रॉकेट, टॉर्पीडो, डेप्थ चार्जेस, सबमरीन को खोजने के लिए टोही, सोनार, रेडार, इसके सरफेस के, ब्रह्मोस मिसाइल इसमें शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसमें एंटी सबमरीन बड़े हेलीकॉप्टर्स MH-60 रोमियो जैसे जो अमेरिका से खरीदे गए हैं, ये सब मिलके इसको एक बहुत ही कैपेबल फ्रिगेट बनाते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक सूट्स की और दुश्मनों को दूर से पकड़ने की और टो करके घात लगा के बियॉन्ड द रेंज, जो दूर तक रडार से सर्च करके मारना, चाहे हवाई जहाज को, चाहे तो सरफेस शिप को, चाहे समय, इनको तीनों कैपेबिलिटी के साथ ये शिप भारतीय नौसेना को मिलने वाली है।
1: अब बात सागर की उस योद्धा की जो याद दिलाएगा भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून का नौसेना में कमीशन होने जा रहा है INS अग्रय, एंटी सबमरीन वॉरफेयर का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी, और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। कमिश्निंग से पहले INS अग्रय के क्रेस्ट का अनावरण किया गया। INS अग्रय अर्नाला क्लास का पांचवा एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है। इसे विशेष रूप से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। ये युद्धपोत भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती देगा।
0: अग्रय में साइड स्कैनिंग सोनार लगे हैं, शैलो वाटर में सबमरीन्स को पकड़ना, पेट्रोलिंग करना, सर्च एंड रेस्क्यू करना, और इनके पास अंडर वाटर ऑटोनोमस बोट्स हैं जो पानी के अंदर अपने आप चल के और उसमें से रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स निकल के समुद्र की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और पूरी तरह से जो हमारा रख रखाव, जो हमारे सबमरीन के लिए जो बैथी हमको चाहिए, जो प्रेशर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से जो डेप्थ में चेंजेज आती है, जो उनका सबका अध्ययन करते हुए जो हमारे सेना के लिए, सबमरीन के ऑपरेशंस के लिए या मौसम विभाग के लिए, ये सब जरूरी है।
1: इक्कीस जून को कोलकाता में INS दूनागिरी और अग्रय के साथ सागर की लहरों पर उतारा जाएगा INS संशोधन। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। ये संधायक क्लास के सर्वे वेसल प्रोग्राम का चौथा और आखिरी जहाज है। INS संशोधक सागर की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने का काम करेगा।
0: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधायक क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई, वहां के जो मैपिंग है, समुद्र की सतह का अनुमान और हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर की जो चेंजेस है जो सतह के नीचे के पानी के सतह में होती है, उनकी भी जानकारी जरूरी। इससे सबमरीन ऑपरेशन और दूसरे काम करने में अंडर वाटर मदद मिलती है। तो इन सब को करने के लिए ये हाइड्रोग्राफी शिप्स जरूरी है जो भारतीय नौसेना में लगातार इंडक्ट किए जा रहे हैं। पहले संधायक, उसके बाद निरूपक और उसके बाद इच्छक, और अब हम संशोधक को 21 जून को भारतीय नौसेना में शामिल करने वाले हैं। ये शिप शांति के दौरान और वॉर युद्ध के दौरान दोनों में अपनी भूमिका निभा सकेगा और हॉस्पिटल शिप के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।
1: खास बात यह है कि ये तीनों युद्धपोत पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं। अब ये तीनों मिलकर भारतीय नौसेना की सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमताओं को मजबूत करेंगे। इन तीनों योद्धाओं के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए बात उस अभूतपूर्व रिकॉर्ड की जो भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में बनाकर दिखा दिया है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का परचम खूब लहरा रहा है। नया भारत आज हर पल आत्मनिर्भरता का नया की

0: देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालु ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में तीनों सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग। 21 जून को भव्य अंदाज में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूएस ईरान पीस डील के बाद बदला हॉर्मूज का नजारा, 3 महीने बाद जहाजों की शांतिपूर्ण आवाजाही, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की गिरावट। चीन में धूमधाम से चल रही ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी, पर्यटकों से गुलजार हुआ हावन आइस एंड स्नो वर्ल्ड, रंग बिरंगी नेचुरल बर्फ से बनाई गई भव्य आकृतियां।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
0: अब बात मानसून की, देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। गुजरात में मानसून की एंट्री से पहले ही कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे कि तापमान में भारी गिरावट आई। वहीं दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, कई दिनों तक लू जैसे हालात झेलने के बाद अब मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आज से 21 जून के बीच रुक रुक कर बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी।

0: गुजरात में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में उत्तर और मध्य गुजरात के 62 तालुकाओं में जमकर बारिश हुई। इससे न सिर्फ मौसम सुहावना हुआ बल्कि बारिश के सीजन का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। समंदर में उठती ये लहरें गुजरात के देवभूमि द्वारका की हैं। द्वारका के समंदर में 12 से 15 फीट तक ऊंची उठती ये लहरें प्री मॉनसून की है, यानी समंदर की ये लहरें मॉनसून का आह्वान कर रही हैं। और प्रशासन का भी कहना है कि मॉनसून के दौरान समुद्र का मिजाज अचानक बदल सकता है। गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मॉनसून से पहले की पहली फुहारों ने खेड़ा के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। खेड़ा जिले के कठलाल और महुदा इलाके के ग्रामीण इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने न सिर्फ मौसम को ठंडा कर दिया बल्कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटा दी। खरीफ फसलों की बुआई का इंतजार कर रहे किसान अब राहत की सांस ले रहे हैं। गुजरात के ही जामनगर में भी बारिश ने सबको भिगो कर रख दिया। तपती गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ की पहली बारिश इतनी जोरदार हुई कि गली मोहल्लों में पानी भर गया।
1: आमतौर पर गुजरात में 15 जून तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अल नीनो की असर के चलते इस बार अभी तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की शुरुआत नहीं हुई है। मौसम विभाग का माने तो अगले 5 दिन तक आधिकारिक मॉनसून के किसी प्रकार के संकेत नहीं है। हालांकि मॉनसून महाराष्ट्र तक आ पहुंचा है, लेकिन अभी भी गुजरात में आधिकारिक मॉनसून को लेकर इंतजार और भी अगले 5 दिन तक करना होगा। लेकिन इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात के अलग अलग शहरों में सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के अलग अलग हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं। लेकिन 2 दिन से अगले 5 दिनों तक की अगर बात करें तो मात्र सूरत और वापी समेत जो दक्षिण गुजरात के हिस्से हैं वहां पे सामान्य बारिश होगी। लेकिन ये जो सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर के चलते होने के संकेत हैं। यानी आधिकारिक मॉनसून के लिए गुजरात को अभी भी अगले 5 दिनों का इंतजार करना होगा। इस बीच जो गुजरात के अंदर महत्तम टेम्परेचर की भी बात कर लें तो अहमदाबाद में लगातार 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 5 दिन तक किसी भी प्रकार की गर्मी से राहत

0: के गुजरात में संकेत भी नहीं मिल रहे हैं।
1: मौसम विभाग ने बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, दाहोद, पंचमहाल, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, मेहसाणा, भरूच समेत कुछ और जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: जो फोरकास्ट दिया गया है 18 से लेकर 24 जून तक, इसमें हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा गुजरात रीजन और सौराष्ट्र को दोनों रीजन में ही, वो अगले 3 दिन तक। आज जो थंडरस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया गया है, बिजली गिरने के साथ मेघ गर्जना भी रहेगा और जो स्पीड रहेगा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होने का भी संभावना है। और कल से हल्का से मध्यम बरसात का संभावना है, कोई वार्निंग नहीं है। आज खाली थंडरस्टॉर्म वार्निंग दिया गया है येलो वार्निंग के साथ। कोस्टल क्षेत्र में अभी जो पवन का दिशा है दोनों क्षेत्र में, उत्तर और दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है, इसमें मेनली दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति है। जो स्पीड है स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कारण 15 से 20 नॉट गस्टिंग जो स्पीड रहेगा 25 नॉट होने का संभावना है। इसमें आइसोलेटेड प्लेसेस में रेन थंडर शावर का भी संभावना है।
1: वहीं अगले कुछ दिन ऐसा ही माहौल रहने की संभावना है। दिन में बादल छाए रहेंगे और हल्की मध्यम बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट बने रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी बारिश और तूफान तो कभी आसमान में बादलों की आवाजाही से गर्मी और उमस से लोगों को थोड़ी राहत है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधि 21 जून तक जारी रहेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद के 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो 21 जून को लू चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं और उमस का सामना करना पड़ सकता है।
3: देश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं पर जो है उमस की स्थिति बनी हुई है तो कहीं पर जो है लगातार बारिश देखी जा रही है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे। आज तापमान में हालांकि कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है थोड़ी सी राहत लोगों को जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त पहाड़ी राज्यों में जो है सक्रिय है, जिसका असर जो है कहीं ना कहीं मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर के लिए दिया गया है कि जो बारिश है वो हल्की बारिश जो है वो भी देखी जा सकती है। उसके साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। लेकिन इस वक्त की मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो मौसम एकदम साफ नजर आएगा। बीच बीच में धूप जो है वो आ रही है और जा रही है। इस तरीके से जो हालात है वो इस वक्त के बने हुए हैं, लेकिन लोगों को गर्मी से अभी राहत यहां पर नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात करूं तो वहां पर लगातार जो है बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर 3 दिन तक कुछ इसी तरीके से मौसम जो है वो रहने वाला है। तो वहीं मॉनसून भी लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि वहां पर अच्छी खासी बारिश जो है, मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जा सकती है। और उसी के लिए पूरे चाहे मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, वहां पर लगातार जो है ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसके साथ ही दक्षिण हिस्से से मॉनसून की जो शुरुआत हुई थी और वो अब महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, जिसका असर जो है वो भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अलग अलग मौसम अलग अलग राज्यों पर इस वक्त बना हुआ है। लेकिन बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो अभी तापमान बढ़े हुए हैं, लेकिन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद।
1: हालांकि जून के तीसरे हफ्ते में भी मॉनसून देश के बड़े हिस्सों को कवर नहीं कर पाया है। 17 जून की सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपर मॉनसूनी बादल नहीं है। मॉनसून ने लगातार तीसरे साल जून में लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि 2024 और 2025 में शुरुआती ब्रेक के बावजूद पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल 4 जून से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। मॉनसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है, लिहाजा 22 जून से पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 723 जिलों में सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है, यानी देश के 40% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया का न बनना है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मॉनसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। पिछले एक हफ्ते से ये तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हो गई है। जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हेताली शाह, जामनगर से ब्रिजेश दोषी और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
4: आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 118वां स्थान मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मऊ में गरुड़ास्त्र का सफल टेस्ट हुआ है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी दिल्ली ने एक बार फिर भारत के सबसे अच्छे एजुकेशन और रिसर्च संस्थान के तौर पर अपनी जगह बना ली है। आज जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में संस्थान ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए विश्व स्तर पर 118वां स्थान हासिल किया। संस्थान ने 123वीं रैंक से लंबी छलांग लगाकर 118वीं ग्लोबल रैंक हासिल की। ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 118वीं रैंक के साथ आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसी भी भारतीय संस्थान के अब तक हासिल की गई सबसे ऊंची ग्लोबल रैंक की बराबरी भी कर ली है। करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके तहत पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाया जाएगा। अब तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन क्लेम डालना पड़ता था और कई बार इसमें कई दिन या हफ्तों का समय लग जाता है, लेकिन नए सिस्टम में ये प्रक्रिया लगभग तुरंत पूरी हो सकेगी। हालांकि निकासी के नियम और लिमिट मौजूदा शर्तों के अनुसार ही रहेंगे, जैसे रिटायरमेंट या बेरोजगारी पर ही पूरा पीएफ निकाला जा सकेगा। माना जा रहा है कि जून के आखिर तक पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए निकलना शुरू हो सकता है। रक्षा कंपनी नाइब लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इन्फेंट्री स्कूल महू में अपने एडवांस्ड गरुड़ास्त्र 120mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया। ये एक वाहन पर लगाया जाने वाला 120mm का भारी मोर्टार है, जो तेजी से आगे बढ़कर हमला करने और तुरंत दूसरी जगह पर जाने की क्षमता रखता है। पारंपरिक मोर्टार सिस्टम की तुलना में ये ज्यादा सटीक, ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित है। ये सिस्टम भारतीय सेना की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिहार के गया के पत्थरकट्टी गांव की काले पत्थर की मूर्तियों को जीआई टैग मिल गया है। गांव को मिले इस उपलब्धि से गांव के शिल्पकारों में बेहद खुशी है। पत्थरकट्टी गांव में पीढ़ियों से पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यहां के कारीगरों ने विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। अब जीआई टैग मिलने से पत्थरकट्टी की मूर्तियों की मांग देश विदेश में बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय शिल्पकारों की कला को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में आजीविका मिशन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए हीरानगर में नया सेल्स आउटलेट शुरू किया है। ये सेल्स आउटलेट उम्मीद स्कीम के तहत शुरू हुआ है। कश्मीर में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाओं, मिशन और अभियानों में ये सेल्स आउटलेट एक ऐसी पहल है जो हीरानगर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने में कारगर साबित होगी।
4: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
1: कच्चे तेल की कीमतें कम होने और वेस्ट एशिया में तनाव घटने से कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 256 अंकों की बढ़त के साथ 77,409 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 82 अंकों की बढ़त के साथ 24,168 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी के बीच आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 907 रुपए गिरकर 1,53,440 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 6,607 रुपए से गिरकर 2,48,740 रुपए पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनने के कारण 18 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 94.36 के स्तर पर बंद हुआ।
4: चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोज को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: कुछ लोग जिस काम को रोजगार समझते हैं उसे कुछ लोग कला बना देते हैं। अपने काम में कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों की मिसाल है ये वायरल तस्वीरें। ये शेफ सिर्फ पिज्जा नहीं बना रहा बल्कि अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहा है। अपने काम को वो इस तरह मजा लेकर कर रहा है कि उसका कंट्रोल और स्पीड दोनों एकदम नेक्स्ट लेवल के है। हवा में परफेक्ट स्पिन के साथ चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जो ये तस्वीरें देख रहा है इस हुनरबाज को सलाम किए बिना नहीं रह रहा। तपती गर्मी में कम ही लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो इंसान की ही प्यास बुझा दे, लेकिन इस बच्ची को देखिए, गाय को इस चुभती गर्मी में हैंडपंप से पानी पिलाती इस बच्ची को देखिए, जिसने गाय माता की प्यास को महसूस किया। अब ये तस्वीरें वायरल हैं और यूजर्स बच्ची के संस्कार पर फिदा हो गए हैं। करुणा, दया और संवेदनशीलता की एक और तस्वीर लोगों का दिल जीत रही है, जहां एक स्ट्रीट वेंडर एक भूखी प्रेग्नेंट डॉगी की भूख को महसूस करता है। ये डॉगी उसकी दुकान पर बनते भोजन को टुकुर-टुकुर देख रही थी। वेंडर को समझ आ जाता है कि ये भूखी भी है और गर्भवती भी। तब वो उसे अपने ठेले से गर्मा गर्म खाना पेट भर खिलाता है। लोग वीडियो देखकर स्ट्रीट वेंडर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको अपने आसपास के लोगों और पशुओं के प्रति ऐसे ही करुणामयी होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस डिसेबल्ड डॉगी का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। ये डॉगी चलती सड़क पर वाहनों की आवाजाही के बीच फंस जाता है, तब स्कूटी पर बैठा ये लड़का उसे सड़क के पार जाने में मदद करता है। डॉगी पहले तो मदद का एक कदम समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही समझता है लड़के के साथ सड़क पार करने लगता है। यूजर्स अब लड़के की सूझबूझ को सराहा रहे हैं। गर्मी में जानवरों हो या इंसान, सबको पानी चाहिए, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी। गर्मी के मौसम में पानी की बौछारों के बीच इस डॉगी की तस्वीर वायरल है, जो गर्मी के बीच घर के दरवाजे से निकलते ही जमकर पानी की फुहारों का आनंद उठा रहा है। ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं कि इसे कहते हैं विशुद्ध आनंद।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी
6: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ओनली 30 कैलोरीज जस्ट 5 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 3 ग्राम्स ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
5: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: I know very well. I know very well. I know very well. I know very well. I know very well. सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की सड़क किनारे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। जब उसके इस नेक काम पर एक बुजुर्ग की नजर पड़ी तो वह उसके पास आकर उसके इस काम के लिए एक छोटा सा इनाम देता है। ये वीडियो दिल्ली के शेख सराय इलाके का बताया जा रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली के वेस्ट कनॉट प्लेस में रोज की तरह भीड़ थी। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। इस भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला हाथ में पेन लेकर उन्हें बेचने की कोशिश कर रही थी। गर्मी थी, थकान थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बरकरार थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टीव बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं और उनकी मुस्कुराहट की तारीफ करते हुए पेन खरीदने की बात कहते हैं। महिला बताती है कि एक पेन की कीमत 50 रुपए है। स्टीव पहले 100 रुपए देकर 2 पेन खरीद लेते हैं, लेकिन जब उन्हें महिला की सादगी और मुस्कान पसंद आती है तो वे 2 और पेन खरीदने के लिए 100 रुपए और दे देते हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा कि उनके पास कुल कितने पेन बचे हैं। महिला ने बताया कि पूरे स्टॉक की कीमत करीब 900 रुपए है। स्टीव के पास उस समय केवल 550 रुपए बचे थे। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी जेब में रखे सभी पैसे बुजुर्ग महिला को दे दिए। खास बात ये रही कि उन्होंने सारे पेन अपने साथ नहीं लिए, सिर्फ 2 पेन रखे और बाकी महिला के पास ही छोड़ दिए ताकि वे उन्हें आगे भी बेच सकें। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उम्मीद है कि आप बाकी सारे पेन भी बेच लेंगी। महिला ये देखकर भावुक हो गईं और हिंदी में उन्हें दुआएं देने लगीं। सोशल मीडिया पर यह कमाल का वीडियो खूब देखा जा रहा है। यूजर्स इस शख्स के दिमाग की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में नजर आता है कि एक पर स्नैक्स और कैंडी के कई सारे पैकेट रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। अब गेम ये है कि वहां से लोगों को भागकर पैकेट्स के पास पहुंचना है और जो जितने पैकेट एक बार में ला सकते हैं उन्हें लेकर आना है। इसके लिए वो अपना तरीका अपना सकते हैं। अब कोई दोनों हाथों से पैकेट उठाता तो कोई अपने जैकेट में उठाता, लेकिन वहीं एक शख्स गजब का दिमाग अपनाता है। वो पैकेट के दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है और एक दूसरा शख्स उसे धकेलते हुए अपने एंड की तरफ लाता है। अब उस आदमी के लेटने से खूब सारे एरिया कवर हुआ, जिससे कई सारे पैकेट वो एक बार में ही लेकर इधर आ गया। सोशल मीडिया पर 2 गोरिल्लाओं के बीच रूठने मनाने का एक बेहद दिलचस्प और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों के बीच ये अनोखी और हूबहू इंसानी कपल्स जैसी नोकझोंक सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। वीडियो की शुरुआत एक रूठी हुई मादा गोरिल्ला से होती है, जो किसी बात पर बेहद खफा है और मुंह फुला कर बैठी है। वहीं उसका साथी एक अच्छे पार्टनर की तरह उसे मनाने और उसका गुस्सा शांत करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। जैसे ही नर गोरिल्ला प्यार से उसके पास जाता है और उसे मनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मादा गोरिल्ला झटके से उसका हाथ झटक देती है, मगर नर गोरिल्ला हार नहीं मानता है। वो बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे मादा गोरिल्ला की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया ही मिलती है। मादा गोरिल्ला का ये एटीट्यूड और दोनों के बीच की ये प्यारी सी तकरार हूबहू इंसानी रिश्ते की याद दिलाती है। यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। जानवरों के भीतर छिपे इन इंसानी भावों को देखना वाकई जादुई और बेहद खुशनुमा एहसास है। ये भावुक कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस वीडियो में एक छोटी सी चिड़िया अपने अंडों की बचाने के लिए जो किया उसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। वीडियो की शुरुआत एक खेत से होती है, जहां खेती का काम चल रहा होता है। खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है और चालक नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा होता है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन तभी एक ऐसा सीन सामने आता है जो पूरे माहौल को बदल देता है। खेत में मौजूद एक चिड़िया अपने घोंसले और उसमें रखे अंडों के पास मंडरा रही होती है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि ट्रैक्टर उसके अंडों के बेहद करीब पहुंचने वाला है, वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। अपने नन्हे बच्चों की सुरक्षा की चिंता में चिड़िया बिना किसी डर के ट्रैक्टर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आकार में बेहद छोटी होने के बावजूद वो बड़े साहस का परिचय देती है। वो अपने पंख पूरी तरह फैला लेती है और लगातार तेज आवाज निकालने लगती है। ऐसा लगता है मानो वो आने वाले खतरे को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। उसकी हर हरकत में अपने अंडों को बचाने की बेचैनी और ममता साफ दिखाई देती है। ये सीन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि माँ चाहे इंसान हो या पक्षी, अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बंदर अपने साथ दो आम लेकर किसी घर की छत पर पहुंच जाता है। वहां वह बड़े आराम से बैठकर आम खाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। वो पूरे सुकून के साथ आम का आनंद ले रहा होता है। उसकी ये हरकत देखकर ऐसा महसूस होता है कि मानो वो अपने पसंदीदा फल का स्वाद लेने में पूरी तरह मग्न है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर की एक महिला छत पर पहुंचती है और बंदर को आम खाते हुए देख लेती है। शायद उसे यह पसंद नहीं आता। दिलचस्प बात यह है कि बंदर महिला के इस व्यवहार से बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाई देता। आमतौर पर बंदर तेजी से भाग जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में नजर आने वाला बंदर काफी मोटा और भारी भरकम दिख रहा है। यही वजह है कि वो किसी जल्दीबाजी में नहीं दिखता। महिला के भगाने के बाद भी वह आराम से उठता है और धीरे धीरे वहां से चलता हुआ नजर आता है। उसकी ये बेफिक्र चाल लोगों को काफी मजेदार लग रही है। इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच यूके के एक जू ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जा रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाथी के बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के प्रति उसकी जिज्ञासा और मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़े वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहते हैं। कभी किसी जानवर की मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत लेती हैं, तो कभी जंगल के जीवों की ताकत और आक्रामक अंदाज से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर छा जाते हैं। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथी अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कई हाथी एक घिरे हुए प्लॉट के अंदर दिखाई देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद हाथी ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं। हाथी सामने बनी दीवार की ओर बढ़ता है और पूरी ताकत से उसे जोरदार धक्का मारता है। ये धक्का इतना जोरदार था कि मजबूत दिखाई देने वाली दीवार कुछ ही सेकंड में ढह जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दीवार गिरने के बाद हाथियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद वे आराम से उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं। हाथी की ताकत और उसके आत्मविश्वास को देखकर लोग दंग रह गए हैं। आमतौर पर ऐसी दीवारों को तोड़ने के लिए मशीनों या भारी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस हाथी ने केवल एक जोरदार धक्के से पूरी दीवार को गिरा दिया।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुडनीज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो गुडनीज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो
4: लिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालु ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में तीनों सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग। 21 जून को भव्य अंदाज में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूएस ईरान पीस डील के बाद बदला हॉर्मूज का नजारा, 3 महीने बाद जहाजों की शांतिपूर्ण आवाजाही। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की गिरावट। चीन में धूमधाम से चल रही ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी, पर्यटकों से गुलजार हुआ हावन आइस एंड स्नो वर्ल्ड। रंग बिरंगी नेचुरल बर्फ से बनाई गई भव्याकृतियां।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा के नए अध्याय की करेंगे। जल्द ही इंडियन नेवी को ताकत का डबल नहीं बल्कि ट्रिपल बूस्टर डोज मिलने जा रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत को पंख लगाने के लिए 21 जून को ऐसे 3 महाबली नेवी में शामिल किए गए हैं जो भारत की समुद्री सरहदों को मजबूत बनाएंगे। आने वाली 21 जून को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ 3 एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। इन 3 युद्धपोतों में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रे और नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक शामिल है। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों की कमिश्निंग का समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कोलकाता में होने वाला ये समारोह हाल ही के सालों में दूसरा ऐसा मौका होगा जब 3 एडवांस्ड नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया जाएगा।

0: लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपने समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा का ये कवच अब कुछ और मजबूत होने जा रहा है। इक्कीस जून 2026 ये वो तारीख है जो भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। आने वाली 21 जून को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। इन तीन युद्धपोतों में पहला है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दुनागिरी, दूसरा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और तीसरा है भारतीय नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों का कमीशनिंग समारोह होगा जिसमें PM मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कोलकाता में होने वाला ये समारोह हाल के सालों में दूसरा ऐसा मौका होगा जब तीन एडवांस नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया जाएगा। इससे पहले ऐसा आयोजन पिछले साल जनवरी में हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को कमीशन किया था। भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमता को पंख लगाने वाले ये तीन महाबली तैयार हैं। ये न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाएंगे बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने साल 2047 तक समुद्री सुरक्षा के लिए जो रोड मैप तैयार किया है ये उसी का हिस्सा है।
1: सूत्रों के मुताबिक 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये इंडक्शन हो सकता है और ये दूसरा मौका होगा जब एक ही साथ तीन अलग अलग योद्धा नेवी में कमीशन किए जाएंगे। अगर इन तीनों युद्धपोतों की बात करें तो ये सभी भारत में बनाए गए हैं और भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि 2047 तक वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी स्वदेशी युद्धपोतों के साथ लैस होगी और उसी कड़ी में ये भारतीय नौसेना का तेजी से चलता हुआ सफर है। यानी भारतीय नौसेना को अब एक बार फिर दूनागिरी जैसे युद्धपोत मिलेंगे जिनमें ब्रह्मोस के साथ साथ तमाम दूसरी मिसाइल्स की ताकत है, साथ ही अग्रय जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जाना जाएगा और संशोधक जो एक सर्वे वेसल है। भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत में ये एक ट्रिपल कमिशनिंग होगी जो वाकई में एक नई उपलब्धि की तरह देखी जा रही है।
0: तीन युद्धपोतों की एक साथ कमीशनिंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्धपोतों, मिसाइलों और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा है। चलिए अब आपको नेवी में शामिल होने वाले इन तीनों महाबलियों से मिलवा देते हैं। सबसे पहले बात INS दुनागिरी की। INS दुनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दुनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इस घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है।
2: मैं दुनागिरी की बात करूं तो मैं आपको INS दुनागिरी का एक मॉडल दिखाना चाहूंगा। ये मेरा पहला शिप था जो पुराना INS दुनागिरी जो बहुत समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद डीकमीशन हुआ और ऑपरेशन पवन श्रीलंका में इसने भूमिका निभाई, इसी का नाम नया दिया गया है। ये मेरा पहला शिप था जहां मैं पायलट के रूप में मैंने हवाई जहाज यहां से उड़ान भरी और आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर देख सकते हो। यही शिप फिर से कमीशन हुआ है गार्डन रिच के द्वारा, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अधीन बनाया हुआ 8 से ज्यादा शिप्स। इसमें नीलगिरी, हिमगिरी, दुनागिरी, उदयगिरी, विंध्यागिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, तो ये दुनागिरी ये शिप अभी कमीशन हो रहा है। ये सरफेस शिप्स के साथ साथ 3,500-4,000 टन से ज्यादा का एक बहुत ही बेहतरीन फ्रिगेट है।
0: आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS दुनागिरी कमीशन होने वाला है उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल ने साल 2009 के जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। 2013 में इसके डिजाइन तैयार कर लिए गए। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था। 17A प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हेमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं।
2: बहुत ही कैपेबल शिप, एक कैपेबल फ्रिगेट, काफी हाई स्पीड के साथ, अच्छे पावरफुल इंजन के साथ, 80% भारतीय पुर्जों के साथ और अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए इसके जो पकड़ है उसको हम इससे देख सकते हैं कि एंटी सबमरीन रॉकेट, टॉर्पीडो, डेप्थ चार्जेस, सबमरीन को खोजने के लिए टोही सोनार, रेडार इसके सरफेस के, ब्रह्मोस मिसाइल इसमें शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसमें एंटी सबमरीन बड़े हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो जैसे जो अमेरिका से खरीदे गए हैं, ये सब मिलके इसको एक बहुत ही कैपेबल फ्रिगेट बनाते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक सूट्स की और दुश्मनों को दूर से पकड़ने की और टोह करके घात लगा के बियॉन्ड द रेंज जो दूर तक रडार से सर्च करके मारना, चाहे हवाई जहाज को, चाहे तो सरफेस शिप को, चाहे सबमरीन को, तीनों कैपेबिलिटी के साथ ये शिप भारतीय नौसेना को मिलने वाली है।
0: अब बात सागर की उस योद्धा की जो याद दिलाएगा भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून का नौसेना में कमीशन होने जा रहा है INS अग्रय, एंटी सबमरीन वॉरफेयर का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी। और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। कमीशनिंग से पहले INS अग्रय के क्रेस्ट का अनावरण किया गया। INS अग्रय अर्नाला क्लास का 5वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है। इसे विशेष रूप से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। ये युद्धपोत भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती देगा।
2: अग्रय में साइड स्कैनिंग सोनार लगे हैं, शैलो वाटर में सबमरीन्स को पकड़ना, पेट्रोलिंग करना, सर्च एंड रेस्क्यू करना, और इनके पास अंडर वाटर ऑटोनोमस बोट्स हैं जो पानी के अंदर अपने आप चल के और उसमें से रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स निकल के समुद्र की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और पूरी तरह से जो हमारा रख रखाव, जो हमारे सबमरीन के लिए जो बैथी हमको चाहिए, जो प्रेशर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से जो डेप्थ में चेंजेज आती है, जो उनको सबका अध्ययन करते हुए जो हमारे सेना के लिए, सबमरीन के ऑपरेशन के लिए या मौसम विभाग के लिए, ये सब जरूरी है।
0: इक्कीस जून को कोलकाता में INS दूनागिरी और अग्रय के साथ सागर की लहरों पर उतारा जाएगा INS संशोधन। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। ये संधायक क्लास के सर्वे वेसल प्रोग्राम का चौथा और आखिरी जहाज है। INS संशोधक सागर की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने का काम करेगा।
2: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधायक क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई, वहां के जो मैपिंग है समुद्र की सतह का अनुमान और हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर की जो चेंजेज है जो सतह के नीचे के पानी के सतह में होती है उनकी भी जानकारी जरूरी, इससे सबमरीन ऑपरेशन और दूसरे काम करने में अंडरवाटर मदद मिलती है। तो इन सब को करने के लिए ये हाइड्रोग्राफी शिप्स जरूरी है जो भारतीय नौसेना में लगातार इंडक्ट किए जा रहे हैं, पहले संधायक, उसके बाद निरूपक और उसके बाद इच्छक, और अब हम संशोधक को 21 जून को भारतीय नौसेना में शामिल करने वाले हैं। ये शिप शांति के दौरान और युद्ध के दौरान दोनों में अपनी भूमिका निभा सकेगा और हॉस्पिटल शिप के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।
0: खास बात यह है कि ये तीनों युद्धपोत पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं। अब ये तीनों मिलकर भारतीय नौसेना की सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमताओं को मजबूत करेंगे। इन तीनों योद्धाओं के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब बात उस अभूतपूर्व रिकॉर्ड की जो भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में बनाकर दिखा दिया है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का परचम खूब लहरा रहा है। नया भारत आज हर पल आत्मनिर्भरता का नया कीर्तिमान रच रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का कुल रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। इतना ही नहीं बल्कि अब की बार भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को पिछले साल की तुलना में 62% तक बढ़ा दिया। लगभग 38,500 करोड़ रुपए के हथियार बनाकर हमने दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट भी किए हैं।

0: स्वदेशीकरण, सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, ये शब्द नहीं, ये मुकम्मल दास्तां है। राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की ये जय घोष है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का ये वो दौर है जब दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई देती है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार है। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। वही लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। तभी तो अब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये अभूतपूर्व है। एक समय था जब भारत हथियारों, लड़ाकू विमानों और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हिंदुस्तान लगातार ऐसे ऐसे आयाम हासिल करता जा रहा है जिसे देखकर दुनिया दंग है। बता दें कि पिछले साल भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ था, जो साल 2026 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 15.6% ही छलांग लगाई है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि साल 2020-21 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपए था। यानी साल 2020-21 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की बढ़त हासिल हुई, जबकि साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश में डिफेंस प्रोडक्शन में 125% से ज्यादा की बढ़त हासिल हुई, जबकि साल 2013-14 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 4 गुना यानी 400% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और 2025-26 में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन हुआ है। ये आंकड़ा 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% इजाफा हुआ है और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनका हिस्सा 24% का है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दर अगर पिछले कुछ सालों यानी एक दशक से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बढ़ोतरी 110% है। यानी लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस से लेकर व्हील्ड व्हीकल्स तक सब कुछ भारत बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही सैकड़ों ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब भारत आयात नहीं करता, भारत में ही बनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वृद्धि को देश के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। वास्तव में ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जिसके बूते आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में रक्षा क्षेत्र के पीएसयू के साथ साथ इस साल निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के नए आंकड़ों में DPSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs यानी दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल उत्पादन के 76% का योगदान दिया। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% रहा। इसे यूं समझिए कि 2025-26 में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 42,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। देश के डिफेंस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी सशक्त होते भारत की पहचान है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि न केवल प्रोडक्शन बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2024-25 तक ये आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए का था, यानी पिछले साल की तुलना में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहले साल की तुलना में 62.66% ज्यादा है। भारत दुनिया में पांचवा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। आज दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर न केवल अपनी सरहदों को अभेद्य बना रहा है बल्कि दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन का नया पावर सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ GNT के स्पेशल पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अच्छी खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: चलिए अब आपको बताते हैं खबर एक कमाल के कुत्ते की। कुत्तों की वफादारी की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी। आपने ये भी सुना होगा कि महाभारत में हस्तिनापुर का त्याग कर जब युधिष्ठिर उनके चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकले तो एक कुत्ता रास्ते में उनके साथ जुड़ गया। अंत तक उनके साथ रहा ये कुत्ता। इस कुत्ते के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे शांति दूत भी कहा जा रहा है।

0: बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठा ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये अलोका है, जिसे द पीस डॉग के नाम से जाना जाता है। इस कुत्ते से मिलने के लिए, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों में बड़ी उत्सुकता नजर आ रही है, क्योंकि ये डॉग ही बेहद खास है। कभी कोलकाता की गलियों में घूमने वाला ये कुत्ता अब दुनिया भर में शांति और करुणा के दूत के रूप में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के एक होटल की हैं, जहां अलोका के लिए खास तौर से भव्य मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि इसके मुरीद लोग यहां पर आकर इसका दीदार कर सकें, क्योंकि इसके पीछे वजह भी खास है।
1: अलोका के साथ एक फोटो खिंचाने के लिए 300 लोग आए। वी आर सो ग्रेटफुल कि एक इंडियन डॉग ने वर्ल्ड पीस एम्बेसडर बन गया, कि एक सड़क पर आने वाला इंडियन डॉग ने ऐसा पीस का मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचाया है। और वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, हर कुत्ता इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक स्पिरिचुअल लैंड है, हमारा भारत देश एक लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ हर जीव सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में एक मैसेज लेके जाता है।
0: अलोका नाम के इस डॉग ने कई देशों में शांति के लिए पदयात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संग रहकर शानदार शोहरत हासिल की है। सोशल मीडिया पर करीब 5 लाख लोग इसे फॉलो करते हैं। शांति और करुणा के एम्बेसडर के रूप में इसने कोलकाता से अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड सहित कई देशों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा सफर पैदल ही पूरा किया है। बौद्ध भिक्षुओं के मुताबिक अलोका इन्हें कोलकाता में एक शांति यात्रा के दौरान मिला था। इसके बाद ये इनके साथ ही रहने लगा और शांति यात्राओं का हिस्सा बनता चला गया। तब से अब तक ये इनके हर वॉक फॉर पीस अभियान में शामिल होता आ रहा है।
1: इन्होंने यूएस के अंदर 110 दिन का इनका पीस वॉक थी। अलोका के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलोका द डॉग जो आप दिख रहे हैं। और साथ में अभी इनकी थाईलैंड में भी वॉक थी, तो पीस वॉक के चलते उनका लंबा एक इनिशिएटिव चल रहा है उसको लेकर।
0: दुनिया भर में शांति का संदेश फैलाने वाले इस मशहूर भारतीय डॉग अलोका के स्वागत में इससे मिलने और इसके साथ यादगार तस्वीर खिंचवाने के लिए दिल्ली एनसीआर के कोने कोने से सैकड़ों डॉग लवर्स गुरुग्राम में हुए कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम का मकसद बेसहारा पशुओं के प्रति लोगों में दया और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है, और साथ ही ये संदेश देना भी है कि समाज में हर जीव को सम्मान देना चाहिए। नेपाल के दौरे के बाद भारत पहुंचे अलोका का अगला पड़ाव एक बार फिर अमेरिका है, जहां ये एक बार फिर से शांति के संदेश को फैलाने में इन भिक्षुओं का साथ देगा। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फीफा वर्ल्ड कप का खुमार पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में दिखाई दे रहा है। कोलकाता में एक गली तो वर्ल्ड कप के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। इस गली को लोग फीफा गली के नाम से जानते हैं, क्यों देखिए।

0: ये तस्वीरें भारत में फुटबॉल की दीवानगी बयां कर रही है। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होते ही पूरी दुनिया पर फुटबॉल का खुमार दिख रहा है। भारत में भी फुटबॉल के फैंस इस खेल की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। कोलकाता में तो फुटबॉल फैंस ने कुछ रास्तों को ही फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंग दिया है। हर गली मोहल्ले में फीफा वर्ल्ड कप का उत्साह दिख रहा है। फैंस ने अपने पसंदीदा प्लेयर्स के बड़े बड़े पोस्टर चिपका रखे हैं। कोई मेसी के लिए अपनी दीवानगी बयां कर रहा है तो किसी ने रोनाल्डो और नेमार के पोस्टर लगा रखे हैं। नॉर्थ कोलकाता में मौजूद इस गली को तो फीफा गली का नाम दे दिया गया है।
1: In the year 2022, what we did was in 2018, the whole gully was decorated with the colors of Brazil emblem. And in 2022, we decorated it with many supporters from each and every country. Maradona was being painted, then on there Ronaldinho was being painted, here Cristiano Ronaldo was being painted. And in 2022, the name came up as FIFA Valens. And today, we are almost 95% of the work is finished. Only some of the drawings are pending, which will be completed by tomorrow, and it will be open to all for everyone to come here to shoot here.
0: पूरी गली फीफा में खेलने वाली फुटबॉल टीमों के झंडों से सजी है। कहीं ब्राजील के झंडे लहरा रहे हैं, तो कहीं अर्जेंटीना को चीयर किया जा रहा है। इन रंग बिरंगे झंडों से लोगों ने पूरी सड़क को ही फुटबॉल कार्निवल में तब्दील कर दिया है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: TuneIn's got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
4: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
3: to live sports action.
5: To the near side corner, to wrap around. He scores!
3: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
2: खबरें तो आ रहा है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
8: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालु ने किए दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम,

0: तैयारी, पर्यटकों से गुलजार हुआ हावन आइस एंड स्नो वर्ल्ड, रंग बिरंगी नेचुरल बर्फ से बनाई गई भव्याकृतियां।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी
0: बात। मानसून की, देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। गुजरात में मानसून की एंट्री से पहले ही कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे कि तापमान में भारी गिरावट आई। वहीं दिल्ली NCR में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए भी गुड न्यूज है। कई दिनों तक लू जैसे हालात झेलने के बाद अब मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आज से 21 जून के बीच रुक रुक कर बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी।

0: गुजरात में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में उत्तर और मध्य गुजरात के 62 तालुकाओं में जमकर बारिश हुई। इससे न सिर्फ मौसम सुहावना हुआ बल्कि बारिश के सीजन का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। समंदर में उठती ये लहरें गुजरात के देवभूमि द्वारका की हैं। द्वारका के समंदर में 12 से 15 फीट तक ऊंची उठती ये लहरें प्री मॉनसून की है, यानी समंदर की ये लहरें मॉनसून का आह्वान कर रही हैं। और प्रशासन का भी कहना है कि मॉनसून के दौरान समुद्र का मिजाज अचानक बदल सकता है। गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मॉनसून से पहले की पहली फुहारों ने खेड़ा के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। खेड़ा जिले के कठलाल और महुदा इलाके के ग्रामीण इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने न सिर्फ मौसम को ठंडा कर दिया बल्कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटा दी। खरीफ फसलों की बुआई का इंतजार कर रहे किसान अब राहत की सांस ले रहे हैं। गुजरात के ही जामनगर में भी बारिश ने सबको भिगो कर रख दिया। तपती गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ की पहली बारिश इतनी जोरदार हुई कि गली मोहल्लों में पानी भर गया।
1: आमतौर पर गुजरात में 15 जून तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अलनीनो की असर के चलते इस बार अभी तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की शुरुआत नहीं हुई है। मौसम विभाग का माने तो अगले 5 दिन तक आधिकारिक मॉनसून के किसी प्रकार के संकेत नहीं है। हालांकि मॉनसून महाराष्ट्र तक आ पहुंचा है, लेकिन अभी भी गुजरात में आधिकारिक मॉनसून को लेकर इंतजार और भी अगले 5 दिन तक करना होगा। लेकिन इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात के अलग अलग शहरों में सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के अलग अलग हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं। लेकिन 2 दिन से अगले 5 दिनों तक की अगर बात करें तो मात्र सूरत और वापी समेत जो दक्षिण गुजरात के हिस्से हैं वहां पे सामान्य बारिश होगी। लेकिन ये जो सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर के चलते होने के संकेत हैं। यानी आधिकारिक मॉनसून के लिए गुजरात को अभी भी अगले 5 दिनों का इंतजार करना होगा। इस बीच जो गुजरात के अंदर महत्तम टेम्परेचर की भी बात कर लें तो अहमदाबाद में लगातार 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 5 दिन तक किसी भी प्रकार की गर्मी से राहत के गुजरात में संकेत भी नहीं मिल रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, दाहोद, पंचमहाल, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, मेहसाणा, भरूच समेत कुछ और जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: जो फोरकास्ट दिया गया है 18 से लेकर 24 जून तक, इसमें हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। गुजरात रीजन और सौराष्ट्र को दोनों रीजन में ही वो अगले 3 दिन तक। आज जो थंडरस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया गया है।

0: बिजली गिरने के साथ मेघ गर्जना भी रहेगा और जो स्पीड रहेगा रहेगा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होने का भी संभावना है। और कल से हल्का से मध्यम बरसात का संभावना है, कोई वार्निंग नहीं है। आज खाली थंडरस्टॉर्म वार्निंग दिया गया है येलो वार्निंग के साथ। कोस्टल क्षेत्रों में अभी जो पवन का दिशा है दोनों क्षेत्रों में, उत्तर और दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है इसमें मेनली दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति है। जो स्पीड है स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कारण 15 से 20 नॉट गस्टिंग जो स्पीड रहेगा 25 नॉट होने का संभावना है। इसमें आइसोलेटेड प्लेसेस में रेन थंडर शावर का भी संभावना है।
1: वहीं अगले कुछ दिन ऐसा ही माहौल रहने की संभावना है। दिन में बादल छाए रहेंगे और हल्की मध्यम बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट बने रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी बारिश और तूफान तो कभी आसमान में बादलों की आवाजाही से गर्मी और उमस से लोगों को थोड़ी राहत है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधि 21 जून तक जारी रहेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद के 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो 21 जून को लू चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं और उमस का सामना करना पड़ सकता है।
2: देश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं पर जो है उमस की स्थिति बनी हुई है तो कहीं पर जो है लगातार बारिश देखी जा रही है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे। आज तापमान में हालांकि कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है थोड़ी सी राहत लोगों को जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त पहाड़ी राज्यों में जो है सक्रिय है, जिसका असर जो है कहीं ना कहीं मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर के लिए दिया गया है कि जो बारिश है वो हल्की बारिश जो है वो भी देखी जा सकती है। उसके साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। लेकिन इस वक्त की मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो मौसम एकदम साफ नजर आएगा। बीच बीच में धूप जो है वो आ रही है और जा रही है। इस तरीके से जो हालात है वो इस वक्त के बने हुए हैं, लेकिन लोगों को गर्मी से अभी राहत यहां पर नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात करूं तो वहां पर लगातार जो है बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर 3 दिन तक इसी तरीके से मौसम जो है वो रहने वाला है। तो वहीं मानसून भी लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि वहां पर अच्छी खासी बारिश जो है मानसूनी बारिश जो है वो देखी जा सकती है। और उसी के लिए पूरे चाहे मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए वहां पर लगातार जो है ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसके साथ ही दक्षिण हिस्से से मानसून की जो शुरुआत हुई थी और वो अब महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, जिसका असर जो है वो भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अलग अलग मौसम अलग अलग राज्यों पर इस वक्त बना हुआ है। लेकिन बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो अभी तापमान बढ़े हुए हैं, लेकिन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद।
1: हालांकि जून के तीसरे हफ्ते में भी मॉनसून देश के बड़े हिस्सों को कवर नहीं कर पाया है। 17 जून की सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपर मॉनसूनी बादल नहीं है। मॉनसून ने लगातार तीसरे साल जून में लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि 2024 और 2025 में शुरुआती ब्रेक के बावजूद पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल 4 जून से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। मॉनसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है, लिहाजा 22 जून से पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 723 जिलों में सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है, यानी देश के 40% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया का ना बनना है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मॉनसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। पिछले एक हफ्ते से ये तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हो गई है। जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हेताली शाह, जामनगर से ब्रिजेश दोषी और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
2: आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 118वां स्थान मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मऊ में गरुड़ास्त्र का सफल टेस्ट हुआ है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी दिल्ली ने एक बार फिर भारत के सबसे अच्छे एजुकेशन और रिसर्च संस्थान के तौर पर अपनी जगह बना ली है। आज जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में संस्थान ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए विश्व स्तर पर 118वां स्थान हासिल किया। संस्थान ने 123वीं रैंक से लंबी छलांग लगाकर 118वीं ग्लोबल रैंक हासिल की। ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 118वीं रैंक के साथ आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसी भी भारतीय संस्थान के अब तक हासिल की गई सबसे ऊंची ग्लोबल रैंक की बराबरी भी कर ली है। करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके तहत पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाया जाएगा। अब तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन क्लेम डालना पड़ता था और कई बार इसमें कई दिन या हफ्तों का समय लग जाता है, लेकिन नए सिस्टम में ये प्रक्रिया लगभग तुरंत पूरी हो सकेगी। हालांकि निकासी के नियम और लिमिट मौजूदा शर्तों के अनुसार ही रहेंगे, जैसे रिटायरमेंट या बेरोजगारी पर ही पूरा पीएफ निकाला जा सकेगा। माना जा रहा है कि जून के आखिर तक पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए निकलना शुरू हो सकता है। रक्षा कंपनी नाइब लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इन्फेंट्री स्कूल महू में अपने एडवांस्ड गरुड़ास्त्र 120 mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया। ये एक वाहन पर लगाया जाने वाला 120 mm का भारी मोर्टार है, जो तेजी से आगे बढ़कर हमला करने और तुरंत दूसरी जगह पर जाने की क्षमता रखता है। पारंपरिक मोर्टार सिस्टम की तुलना में ये ज्यादा सटीक, ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित है। ये सिस्टम भारतीय सेना की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिहार के गया के पत्थरकट्टी गांव की काले पत्थर की मूर्तियों को जीआई टैग मिल गया है। गांव को मिले इस उपलब्धि से गांव के शिल्पकारों में बेहद खुशी है। पत्थरकट्टी गांव में पीढ़ियों से पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यहां के कारीगरों ने विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। अब जीआई टैग मिलने से पत्थरकट्टी की मूर्तियों की मांग देश विदेश में बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय शिल्पकारों की कला को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में आजीविका मिशन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए हीरानगर में नया सेल्स आउटलेट शुरू किया है। ये सेल्स आउटलेट उम्मीद स्कीम के तहत शुरू हुआ है। कश्मीर में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाओं, मिशन और अभियानों में ये सेल्स आउटलेट एक ऐसी पहल है जो हीरानगर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने में कारगर साबित होगी।
2: न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
1: कच्चे तेल की कीमतें कम होने और वेस्ट एशिया में तनाव घटने से कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 254 अंकों की बढ़त के साथ 77,409 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 82 अंकों की बढ़त के साथ 24,168 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी के बीच आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 907 रुपए गिरकर 153,440 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 6,607 रुपए से गिरकर 248,740 रुपए पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनने के कारण 18 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 94.36 के स्तर पर बंद हुआ।
3: चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: कुछ लोग जिस काम को रोजगार समझते हैं उसे कुछ लोग कला बना देते हैं। अपने काम में कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों की मिसाल है ये वायरल तस्वीरें। ये शेफ सिर्फ पिज्जा नहीं बना रहा बल्कि अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहा है। अपने काम को वो इस तरह मजा लेकर कर रहा है कि उसका कंट्रोल और स्पीड दोनों एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं। हवा में परफेक्ट स्पिन के साथ चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जो ये तस्वीरें देख रहा है इस हुनरबाज को सलाम किए बिना नहीं रह रहा। तपती गर्मी में कम ही लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो इंसान की ही प्यास बुझा दे, लेकिन इस बच्ची को देखिए, गाय को इस चुभती गर्मी में हैंडपंप से पानी पिलाती इस बच्ची को देखिए, जिसने गाय माता की प्यास को महसूस किया। अब ये तस्वीरें वायरल हैं और यूजर्स बच्चे के संस्कार पर फिदा हो गए हैं। करुणा, दया और संवेदनशीलता की एक और तस्वीर लोगों का दिल जीत रही है, जहां एक स्ट्रीट वेंडर एक भूखी प्रेग्नेंट डॉगी की भूख को महसूस करता है। ये डॉगी उसकी दुकान पर बनते भोजन को टुकुर टुकुर देख रही थी। वेंडर को समझ आ जाता है कि ये भूखी भी है और गर्भवती भी। तब वो उसे अपने ठेले से गर्मा गर्म खाना पेट भर खिलाता है। लोग वीडियो देखकर स्ट्रीट वेंडर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको अपने आसपास के लोगों और पशुओं के प्रति ऐसे ही करुणामयी होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस डिसेबल्ड डॉगी का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। ये डॉगी चलती सड़क पर वाहनों की आवाजाही के बीच फंस जाता है, तब स्कूटी पर बैठा ये लड़का उसे सड़क के पार जाने में मदद करता है। डॉगी पहले तो मदद का एक कदम समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही समझता है लड़के के साथ सड़क पार करने लगता है। यूजर्स अब लड़के की सूझबूझ को सराहा रहे हैं। गर्मी में जानवरों हो या इंसान, सबको पानी चाहिए, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी। गर्मी के मौसम में पानी की बौछारों के बीच इस डॉगी की तस्वीर वायरल है, जो गर्मी के बीच घर के दरवाजे से निकलते ही जमकर पानी की फुहारों का आनंद उठा रहा है। ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं कि इसे कहते हैं विशुद्ध आनंद।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
5: Hop on board and settle in for an easy going cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
3: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की सड़क किनारे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। जब उसके इस नेक काम पर एक बुजुर्ग की नजर पड़ी तो वह उसके पास आकर उसके इस काम के लिए एक छोटा सा इनाम देता है। ये वीडियो दिल्ली के शेख सराय इलाके का बताया जा रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
7: This lady's over here.
6: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली के व्यस्त कनॉट प्लेस में रोज की तरह भीड़ थी। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। इस भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला हाथ में पेन लेकर उन्हें बेचने की कोशिश कर रही थी। गर्मी थी, थकान थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बरकरार थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टीव बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं और उनकी मुस्कुराहट की तारीफ करते हुए पेन खरीदने की बात कहते हैं। महिला बताती है कि एक पेन की कीमत 50 रुपए है। स्टीव पहले 100 रुपए देकर 2 पेन खरीद लेते हैं, लेकिन जब उन्हें महिला की सादगी और मुस्कान पसंद आती है तो वे 2 और पेन खरीदने के लिए 100 रुपए और दे देते हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा कि उनके पास कुल कितने पेन बचे हैं। महिला ने बताया कि पूरे स्टॉक की कीमत करीब 900 रुपए है। स्टीव के पास उस समय केवल 550 रुपए बचे थे। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी जेब में रखे सभी पैसे बुजुर्ग महिला को दे दिए। खास बात ये रही कि उन्होंने सारे पेन अपने साथ नहीं लिए, सिर्फ 2 पेन रखे और बाकी महिला के पास ही छोड़ दिए ताकि वे उन्हें आगे भी बेच सकें। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उम्मीद है कि आप बाकी सारे पेन भी बेच लेंगी। महिला ये देखकर भावुक हो गईं और हिंदी में उन्हें दुआएं देने
7: लगीं।
6: सोशल मीडिया पर यह कमाल का वीडियो खूब देखा जा रहा है। यूजर्स इस शख्स के दिमाग की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में नजर आता है कि एक पर स्नैक्स और कैंडी के कई सारे पैकेट रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। अब गेम यह है कि वहां से लोगों को भागकर पैकेट्स के पास पहुंचना है और जो जितने पैकेट एक बार में ला सकते हैं उन्हें लेकर आना है। इसके लिए वो अपना तरीका अपना सकते हैं। अब कोई दोनों हाथों से पैकेट उठाता तो कोई अपने जैकेट में उठाता, लेकिन वहीं एक शख्स गजब का दिमाग अपनाता है। वो पैकेट के दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है और एक दूसरा शख्स उसे धकेलते हुए अपने एंड की तरफ लाता है। अब उस आदमी के लेटने से खूब सारे एरिया कवर हुआ, जिससे कई सारे पैकेट वो एक बार में ही लेकर इधर आ गया। सोशल मीडिया पर 2 गोरिल्लाओं के बीच रूठने मनाने का एक बेहद दिलचस्प और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों के बीच ये अनोखी और हूबहू इंसानी कपल्स जैसी नोकझोंक सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। वीडियो की शुरुआत एक रूठी हुई मादा गोरिल्ला से होती है, जो किसी बात पर बेहद खफा है और मुंह फुलाकर बैठी है। वहीं उसका साथी एक अच्छे पार्टनर की तरह उसे मनाने और उसका गुस्सा शांत करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। जैसे ही नर गोरिल्ला प्यार से उसके पास जाता है और उसे मनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मादा गोरिल्ला झटके से उसका हाथ झटक देती है, मगर नर गोरिल्ला हार नहीं मानता है। वो बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे मादा गोरिल्ला की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया ही मिलती है। मादा गोरिल्ला का ये एटीट्यूड और दोनों के बीच की ये प्यारी सी तकरार हूबहू इंसानी रिश्ते की याद दिलाती है। यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। जानवरों के भीतर छिपे इन इंसानी भावों को देखना वाकई जादुई और बेहद खुशनुमा एहसास है। ये भावुक कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस वीडियो में एक छोटी सी चिड़िया अपने अंडों की बचाने के लिए जो किया उसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। वीडियो की शुरुआत एक खेत से होती है, जहां खेती का काम चल रहा होता है। खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है और चालक नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा होता है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन तभी एक ऐसा सीन सामने आता है जो पूरे माहौल को बदल देता है। खेत में मौजूद एक चिड़िया अपने घोंसले और उसमें रखे अंडों के पास मंडरा रही होती है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि ट्रैक्टर उसके अंडों के बेहद करीब पहुंचने वाला है, वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। अपने नन्हे बच्चों की सुरक्षा की चिंता में चिड़िया बिना किसी डर के ट्रैक्टर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आकार में बेहद छोटी होने के बावजूद वो बड़े साहस का परिचय देती है। वो अपने पंख पूरी तरह फैला लेती है और लगातार तेज आवाज निकालने लगती है। ऐसा लगता है मानो वो आने वाले खतरे को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। उसकी हर हरकत में अपने अंडों को बचाने की बेचैनी और ममता साफ दिखाई देती है। ये सीन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि माँ चाहे इंसान हो या पक्षी, अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बंदर अपने साथ दो आम लेकर किसी घर की छत पर पहुंच जाता है। वहां वह बड़े आराम से बैठकर आम खाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। वो पूरे सुकून के साथ आम का आनंद ले रहा होता है। उसकी ये हरकत देखकर ऐसा महसूस होता है कि मानो वो अपने पसंदीदा फल का स्वाद लेने में पूरी तरह मग्न है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर की एक महिला छत पर पहुंचती है और बंदर को आम खाते हुए देख लेती है। शायद उसे यह पसंद नहीं आता। दिलचस्प बात यह है कि बंदर महिला के इस व्यवहार से बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाई देता। आमतौर पर बंदर तेजी से भाग जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में नजर आने वाला बंदर काफी मोटा और भारी भरकम दिख रहा है। यही वजह है कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं दिखता। महिला के भगाने के बाद भी वह आराम से उठता है और धीरे धीरे वहाँ से चलता हुआ नजर आता है। उसकी ये बेफिक्र चाल लोगों को काफी मजेदार लग रही है। इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच यूके के एक जू ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जा रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाथी के बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के प्रति उसकी जिज्ञासा और मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़े वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहते हैं। कभी किसी जानवर की मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत लेती हैं, तो कभी जंगल के जीवों की ताकत और आक्रामक अंदाज से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर छा जाते हैं। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथी अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कई हाथी एक घिरे हुए प्लॉट के अंदर दिखाई देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद हाथी ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं। हाथी सामने बनी दीवार की ओर बढ़ता है और पूरी ताकत से उसे जोरदार धक्का मारता है। ये धक्का इतना जोरदार था कि मजबूत दिखाई देने वाली दीवार कुछ ही सेकंड में ढह जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दीवार गिरने के बाद हाथियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद वे आराम से उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं। हाथी की ताकत और उसके आत्मविश्वास को देखकर लोग दंग रह गए हैं। आमतौर पर ऐसी दीवारों को तोड़ने के लिए मशीनों या भारी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस हाथी ने केवल एक जोरदार धक्के से पूरी दीवार को गिरा दिया।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
7: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV, with TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में तीनों सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग, 21 जून को भव्य अंदाज में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूएस ईरान पीस डील के बाद बदला हॉर्मूज का नजारा, 3 महीने बाद जहाजों की शांतिपूर्ण आवाजाही, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की गिरावट। चीन में धूमधाम से चल रही ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी, पर्यटकों से गुजार हुआ हावन आइस एंड स्नो वर्ल्ड, रंग बिरंगी नेचुरल बर्फ से बनाई गई भव्याकृतियां।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा के नए अध्याय की करेंगे। जल्द ही इंडियन नेवी को ताकत का डबल नहीं बल्कि ट्रिपल बूस्टर डोज मिलने जा रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत को पंख लगाने के लिए 21 जून को ऐसे 3 महाबली नेवी में शामिल किए गए हैं जो भारत की समुद्री सरहदों को मजबूत बनाएंगे। आने वाली 21 जून को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ 3 एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। इन 3 युद्धपोतों में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रे और नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक शामिल है। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों की कमिश्निंग का समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कोलकाता में होने वाला ये समारोह हाल ही के सालों में दूसरा ऐसा मौका होगा जब 3 एडवांस्ड नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया जाएगा।

0: लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपने समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा का ये कवच अब कुछ और मजबूत होने जा रहा है। इक्कीस जून 2026 ये वो तारीख है जो भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। आने वाली 21 जून को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। इन तीन युद्धपोतों में पहला है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, दूसरा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और तीसरा है भारतीय नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों का कमीशनिंग समारोह होगा जिसमें PM मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कोलकाता में होने वाला ये समारोह हाल के सालों में दूसरा ऐसा मौका होगा जब तीन एडवांस नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया जाएगा। इससे पहले ऐसा आयोजन पिछले साल जनवरी में हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को कमीशन किया था। भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमता को पंख लगाने वाले ये तीन महाबली तैयार हैं। ये न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाएंगे बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने साल 2047 तक समुद्री सुरक्षा के लिए जो रोड मैप तैयार किया है ये उसी का हिस्सा है।
1: सूत्रों के मुताबिक 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये इंडक्शन हो सकता है और ये दूसरा मौका होगा जब एक ही साथ तीन अलग अलग योद्धा नेवी में कमीशन किए जाएंगे। अगर इन तीनों युद्धपोतों की बात करें तो ये सभी भारत में बनाए गए हैं और भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि 2047 तक वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी स्वदेशी युद्धपोतों के साथ लैस होगी और उसी कड़ी में ये भारतीय नौसेना का तेजी से चलता हुआ सफर है। यानी भारतीय नौसेना को अब एक बार फिर दूनागिरी जैसे युद्धपोत मिलेंगे जिनमें ब्रह्मोस के साथ साथ तमाम दूसरी मिसाइल्स की ताकत है, साथ ही अग्रय जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जाना जाएगा और संशोधक जो एक सर्वे वेसल है। भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत में ये एक ट्रिपल कमिशनिंग होगी जो वाकई में एक नई उपलब्धि की तरह देखी जा रही है।
0: तीन युद्धपोतों की एक साथ कमीशनिंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्धपोतों, मिसाइलों और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा है। चलिए अब आपको नेवी में शामिल होने वाले इन तीनों महाबलियों से मिलवा देते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दूनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इस घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है।
2: मैं दूनागिरी की बात करूं तो मैं आपको INS दूनागिरी का एक मॉडल दिखाना चाहूंगा। ये मेरा पहला शिप था जो पुराना INS दूनागिरी जो बहुत समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद डीकमीशन हुआ और ऑपरेशन पवन श्रीलंका में इसने भूमिका निभाई, इसी का नाम नया दिया गया है। ये मेरा पहला शिप था जहां मैं पायलट के रूप में मैंने हवाई जहाज यहां से उड़ान भरी और आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर देख सकते हो। यही शिप फिर से कमीशन हुआ है गार्डन रिच के द्वारा, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अधीन बनाया हुआ 8 से ज्यादा शिप्स। इसमें नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, विंध्यागिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, तो ये दूनागिरी ये शिप अभी कमीशन हो रहा है। ये सरफेस शिप्स के साथ साथ 3,500-4,000 टन से ज्यादा का एक बहुत ही बेहतरीन फ्रिगेट है।
0: आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS दूनागिरी कमीशन होने वाला है उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल ने साल 2009 के जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। 2013 में इसके डिजाइन तैयार कर लिए गए। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था। 17A प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हेमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं।
2: बहुत ही कैपेबल शिप, एक कैपेबल फ्रिगेट, काफी हाई स्पीड के साथ, अच्छे पावरफुल इंजन के साथ, 80% भारतीय पुर्जों के साथ और अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए इसके जो पकड़ है उसको हम इससे देख सकते हैं कि एंटी सबमरीन रॉकेट, टॉर्पीडो, डेप्थ चार्जेस, सबमरीन को खोजने के लिए टोई, सोनार, रेडार, इसके सरफेस के ब्रह्मोस मिसाइल, इसमें शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसमें एंटी सबमरीन बड़े हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो जैसे जो अमेरिका से खरीदे गए हैं, ये सब मिलके इसको एक बहुत ही कैपेबल फ्रिगेट बनाते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक सूट्स की और दुश्मनों को दूर से पकड़ने की और टोह करके घात लगा के बियॉन्ड द रेंज जो दूर तक रडार से सर्च करके मारना, चाहे हवाई जहाज को, चाहे तो सरफेस शिप को, चाहे समर, इनको तीनों कैपेबिलिटी के साथ ये शिप भारतीय नौसेना को मिलने वाली है।
0: अब बात सागर की उस योद्धा की जो याद दिलाएगा भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून का नौसेना में कमीशन होने जा रहा है INS अग्रय, एंटी सबमरीन वॉरफेयर का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी, और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। कमीशनिंग से पहले INS अग्रय के क्रेस्ट का अनावरण किया गया। INS अग्रय अर्नाला क्लास का 5वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है। इसे विशेष रूप से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। ये युद्धपोत भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती देगा।
2: अग्रय में साइड स्कैनिंग सोनार लगे हैं, शैलो वाटर में सबमरीन्स को पकड़ना, पेट्रोलिंग करना, सर्च एंड रेस्क्यू करना, और इनके पास अंडर वाटर ऑटोनोमस बोट्स हैं जो पानी के अंदर अपने आप चल के और उसमें से रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स निकल के समुद्र की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और पूरी तरह से जो हमारा रख रखाव, जो हमारे सबमरीन के लिए जो बैथी हमको चाहिए, जो प्रेशर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से जो डेप्थ में चेंजेज आती है, जो उनको सबका अध्ययन करते हुए जो हमारे सेना के लिए, सबमरीन के ऑपरेशंस के लिए या मौसम विभाग के लिए, ये सब जरूरी है।
0: इक्कीस जून को कोलकाता में INS दूनागिरी और अग्रय के साथ सागर की लहरों पर उतारा जाएगा INS संशोधन। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। ये संधायक क्लास के सर्वे वेसल प्रोग्राम का चौथा और आखिरी जहाज है। INS संशोधक सागर की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने का काम करेगा।
2: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधायक क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई, वहां के जो मैपिंग है समुद्र की सतह का अनुमान और हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर की जो चेंजेज है जो सतह के नीचे के पानी के सतह में होती है उनकी भी जानकारी जरूरी, इससे सबमरीन ऑपरेशन और दूसरे काम करने में अंडरवाटर मदद मिलती है। तो इन सब को करने के लिए ये हाइड्रोग्राफी शिप्स जरूरी है जो भारतीय नौसेना में लगातार इंडक्ट किए जा रहे हैं, पहले संधायक, उसके बाद निरूपक और उसके बाद इच्छक, और अब हम संशोधक को 21 जून को भारतीय नौसेना में शामिल करने वाले हैं। ये शिप शांति के दौरान और युद्ध के दौरान दोनों में अपनी भूमिका निभा सकेगा और हॉस्पिटल शिप के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।
0: खास बात यह है कि ये तीनों युद्धपोत पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं। अब ये तीनों मिलकर भारतीय नौसेना की सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमताओं को मजबूत करेंगे। इन तीनों योद्धाओं के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब बात उस अभूतपूर्व रिकॉर्ड की जो भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में बनाकर दिखा दिया है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का परचम खूब लहरा रहा है। नया भारत आज हर पल आत्मनिर्भरता का नया कीर्तिमान रच रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का कुल रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। इतना ही नहीं बल्कि अब की बार भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को पिछले साल की तुलना में 62% तक बढ़ा दिया। लगभग 38,500 करोड़ रुपए के हथियार बनाकर हमने दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट भी किए हैं।

0: स्वदेशीकरण। सशक्तिकरण। आत्मनिर्भरता। आत्मविश्वास। आत्मगौरव। ये शब्द नहीं, ये मुकम्मल दास्तां है राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की। ये जय घोष है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का। ये वो दौर है जब दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई देती है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार है। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। वही लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। तभी तो अब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये अभूतपूर्व है। एक समय था जब भारत हथियारों, लड़ाकू विमानों और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हिंदुस्तान लगातार ऐसे ऐसे आयाम हासिल करता जा रहा है जिसे देखकर दुनिया दंग है। बता दें कि पिछले साल भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ था, जो साल 2026 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 15.6% ही छलांग लगाई है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि साल 2020-21 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपए था। यानी साल 2020-21 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश में डिफेंस प्रोडक्शन में 125% से ज्यादा की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2013-14 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 4 गुना यानी 400% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और 2025-26 में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन हुआ है। ये आंकड़ा 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% इजाफा हुआ है और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनका हिस्सा 24% का है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दर अगर पिछले कुछ सालों यानी एक दशक से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बढ़ोतरी 110% है। यानी लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस से लेकर व्हील्ड व्हीकल्स तक सब कुछ भारत बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही सैकड़ों ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब भारत आयात नहीं करता, भारत में ही बनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वृद्धि को देश के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। वास्तव में ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जिसके बूते आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में रक्षा क्षेत्र के पीएसयू के साथ साथ इस साल निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के नए आंकड़ों में DPSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs यानी दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल उत्पादन के 76% का योगदान दिया। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% रहा। इसे यूं समझिए कि 2025-26 में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 42,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। देश के डिफेंस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी सशक्त होते भारत की पहचान है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि न केवल प्रोडक्शन बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2024-25 तक ये आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए का था, यानी पिछले साल की तुलना में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहले साल की तुलना में 62.66% ज्यादा है। भारत दुनिया में पांचवा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। आज दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर न केवल अपनी सरहदों को अभेद्य बना रहा है बल्कि दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन का नया पावर सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ GNT के स्पेशल पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अच्छी खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: चलिए अब आपको बताते हैं खबर एक कमाल के कुत्ते की। कुत्तों की वफादारी की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी। आपने ये भी सुना होगा कि महाभारत में हस्तिनापुर का त्याग कर जब युधिष्ठिर उनके चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकले तो एक कुत्ता रास्ते में उनके साथ जुड़ गया। अंत तक उनके साथ रहा ये कुत्ता। इस कुत्ते के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे शांति दूत भी कहा जा रहा है।

0: बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठा ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये अलोका है, जिसे द पीस्ट डॉग के नाम से जाना जाता है। इस कुत्ते से मिलने के लिए, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों में बड़ी उत्सुकता नजर आ रही है, क्योंकि ये डॉग ही बेहद खास है। कभी कोलकाता की गलियों में घूमने वाला ये कुत्ता अब दुनिया भर में शांति और करुणा के दूत के रूप में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के एक होटल की हैं, जहां अलोका के लिए खास तौर से भव्य मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि इसके मुरीद लोग यहां पर आकर इसका दीदार कर सकें, क्योंकि इसके पीछे वजह भी खास है।
1: अलोका के साथ एक फोटो खिंचाने के लिए 300 लोग आए। वी आर सो ग्रेटफुल कि एक इंडियन डॉग ने वर्ल्ड पीस एम्बेसडर बन गया, कि एक सड़क पर आने वाला इंडियन डॉग ने ऐसा पीस का मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचाया है। और वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, हर कुत्ता इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक स्पिरिचुअल लैंड है, हमारा भारत देश एक लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ हर जीव सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में एक मैसेज लेके जाता है।
0: अलोका नाम के इस डॉग ने कई देशों में शांति के लिए पदयात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संग रहकर शानदार शोहरत हासिल की है। सोशल मीडिया पर करीब 5 लाख लोग इसे फॉलो करते हैं। शांति और करुणा के एम्बेसडर के रूप में इसने कोलकाता से अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड सहित कई देशों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा सफर पैदल ही पूरा किया है। बौद्ध भिक्षुओं के मुताबिक अलोका इन्हें कोलकाता में एक शांति यात्रा के दौरान मिला था। इसके बाद ये इनके साथ ही रहने लगा और शांति यात्राओं का हिस्सा बनता चला गया। तब से अब तक ये इनके हर वॉक फॉर पीस अभियान में शामिल होता आ रहा है।
1: इन्होंने यूएस के अंदर 110 दिन का इनका पीस वॉक थी। अलोका के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलोका द डॉग जो आप देख रहे हैं। और साथ में अभी इनकी थाईलैंड में भी वॉक थी, तो पीस वॉक के चलते उनका लंबा एक इनिशिएटिव चल रहा है उसको लेकर।
0: दुनिया भर में शांति का संदेश फैलाने वाले इस मशहूर भारतीय डॉग अलोका के स्वागत में इससे मिलने और इसके साथ यादगार तस्वीर खिंचवाने के लिए दिल्ली एनसीआर के कोने कोने से सैकड़ों डॉग लवर्स गुरुग्राम में हुए कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम का मकसद बेसहारा पशुओं के प्रति लोगों में दया और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है, और साथ ही ये संदेश देना भी है कि समाज में हर जीव को सम्मान देना चाहिए। नेपाल के दौरे के बाद भारत पहुंचे अलोका का अगला पड़ाव एक बार फिर अमेरिका है, जहां ये एक बार फिर से शांति के संदेश को फैलाने में इन भिक्षुओं का साथ देगा। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फीफा वर्ल्ड कप का खुमार पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में दिखाई दे रहा है। कोलकाता में एक गली तो वर्ल्ड कप के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। इस गली को लोग फीफा गली के नाम से जानते हैं, क्यों देखिए।

0: ये तस्वीरें भारत में फुटबॉल की दीवानगी बयां कर रही है। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होते ही पूरी दुनिया पर फुटबॉल का खुमार दिख रहा है। भारत में भी फुटबॉल के फैंस इस खेल की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। कोलकाता में तो फुटबॉल फैंस ने कुछ रास्तों को ही फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंग दिया है। हर गली मोहल्ले में फीफा वर्ल्ड कप का उत्साह दिख रहा है। फैंस ने अपने पसंदीदा प्लेयर्स के बड़े बड़े पोस्टर चिपका रखे हैं। कोई मेसी के लिए अपनी दीवानगी बयां कर रहा है तो किसी ने रोनाल्डो और नेमार के पोस्टर लगा रखे हैं। नॉर्थ कोलकाता में मौजूद इस गली को तो फीफा गली का नाम दे दिया गया है।
1: In the year 2022, what we did was in 2018, the whole gully was decorated with the colors of Brazil, and in 2022, we decorated it with many supporters from each and every country. Maradona was being painted, then on there Ronaldinho was being painted, here Cristiano Ronaldo was being painted, and in 2022, the name came up as FIFA Venice. And today, we are almost 95% of the work is finished. Only some of the drawings are pending, which will be completed by tomorrow, and it will be open to all for everyone to come here to shoot here.
0: पूरी गली फीफा में खेलने वाली फुटबॉल टीमों के झंडों से सजी है। कहीं ब्राजील के झंडे लहरा रहे हैं, तो कहीं अर्जेंटीना को चीयर किया जा रहा है। इन रंग बिरंगे झंडों से लोगों ने पूरी सड़क को ही फुटबॉल कार्निवल में तब्दील कर दिया है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: No.
4: Oh no.
5: Welcome to Get Real.
4: I got something to say.
5: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
4: Oh my God.
6: It's got to be deliciously desperate.
7: Why do these girls forgive him?
8: She has a soft spot for troubled men.
6: Boo bloody who?
5: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
7: Love runs deeper than we know.
5: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
9: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालु ने किए दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में तीनों सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग, 21 जून को भव्य अंदाज में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूएस ईरान पीस डील के बाद बदला हॉर्मूज का नजारा, 3 महीने बाद जहाजों की शांतिपूर्ण आवाजाही, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की गिरावट। चीन में धूमधाम से चल रही ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी, पर्यटकों से गुलजार हुआ हावन आइस एंड स्नो वर्ल्ड, रंग बिरंगी नेचुरल बर्फ से बनाई गई भव्य आकृतियां।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
9: बात मानसून की, देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। गुजरात में मानसून की एंट्री से पहले ही कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे कि तापमान में भारी गिरावट आई। वहीं दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, कई दिनों तक लू जैसे हालात झेलने के बाद अब मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आज से 21 जून के बीच रुक रुक कर बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत।

0: तालुकाओं में जमकर बारिश हुई। इससे न सिर्फ मौसम सुहावना हुआ बल्कि बारिश के सीजन का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। समंदर में उठती ये लहरें गुजरात के देवभूमि द्वारका की हैं। द्वारका के समंदर में 12 से 15 फीट तक ऊंची उठती ये लहरें प्री मॉनसून की है, यानी समंदर की ये लहरें मॉनसून का आह्वान कर रही हैं। और प्रशासन का भी कहना है कि मॉनसून के दौरान समुद्र का मिजाज अचानक बदल सकता है। गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मॉनसून से पहले की पहली फुहारों ने खेड़ा के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। खेड़ा जिले के कठलाल और महुदा इलाके के ग्रामीण इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने न सिर्फ मौसम को ठंडा कर दिया बल्कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटा दी। खरीफ फसलों की बुआई का इंतजार कर रहे किसान अब राहत की सांस ले रहे हैं। गुजरात के ही जामनगर में भी बारिश ने सबको भिगो कर रख दिया। तपती गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ की पहली बारिश इतनी जोरदार हुई कि गली मोहल्लों में पानी भर गया।
1: आमतौर पर गुजरात में 15 जून तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अलनीनो की असर के चलते इस बार अभी तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की शुरुआत नहीं हुई है। मौसम विभाग का माने तो अगले 5 दिन तक आधिकारिक मॉनसून के किसी प्रकार के संकेत नहीं है। हालांकि मॉनसून महाराष्ट्र तक आ पहुंचा है, लेकिन अभी भी गुजरात में आधिकारिक मॉनसून को लेकर इंतजार और भी अगले 5 दिन तक करना होगा। लेकिन इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात के अलग अलग शहरों में सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के अलग अलग हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं। लेकिन 2 दिन से अगले 5 दिनों तक की अगर बात करें तो मात्र सूरत और वापी समेत जो दक्षिण गुजरात के हिस्से हैं वहां पे सामान्य बारिश होगी। लेकिन ये जो सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर के चलते होने के संकेत हैं। यानी आधिकारिक मॉनसून के लिए गुजरात को अभी भी अगले 5 दिनों का इंतजार करना होगा। इस बीच जो गुजरात के अंदर महत्तम टेम्परेचर की भी बात कर लें तो अहमदाबाद में लगातार 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 5 दिन तक किसी भी प्रकार की गर्मी से राहत के गुजरात में संकेत भी नहीं मिल रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, दाहोद, पंचमहाल, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, मेहसाणा, भरूच समेत कुछ और जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: जो फोरकास्ट दिया गया है 18 से लेकर 24 जून तक, इसमें हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। गुजरात रीजन और सौराष्ट्र को दोनों रीजन में ही वो अगले 3 दिन तक। आज जो थंडरस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया गया है, बिजली गिरने के साथ मेघ गर्जना भी रहेगा और जो स्पीड रहेगा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होने का भी संभावना है। और कल से हल्का से मध्यम बरसात का संभावना है, कोई वार्निंग नहीं है। आज खाली थंडरस्टॉर्म वार्निंग दिया गया है येलो वार्निंग के साथ। कोस्टल क्षेत्र में अभी जो पवन का दिशा है दोनों क्षेत्र में, उत्तर और दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है इसमें मेनली दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति है। जो स्पीड है स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कारण 15 से 20 नॉट गस्टिंग जो स्पीड रहेगा 25 नॉट होने का संभावना है। इसमें आइसोलेटेड प्लेसेस में रेन थंडर शावर का भी संभावना है।
0: वहीं अगले कुछ दिन ऐसा ही माहौल रहने की संभावना है। दिन में बादल छाए रहेंगे और हल्की मध्यम बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट बने रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी बारिश और तूफान तो कभी आसमान में बादलों की आवाजाही से गर्मी और उमस से लोगों को थोड़ी राहत है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधि 21 जून तक जारी रहेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी।

0: मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद के 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो 21 जून को लू चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं और उमस का सामना करना पड़ सकता है।
1: देश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं पर जो है उमस की स्थिति बनी हुई है तो कहीं पर जो है लगातार बारिश देखी जा रही है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे। आज तापमान में हालांकि कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है थोड़ी सी राहत लोगों को जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त पहाड़ी राज्यों में जो है सक्रिय है, जिसका असर जो है कहीं ना कहीं मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर के लिए दिया गया है कि जो बारिश है वो हल्की बारिश जो है वो भी देखी जा सकती है। उसके साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। लेकिन इस वक्त की मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो मौसम एकदम साफ नजर आएगा। बीच बीच में धूप जो है वो आ रही है और जा रही है। इस तरीके से जो हालात है वो इस वक्त के बने हुए हैं, लेकिन लोगों को गर्मी से अभी राहत यहां पर नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात करूं तो वहां पर लगातार जो है बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर 3 दिन तक कुछ इसी तरीके से मौसम जो है वो रहने वाला है। तो वहीं मॉनसून भी लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि वहां पर अच्छी खासी बारिश जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जा सकती है। और उसी के लिए पूरे चाहे मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए वहां पर लगातार जो है ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसके साथ ही दक्षिण हिस्से से मॉनसून की जो शुरुआत हुई थी और वो अब महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, जिसका असर जो है वो भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अलग अलग मौसम अलग अलग राज्यों पर इस वक्त बना हुआ है। लेकिन बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो अभी तापमान बढ़े हुए हैं, लेकिन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद।
0: हालांकि जून के तीसरे हफ्ते में भी मॉनसून देश के बड़े हिस्सों को कवर नहीं कर पाया है। 17 जून की सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपर मॉनसूनी बादल नहीं है। मॉनसून ने लगातार तीसरे साल जून में लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि 2024 और 2025 में शुरुआती ब्रेक के बावजूद पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल 4 जून से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। मॉनसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है, लिहाजा 22 जून से पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 723 जिलों में सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है, यानी देश के 40% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया का न बनना है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मॉनसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। पिछले एक हफ्ते से ये तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हो गई है। जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हेताली शाह, जामनगर से ब्रिजेश दोषी और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
2: आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 118वां स्थान मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मऊ में गरुड़ास्त्र का सफल टेस्ट हुआ है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी दिल्ली ने एक बार फिर भारत के सबसे अच्छे एजुकेशन और रिसर्च संस्थान के तौर पर अपनी जगह बना ली है। आज जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में संस्थान ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए विश्व स्तर पर 118वां स्थान हासिल किया। संस्थान ने 123वीं रैंक से लंबी छलांग लगाकर 118वीं ग्लोबल रैंक हासिल की। ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 118वीं रैंक के साथ आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसी भी भारतीय संस्थान के अब तक हासिल की गई सबसे ऊंची ग्लोबल रैंक की बराबरी भी कर ली है। करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके तहत पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाया जाएगा। अब तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन क्लेम डालना पड़ता था और कई बार इसमें कई दिन या हफ्तों का समय लग जाता है, लेकिन नए सिस्टम में ये प्रक्रिया लगभग तुरंत पूरी हो सकेगी। हालांकि निकासी के नियम और लिमिट मौजूदा शर्तों के अनुसार ही रहेंगे, जैसे रिटायरमेंट या बेरोजगारी पर ही पूरा पीएफ निकाला जा सकेगा। माना जा रहा है कि जून के आखिर तक पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए निकलना शुरू हो सकता है। रक्षा कंपनी नाइब लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इन्फेंट्री स्कूल महू में अपने एडवांस्ड गरुड़ास्त्र 120 mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया। ये एक वाहन पर लगाया जाने वाला 120 mm का भारी मोर्टार है, जो तेजी से आगे बढ़कर हमला करने और तुरंत दूसरी जगह पर जाने की क्षमता रखता है। पारंपरिक मोर्टार सिस्टम की तुलना में ये ज्यादा सटीक, ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित है। ये सिस्टम भारतीय सेना की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिहार के गया के पत्थरकट्टी गांव की काले पत्थर की मूर्तियों को जीआई टैग मिल गया है। गांव को मिले इस उपलब्धि से गांव के शिल्पकारों में बेहद खुशी है। पत्थरकट्टी गांव में पीढ़ियों से पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यहां के कारीगरों ने विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। अब जीआई टैग मिलने से पत्थरकट्टी की मूर्तियों की मांग देश विदेश में बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय शिल्पकारों की कला को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में आजीविका मिशन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए हीरानगर में नया सेल्स आउटलेट शुरू किया है। ये सेल्स आउटलेट उम्मीद स्कीम के तहत शुरू हुआ है। कश्मीर में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाओं, मिशन और अभियानों में ये सेल्स आउटलेट एक ऐसी पहल है जो हीरानगर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने में कारगर साबित होगी। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कच्चे तेल की कीमतें कम होने और वेस्ट एशिया में तनाव घटने से कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 254 अंकों की बढ़त के साथ 77,409 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 82 अंकों की बढ़त के साथ 24,168 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी के बीच आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 907 रुपए गिरकर 1,53,440 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 6,607 रुपए से गिरकर 2,48,740 रुपए पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनने के कारण 18 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 94.36 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
3: कुछ लोग जिस काम को रोजगार समझते हैं उसे कुछ लोग कला बना देते हैं। अपने काम में कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों की मिसाल है ये वायरल तस्वीरें। ये शेफ सिर्फ पिज्जा नहीं बना रहा बल्कि अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहा है। अपने काम को वो इस तरह मजा लेकर कर रहा है कि उसका कंट्रोल और स्पीड दोनों एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं। हवा में परफेक्ट स्पिन के साथ चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जो ये तस्वीरें देख रहा है इस हुनरबाज को सलाम किए बिना नहीं रह रहा। तपती गर्मी में कम ही लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो इंसान की ही प्यास बुझा दे, लेकिन इस बच्ची को देखिए, गाय को इस चुभती गर्मी में हैंडपंप से पानी पिलाती इस बच्ची को देखिए, जिसने गाय माता की प्यास को महसूस किया। अब ये तस्वीरें वायरल हैं और यूजर्स बच्चे के संस्कार पर फिदा हो गए हैं। करुणा, दया और संवेदनशीलता की एक और तस्वीर लोगों का दिल जीत रही है, जहां एक स्ट्रीट वेंडर एक भूखी प्रेग्नेंट डॉगी की भूख को महसूस करता है। ये डॉगी उसकी दुकान पर बनते भोजन को टुकुर-टुकुर देख रही थी। वेंडर को समझ आ जाता है कि ये भूखी भी है और गर्भवती भी। तब वो उसे अपने ठेले से गर्मा गर्म खाना पेट भर खिलाता है। लोग वीडियो देखकर स्ट्रीट वेंडर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको अपने आसपास के लोगों और पशुओं के प्रति ऐसे ही करुणामयी होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस डिसेबल्ड डॉगी का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। ये डॉगी चलती सड़क पर वाहनों की आवाजाही के बीच फंस जाता है। तब स्कूटी पर बैठा ये लड़का उसे सड़क के पार जाने में मदद करता है। डॉगी पहले तो मदद का एक कदम समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही समझता है लड़के के साथ सड़क पार करने लगता है। यूजर्स अब लड़के की सूझबूझ को सराहा रहे हैं। गर्मी में जानवरों हो या इंसान, सबको पानी चाहिए, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी। गर्मी के मौसम में पानी की बौछारों के बीच इस डॉगी की तस्वीर वायरल है, जो गर्मी के बीच घर के दरवाजे से निकलते ही जमकर पानी की फुहारों का आनंद उठा रहा है। ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं कि इसे कहते हैं विशुद्ध आनंद।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
5: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: Good news today is really good. It's in this, right? उस खबरों की मार धाड़।
7: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे
8: हैं।
9: सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की सड़क किनारे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। जब उसके इस नेक काम पर एक बुजुर्ग की नजर पड़ी तो वह उसके पास आकर उसके इस काम के लिए एक छोटा सा इनाम देता है। ये वीडियो दिल्ली के शेख सराय इलाके का बताया जा रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली के वेस्ट कनॉट प्लेस में रोज की तरह भीड़ थी। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। इस भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला हाथ में पेन लेकर उन्हें बेचने की कोशिश कर रही थी। गर्मी थी, थकान थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बरकरार थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टीव बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं और उनकी मुस्कुराहट की तारीफ करते हुए पेन खरीदने की बात कहते हैं। महिला बताती है कि एक पेन की कीमत 50 रुपए है। स्टीव पहले 100 रुपए देकर 2 पेन खरीद लेते हैं, लेकिन जब उन्हें महिला की सादगी और मुस्कान पसंद आती है तो वे 2 और पेन खरीदने के लिए 100 रुपए और दे देते हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा कि उनके पास कुल कितने पेन बचे हैं। महिला ने बताया कि पूरे स्टॉक की कीमत करीब 900 रुपए है। स्टीव के पास उस समय केवल 550 रुपए बचे थे। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी जेब में रखे सभी पैसे बुजुर्ग महिला को दे दिए। खास बात ये रही कि उन्होंने सारे पेन अपने साथ नहीं लिए, सिर्फ 2 पेन रखे और बाकी महिला के पास ही छोड़ दिए, ताकि वे उन्हें आगे भी बेच सकें। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उम्मीद है कि आप बाकी सारे पेन भी बेच लेंगी। महिला ये देखकर भावुक हो गईं और हिंदी में उन्हें दुआएं देने लगी।
10: And I'll take these two beautiful pens. Okay, have a nice day.
9: सोशल मीडिया पर ये कमाल का वीडियो खूब देखा जा रहा है। यूजर्स इस शख्स के दिमाग की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में नजर आता है कि एक पर स्नैक्स और कैंडी के कई सारे पैकेट रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। अब गेम यह है कि वहां से लोगों को भागकर पैकेट्स के पास पहुंचना है और जो जितने पैकेट एक बार में ला सकते हैं उन्हें लेकर आना है। इसके लिए वो अपना तरीका अपना सकते हैं। अब कोई दोनों हाथों से पैकेट उठाता तो कोई अपने जैकेट में उठाता, लेकिन वहीं एक शख्स गजब का दिमाग अपनाता है। वो पैकेट के दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है और एक दूसरा शख्स उसे धकेलते हुए अपने एंड की तरफ लाता है। अब उस आदमी के लेटने से खूब सारे एरिया कवर हुआ, जिससे कई सारे पैकेट वो एक बार में ही लेकर इधर आ गया। सोशल मीडिया पर दो गोरिल्लाओं के बीच रूठने मनाने का एक बेहद दिलचस्प और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों के बीच ये अनोखी और हूबहू इंसानी कपल्स जैसी नोकझोंक सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। वीडियो की शुरुआत एक रूठी हुई मादा गोरिल्ला से होती है, जो किसी बात पर बेहद खफा है और मुंह फुलाकर बैठी है। वहीं उसका साथी एक अच्छे पार्टनर की तरह उसे मनाने और उसका गुस्सा शांत करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। जैसे ही नर गोरिल्ला प्यार से उसके पास जाता है और उसे मनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मादा गोरिल्ला झटके से उसका हाथ झटक देती है, मगर नर गोरिल्ला हार नहीं मानता है। वो बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे मादा गोरिल्ला की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया ही मिलती है। मादा गोरिल्ला का ये एटीट्यूड और दोनों के बीच की ये प्यारी सी तकरार हूबहू इंसानी रिश्ते की याद दिलाती है। यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। जानवरों के भीतर छिपे इन इंसानी भावों को देखना वाकई जादुई और बेहद खुशनुमा एहसास है। ये भावुक कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस वीडियो में एक छोटी सी चिड़िया अपने अंडों की बचाने के लिए जो किया उसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। वीडियो की शुरुआत एक खेत से होती है, जहां खेती का काम चल रहा होता है। खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है और चालक नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा होता है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन तभी एक ऐसा सीन सामने आता है जो पूरे माहौल को बदल देता है। खेत में मौजूद एक चिड़िया अपने घोंसले और उसमें रखे अंडों के पास मंडरा रही होती है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि ट्रैक्टर उसके अंडों के बेहद करीब पहुंचने वाला है, वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। अपने नन्हे बच्चों की सुरक्षा की चिंता में चिड़िया बिना किसी डर के ट्रैक्टर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आकार में बेहद छोटी होने के बावजूद वो बड़े साहस का परिचय देती है। वो अपने पंख पूरी तरह फैला लेती है और लगातार तेज आवाज निकालने लगती है। ऐसा लगता है मानो वो आने वाले खतरे को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। उसकी हर हरकत में अपने अंडों को बचाने की बेचैनी और ममता साफ दिखाई देती है। ये सीन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि माँ चाहे इंसान हो या पक्षी, अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बंदर अपने साथ दो आम लेकर किसी घर की छत पर पहुंच जाता है। वहां वह बड़े आराम से बैठकर आम खाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। वो पूरे सुकून के साथ आम का आनंद ले रहा होता है। उसकी ये हरकत देखकर ऐसा महसूस होता है कि मानो वो अपने पसंदीदा फल का स्वाद लेने में पूरी तरह मग्न है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर की एक महिला छत पर पहुंचती है और बंदर को आम खाते हुए देख लेती है। शायद उसे यह पसंद नहीं आता। दिलचस्प बात यह है कि बंदर महिला के इस व्यवहार से बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाई देता। आमतौर पर बंदर तेजी से भाग जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में नजर आने वाला बंदर काफी मोटा और भारी भरकम दिख रहा है। यही वजह है कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं दिखता। महिला के भगाने के बाद भी वह आराम से उठता है और धीरे धीरे वहां से चलता हुआ नजर आता है। उसकी ये बेफिक्र चाल लोगों को काफी मजेदार लग रही है। इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच यूके के एक जू ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जा रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाथी के बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के प्रति उसकी जिज्ञासा और मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़े वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहते हैं। कभी किसी जानवर की मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत लेती हैं, तो कभी जंगल के जीवों की ताकत और आक्रामक अंदाज से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर छा जाते हैं। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कई हाथी एक घिरे हुए प्लॉट के अंदर दिखाई देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद हाथी ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं। हाथी सामने बनी दीवार की ओर बढ़ता है और पूरी ताकत से उसे जोरदार धक्का मारता है। ये धक्का इतना जोरदार था कि मजबूत दिखाई देने वाली दीवार कुछ ही सेकंड में ढह जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दीवार गिरने के बाद हाथियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद वे आराम से उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं। हाथी की ताकत और उसके आत्मविश्वास को देखकर लोग दंग रह गए हैं। आमतौर पर ऐसी दीवारों को तोड़ने के लिए मशीनों या भारी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस हाथी ने केवल एक जोरदार धक्के से पूरी दीवार को गिरा दिया।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में तीनों सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग, 21 जून को भव्य अंदाज में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूएस ईरान पीस डील के बाद बदला हॉर्मूज का नजारा, 3 महीने बाद जहाजों की शांतिपूर्ण आवाजाही, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की गिरावट। चीन में धूमधाम से चल रही ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी, पर्यटकों से गुजार हुआ हावन आइस एंड स्नो वर्ल्ड, रंग बिरंगी नेचुरल बर्फ से बनाई गई भव्याकृतियां।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा के नए अध्याय की करेंगे। जल्द ही इंडियन नेवी को ताकत का डबल नहीं बल्कि ट्रिपल बूस्टर डोज मिलने जा रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत को पंख लगाने के लिए 21 जून को ऐसे 3 महाबली नेवी में शामिल किए गए हैं जो भारत की समुद्री सरहदों को मजबूत बनाएंगे। आने वाली 21 जून को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ 3 एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। इन 3 युद्धपोतों में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रे और नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक शामिल है। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों की कमिश्निंग का समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कोलकाता में होने वाला ये समारोह हाल ही के सालों में दूसरा ऐसा मौका होगा जब 3 एडवांस्ड नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया जाएगा।

0: लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना, जिसने अपने समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघना नामुमकिन है। नौसेना की समुद्री सुरक्षा का ये कवच अब कुछ और मजबूत होने जा रहा है। इक्कीस जून 2026 ये वो तारीख है जो भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। आने वाली 21 जून को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन एडवांस्ड स्वदेशी युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। इन तीन युद्धपोतों में पहला है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी, दूसरा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत INS अग्रय और तीसरा है भारतीय नौसेना का सर्वे युद्धपोत INS संशोधक। 21 जून को कोलकाता में इन तीनों युद्धपोतों का कमीशनिंग समारोह होगा जिसमें PM मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कोलकाता में होने वाला ये समारोह हाल के सालों में दूसरा ऐसा मौका होगा जब तीन एडवांस नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कमीशन किया जाएगा। इससे पहले ऐसा आयोजन पिछले साल जनवरी में हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में विध्वंसक जहाज INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर को कमीशन किया था। भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमता को पंख लगाने वाले ये तीन महाबली तैयार हैं। ये न केवल भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाएंगे बल्कि नौसेना की क्षमता में भी इजाफा करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने साल 2047 तक समुद्री सुरक्षा के लिए जो रोड मैप तैयार किया है ये उसी का हिस्सा है।
1: सूत्रों के मुताबिक 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये इंडक्शन हो सकता है और ये दूसरा मौका होगा जब एक ही साथ तीन अलग अलग योद्धा नेवी में कमीशन किए जाएंगे। अगर इन तीनों युद्धपोतों की बात करें तो ये सभी भारत में बनाए गए हैं और भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि 2047 तक वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी स्वदेशी युद्धपोतों के साथ लैस होगी और उसी कड़ी में ये भारतीय नौसेना का तेजी से चलता हुआ सफर है। यानी भारतीय नौसेना को अब एक बार फिर दूनागिरी जैसे युद्धपोत मिलेंगे जिनमें ब्रह्मोस के साथ साथ तमाम दूसरी मिसाइल्स की ताकत है, साथ ही अग्रय जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जाना जाएगा और संशोधक जो एक सर्वे वेसल है। भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत में ये एक ट्रिपल कमीशनिंग होगी जो वाकई में एक नई उपलब्धि की तरह देखी जा रही है।
0: तीन युद्धपोतों की एक साथ कमीशनिंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस्ड युद्धपोतों, मिसाइलों और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। ये तीनों महाबली स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उसी मिशन का हिस्सा है। चलिए अब आपको नेवी में शामिल होने वाले इन तीनों महाबलियों से मिलवा देते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। INS दूनागिरी में क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। इस घातक पोत में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है।
2: दूनागिरी की बात करूं तो मैं आपको INS दूनागिरी का एक मॉडल दिखाना चाहूंगा। ये मेरा पहला शिप था जो पुराना INS दूनागिरी जो बहुत समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद डीकमीशन हुआ और ऑपरेशन पवन श्रीलंका में इसने भूमिका निभाई, इसी का नाम नया दिया गया है। ये मेरा पहला शिप था जहां मैं पायलट के रूप में मैंने हवाई जहाज यहां से उड़ान भरी और आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर देख सकते हो। यही शिप फिर से कमीशन हुआ है गार्डन रिच के द्वारा, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अधीन बनाया हुआ 8 से ज्यादा शिप्स। इसमें नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, विंध्यागिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, तो ये दूनागिरी ये शिप अभी कमीशन हो रहा है। ये सरफेस शिप्स के साथ साथ 3,500-4,000 टन से ज्यादा का एक बहुत ही बेहतरीन फ्रिगेट है।
0: आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS दूनागिरी कमीशन होने वाला है उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल ने साल 2009 के जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। 2013 में इसके डिजाइन तैयार कर लिए गए। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था। 17A प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हेमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं।
2: बहुत ही कैपेबल शिप, एक कैपेबल फ्रिगेट, काफी हाई स्पीड के साथ, अच्छे पावरफुल इंजन के साथ, 80% भारतीय पुर्जों के साथ और अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए इसके जो पकड़ है उसको हम इससे देख सकते हैं कि एंटी सबमरीन रॉकेट, टॉर्पीडो, डेप्थ चार्जेस, सबमरीन को खोजने के लिए टोई, सोनार, रेडार, इसके सरफेस के ब्रह्मोस मिसाइल, इसमें शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसमें एंटी सबमरीन बड़े हेलीकॉप्टर्स MH-60 रोमियो जैसे जो अमेरिका से खरीदे गए हैं, ये सब मिलके इसको एक बहुत ही कैपेबल फ्रिगेट बनाते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक सूट्स की और दुश्मनों को दूर से पकड़ने की और टोह करके घात लगा के बियॉन्ड द रेंज जो दूर तक रडार से सर्च करके मारना, चाहे हवाई जहाज को, चाहे तो सरफेस शिप को, चाहे समर, इनको तीनों कैपेबिलिटी के साथ ये शिप भारतीय नौसेना को मिलने वाली है।
0: अब बात सागर की उस योद्धा की जो याद दिलाएगा भारत भूमि पर पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अपने युग के महान योद्धा अर्जुन की। इक्कीस जून का नौसेना में कमीशन होने जा रहा है INS अग्रय, एंटी सबमरीन वॉरफेयर का ध्येय वाक्य है एवर फॉरमोस्ट विक्टोरियस इन बैटल, यानी सदैव अग्रणी, युद्ध में विजयी, और इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह प्रेरित है अर्जुन के धनुष गांडीव से। कमीशनिंग से पहले INS अग्रय के क्रेस्ट का अनावरण किया गया। INS अग्रय अर्नाला क्लास का 5वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है। इसे विशेष रूप से उथले तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो और भारत में बने ASW रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। ये युद्धपोत भारत की तटीय सुरक्षा और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती देगा।
2: अग्रय में साइड स्कैनिंग सोनार लगे हैं, शैलो वाटर में सबमरीन्स को पकड़ना, पेट्रोलिंग करना, सर्च एंड रेस्क्यू करना, और इनके पास अंडर वाटर ऑटोनोमस बोट्स हैं जो पानी के अंदर अपने आप चल के और उसमें से रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स निकल के समुद्र की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और पूरी तरह से जो हमारा रख रखाव, जो हमारे सबमरीन के लिए जो बैथी हमको चाहिए, जो प्रेशर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से जो डेप्थ में चेंजेज आती है, जो उनका सबका अध्ययन करते हुए जो हमारे सेना के लिए, सबमरीन के ऑपरेशंस के लिए या मौसम विभाग के लिए, ये सब जरूरी है।
0: इक्कीस जून को कोलकाता में INS दूनागिरी और अग्रय के साथ सागर की लहरों पर उतारा जाएगा INS संशोधन। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। ये संधायक क्लास के सर्वे वेसल प्रोग्राम का चौथा और आखिरी जहाज है। INS संशोधक सागर की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने का काम करेगा।
2: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधायक क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई, वहां के जो मैपिंग है समुद्र की सतह का अनुमान और हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर की जो चेंजेज है जो सतह के नीचे के पानी के सतह में होती है उनकी भी जानकारी जरूरी, इससे सबमरीन ऑपरेशन और दूसरे काम करने में अंडरवाटर मदद मिलती है। तो इन सब को करने के लिए ये हाइड्रोग्राफी शिप्स जरूरी है जो भारतीय नौसेना में लगातार इंडक्ट किए जा रहे हैं, पहले संधायक, उसके बाद निरूपक और उसके बाद इच्छक, और अब हम संशोधक को 21 जून को भारतीय नौसेना में शामिल करने वाले हैं। ये शिप शांति के दौरान और युद्ध के दौरान दोनों में अपनी भूमिका निभा सकेगा और हॉस्पिटल शिप के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।
0: खास बात यह है कि ये तीनों युद्धपोत पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं। अब ये तीनों मिलकर भारतीय नौसेना की सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमताओं को मजबूत करेंगे। इन तीनों योद्धाओं के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब बात उस अभूतपूर्व रिकॉर्ड की जो भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में बनाकर दिखा दिया है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का परचम खूब लहरा रहा है। नया भारत आज हर पल आत्मनिर्भरता का नया कीर्तिमान रच रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का कुल रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। इतना ही नहीं बल्कि अब की बार भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को पिछले साल की तुलना में 62% तक बढ़ा दिया। लगभग 38,500 करोड़ रुपए के हथियार बनाकर हमने दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट भी किए हैं।

0: स्वदेशीकरण। सशक्तिकरण। आत्मनिर्भरता। आत्मविश्वास। आत्मगौरव। ये शब्द नहीं, ये मुकम्मल दास्तां है राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की। ये जय घोष है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का। ये वो दौर है जब दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई देती है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार है। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। वही लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। तभी तो अब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये अभूतपूर्व है। एक समय था जब भारत हथियारों, लड़ाकू विमानों और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हिंदुस्तान लगातार ऐसे ऐसे आयाम हासिल करता जा रहा जिसे देखकर दुनिया दंग है। बता दें कि पिछले साल भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ था, जो साल 2026 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 15.6% ही छलांग लगाई है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि साल 2020-21 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपए था। यानी साल 2020-21 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश में डिफेंस प्रोडक्शन में 125% से ज्यादा की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2013-14 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 4 गुना यानी 400% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और 2025-26 में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन हुआ है। ये आंकड़ा 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% इजाफा हुआ है और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनका हिस्सा 24% का है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दर अगर पिछले कुछ सालों यानी एक दशक से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बढ़ोतरी 110% है। यानी लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस से लेकर व्हील्ड व्हीकल्स तक सब कुछ भारत बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही सैकड़ों ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब भारत आयात नहीं करता, भारत में ही बनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वृद्धि को देश के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। वास्तव में ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जिसके बूते आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में रक्षा क्षेत्र के PSUs के साथ साथ इस साल निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के नए आंकड़ों में DPSUS यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs यानी दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल उत्पादन के 76% का योगदान दिया। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% रहा। इसे यूं समझिए कि 2025-26 में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 42,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। देश के डिफेंस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी सशक्त होते भारत की पहचान है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि न केवल प्रोडक्शन बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2024-25 तक ये आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए का था, यानी पिछले साल की तुलना में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहले साल की तुलना में 62.66% ज्यादा है। भारत दुनिया में पांचवा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। आज दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर न केवल अपनी सरहदों को अभेद्य बना रहा है बल्कि दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन का नया पावर सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ GNT के स्पेशल पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अच्छी खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: चलिए अब आपको बताते हैं खबर एक कमाल के कुत्ते की। कुत्तों की वफादारी की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी। आपने ये भी सुना होगा कि महाभारत में हस्तिनापुर का त्याग कर जब युधिष्ठिर उनके चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकले तो एक कुत्ता रास्ते में उनके साथ जुड़ गया। अंत तक उनके साथ रहा ये कुत्ता। इस कुत्ते के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे शांति दूत भी कहा जा रहा है।

0: बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठा ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये अलोका है, जिसे द पीस डॉग के नाम से जाना जाता है। इस कुत्ते से मिलने के लिए, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों में बड़ी उत्सुकता नजर आ रही है, क्योंकि ये डॉग ही बेहद खास है। कभी कोलकाता की गलियों में घूमने वाला ये कुत्ता अब दुनिया भर में शांति और करुणा के दूत के रूप में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के एक होटल की हैं, जहां अलोका के लिए खास तौर से भव्य मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि इसके मुरीद लोग यहां पर आकर इसका दीदार कर सकें, क्योंकि इसके पीछे वजह भी खास है।
1: अलोका के साथ एक फोटो खिंचाने के लिए 300 लोग आए। वी आर सो ग्रेटफुल कि एक इंडियन डॉग ने वर्ल्ड पीस एम्बेसडर बन गया, कि एक सड़क पर रहने आने वाला इंडियन डॉग ने ऐसा पीस का मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचाया है। और वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, हर कुत्ता इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक स्पिरिचुअल लैंड है, हमारा भारत देश एक लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ हर जीव सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में एक मैसेज लेके जाता है।
0: अलोका नाम के इस डॉग ने कई देशों में शांति के लिए पदयात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संग रहकर शानदार शोहरत हासिल की है। सोशल मीडिया पर करीब 5,00,000 लोग इसे फॉलो करते हैं। शांति और करुणा के एम्बेसडर के रूप में इसने कोलकाता से अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड सहित कई देशों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा सफर पैदल ही पूरा किया है। बौद्ध भिक्षुओं के मुताबिक अलोका इन्हें कोलकाता में एक शांति यात्रा के दौरान मिला था। इसके बाद ये इनके साथ ही रहने लगा और शांति यात्राओं का हिस्सा बनता चला गया। तब से अब तक ये इनके हर वॉक फॉर पीस अभियान में शामिल होता आ रहा है।
1: इन्होंने यूएस के अंदर 110 दिन का इनका पीस वॉक थी। अलोका के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलोका द डॉग जो आप दिख रहे हैं। और साथ में अभी इनकी थाईलैंड में भी वॉक थी, तो पीस वॉक के चलते उनका लंबा एक इनिशिएटिव चल रहा है उसको लेकर।
0: दुनिया भर में शांति का संदेश फैलाने वाले इस मशहूर भारतीय डॉग अलोका के स्वागत में इससे मिलने और इसके साथ यादगार तस्वीर खिंचवाने के लिए दिल्ली एनसीआर के कोने कोने से सैकड़ों डॉग लवर्स गुरुग्राम में हुए कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम का मकसद बेसहारा पशुओं के प्रति लोगों में दया और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है, और साथ ही ये संदेश देना भी है कि समाज में हर जीव को सम्मान देना चाहिए। नेपाल के दौरे के बाद भारत पहुंचे अलोका का अगला पड़ाव एक बार फिर अमेरिका है, जहां ये एक बार फिर से शांति के संदेश को फैलाने में इन भिक्षुओं का साथ देगा। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फीफा वर्ल्ड कप का खुमार पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में दिखाई दे रहा है। कोलकाता में एक गली तो वर्ल्ड कप के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। इस गली को लोग फीफा गली के नाम से जानते हैं, क्यों देखिए।

0: ये तस्वीरें भारत में फुटबॉल की दीवानगी बयां कर रही है। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होते ही पूरी दुनिया पर फुटबॉल का खुमार दिख रहा है। भारत में भी फुटबॉल के फैंस इस खेल की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। कोलकाता में तो फुटबॉल फैंस ने कुछ रास्तों को ही फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंग दिया है। हर गली मोहल्ले में फीफा वर्ल्ड कप का उत्साह दिख रहा है। फैंस ने अपने पसंदीदा प्लेयर्स के बड़े बड़े पोस्टर चिपका रखे हैं। कोई मेसी के लिए अपनी दीवानगी बयां कर रहा है तो किसी ने रोनाल्डो और नेमार के पोस्टर लगा रखे हैं। नॉर्थ कोलकाता में मौजूद इस गली को तो फीफा गली का नाम दे दिया गया है।
1: In the year 2022, what we did was in 2018, the whole gully was decorated with the colors of Brazil, and in 2022 we decorated it with many supporters from each and every country. Maradona was being painted, then on there Ronaldinho was being painted, here Cristiano Ronaldo was being painted, and in 2022 the name came up as FIFA values. And today we are almost 95% of the work is finished. Only some of the drawings are pending, which will be completed by tomorrow. And it will be open to all for everyone to come here to shoot here.
0: पूरी गली फीफा में खेलने वाली फुटबॉल टीमों के झंडों से सजी है। कहीं ब्राजील के झंडे लहरा रहे हैं तो कहीं अर्जेंटीना को चीयर किया जा रहा है। इन रंग बिरंगे झंडों से लोगों ने पूरी सड़क को ही फुटबॉल कार्निवल में तब्दील कर दिया है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
4: What about me, Jack? What about me?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: Well played, Jack. Well played.
3: Jack FM, playing what we want.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में तीनों सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग, 21 जून को भव्य अंदाज में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूएस ईरान पीस डील के बाद बदला हॉर्मूज का नजारा, 3 महीने बाद जहाजों की शांतिपूर्ण आवाजाही, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की गिरावट। चीन में धूमधाम से चल रही ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी, पर्यटकों से गुजार हुआ हावन आइस एंड स्नो वर्ल्ड, रंग बिरंगी नेचुरल बर्फ से बनाई गई भव्याकृतियां।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
6: अब बात मानसून की, देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। गुजरात में मानसून की एंट्री से पहले ही कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे कि तापमान में भारी गिरावट आई। वहीं दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, कई दिनों तक लू जैसे हालात झेलने के बाद अब मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आज से 21 जून के बीच रुक रुक कर बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी।

गुजरात में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में उत्तर और मध्य गुजरात के 62 तालुकाओं में जमकर बारिश हुई। इससे न सिर्फ मौसम सुहावना हुआ बल्कि बारिश के सीजन का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। समंदर में उठती ये लहरें गुजरात के देवभूमि द्वारका की हैं। द्वारका के समंदर में 12 से 15 फीट तक ऊंची उठती ये लहरें प्री मॉनसून की है, यानी समंदर की ये लहरें मॉनसून का आह्वान कर रही हैं। और प्रशासन का भी कहना है कि मॉनसून के दौरान समुद्र का मिजाज अचानक बदल सकता है। गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली।